ओम शांति। योगी इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हैं, जिसे लाइट हाउस का प्रकाश चहुं ओर फैलता रहता है, वैसे ही योगयुक्त आत्माओं का प्रकाश इस वसुंधरा पर चहुं ओर दसों दिशाओं में फैलता रहता है। बाबा ने हम सभी महान आत्माओं को योगी बनाया है। कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं योगेश्वर, स्वयं परम आत्मा ने राजयोग सिखाकर हमें योग बल प्रदान किया है, हम सच्चे दिल से योगी बने। योग का सुख इस संसार में सबसे अधिक है, क्योंकि योग माना स्वयं भगवान के साथ रहना। तो याद रखेंगे बाबा के महावाक्य, बच्चे तुम दो युग तक देवताओं के साथ रहे, तुमने दो युग मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहकर देखो। बार बार इस सुंदर संकल्प को करेंगे तो बाबा के साथ रहने का बहुत अच्छा उमंग मन में रहेगा और हम अनेक बातों से मुक्त होकर परमात्म मस्ती में मस्त रहेंगे। सोचें भगवान के साथ रहना कितना बड़े सुख है, कितनी बड़ी बात है। तो क्यों ना हम और सब तरफ से बुद्धि को हटा दें और केवल बाबा के प्यार में मग्न हो जाएं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे पास ही तो वो श्रेष्ठ बुद्धि है कि हम बाबा के साथ निरंतर रह सकते हैं। हमारे पास ही तो वो सद्विवेक है, वो सरल ज्ञान है, जिससे हम निरंतर योग युक्त रह सकते हैं। तो यदि हम नहीं रहेंगे तो भला कौन योग अभ्यास करेगा। इस योग बल से संसार बदलता है, इस योग बल से हम अपना दैवी स्वराज स्थापित करते हैं, इस योग बल से सारा वायुमंडल बदल जाता है, देवकुल की आत्माएं पुनः जागृत हो जाती हैं, धरती चांद तारे आकाश हवा सब बदल जाती है। तो क्या हम इतना सुंदर कार्य नहीं करेंगे? हमें इस बात को बहुत महत्व देना चाहिए कि योगयुक्त जीवन इतना महत्वपूर्ण जीवन है। हम सोच लें अपने जीवन में हम किसे महत्व दे रहे हैं? व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की उलझनों को, व्यर्थ के कार्यों को, या योगयुक्त जीवन को? तो आइए हम श्रेष्ठ योगी बनने का सुंदर संकल्प करें। जो योगी हैं वही भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं। योगी तो मानो उसका ही स्वरूप होते हैं। योगियों में लोग भगवान की झलक देखेंगे। हमें अपने को परमात्म रंग में इतना रंग देना है कि हम में स्वयं उसकी ही छवि दिखाई दे। तो जो आत्माएं इस तरह अपने को महान बनाएंगी, वो इस संसार में विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सबसे बड़ा योगदान देंगी। तो आइए हम सभी चलते फिरते लाइट हाउस बने, हम माइट हाउस बन जाएं, कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान दें। आज सारा दिन यही प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। मैं चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, सारा संसार इन पवित्र वाइब्रेशन से निहाल हो रहा है, सारे संसार का अंधकार दूर होता जा रहा है, और ऊपर से
बाबा की शक्तियों की किरणें, बाबा की प्रकाश की किरणें मुझ में समा रही हैं, तो ऊपर से मुझ में समा रही हैं और नीचे मुझ से चारों ओर फैल रही हैं। ये सुंदर अभ्यास आज सारा दिन करते रहेंगे

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, सुस्वागतम। हमेशा की तरह सुप्रभात के समय कोई दिव्य अलौकिक विचार को अगर हम सुने तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है और मन भी फ्रेश हो जाता है। तो चलिए हम आज का सुविचार सुनते हैं। कहते हैं कि हम भूतकाल में जाके आरंभ को बदल नहीं सकते, लेकिन हम जहाँ है वहाँ से एक नई शुरुआत करके अंत को जरूर बदल सकते हैं। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। कई बार हमारा मन जो है वो भूतकाल में जाता रहता है और फिर दुखी भी होता रहता है। इसके कारण कहा गया है कि जब जागो तब सवेरा। हमारे ही हाथ में है कि हमारे मन को हम जगाए, और जब ये मन जग जाता है, जब ये एक आत्मिक जागृति होती है, तब भूतकाल में घटित जो भी घटनाएं हैं, जो हमें दुख देने वाली है, जो हमें कुछ ना कुछ पश्चाताप दिलाने वाली है, उनको हम ज़रूर ज़रूर भूल सकते हैं, या कहो उनको किस प्रकार से हमें निकाल कर फिर से दुखी नहीं होना है, इस नैक को तो हम ज़रूर अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अपने विचारों को बदले, उन्हें सकारात्मक बनाए और अपना सफल भाग्य अपने ही हाथों से लिखे, क्योंकि भाग्य विधाता परमात्मा तो भाग्य बांट ही रहा है, लेकिन वो भाग्य बांटते हुए एक बात तो जरूर करता है, वो हमारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम दे देता है और कहता है जैसा चाहिए, जितना चाहिए इतना अपना भाग्य अच्छी तरह से लिखो। लेकिन अगर उस कलम को हमने ठीक से पकड़ा नहीं, उसको समय पर ठीक से उठाया नहीं, और जब भाग्य लिखना है, तकदीर लिखनी है, उस समय भूतकाल में मन जाके हम दुखी बन गए, तो आप ही बताइए किस प्रकार से हम उस कलम का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आज की सुबह उठाओ कलम और लिखो अपनी तकदीर। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का हम स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, कलम तो आपने हाथ में दे ही दिया है, मेरे हाथ में दे दिया है और हमारे श्रोतागण के हाथ में भी दे दिया है। अभी हमारे ऊपर वो निर्भर है, हम कितनी लंबी लकीर खींच सकते हैं। बहुत अच्छा सुविचार है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकाल, भूतकाल हमारे हाथ में नहीं है, जो घटना घटित हो गई है, अच्छी हो या बुरी हो, इसके ऊपर अगर हम सोचते रहेंगे तो उसका फायदा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि अगर भूतकाल में कोई गलती हो गई है तो गलती को हम सुधार सकते हैं। लेकिन वर्तमान काल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान काल में अगर कुछ अच्छी चीजें हम करें, अच्छे विचार अगर हम करें, तो भविष्य का निर्माण हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि भूत जो है, लौकिक रीति से भी भूत जो है वो डरावने होते हैं, भूतों को कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन भविष्य जो है वो हमेशा उज्जवल रह सकता है, अगर हम वर्तमान को सही तरीके से इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम आज एक बहुत सुंदर कहानी भी सुनने वाले हैं। हमेशा की तरह आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए सुनते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन जो है उसको वहम हो गया। कौन सा? उसको लगने लगा कि श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है वो मैं ही हूं। अर्जुन सोचता कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए, उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले जाने का प्लान किया। क्या था वो? तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने योगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच गए भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोर ध्वज के दरवाजे पर, उसके दरबार में। राजा मोर ध्वज बहुत ही दानी था और आव भगत वाले जो भी थे अपने दर पर आए हुए, किसी को भी वो खाली हाथ बिना भोज के जाने नहीं देता था। तो दो साधु और एक सिंह दर पर आ गए। तो जब ये राजा ने जाना तो नंगे पाव दौड़कर द्वार पर आ गया और भगवान के तेज से नतमस्तक हो गया और कहा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने मोर ध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी सब शर्तें मानेंगे। तब राजा ने भी जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, लेकिन ये सिंह जो है वो नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम समझेंगे कि आपने हमारा आतिथ्य अच्छी तरह से किया और हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे। भगवान की ये शर्त सुनने के बाद दरअसल राजा के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म छोड़ना नहीं चाहता था। उसने भगवान को कहा, प्रभु ठीक है, मुझे मंजूर है, बस मुझे एक मौका दीजिए, एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया। राजा का उतरा हुआ मुख देखकर वो पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो दोस्तों, रानी के आंखों में तो आश्रु बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली, आपकी आन पर मैं तो अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को अंदर आदर पूर्वक ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम बस चुप होते हुए सब कुछ देखते जाओ। हो गया। फिर राजा तीनों को अंदर ले आए, भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को तो 56 प्रकार के भोग परोसे गए, परंतु अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था वो भोग। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था उसका रतन, लेकिन वो अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए अपनी तैयारी दिखाई, न उफ की न कुछ किया। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी ली और पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक नहीं पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का 1 फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अब अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान ने मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ही ये सारा नाटक रचा है। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिर गए, विनती करने लगे और कहने लगे, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है, राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है प्रभु। कृपा करके मुझे माफ करो और अपने भक्त का कल्याण करो। तब भगवान ने अर्जुन का घमंड टूट गया ये जानकर रानी से कहा कि अब वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो अब मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधु की आज्ञा है, मानना तो चाहिए। तो उसने अपने पुत्र रतन को आवाज लगाई। दोस्तों, फिर क्या था, चमत्कार तो होना ही था। भगवान ने स्वयं कहा था, कुछ क्षण बीत गए और चमत्कार हो गया। मृत रतन जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते खेलते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया और पूरे दरबार में श्री कृष्ण के नाम की जय जयकार होने लगी। दोस्तों, भगवान का दर्शन पाने के बाद अपनी भक्ति सार्थक हो गई ये जानकर राजा मोर ध्वज की आंखें भी भर आई और भगवान से उसने वरदान देने को कहा। राजा रानी दोनों ने कहा तो भगवान एक ही वर दो कि भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी नहीं लेना जैसी आपने हमारी ली। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने तथास्तु कहा, पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और सब सुख चैन से रहने लगे। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या इस कहानी से हमने कुछ सीख ली? ज्ञानेश्वर जी, हम क्या कहेंगे इसके लिए?
2: भक्ति जी, कहानी सुंदर है लेकिन उसमें पेच भी है। कहानी अगर सुनते हैं तो दो प्रकार के विचार मन में आते हैं। एक,

0: क्या हम उससे सीख ले? अगर कोई ऐसी परीक्षा होती है तो क्या सचमुच हम हमारे बच्चे का बलिदान दे सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बहस इसके ऊपर हो सकती है, लेकिन हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ भाव होता है और वो अच्छा भाव हमारे फायदे का, हमारी जिंदगी में उसको हम इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हैं, ऐसा अगर हम ले तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी अतिथि, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं था ये भगवान है, लेकिन उसे ये मालूम था कि ये अतिथि है। कोई भी अतिथि है उसका आतिथ्य जरूर करना है, लेकिन हमें परख शक्ति भी चाहिए कि अतिथि कैसा है। और कोई भी ऐसी अगर डिमांड करता है, कोई भी ऐसी मांग करता है, तो उसको पूरा नहीं करना है। यहाँ तो भगवान की बात है, लेकिन ऐसे हम रामायण की कथा भी सुनते हैं कि अतिथि बन के रावण आया और सीता मैया बहुत दुविधा में पड़ गई। उसने पहचान नहीं लिया कि वो रावण है और मायावी है, उसने उसे अतिथि समझा और फिर क्या हो गया, उसका ही सीता हरण हो गया, रामायण हो गया। तो मुझे सीख इस कथा से ये लेनी है कि हर कोई मोरध्वज राजा नहीं हो सकता और हर मोरध्वज के पास भगवान आना जरूरी नहीं है। भगवान के रूप में, अतिथि के रूप में कोई दूसरा भी आ सकता है, और इसलिए हमें सावधान तो रहना है। और इस कथा के द्वारा हम ये सीख ले सकते हैं कि अतिथि देवो भव है ही, लेकिन अतिथि कौन से रूप में आता है उसे हमें परखना है, पहचानना है। और इसलिए हमारी बुद्धि जो है, भगवान के पास सात्विक बुद्धि रहती है तो परख शक्ति भी हमारी बढ़ती है।
1: बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों, अगर हमारे पास परख शक्ति है तो हम इन बातों से कभी भी अच्छी तरह से सीख लेंगे। लेकिन ये भी एक बात निश्चित है कि जब हम मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, हम दशम स्कंद का 16वां अध्याय देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही सुंदर उसकी लीलाओं का वर्णन है। तो बलराम जी ने जब ये देखा कि सब भयभीत हुए हैं, व्रजवासियों का भाव कातर हो गया है, वो बहुत आतुर हो गए हैं, तब उनको बड़ी हंसी आई, पर वे कुछ बोले नहीं, वे चुप रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। देखा जाए तो दोनों भगवान के ही रूप है, और इसीलिए ये सारी जो लीलाएं हैं उसके पीछे का भाव और किस प्रकार से भगवान अपने चमत्कार दिखाते हैं और उसके द्वारा ही दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश करते हैं, इन सब बातों का उन्हें ज्ञान था। फिर ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे, कोई अधिक कठिनाई तो उनको हुई नहीं, और फिर जब भी उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं, कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल भी है लेकिन वे भी अचेत पड़े हुए हैं, गौवे हैं, बैल हैं, बछड़े हैं, सब बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। ये सब देखने के बाद वे सब गोप व्रजवासी बहुत व्याकुल हो गए और अंत में वे भी मूर्छित हो गए। ज्ञानेश्वर जी, ये सारी जो बातें हैं, दरअसल अगर आज के ज़माने में आज का मानो इस प्रकार से भी विचार करेगा कि ये सारी लीलाएं दिखाने के पीछे क्या भाव था, क्या कहेंगे उसके बारे में?
7: भक्ति जी, परमात्मा की लीला, भगवान की लीला अजीबो गरीब है, उसे हम पहचान नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वैसे देखा जाए तो संत लोग कहते हैं कि ये शरीर हमारा जो चलता है वो भी एक भगवान की लीला है। तो बहुत बार ऐसी लीलाओं का वर्णन मुख्य रूप से भागवत कथा में छोटा बच्चा श्री कृष्ण और उनकी अनेक लीलाएं, मुझे ये लगता है कि ये लीलाओं का वर्णन जब करते हैं और हम सुनते हैं, तब उससे अगर हमें कुछ लेना है तो हम ये ले सकते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि मैं बीमार हो गया और मुझे भगवान ठीक करेगा, वो आपको शक्ति ज़रूर देगा, लेकिन वो बैठे बैठे आपको ठीक नहीं कर सकता। आपके भाग्य में अगर है, आपके कर्मों का हिसाब जो है उसके हिसाब से ही वो चलेगा। और यही दर्शाने के लिए कभी कभी भगवान को ये नाटक भी करना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है।
6: बिल्कुल। तो आगे परीक्षित को शुकदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण के लिए सब कालियादह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले बलराम जी ने उन सबको समझाया, बुझाया और बलपूर्वक उनको रोक दिया वहां जाने के लिए। अब यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्य जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं और मेरे सिवा उनका कोई सहारा है ही नहीं, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहे और बाहर निकल गए। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना सारा शरीर फुलाया, एकदम मोटा कर दिया और सांप का शरीर, कालिया का शरीर इसके कारण टूटने लगा। उस समय कालिया नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों को दोनों किनारों को चाट रहा था। बहुत विकराल उसका रूप था, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया कि उसके बड़े बड़े सिरों को दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सुंदर लाल लाल मणियां थी और उनके स्पर्श से सुकुमार तलुओं की ललिमा बहुत ही बढ़ गई और नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उस कला पूर्ण नृत्य उसके सिरों पर करने लगे। दोस्तों, बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार से अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फणरूप छत्ते छिन्न भिछिन्न हो गए और वो मन ही मन भगवान की शरण में आ गया। और उस अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भी भगवान के शरण में आ गई। इस प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन है। ज्ञानेश्वर जी, ये सारी जो बातें हैं कहानी के रूप में तो मैं समझती हूँ हमारे श्रोतागण ने कई बार सुनी है, पढ़ी है, लेकिन भागवतकारों की एक विशेषता है कि हर बार जब वो वर्णन हम सुनते हैं तब नित्य नया प्रतीत होता है।
7: बिल्कुल भक्ति जी, अभी आपने जैसे पूछा था कि ये कृष्ण की लीला जो है, श्री कृष्ण जी की लीला है, इससे हमें क्या लेना है। मुझे लगता है ये पूरी कथा सुनने के बाद और भागवतकारों ने इतना अच्छा वर्णन किया है, ये सुनने के बाद दो चीजें मेरे ध्यान में आती है। एक, श्री कृष्ण जी जब बंध गए थे, कालिया के बंधन में बंध गए थे, और उस समय जो ग्वालवाल थे, बाकी व्रजवासी थे, वो बेहोश हो गए। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमारे पास संकट आता है, मुश्किलें आती है, लेकिन हमारा भगवान के ऊपर का विश्वास टूट जाता है, तब क्या होता है, हम बेहोश हो जाते हैं। हमें होश नहीं रहता कि हमारे साथ कौन है। भगवान की शक्ति जो है वो अगर हमारे साथ है तो कुछ भी हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तो ये विश्वास जब रहता है तब शायद ये विश्वास की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण जी ने ली, और जब उन्होंने देखा कि व्रजवासी का विश्वास टूट रहा है तब उन्होंने अपना खेल दिखाया। और दूसरी चीज मुझे लगती है कि श्री कृष्ण जी छोटे नन्ना बालक, अभी कोई भी सांप है, कितना भी बड़ा सांप हो, लेकिन उसके फन के ऊपर कोई नाच नहीं सकता। लेकिन यह दिखाया है कि श्री कृष्ण जी फन के ऊपर नाचते हैं। फन का मतलब है मस्तक, और मस्तक के ऊपर हावी होना, मस्तक के ऊपर खड़ा होना या दुश्मन को अपने पैरों तले कुचल देना, यह सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मुझे लगता है जब हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था अगर भगवान के ऊपर रहती है तो कालिया जैसा महाभयंकर संकट, महाभयंकर मुश्किल भी हमारे सामने खड़ी होती है तो वो हमारे अंदर ताकत पैदा करती है और हम ये मुश्किलों के ऊपर सवार हो सकते हैं, नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं और खुशियां भी मना सकते, ऐसा मुझे लगता है।
6: बिल्कुल दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी अगाध है, लेकिन इन सबके पीछे यही दिखाया है कि किस प्रकार से भगवान जो है वो अपने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाकर उसका विश्वास बढ़ाना भी चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न भी आपके मन में आते होंगे, दोस्तों जरूर उसका हल भी भागवतकारों ने हमें बहुत सुंदर रीति से दिया है, उसका भी जरूर चिंतन करेंगे। चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आपका अमृत धारा में फिर से स्वागत है। और बहुत ही सुंदर, जिसको कहे बहुत पॉपुलर, कालिया मर्दन, ये जो भागवत कथा का एक सुंदर अध्याय है, दशम स्कंध का, जिस पर हमारी चर्चा हो रही है 16वें अध्याय में, तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी हुई है, लेकिन शायद हमने उसका चिंतन ठीक तरह से नहीं किया है, इसलिए हम जरूर उस पर चिंतन करेंगे। तो कहते हैं कि जैसे ही कालिया मन ही मन भगवान की शरण में आ गया, तब भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। इतना ही नहीं, उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान जो फण थे वो छिन्न भिन्न हो गए। दोस्तों, हम सब ने श्री कृष्णा सीरियल देखी है, महाभारत भी देखा है, और कई सारी श्री कृष्ण की लीलाओं का भी हमने वर्णन सुना है, जिसमें कई बार ये वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण जी ने बाल रूप में मिट्टी खाई और यशोदा मैया को इस बात के लिए वो नाकार रहा था, तब यशोदा मैया ने कहा कि आप मुंह खोलो, और उसके मुंह में यशोदा मैया को पूरा विश्व दिखाई दिया। अब यहाँ जो बात भागवतकार करते हैं कि श्री कृष्ण के उदर में पूरा विश्व समाया हुआ है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि बहुत ही चिंतन करने जैसा ये टॉपिक है।
3: बिल्कुल भक्ति जी, भागवतकारों ने ये वर्णन जो किया, श्री कृष्ण जी के उदर में सारा विश्व समाया हुआ है। बहुत सारे संतों ने भी उनका गायन किया है, चाहे मराठी में संत है या हिंदी में संत है। मराठी में एक संत है, संत तुकाराम, और उन्होंने उसका वर्णन किया है, अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदा घरी। ये मराठी में है, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। मराठी में अनंत और ब्रह्मांड जिसके उदर में है, मराठी में जो कहा गया है उसका हिंदी अनुवाद, अनंत जो अनंत है और ब्रह्मांड जो है वो भी अनंत है, और इतने अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में है वो बालक रूप में नंद बाबा के घर पे वास करता है, और ये भी एक आश्चर्य है। बहुत सारे आश्चर्य उन्होंने वर्णन किया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचे कि श्री कृष्ण जी के उदर में ही सारा ब्रह्मांड है, तो हम भी उनके उदर में हैं, आप भी उनके उदर में हैं, सुनने वाले श्रोतागण भी उदर में हैं। ये समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब हम उसके डेप्थ में जाते हैं, उसके जड़ तक जाते हैं, तब समझने में दिक्कत होती है, और फिर लगता है क्या ये कवि कल्पना है, क्या ये फैंटसी है, ऐसी विचित्र कथाएं जो है, क्यों अगर हम उसके उदर में हैं तो हमारा अस्तित्व क्या है। इसके लिए अगर हम ये कहें कि परमात्मा को हम बीज रूप समझते हैं, भगवान को हम बीज मानते हैं। अभी जैसे बीज है, कोई भी वृक्ष का जो बीज है वो बीज कितना छोटा होता है, अभी उसी बीज से सारा वृक्ष पैदा होता है। इसलिए कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में सारा वृक्ष जो है वो बीज में समाया हुआ है। जब बीज को पानी मिलता है, जब बीज धरती पे फलता है, तो क्या होगा, वृक्ष का निर्माण होगा। तो लेकिन बीज वृक्ष में है या नहीं है, इसके ऊपर अगर हम सोचे तो बीज सूक्ष्म रूप में सारे वृक्ष में है, या सारा वृक्ष जो है बीज में सूक्ष्म रूप में है। इस आधार से अगर इस कथा को देखे, इस आधार से इस वर्णन को देखे, तो सारा ब्रह्मांड जो है वो श्री कृष्ण जी के उदर में है, ऐसा हम समझ सकते हैं।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये आपने जो बहुत सुंदर बात बताई, मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है उसकी जो शुरुआत है वो यही है संस्कृत में कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि अस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। अर्थात ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष का बीज ऊपर में है और वो बीज में सारा कल्प वृक्ष, क्योंकि कल्प वृक्ष की जब हम किसी के लिए उपमा देते हैं, मिसाल देते हैं, कल्प वृक्ष तो बहुत ही बड़ा होता है और यहाँ तो बताया है कि सारी सृष्टि ही उस कल्प वृक्ष में है और वो बीज ऊपर है। अब कितनी सारी बातें देखो दोस्तों, इन सब बातों से मिलती जुलती है। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण का एक साकार रूप जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है। और कई बार हमने चर्चा की है कि हम सब देह रूप में हैं, इसीलिए हमको भी शरीर को याद करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन परमात्मा जो है वो तो एक बीज रूप है, वो तो अनंत है और उसके अंदर सब कुछ है। तो ये वहाँ पेट में इस प्रकार से बताया है और यशोदा मैया के लिए वो दिखाया कि जब उसने मुंह खोला तो पूरा का पूरा मुंह में सारा का सारा विश्व है और यशोदा मैया जो है वो जैसे कि एकदम चकित हो गए।
3: बिल्कुल। और दूसरी चीज, जैसे आपने भक्ति जी बताया कि श्री कृष्ण जी कालिया के फन के ऊपर नाच रहे थे और उसकी गाँठें जो है वो पूरी टूट गई। अभी जब गाँठें टूट गई, ये शब्द प्रयोग मैंने जब सुना, तब मुझे लगा कि जैसे भागवत कथा का प्रारंभ जो होता है वो गोकर्ण महात्म्य से होता है, इसके ऊपर हमने चिंतन भी किया था, हमने चर्चा भी की थी। और वहाँ भी देखिए, वो जो धुंधुकारी जो है बांस में बैठता है और एक एक दिन के बाद एक एक गाँठ टूट जाती है, उड़ जाती है। तो गाँठें जो है, हमारे मन के अंदर भी बहुत सारी गाँठें हैं। हमारे मन के अंदर भी कई किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति और कुछ भावना है, और ये गाँठें जो है भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का पदस्पर्श होता है, तब ये गाँठें भी अपने आप टूटते लगती है। तो हमारे अंदर भी एक कालिया बसा हुआ है, मन रूपी विशाल जमुना जो है उसके अंदर कालिया बसा हुआ है, और वो कालिया सारे वृंदावन को कहे या हमारा शरीर अगर वृंदावन कहे तो सब शरीर को तकलीफ देता है। लेकिन परमात्मा की स्मृति जब मन में आती है तब क्या होगा, अंदर की जो गाँठें है वो टूटने लगती है और फिर हम मोक्ष पद के लिए प्राप्त होते हैं। ये भी एक भावना इस कथा के द्वारा हमें मिल सकती है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, हम सब जानते भी है, क्योंकि विकार जो है वो एक प्रकार से गाँठ ही है, क्योंकि बहुत हम पक्का वो संस्कार बन जाता है और इसीलिए हम चाहते भी है। कई बार हम खुद को समझते हैं, रियलाइज करते हैं और ये बुराई मुझ में है या ये कमी मुझ में है समझते हैं, लेकिन जैसे गाँठ जल्दी टूटती नहीं तो इस प्रकार से हम उस पर बहुत ही प्रयोग करते हैं, फिर भी वो विकार जाता नहीं, कमियां नहीं जाती। लेकिन भगवान का चरण स्पर्श कहो या भगवान की स्मृति कहो, इसमें इतनी ताकत है, इतना बल है कि उसके कारण जो भी हमारे अंदर नकारात्मकता की विकृतियों की गाँठें है वो टूट जाती है। देखिए दोस्तों, शायद मैं समझती हूँ आज तक हमने कभी ऐसा चिंतन किया होगा, और ये हम तो आपको भी इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देंगे, शुक्रिया देंगे, क्योंकि जब ऐसे श्रोतागण होते हैं जो बहुत उत्सुक होते हैं सुनने के लिए, तो नई नई कुछ कल्पनाएं परमात्मा ही हमारे बुद्धि में देता है और उसके कारण बहुत ही सुंदर चिंतन होता है। तो इसके लिए भी आप सबको बहुत थैंक्स है, और आपकी भी जो मत है, आपकी जो चिंतन धारा है, उसको भी जरूर आप हमारे तक हमेशा की तरह पहुंचाइएगा। तो चलिए, अभी समय को देखते हुए मैं भक्ति अपने वाणी को देती हूँ विराम। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, उसमें आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। कहते हैं, मुश्किल से जो घबरा जाए, विघ्नों से जो कतरा जाए, कौन कहेगा उसे योद्धा जो तनिक सी हवा में उड़ जाए। वास्तव में योद्धा तो हर बात का सामना करता है, और आप सब वीर हैं, योद्धा हैं, जो मुश्किलों में घबराते नहीं बल्कि हिम्मत रख के उनका सामना करते हैं। आप समस्याओं से ये कह दें कि समस्या तुम बड़ी नहीं हो, लेकिन तुमसे बड़ा भगवान हमारे साथ है, जिसे अब हमने जान लिया है, और साथ ही एक बहुत बड़ा समाधान परिवार हमारे साथ है। इसलिए समस्याओं, अब तुम आओगे भी तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अब हम शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ऐसे ही प्रतिभाव आपसे प्राप्त होते रहते हैं, जिसे सुनकर हम बेहद आनंदित होते रहते हैं, और आप जानते हैं कि हमेशा हमें समस्या से समाधान की ओर ले चलने के लिए हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। व्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: व्रत जी। एक बहुत अच्छी बात है, यदि समस्याओं को देखते हैं तब तो वो बड़ी लगती हैं, लेकिन यदि भगवान को देखते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो समस्याओं से घबराना छूट जाता है, और एक कहें अलौकिक सी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हम सहज ही समस्याओं को पार कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा, मनुष्य सचमुच ही बहुत बहादुर है
0: जी,
1: वो वीर है, लेकिन बाह्य शत्रुओं से लड़ने से भी अधिक बहादुरी आंतरिक शत्रुओं से लड़ने में है। ये शत्रु हमें कमजोर करते हैं, जैसे बाह्य शत्रु भी कमजोर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है मनुष्य का आंतरिक शत्रु, और वो हैं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, परचिंतन, बदले की भावना, दूसरे को गिराना, दूसरे को कष्ट देना। आज मनुष्य को यही भूल गया है कि ये तुम्हारे आंतरिक शत्रु हैं। वो दूसरों से बदला लेकर प्रसन्न होता है, पर वो ये भूल जाता है कि उसने अपने अंदर एक शत्रु को पाल रखा है, जो उसकी शक्तियों को, उसकी शांति को, उसकी खुशी को अंदर ही अंदर खाता जाएगा। अपने आंतरिक शत्रुओं को पहचान कर उन पे विजय प्राप्त करना सचमुच सबसे बड़ी विजय है, और जो मनुष्य ऐसी विजय प्राप्त कर लेता है वो तो समस्याओं को, चैलेंजेज को चैलेंज कर देता है कि आ जाओ, बस हम अग्नि की तरह, जैसे अग्नि में कोई भी चीज पड़ेगी नष्ट हो जाएगी, तुम आ जाओ, हमने योग की अग्नि जलाई है, इस अग्नि में जलकर तुम सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। तो वास्तव में अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, और सचमुच मनुष्य को यदि ये अवेयरनेस हो जाए, जिसको हम ईश्वरीय नशा कहते हैं, नारायणी नशा कहते हैं, भगवान मेरे साथ है, आखिर वो मेरा पिता है, वो मुझे साथ दे रहा है, उसने मुझे साथ देने का वायदा किया है। बस ऐसा ना हो कि समस्याओं में हम इतने उलझ जाएं कि ये भी भूल जाएं कि सर्वशक्तिमान हमें साथ दे रहा है। इतनी सावधानी, इतनी एक गुड कॉन्शियसनेस हमें अपनी बनाए रखनी है, इसको धैर्य चित्त अवस्था भी कहेंगे, क्योंकि शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, हमें उन्हें एक्टिवेट करना होता है, और ये फीलिंग्स हमारी शक्तियों को एक्टिवेट करेंगी और ये समस्याएं
0: दूर हो जाएंगी। लेकिन व्रता जी, इसके लिए भी लगातार अपने आप को याद दिलाते रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप अचानक ही कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। वैसे यदि हमने अचानक समस्याएं हमारे सामने आ गए और हमें अभ्यास ही नहीं है उस परमेश्वर को याद करने की, या ये स्मृति ही नहीं है कि हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस समय घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए लगातार शायद अपने आप को आत्म जागृति दिलाने की और साथ ही उसे कनेक्ट होने के,
1: इसलिए हम सबको कहना चाह रहे हैं, ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है, हर धर्म के प्रत्येक मनुष्य को इसकी आज आवश्यकता है। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए, राजयोग मेडिटेशन केवल हिंदू धर्म वालों के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे मुस्लिम धर्म से, चाहे हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न सेक्ट से वो संबंधित हो। देखिए, रोज हर मनुष्य को सवेरे अपने को समय देना ही चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं कर रहे हैं वो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जीवन के इस सफर में कई परीक्षाएं तो हर मनुष्य को देनी ही है, आज नहीं तो कल। किसी को छोटे से ही देनी शुरू हो जाती है, कोई युवा काल में परीक्षाओं से गुजरता है, कोई अंत में बहुत परीक्षाओं से गुजरता है। इसलिए हमें अपनी तैयारी के लिए रोज थोड़ा समय, ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट अर्ली मॉर्निंग में देने ही चाहिए। जैसे सभी धर्मों में प्राय ये परंपरा है कि सवेरे वो कुछ ना कुछ भगवान की तरफ, चाहे उसको प्रेयर कहें, इबादत कहें, चाहे कोई अपनी चर्च में जाते हैं, चाहे कोई भिन्न भिन्न तरह की मेडिटेशन, पूजा, भक्ति, पाठ करते हैं, ताकि सवेरे हमारे विचार थोड़े शुद्ध हो जाएं, हमारे अंदर विशुद्ध वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएं, इसकी बहुत जरूरत है। तो रोज सवेरे हम इस तरह अपनी चेतना को जागृत अवश्य किया करें। आई एम ए सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं रूह हूँ, ये बॉडी अलग है, मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। जैसा ये बॉडी है ऐसे मैंने अनेक लिए हैं, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर तो बहुत क्वालिटीज हैं, जीवन के इस सफर को मुझे एंजॉय करना है। और कितनी सुंदर ये प्रकृति है, कितना सुंदर ये संसार है, इस संसार के नाटक में कितने एक्टर्स पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, भगवान की रचना कितनी सुंदर है, हम भगवान के बच्चे हैं, उसने हमें अपनी शक्तियाँ, क्वालिटी, प्योरिटी देकर इस संसार में पार्ट प्ले करने के लिए भेजा है, उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं, हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हम परीक्षाओं के लिए तैयार हैं, मैं अपने जीवन को एंजॉय करूंगा, मैं किसी भी बात, छोटी बात को बड़ा करके नहीं देखूंगा, बातें तो जीवन में आएंगी लेकिन मेरे साथ तो भगवान है। इस तरह के विचारों से सवेरे के टाइम को एंजॉय करें तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाता हो और उससे पहले तैयारी कर लेता हो। लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें कुछ करना है। पहले तलवारों से युद्ध होता था तो सवेरे सवेरे थोड़ा तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर लेते थे ताकि एनर्जेटिक हो जाए। तो इस तरह जीवन की यात्रा के इस परीक्षाओं के दौर में हम बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते, सवेरे उठे कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, सवेरे उठे टीवी खोल ली, कोई लक्ष्य तो होता नहीं क्या करें, तो आज मनुष्य का जीवन लक्ष्य विहीन हो गया है ना। उसे पता नहीं है, उसे ऐसी एजुकेशन नहीं है कि वो सवेरे उठ के क्या करे। इसलिए कल अगर कोई निराशा थी वो कंटिन्यू हो गई उठते ही, कल कोई टेंशन वाली बात सामने थी उठते ही वो कंटिन्यू हो गई, कल कोई समस्या का बुरा चिंतन करके सोए थे उठते ही वो प्रारंभ हो गया। तो एक निगेटिविटी से हम अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं तो डाउनफॉल हमारा होता ही जाएगा, रात तक हमारी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को इस एजुकेशन की परम आवश्यकता है कि सवेरे उठकर 15 मिनट कम से कम हम क्या क्या करें, और ये वास्तव में समस्याओं के समाधान का सर्वोत्तम तरीका होगा।
0: बहुत सुंदर बात राता जी आपने कही। एक तो ये कि युद्ध क्षेत्र में हमेशा ही तैयार होके जाते हैं और हम शुरुआत अपने दिन की यदि ऐसे करें अच्छे विचारों से, सुंदर विचारों से, निश्चित रूप से सारे दिन कोई भी समस्या आएगी तो सहज हो जाएगा। दूसरी बहुत सुंदर बात लगी मुझे राता जी कि हम कंटिन्यू ना करें, जो भी परेशानी हम लेकर के आए हैं सारे दिन अपने कार्य क्षेत्र से, शायद दूसरे दिन भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं और धीरे धीरे वो बोझ बढ़ता चला जाता है और शायद यही कारण उदासी, निराशा, डिप्रेशन का बनता चला जा रहा है लगता है। तो जिस दिन की जो बात है, फाइल है, उसको उसी दिन पूरी करके हम दूसरे दिन एक नई शुरुआत करें तो जीवन शायद बहुत सुंदर
1: यही हो रहा है कि मनुष्य अपनी फाइल को क्लोज करना जानता नहीं है। अब कोई टेंशन उसके पास कल थी, आज वो उठाए फिर उसे याद आया, तो उसके पास साधन क्या है कि चलो भाई टीवी खोल लेते हैं, इंटरनेट पे कुछ देख लेते हैं। अगर वो अपने मन को डाइवर्ट करना भी चाहता है तो उसके पास ये साधन है और इससे पुनः उसको निगेटिविटी मिलती है, निगेटिव एनर्जी उसको मिलती है, तो उसकी फाइल क्लोज होने की बजाय रीओपन होने लगती है और इससे समस्याओं का बोझ बढ़ता जाता है और ये मनुष्य को पतन की ओर ले चलता है। इसलिए उसे ये एजुकेशन होनी चाहिए कि सवेरे वो आत्मचिंतन कैसे करें। इस संसार के सभी लोग अगर सवेरे 15 मिनट और मैं कहूँ जिसके पास ज्यादा कुछ ऐसी बातें हैं आधा घंटा उठते ही अपने को देने लगे, थोड़ा जल्दी भी उठें, ये नहीं 12-1-2 बजे सो रहे और 10 बजे तक फिर दिन में सोएंगे, थोड़ा ऐसा प्लान कर लें कि सूर्योदय से पूर्व 6 बजे तक, कोई 5 बजे, जो राजयोग का अच्छा अभ्यास करते हैं 4 बजे उठें और इस प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें
0: जी।
1: अपने जीवन की ब्यूटी को निहारें जरा, अपने को ऑब्जर्व करें, अपने को पहचाने, कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, कुछ मेडिटेशन करें, कुछ अच्छे सॉन्ग सुन ले। सॉन्ग कोई फिल्मी सॉन्ग की हम बात नहीं करते, जैसे हमारे पास स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बहुत सारे हैं जिनको सुनने से ही मन आनंद से भर जाता है, जिनको सुनने से मन प्रभु प्रेम में मग्न होने लगता है, जिनको सुनने से समस्याओं के समाधान मिलते हैं। उनमें शब्द इतने सुंदर हैं कि वो एक फिलोसोफी लिए हुए, हमारा एक एक गीत एक एक फिलोसोफी लिए हुए है। तो हम भी उनको सुनते हैं तो बिल्कुल सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। ऐसे सवेरे के समय को यदि मनुष्य व्यतीत करेगा तो उसकी पिछली फाइल क्लोज होने लगेंगी और वो अपने को एनर्जेटिक फील करेगा। और सच तो ये है कि उसे जो बातें बहुत बड़ी लग रही हैं वो छोटी लगने लगेगी। वो सोचेगा जो चीज बीत गई है, चलो कैसी बुरी थी, बिल्कुल एकदम खराब थी, अपमानित करने वाली थी, हमको उसने बदनाम कर दिया, हमारे संबंधों को कड़वाहट से भर दिया, ये सब भी था, ओवर हो गया। अब नई नई चीजें, नया चैप्टर लाइफ का हम बिगिन करते हैं। तो इस तरह के विचार उसको एक फाइल क्लोज करके नई प्रारंभ करने की प्रेरणा देंगे। ये अवश्य सबको करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर आज की एक प्रेरणा आपने दी है प्रहता जी, कि रोज की फाइल रोज कंप्लीट करें, उसे आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि वो यदि आगे बढ़ता रहेगा तो समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। और शुरुआत हमारे दिन की बहुत सुंदर होनी चाहिए, और हमेशा हम चर्चा करते आ रहे हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि शुरुआत बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि यदि सुबह उठते ही भगवान के दीदार हो जाए तो फिर क्या कहने, सारा दिन तो आनंद में ही बीतेगा।
1: बिल्कुल, राजयोग तो है ये कि उठते ही प्रभु मिलन, राजयोग परमात्मा की ओर जाने का मार्ग नहीं है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि राजयोग अर्थात प्रभु मिलन। तो सवेरे उठते ही तो हम अपने परम पिता को ही गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे भारत में अपने बच्चे अपने डैडी को, माँ बाप को गुड मॉर्निंग करेंगे या पैर छुएंगे, कुछ अच्छे वाइब्रेशंस उनसे लेंगे। हम तो गुड मॉर्निंग करते हैं अपने परम पिता को, और उसके गुड वाइब्रेशंस, उसकी ब्लेसिंग्स, उसका बहुत अच्छा आशीर्वाद, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं। तो सबे पहला ही क्षण एनर्जेटिक होता है, उठते ही प्रभु मिलन, ये राजयोग है।
0: बहुत सुंदर प्रथा जी, कुछ मेल्स जो अब हमारे पास आए हुए हैं मैं आपको उनकी ओर ले चलता हूँ। ये है सिमरन संधु जी, और कहती हैं, ओम शांति, मैं एक साल से एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसी के साथ कैसा बिहेव करूं, और मैं अपने डर को छिपा भी नहीं पाती। मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये डर रही है। तो ये जो मेरे अंदर डर का भाव है, चिंता का भाव है, इससे मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ, कृपया कुछ समाधान बताएं।
1: बहुत एक विकराल समस्या हम इसको कहेंगे, एंग्जाइटी, उससे जुड़ा हुआ भय, और यही फिर बदलता है डिप्रेशन और टेंशन में, और मनुष्य को दिनों दिन कमजोर करता है। इससे शारीरिक बीमारियां भी बहुत हो जाती हैं। ऐसा ही एक फोन कॉल आज मुझे भी आया था, वो बहन भी अपनी सुनाई जा रही थी, मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं
0: थी। वैसे होता ही है कि जब व्यक्ति कोई परेशान होता है तो अपनी सारी बातें
1: तो मैंने उसको कहा कि अच्छा तुम अपनी सारी बात सुना लो, तो जो बात पहले सुना ली थी फिर सारी वही की वही रिपीट की। अरे मैंने कहा ये तो आपने मुझे बता दी थी कि नहीं मुझे इनका समाधान चाहिए, फिर बोलना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा फिर और सुना लो, कुछ सुनाना है, तो तीसरी बार भी वही सुनाई। तो देखिए मनुष्य के अंदर ये एक इच्छा रहती है ना कि मुझे समाधान मिल जाए, यही बिल्कुल यही समस्या उसकी थी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। उसको डर की जगह क्रोध आता है बार बार, इसमें मनुष्य चिड़चिड़ा भी हो जाता है, फिर जब अच्छी नींद नहीं आती तो शरीर भी टूटा टूटा रहता है, डिप्रेशन का मनुष्य शिकार हो जाता है। देखिए इसका समाधान है अपने को खुशी में लाना, पहली चीज। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, पर जो कर्म फिलोसोफी में विश्वास करते हैं, और विश्वास की बात भी अलग करें, जो कर्म फिलोसोफी को जानते हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हजारों साल से बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी आ रही हैं, हमने उनको कहीं भी तोड़ा नहीं है, उस चेन को हमने कट ऑफ नहीं किया है, वो सब लगातार हमारे साथ कंटिन्यू होकर चलती आ रही हैं। तो उसके कारण मनुष्य की खुशी नष्ट हो गई है। किसी ने आज मुझे एक बहुत अच्छा समाचार सुनाया, वो दो युवक मेरे से मिलने ही आए, तो देखिए ये युवक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस में, बहुत अच्छी पढ़ाई में, कहा अचानक रात को मुझे जैसे कोई जकड़ लेता है और कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब, और मैं फिर शिव बाबा को याद करता हूँ, थोड़ी देर में वो हट जाता है। तो आखिर मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा, भाई तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो कि मेरा मर्डर किया गया है? तो मैंने उससे पूछा, मैंने थोड़ा ही किया है, मैं तो किसी का मर्डर नहीं किया। तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया, छोटे भाई ने। अभी उसके सामने तुरंत एक छाया सी आने लगी दूसरी, तो वो उसके समझ में नहीं आई ये क्या हो रहा है। मैंने बता दिया उसको कि देखो, जो आत्मा तुमको परेशान करने आई है, पिछले जन्म में तुम्हारे इस भाई ने, इसका पिछला जन्म था और वो भी तब था, पूर्व जन्म में इसने उसका मर्डर कर दिया, उसने देख लिया है यहाँ है, तो वो तुम पर आ गया, उस पर किसी कारण वो नहीं पहुँच पाया है, तो डर इसको बहुत लग रहा था। तो मैंने ये बात बताई, मैंने उसको तो विधि बताई कुछ, लेकिन कंटिन्यू रहता है बहुत कुछ चीजें। हम ये ना सोचे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया और हम कोर्ट से भी बरी हो गए, बच गए, तो हम बच गए।
0: वो कहते हैं ना कि इस न्यायालय से भले बच जाओ, ऊपर वाले के न्यायालय से नहीं।
1: ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं कि यहाँ से लोग पैसा वैसा ले दे के बच जाते हैं और फिर वो कंटिन्यू होता है अगले जन्मों में। तो एंग्जाइटीज का यही एक बहुत बड़ा कारण है, डर का यही एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, जिसके अंदर डर है, या तो उसकी मृत्यु इस तरह से हुई है कि मरने के समय वो आत्मा बहुत भयभीत हुई है। मान लो किसी को आग में डाल दिया गया, तो आग में उसको मरने में 10 मिनट लगे, तो ये 10 मिनट उसके 10 साल के बराबर हो जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में भय समा गया है, एक ये कारण होता है। दूसरा, पाप मनुष्य को भयभीत करता है, ये बात भी सभी को जाननी चाहिए। जिसने पाप बहुत कर लिए, उसके अंदर अब किसी न किसी तरह का भय व्याप्त होता जा रहा है। तो मैं इनको कहूँगा कि इनको अपनी खुशी को बढ़ाना है बहुत ज़्यादा। खुशी में रहने के कुछ संकल्प भी नहीं करने हैं। खुशी टीवी से इन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी इनके जो मनोभाव हैं, जो इनको कुछ चाहिए, टीवी वो इनको नहीं देगी, उसके विपरीत टीवी से इनको मिलेगा, इसलिए इनकी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो इनको चाहिए कुछ खुशी के संकल्प, इनको अपने को जोड़ना होगा अपने परमपिता से, उसकी सुंदर अनुभूति रियलाइजेशन करनी होगी, इनको अपने बारे में बहुत कुछ जानना होगा, मैं तो भगवान की संतान हूँ, अपने चित्त को शांत करना होगा। तो मेडिटेशन इनको चित्त शांत करने की विधि सिखाएगा। पहला काम इन्हें ये करना है, सवेरे उठते ही, जैसे हम बहुत अच्छी एक विधि सबको सिखा रहे हैं और इसके सुंदर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन का, हमारी मनोस्थिति का, जो सर्कमस्टांसेज हमारे सामने आ रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। तो सवेरे उठते ही, जैसा मैंने कहा, अपने को समय देंगे, इनको एक विशेष काम करना सवेरे उठते ही। अगर वो काम इनसे न हो तो ये लिखें, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। 108 बार लिखें धीरे धीरे, भले इनको इसमें 15-20 मिनट लगे, ये अपने को ये टाइम दें, इससे इनको शक्तियाँ मिलेंगी और जो सबकॉन्शियस माइंड में भय है, अब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा यू आर फियरलेस, तो सबकॉन्शियस माइंड भी इनको मदद करेगा और इससे इनके जीवन में थोड़ी शांति आएगी, खुशी बढ़ेगी और इनकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। सोने की बात जो है और डिप्रेशन की बात जो है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं मनुष्य के पुण्य कर्म। और अगर ये राजयोग सीख लें तो भगवान को रोज भोग लगाना, वो भी एक बहुत सुंदर विधि है। अर्ली मॉर्निंग लगाएं तो बहुत अच्छा, हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर ये उसकी विधि सीख सकती हैं, या वहाँ हमारे बहनों से मदद लेकर उनको इस कार्य में सहयोगी बना सकती हैं। फिर रात को बैठकर इनको शांत में लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार। इनसे आत्मा से गुड एनर्जी ब्रेन को जाएगी। देखिए, ये जादू नहीं है, इससे क्या होता है, आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, हम जो कुछ सोचते हैं उसकी गुड और बैड एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती है। अब इन्होंने सोचना शुरू किया, मैं एक महान आत्मा हूँ, ऐसे व्यक्ति को बोलने से विचार भटक जाएंगे फटाफट, तो ये लिख रही हैं लगातार, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो ब्रेन को गुड एनर्जी ये सप्लाई कर रही हैं। और गुड एनर्जी जाते जाते ब्रेन में जो कहीं ब्लॉकेज हो गए हैं, कोई चीज़ें नष्ट हो गई हैं, वो रीजेनरेट हो जाएंगी, ब्लॉकेज ओपन हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से इनका डिप्रेशन दूर होगा, इनको अच्छी नींद आने लगेगी और इनके दिन बहुत सुख से बीतने लगेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर अभ्यास आपने दिए हैं भ्राता जी। मुझे लगता है कि सिमरन जी निश्चित रूप से अपनी इस चिंता से और अपने इस भय से, जो वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अनावश्यक रूप से जो चिंता उन्हें सता रही है, इन अभ्यासों से निश्चित रूप से वो
1: बिल्कुल इनको समय देना ही चाहिए अपने लिए, क्योंकि इनकी जो ये मनोस्थिति है ये इनके पूरे परिवार पर बैड इफेक्ट डाल रही है। इससे बच्चे बिल्कुल माँ का ना प्यार प्राप्त कर रहे हैं, सहमे सहमे से रहेंगे, हमारी माँ को क्या हो गया है, इनके घर में खुशी का माहौल नहीं रहेगा। तो बच्चों का विकास, चाहे बॉडीली प्रोग्रेस हो, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे इंटेलेक्चुअली, ब्रेन वाइज, ये विकास उनका रुक जाता है। इसलिए इनको बिल्कुल दृढ़तापूर्वक राजयोग मेडिटेशन सीख लेना चाहिए और 21 दिन अपने घर में जाके ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस सच्चे दिल से करनी चाहिए। 21 दिन केवल ये समर्पित कर दें अपने जीवन के, तो अगले 21 साल कम से कम इनके सुखपूर्वक बीत जाएंगे।
0: भरत जी, एक जो फोन कॉल हमारे पास आया था, ये फोन कॉल हमारे पास आया था जम्मू से, और ये सुमन जी ने किया था, और ये कहती हैं कि मेरे पति आर्मी में हैं और अभी वो बॉर्डर पे नियुक्त हैं, और अभी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी की स्थिति है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और मुझे लगता है डर का भाव हमेशा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं बॉर्डर पे हो चुकी हैं, तो मन में एक आशंका बनी रहती है कि कहीं मेरे पति के साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो आप कृपया समाधान बताएं कि मैं इस डर से भी कैसे मुक्त हूं। मैं कुछ समय से राजयोग का अभ्यास भी कर रही हूं।
1: बिल्कुल, इनके पति बहादुर हैं जो बॉर्डर पर हैं, देश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। इनको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अदरवाइज इनके डर के वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनको वीक बनाएंगे।
0: फिर भी भ्राता जी, ह्यूमन नेचर है कि हमारा कोई अपना, हमारा कोई प्रिय यदि ऐसे स्थान पे रहता है, तो मन में थोड़ा सा भाव तो आ ही जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए।
1: बिल्कुल, और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो बहुत बहादुर हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो पांचों सैनिक तब असावधान हो, उस पोजीशन में ना हो, बहुत अलर्ट न रहे हो, उनके साथ ये हादसा हो गया। हमारी तो उनके साथ सहानुभूति है, वो देश के बहादुर जवान थे और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो निश्चित रूप से जैसा कि देश में माहौल बना है, उनका शायद ये बलिदान कुछ विशेष काम आएगा, चमत्कारिक रूप लेगा। हमारे सारे देश को इस बलिदान ने जगा दिया है और एक बच्चे बच्चे के मन पर ये है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो इनको बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, अपने पति को शुभ भावनाएं देनी चाहिए और इनको देना चाहिए एक विशेष संकल्प। जब ये मेडिटेशन कर ही रही हैं, तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और मुझसे निकली हुई शक्तियों की किरणें उसको जा रही हैं, वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है। ये संकल्प उनको दें और उनको भी सिखा दें कि वो ये अभ्यास किया करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। तो उनकी शक्ति के साथ, उनकी शस्त्रों की शक्ति के साथ, सर्वशक्तिवान की शक्ति भी उनके साथ काम करेगी और वो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। ये क्यों मरेंगे, 10 को मारेंगे ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छे विचार रखें और सुंदर ये अभ्यास करते रहें, तो निश्चित रूप से इनके मन का भी भय दूर होगा। और जैसे आपने कहा कि यदि डर और भय से ये विचार कर रही हैं, तो ये डर और भय कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस के रूप में उन तक भी जाएगा, तो अपनी जिम्मेवारियों को सही तरह से नहीं निभा पाएंगे। तो ये भी सुंदर अभ्यास करें सुमन जी, और साथ ही अच्छे वाइब्रेशन अपने पति तक पहुंचाएं। भ्राता जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जहां तक रही सेना की बात, तो सेना के हमारे जवान तो वैसे भी बहुत मजबूत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, और बहादुरी की गाथा से तो अटा पड़ा है, भरा पड़ा है हमारा इतिहास। इसीलिए न केवल सुमन जी की बात है, लेकिन अन्य जिनके भी पति, जिनके भी भाई, जिनके भी अन्य पिता, वो सब भी जो बॉर्डर पे हैं या फिर आर्मी में हैं, उनके लिए आप डर का भाव अपने मन में ना रखें, क्योंकि डर का भाव यदि आपके मन में होगा, चिंता का भाव यदि आपके मन में होगा, तो यही नेगेटिव वाइब्रेशंस उन तक भी जाएंगे। लेकिन आप अपने मन में बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, जैसे भ्राता जी ने कहा, समर्थ विचार रखें कि हम सब सर्वशक्तिवान की संतान हैं, और वैसे भी भारत तो परमात्मा की जन्मभूमि है, इसकी रक्षा केवल हमारे सैनिक कर रहे हैं बल्कि इसकी रक्षा तो स्वयं परमात्मा भी करते हैं। तो जब ये भाव ये विचार हमारे मन में होगा तो हम सब सुरक्षित भी रहेंगे निश्चिंत भी रहेंगे। तो आप सब सुरक्षित रहें निश्चिंत रहें आनंदित रहें यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। सुबह सुबह मैं हूँ आरजे शुभा, आप सभी के साथ बात करने के लिए हाजिर हूँ इस वेला में 7:32 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। और आज है 4 जुलाई 2026 और चिंता विकार से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इस विषय पर आपने सुना आदरणीय सूरज भाई जी से। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत, आप हमें बता सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। दोस्तों कहते हैं कि सब निर्दोष है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये बात हमने सुनी है बहुत बार, लेकिन क्या हम इसे अप्लाई करते हैं? या फिर हमारे साथ कुछ होता है तो हम कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर कोई छोटी मोटी बातें हो भी गई है या कोई ऐसा बड़ी बात है जिसे हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, थोड़ा पॉज लेके सोचिए, थोड़ा सा शांत रह करके 1-2 साइलेंस में सोचिए कि अगर वो बात हुई है तो वो बात होने के बाद क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। अगर वो बात नहीं होती तो शायद ये अच्छी अच्छी चीज़ें भी नहीं होती। तो अगर ये हम सोचते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, फ़ायदा भी सामने आएगा कि उस बात की वजह से ये सारी अच्छी बातें जीवन में आई हैं। खैर, गुड मॉर्निंग अब कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी बातें तो हम करेंगे, भजन भी सुनेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से सुनेंगे आप समाचार प्रभात 8:45 पर। पंचांग रहेगा, इसके साथ साथ वेदर रिपोर्ट, रियल इन्फॉर्मेशंस और जॉब रिलेटेड बातें भी हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग आबू। और हमारे यहाँ तो बारिश हुई है कल, आपके यहाँ हुई है क्या? तो कॉल करिए 94-14-15-14-15 पर।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं पंचांग के बारे में। शक संवत 1948 आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी शनिवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 4 जुलाई सन 2026। सूर्य उत्तरायण उत्तर गोल वर्षा ऋतु राहुकाल सुबह 9:01 से सुबह 10:30 तक है। चतुर्थी तिथि दोपहर 12:39 तक उपरांत पंचमी तिथि का आरंभ है। धनिष्ठ नक्षत्र दोपहर को 1:43 तक उपरांत शतभिषा नक्षत्र का आरंभ है। प्रीति योग शाम को 5:02 तक उपरांत आयुष्मान योग का आरंभ है। बालवकरण दोपहर 12:39 से और उसके बाद कौलवकरण का आरंभ है और बालवकरण जो है वो दोपहर 12:39 तक रहेगा। फिर कौलवकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात कुंभ राशि पर संचार करेगा। इस मोड़ पर एक साथी हमारे साथ हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: नमस्ते नमस्ते दीदी जी, आपको नमस्ते करते हैं, थैंक यू कर रहे हैं। आप इतने बड़े प्यार से सबको बुला रहे हैं तो हम उनसे वही थैंक यू तो कर दे पहले।
0: जी जी नमस्ते, थैंक यू आपका भी। बताइए कैसे हैं आप
1: जी? बहुत बढ़िया। और हमारे वहाँ भी बारिश सम समासम पड़ गई है रात को
0: जी,
1: और मौसम ठंडा है, सुहागना है और अभी तो एकदम शांत है
0: जी,
1: और बढ़िया अच्छा बारिश पड़ गया है। और कल गर्मी भी बहुत पड़ी थी।
0: हाँ जी,
1: गर्मी कल दिन भर पूरे कपड़े भिगो दिए थे
0: जी।
1: और शाम को जब हम आए थे इसके बाद में विद्यालय गए थे, फिर वापिस आए, बारिश गिरी थी घर पे आने के बाद में, और बहुत अच्छी बारिश गिरी है। पेड़ पौधे पक्षी सब खुश हैं और हम सब खुश हैं। और सुबह अमृत दारा और दादाजी ने बहुत अच्छी सुनाई है
0: जी,
1: सभी का हिम्मत हौसला बढ़ाया है और रोज सुनाते ही है, रोज अच्छा ही लगता है। और अभी आपको सुन रहे हैं। हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार और आपको नमस्कार है और सभी शो को। और कोई बढ़िया सा गाना भजन या खुद भी सुना देना।
0: बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।
1: ओम शांति।
0: बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे मदन लाल जी फ्रॉम मेहसाना, और बारिश उनके यहाँ हुई है, आपके यहाँ हुई है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। और हम बात कर रहे थे पंचांग के बारे में, तो इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 18 मुहर्रम हफ्ता बुला है आज के दिन। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पंचांग के साथ। सूर्योदय का समय 5:28 में था, सूर्यास्त का समय है 7:23 पर, चंद्रोदय का समय रात्रि 10:23 पर है, चंद्रास्त का समय सुबह 9:04 पर है। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:53 तक है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे पंचांग के साथ।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुन रहे हैं आप, आइए चलते हैं वेदर रिपोर्ट की ओर। सबसे पहले राजधानी जयपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जाने की संभावना है और बारिश होने की भी संभावना है और इसलिए येलो अलर्ट दिया गया है कि कई जगह पर जोरदार बारिश होने की भी संभावना है जयपुर के अंचल में। उदयपुर के बारे में बात करें 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है और लगभग डेढ़ घंटे तक बारिश होने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर सुबह भी और शाम को भी। आबू रोड में 83% तक बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है डेढ़ घंटे तक और 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। बात करें माउंट आबू की, 27 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 22 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है दिन के समय भी, रात्रि के समय भी। पाली जिले में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे लेकिन ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन बिजली के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट दिया गया है कि बिजली कड़कने वाली है पाली जिले में। वहीं पर जोधपुर की बात करें, यहाँ पर भी बिजली की चमक के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना बहुत कम है लेकिन बिजली की चमक के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। सूरत की बात करें, सूरत में भारी बारिश के लिए लाल चेतावनी यानी कि येलो अलर्ट दिया गया है और कभी बारिश कभी फिर भारी बारिश होने की संभावना है। सूरत में 29 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। मेहसाना में 33 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। राजकोट के बारे में बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश के लिए यहाँ पर ऑरेंज चेतावनी है। वर्षण के घंटे के बारे में बात करें तो आधा घंटे तक बारिश हो सकती है लेकिन जोरदार बारिश होने की संभावना है, बौछार जोरदार होने की संभावना है। गांधीनगर अहमदाबाद में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और बादल छाए रहेंगे लगभग 92% तक दिन में भी और रात्रि के समय भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। चलते हैं हम राजधानी दिल्ली की ओर, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 29 डिग्री तक जा सकता है। थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है, बादल छाए रहेंगे। बात करें कोलकाता के बारे में तो यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु की बात करें, 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है। तेज हवा के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावना है 50% से ऊपर। मुंबई के बारे में बात करें, यहाँ पर 100% बारिश होने की है और यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए लाल निशान यानी कि लाल चेतावनी भी दी गई है। 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है मुंबई में। बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं

0: पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं आबूरोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है 1257 आगरा कैंट से साबरमती तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:32 पर रेडियो मधुबन के स्टेशन पर आएगी, नहीं आबूरोड के रेलवे स्टेशन पर आएगी। अरावली एक्सप्रेस 1470 8:30 पर पहुँचने वाली आबूरोड रेलवे स्टेशन पर। वंदे भारत एक्सप्रेस 1-2-4-6-1 9:05 पर पहुंचेगी। मैसूर अजमेर एक्सप्रेस 1-6-2-1-0 9:36 पर 26 की देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। 9:45 पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1-9-2-2-4 पहुंचने वाली है। संभावित प्लेटफॉर्म 2 है। आबूरोड रेलवे स्टेशन पर 10:10 पर 2-0-6-9-3 संख्या वाली गाड़ी पहुँचने वाली है, जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2-0-4-9-6 जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 10:30 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 2-2-9-6-5 11:05 पर पहुंचेगी। जोधपुर एक्सप्रेस साबरमती से चलती हुई जोधपुर जाने वाली एक्सप्रेस 1-4-8-2-2 11:40 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 1-9-0-3-2 55 देरी से चलती हुई 11:45 पर पहुंचेगी। वहीं पर 1-9-4-1-2 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 12:04 पर 34 देरी से चलती हुई आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये अब से 4 तक आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी हमने जाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। 4 जुलाई 2026 सैटरडे है आज और मैं हूँ आरजे शुभा। सुबह सुबह आप सभी के साथ बात कर रही हूँ। आपके अंचल में बारिश अगर हुई है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है सोना चांदी के साथ, हमारे अर्थव्यवस्था के साथ। अगर हम बात करें सोने की कीमतों के बारे में तो सोना है 24 कैरेट रेट्स क्या कुछ चल रहा है जानते हैं। लगभग सोना 24 कैरेट है 1,47,160 रुपये और टोटल अमाउंट अगर देखा जाए मेकिंग चार्जेस एंड ऑल तो 1,69,764 लगभग सोना 24 कैरेट है और 22 कैरेट वर्तमान समय मार्केट रेट से 1,55,632 रुपये और वहीं पर 18 कैरेट की बात करें 1,27,369 रुपये हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर भी नज़र डालते हैं।

पेट्रोल रेट राजधानी दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे हैं, मुंबई में 111 रुपए और 21 पैसे हैं, गुजरात में 102 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है, राजस्थान में 113 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमतों के ऊपर नजर डालते हैं, राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे है, मुंबई में 97 रुपए 83 पैसे हैं और गुजरात में 98 रुपए 15 पैसे हैं, राजस्थान में 98 रुपए 25 पैसे डीजल प्रति लीटर है। सेंसेक्स की बात करें तो 77,763.91 पर BSE सेंसेक्स है, कल के मुकाबले 261.79 की बढ़ोतरी पर बंद हुई है कल सेंसेक्स। और वहीं पर निफ्टी 24,270.85 पर कारोबार कर रहा है, 95.15 की बढ़ोतरी दर के साथ। आइए मुद्रा एक्सचेंज की बात करें तो USD के मुकाबले इंडियन करेंसी है 95 रुपए 22 पैसे, एक यूरो के मुकाबले 108 रुपए 9 पैसे और एक AUD के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 66.66 रुपए और लगभग 10 पैसे हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी करेंसीज के साथ, पेट्रोल डीजल के साथ, सेंसेक्स के साथ और गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के साथ।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है युवाओं के लक्ष्य के साथ और जॉब्स के साथ। गुजरात में कंडक्टर और ड्राइवर के लगभग 8,917 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास को मौका, लास्ट डेट है 5 जुलाई 2026। आगे की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इस मोड़ पर एक रेडियो साथी हमारे साथ है, आए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: दीदी नमस्ते, कैसे हो दीदी?
0: बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्य को सुन रहे हैं। और दीदी बताओ तो परसों भी हमको रात को बहुत अच्छी बारिश आई थी और कल रात को भी बहुत अच्छी बारिश आई
0: जी,
1: पूरी रात तक बारिश चलती रही
0: जी, ठंडक हो गई एकदम,
1: बहुत अच्छी बारिश। हाँ, ठंडक तो अभी तक तो थोड़ी नहीं हुई है, क्योंकि क्या था कि इतनी धूप थी तो नीचे जमीन में भी थोड़ा तो गर्माहट रहती है, तो अभी क्या है जो बारिश आती है तो और गर्म हो जाती है,
0: एक बार के लिए उमस तो, बढ़ जाती है।
1: हाँ, ज्यादा बारिश आएगी तो ही ठंडक होगी, अभी तो ठंडक है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है
0: जी,
1: फिर भी चलो बारिश आई तो अच्छा है सभी किसान भाइयों के लिए, खूब अच्छा बारिश आ गई है, सभी रात देख रहे थे कब बारिश आए कब बारिश आए, लेकिन परमात्मा ने सब कुछ को अच्छा कर दिया
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रकृति का, परमात्मा का।
1: हाँ, परमात्मा का जितने धन्यवाद तक करना है बताओ कि उसको तो हमको हमारे परिवार की घर की पड़ी, लेकिन उसको तो पूरे जगत की पड़ी है।
0: राइट,
1: तो परमात्मा तो ऐसा नहीं है, सबको एक अच्छा न्याय देते हैं
0: जी।
1: तो चलो अब सबको अच्छी सुन ली सभी लोगों ने और परमात्मा ने अच्छी बारिश दे दी, और जरूरत थी क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, लेकिन अब ठंडक धीरे धीरे हो जाएगी।
0: राइट,
1: सभी मित्रों को आपको दीदी नमस्ते, आपके लिए शुभकामनाएं, शनिवार है तो सुन रहे हैं हनुमान जी के गाने भी बता रहे हैं, तो
0: शुक्रिया शुक्रिया,
1: नमस्ते
0: नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो सुरेश भाई। तो ये थे हमारे सुरेश भाई दर्जी फ्रॉम जोटाना से। तो हम बात कर रहे थे जॉब्स के बारे में। गुजरात में कंडक्टर ड्राइवर के 8,917 पदों पर भर्ती निकली है, 12वीं पास को मौका, 5 जुलाई 2026 से लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से, उम्मीदवार GSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SBI में PO के 1500 पदों पर भर्ती निकली है, ग्रेजुएशन जिन्होंने पास किया है वो कर सकते हैं आवेदन, लास्ट डेट है 8 जुलाई 2026। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। और वहीं पर 9 जुलाई लास्ट डेट है पंजाब में असिस्टेंट लाइनमैन के 6,299 पदों पर भर्ती निकली है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं www.pspcl.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 1979 पदों पर भर्ती होगी और ये 15 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन डालने का। और वहीं पर UPSSSC ग्रेजुएट और PET 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती निकली है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3 अगस्त 2026। न्यूनतम उम्र है 21 साल और अधिकतम उम्र है 40 साल। सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जा सकती है। इसके लिए आपको upssc.gov.in पर जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर सकते हैं। PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर में लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें। वहीं पर जम्मू कश्मीर के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 130 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। आवेदन की शुरुआत 22 जून से हो गई है और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 21 जुलाई 2026। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे जॉब्स के साथ। आइए यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे, जानेंगे आबू रोड के आसपास के घटनाक्रमों के बारे में।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम। कुछ सूचनाएं जान लेते हैं और कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे सिरोही आबू रोड के साथ जानते हैं। ये जानकारी हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। देवनारायण स्कूटी योजना की संशोधित सूची जारी कर दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2025-26 की संशोधित अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी। राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही के प्राचार्य ने बताया, सूची में 22 जून 2026 तक जिला नोडल महाविद्यालय की ओर से जांचे गए और स्वीकृत सभी आवेदन शामिल हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी शनिवार को माउंट आबू संगठन ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान सरोवर अकादमी परिसर में चल रहे चिंतन शिविर में भाग लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत शनिवार को दिल्ली से वायुमार्ग के जरिए उदयपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं पूरक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 28 जुलाई को होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई है। इसके बाद किसी भी विद्यार्थी का ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं पर पंचायती राज मंत्रालय की ओर से गठित एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति ने देश की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में बदलने का सुझाव दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायत स्तर पर दी जाने वाली सेवाओं की संख्या भी बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की है। अब तक पंचायतों में 1 दर्जन से भी कम सेवाएं दी जा रही थी। इन सिफारिशों पर अमल होने पर आने वाले समय में ग्रामीणों को बार बार सरकारी शिविरों में जाकर समस्याओं के समाधान कराने से राहत मिल सकती है। उनकी छोटी मोटी समस्याओं और अनुमतियों का ग्राम पंचायत के स्तर तक समाधान हो जाएगा। सिरोही आबूरोड समेत कई शहरों में डीएलसी दरें बढ़े। कलेक्टर सभागार में डीएलसी की बैठक कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में हुई। संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। कलेक्टर जी ने डीएलसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और जमीन जायदाद की बाजार दरों की समीक्षा की। और नगरीय क्षेत्र सिरोही में कुछ कॉलोनियों की डीएलसी दरें औसतन 10% बढ़ाई गई है। आबूरोड नगरीय क्षेत्र में 66 बाजार मूल्य वृत्त दरों में 42 क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक डीएलसी दरें 5-10% बढ़ी है। और वहीं पर बात करें मानसून की, मानसून के आने के साथ जिला मुख्यालय समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश उमस से भी राहत मिली है। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। वहीं पर अगर बात करें कैलाश नगर के बारे में, तो नारादरा पंचायत भवन परिसर में ग्रामीण सेवा तो पिंडवाड़ा पालिका में शहरी सेवा शिविर लगा। संतोषी जीवन जीने का प्रयास करें, आचार्य जी ने ये बात कही। आचार्य जी के सानिध्य में वाचना शिविर शुरू है कालंद्री में। यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी कल। आज आप सुन सकते हैं 11 बजे पंडिताइन आशियाना कार्यक्रम रिकॉर्डेड आप सुनेंगे, अंताक्षरी कार्यक्रम नहीं रहेगा। इस बात के लिए हमें एक खेद है। अभी आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। 4 बजे नई दुनिया नया जमाना कार्यक्रम जरूर सुने। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्ते।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत

0: करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण

0: कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। आशियाना के साथ आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, ओ जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? ओ तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ओए क्या बात हुई भाई, हैं? ओ इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? ओए बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ, कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम? उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आँख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे से कहीं टकराने जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझे बेचारे का क्या होगा, सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए। कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फायदा क्या होता है इसका जो बता रही हूँ आपको, कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितना अच्छा उपाय है, एक पंत कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है, भोजन आप रोज करिए ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार मंगलवार रविवार शनिवार कोई भी दिन, और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय, तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय, लंच के समय, उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं, तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गर्म नहीं हो, सुहाता ठीक है, तेल लीजिए सरसों का और इसकी 2-4 बूंदे डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं। और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मेल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डाले तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए, बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में, तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा, और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए, कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनकर डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है। तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे। ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना, उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का, परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट मिली हुई है राजस्थान में। ठीक है, जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ, आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और एक टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, और पीसी हुई छोटी इलायची आधा चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की, और कुछ धागे लेना है आपको केसर का। बस सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, एक टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए आधा छोटा चम्मच, और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं, चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति, कैसे आपकी तबीयत है? जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है,
3: बस आपकी गुआती है मैं तो
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
2: जी।
3: 30% मिलता है महिलाओं को,
2: 30%, ठीक है,
3: 30% मिलता है, और अब 50 होने वाला है, सुना है।
2: अच्छा, ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है,
3: ठीक है
2: जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू डुंडई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए, और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की गिरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल, फिर ठंडा होने दीजिए इसको, ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गर्म करना है, ठीक है, हिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है। लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो। या फिर आजकल तो मेहमान भी फोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है, महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
3: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
4: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है। और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है। और
3: जी, आपको, भी।
4: आपको दीदी प्रणाम है।
3: और आपको भी नमस्कार।
4: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जी अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
3: बिल्कुल।
4: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
3: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
4: जी, दीदी नमस्कार।
3: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से। और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है। फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम, काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है। ठीक है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं पीला रंग और लाल रंग, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आप अपनी डायरी में नज़र डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है? दूध। फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम, काजू और पिस्ता ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी, और इलायची पाउडर ले लीजिएगा आधा छोटा चम्मच। सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए ताकि नीचे चिपके नहीं। ठीक है, हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी ये गाढ़ा हो पाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा, बारीक जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को 3 हिस्सों में कर लेना है आपको, 3 जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है 3 हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफ़ेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको 3-3 कलर के डालना है, थोड़ा लाल थोड़ा सफ़ेद थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए फ्रीजर में। ठीक है, 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है अलग अलग फ्लेवर वाली होती है तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े। ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए, हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और 1 पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद। ठीक है, जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी के सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए। ठीक है, बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के। ठीक है, और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से बड़े प्यार से श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारे जो भाव होता है जो विचार होता है एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारे संकल्प चले जाते हैं तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए। ठीक है, तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही है रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में, आशियाना प्रोग्राम में।
1: जी, तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
2: हाँ जी।
1: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
1: जी,
2: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
1: जी।
2: ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
1: जी।
2: और आपने जीत की बात की, तो देखिए जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है, तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता, तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
1: जी।
2: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को,
1: बिल्कुल।
2: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
1: जी।

0: फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
0: हूं। जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
1: बस एकदम अच्छे हैं। अरे दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
0: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: सही बात है
0: जी।
1: तो वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए। अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ। समय के मुताबिक चलना चाहिए।
0: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
1: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो के अपने गाड़ी की हो तो समझो के आगे आ गया, बम्प आ गया
0: जी,
1: बराबर, तो ब्रेक मार दिया। वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने पर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
0: जी।
1: हाँ, वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए कि चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
0: चलिए ठीक है,
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
1: जी।
0: तो देखिए, विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो, हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी। कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हाँ जी, हम शांति, नमस्ते सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: दीदी बहुत अच्छी बात हो रही है, अच्छा विषय भी दिया है आज, जिंदगी में यही तो हो रहा है
0: जी,
2: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ी की
0: जी,
2: सही समय पे गियर बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
0: हाँ जी,
2: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
0: जी,
2: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भिड़ जाती है, तो ऐसा भी होता है
0: जी।
2: तो सही समय पे जिंदगी में भी दीदी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब कल आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा। हमारे पास पैसा है तो हम सभी पैसे जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, तो ही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
0: जी।
2: वरना जैसे गियर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गियर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
0: बिल्कुल
2: तो ऐसा नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं रेस चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
0: जी,
2: सोच के रहना है, सोच के चलना है, तो हम आसान से जिंदगी जी सकते हैं। दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो।
5: ओम शांति सर, नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुंपा।
4: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
5: बस आप मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ अभी, वो उस दिन चालू करवाया तो अभी कौन में सुन रहा हूँ।
4: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
5: चालू हो गया, चालू हो गया।
4: चलिए बहुत अच्छी बात है।
5: सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
4: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
5: और ये वो बस के लिए कहते हो, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
4: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
5: ये 30% हो गई सर, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
4: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
5: अभी वो सभी ने, मैं यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और जीना सीखो, और बस ऐसे ही सूरज भाई ने बोला है तो वो सही है। चलो
4: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
5: मेरा तो यही बस ये कहना है
4: जी।
5: ओम शांति,
4: जी
5: नमस्कार
4: जी,
5: सुनने वालों को, सुनाने वालों को सभी को
4: जी, आपको भी नमस्कार जी, शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग है जो सही वक्त पर गियर बदलते है। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आप जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है, अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
6: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
4: हाँ जी नमस्कार कमलेश बहन, कैसे हो आप?
6: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक। आप कैसे हो?
4: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
6: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
4: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो
6: है, भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
4: जी जी जी बिल्कुल।
6: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
4: हाँ जी,
6: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
4: जी,
6: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
4: जी,
6: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
4: जी बहुत बहुत आभार कमलेश बहन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का युग होकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते हैं तो क्या

आएंगे तो आपने जाने हैं उपाय, ज़रूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और ज़्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई, और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है, लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को, और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक। तो सुनाई नहीं देती? तो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अमित वाधवा। आज की कहानी जो पढ़ने जा रहा हूँ वो है दर्शना सोनी जी की लिखी हुई, भोपाल से। कहानी का शीर्षक है परवाह। वैसे मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका स्नेह, आपके प्यार से आप मेरी बहुत परवाह करते हैं। दिन प्रतिदिन आपकी हौसला अफजाई, आपके मिलने वाले कमेंट्स, फीडबैक्स, इन्होंने मेरी ये सब यही बताते हैं कि आप बहुत परवाह करते हैं। थैंक यू, क्योंकि धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, परवाह। सुबह के 6 बज रहे थे। प्रेरणा फटाफट बिस्तर से खड़ी हुई और नहा धोकर तैयार होने के बाद नाश्ता बनाने में जुट गई। प्याज काटते काटते उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और बीच में ही लगातार उसके मोबाइल फोन की लंबी लंबी घंटियां बजी जा रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से उसकी मम्मी की आवाज आई।
2: कहाँ थी अब तक? अरे कितनी देर से तुम्हारे फोन पर रिंग बजी जा रही है। एक तो तुम अपने घर से बहुत दूर एक ऐसे बड़े शहर में रहती हो जहाँ आए दिन कोई ना कोई दंगे होते रहते हैं। छोटी छोटी 2-3 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसे दुष्कर्म होते हैं कि सुनकर दिल दहल जाता है, और बाद में पता चलता है कि वो अच्छे अच्छे घर के लड़के भी इन अपराधों में शामिल रहते हैं। लेकिन तुम्हें तो धुन थी कि वहीं जाकर रहोगी, कहीं भी अकेले चली जाती हो, सुनती नहीं मेरी तो।
1: अपनी माँ का गुस्सा देखकर प्रेरणा तपाक से बोली, अरे बस बस बस मेरी मदर इंडिया, अब आप सुबह सुबह इतना लंबा भाषण देकर मेरा और खुद का मूड खराब नहीं करो ना प्लीज। आप यही बात मुझे 100 बार से भी ज्यादा बोल चुकी हो माँ, मैं ध्यान रखूंगी अपना, ओके? प्रेरणा अपनी बातों के रुख को बदलते हुए आगे बोली, अच्छा ये तो बताओ कि आज आपने नाश्ते में क्या बनाया? प्रेरणा की माँ ने भी बात को समझा और अपना गुस्सा कुछ कम करते हुए बोली,
2: बात को घुमाओ मत, समझी? जरा परवाह किया करो अपनी, वरना समझ लेना मैं तो तुमसे बात करना ही छोड़ दूंगी।
1: फिर प्रेरणा की माँ कुछ भावुक हो गई और बोली,
2: आज तो उपवास है मेरा, मगर पूरी सब्जी बनाऊंगी और ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। आज तुम्हारे पापा की 25वीं पुण्यतिथि है, मैं तो अकेले ही तुम्हारी परवरिश करती रही उनके बिना।
1: बोलते बोलते प्रेरणा की माँ अक्सर अपने अकेलेपन का एहसास जताया करती थी, जिसे भांप कर प्रेरणा बोली, मैं समझती हूँ मम्मी, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ ना घर, चलो अब जल्दी से खुश हो जाओ और ये बताओ कि फोन किस लिए किया था। फिर प्रेरणा की माँ थोड़ा उत्साहित स्वर में बोली,
2: अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई, एक रिश्ता आया तुम्हारी शादी के लिए, CA नरेंद्र वर्मा का, नोएडा से। काफी अच्छा लड़का है वो, लाखों रुपए कमाता है, खुद की गाड़ी, खुद का बंगला और एक अच्छा सा परिवार, सब कुछ तो है उसके पास। बस अब तुम सोच लो बेटा और फिर बताओ कि तुम क्या चाहती हो।
1: इधर कुछ पल सोचने के बाद प्रेरणा अपने गंभीर स्वर में बोली, हाँ माँ, इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं, और 6 महीने पहले भी आपने बताया था इनके बारे में, मिली भी तो थी इनसे, CA नरेंद्र वर्मा से। लेकिन मुझसे मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे माँ, और वैसे भी उनको लेट नाइट पार्टीज करना, डिस्को, क्लब जाना, ये सब बहुत पसंद है। मैं कई बातों में उनसे बहुत अलग हूँ, और एक बार तो उन्होंने मुझे भी बताया था कि आज से 4 साल पहले वो लंदन चले गए थे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। अब पता है माँ, तब उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, आज 30 साल के हैं। लेकिन वो क्या है ना मम्मी, कि हमारे समाज में आज भी लड़कों को ये सिखाया जाता है कि भले ही उनकी उम्र 30 के पार हो जाए, लेकिन लड़की तो उनको आराम से 23-24 साल की मिल ही जाएगी। वैसे भी यहाँ भारत में उन्हें 25 लाख मिलते थे, पर वो भी उनको कम पड़ गए थे, और जब लंदन से उन्हें 40 लाख का पैकेज मिला तो वो अपने लिए आए हुए सारे रिश्तों को ठुकरा कर सीधे लंदन चले गए थे। खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 6 महीने बाद फिर से अचानक इनको मेरी याद कैसे आ गई। प्रेरणा की माँ कुछ समय के लिए सोच में डूब गई, फिर बोली,
2: तो क्या हुआ बेटी, अब सबकी सोच अलग अलग रहती है, लेकिन नरेंद्र ने मुझे खुद फोन किया और बोला कि तुम्हारी जन्म कुंडली में कोई दोष था जिसके कारण वो लोग थोड़ा असमंजस में थे, लेकिन एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने तुम्हारी कुंडली को देख करके कहा है कि रिश्ता तो बहुत अच्छा चलेगा, बस एक छोटा सा उपाय करना है। तब जाकर उन्हें संतुष्टि हुई और उन्होंने फिर से शादी का प्रस्ताव भेजा।
1: प्रेरणा कुछ सेकंड तक रुकी और फिर थोड़ा जोर देकर बोली, जो लोग मेरी जन्म कुंडली के दोष के कारण अपने निर्णय को लेकर इतना ज्यादा असमंजस में रहे, तो क्या ऐसे लोग मेरी और मेरे सपनों की परवाह कर पाएंगे? अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर प्रेरणा की मां निःशब्द सी हो गई। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर दर्शना सोनी की लिखी कहानी परवाह। इनकी पहली कहानी आत्मशांति मैंने पढ़ी थी। शी इज अ यंग राइटर, शी इज अ यंग डॉक्टर एक्चुअली, और सोशल इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर हैं और इन्हीं मुद्दों पर समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से ही वो ये कहानियां भी लिख रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान आप बीती को ही अनुभव में लिखता है। मैं ये तो नहीं कहता कि उनका खुद का अनुभव है, लेकिन आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं उनके किसी फ्रेंड का या उनके किसी परिचित का ही अनुभव होगा। और समाज में न जाने कितनी लड़कियां, विशेषकर भारतीय समाज में न जाने कितनी लड़कियां इसी पशुपेश में रहती हैं, घर से बाहर जाकर काम करती हैं तो बहुत परवाह करनी पड़ती है। रिश्ता आता है तो बात करने में बहुत परवाह करनी पड़ती है, चुनने में बहुत परवाह करनी पड़ती है, सामने वाला भले ही परवाह करे या ना करे। परंपराओं को, रूढ़ियों को अच्छे के लिए बदलना सकारात्मक बदलाव है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसकी शुरुआत जरूर करनी पड़ती है। मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि हम सब, हमारा परिवार, इन कहानियों से शिक्षाएं लेकर के कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम जरूर बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इजाजत लेता हूं। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। ये कहानी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक अच्छे विचार का बीज हर एक मन में बो दिया जाए। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी के संघर्ष की अमर गाथा जिन जाने अनजाने अनगिनत शहीदों के खून से लिखी गई है, उन्हीं में से एक हैं अमरचंद बांठिया। बांठिया ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया के गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद बांठिया को एक बार एक सन्यासी ने बताया था कि 700 बंगाली सैनिकों को अंग्रेज सेनाधिकारियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने गाय को आराध्य मानते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर जल मार्ग से रंगून जाने से इंकार कर दिया था। इस घटना के बारे में सुनकर अमरचंद बांठिया क्रूर अत्याचारी और बर्बर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देने के लिए छटपटा उठे। उन्हें ये अवसर तब मिला जब झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटी। सैनिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमरचंद बांठिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष क्रांतिकारियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीबाई के गौरवमय बलिदान के चार दिन बाद ही 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के 3 दिन बाद तक शहीद बांठिया का शव उसी पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोगों में आतंक फैला रहे और भविष्य में फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर न उठा सके। बांठिया ने अनूठे बलिदान की परंपरा को कायम करके आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की प्रेरणा दी थी।

0: अरे बात, चलो भाई
1: बहुत थक गए,
0: यहाँ रुककर चाय पानी हो जाए थोड़ा।
2: हाँ हाँ भाई, थोड़ा विश्राम हो जाए।
3: आओ भाई आओ, आओ आओ, काका के ढाबे में स्वागत है आपका। अरे छोटू जरा देख तो इधर।
1: हाँ भैया।
0: राम राम भैया, जरा यहाँ हम सब लोगों को चाय पिलवा दीजिए।
3: अरे ये हमारे काका का ढाबा है, वो जरा बाहर गए हैं, उनकी गैर हाजिरी में जरा भूल नहीं होनी चाहिए। आप लोग तसल्ली से आराम कीजिए, मैं आप लोगों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ, एकदम काका की तरह। ये लो भाई पानी। आप लोग?
2: हाँ बेटा, हम लोग व्यापारी हैं और तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं। ईश्वर,
3: आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। इधर अंदर आइए, इधर अंदर खाट लगवा दूं तो आराम कर लीजिए।
2: हाँ सही कह रहे हैं आप, एक तो ये कमर दर्द, ऊपर से बस में सफर, बड़ा धन्यवाद है आपका। अरे कमल, मैं अंदर छांव में हूँ, ड्राइवर से कहो वो आराम कर ले थोड़ी देर।
4: जी महाराज।
3: आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए।
2: अरे भाई इतनी सारी तस्वीरें, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम पर। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से हैं क्या?
3: अरे भाई खानदान तो अलग ही बात है, पर हमारे काका को तो शौक है उन लोगों के बारे में जानने का। काका तो कहते हैं कि बेटा काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो बात ही।
5: अरे काका, पहले पैदा हो गए होते तो हम जैसों को पता ही नहीं चल पाता क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें कुर्बान होने वाली जानों की कीमत।
3: कौन कराता हमें एहसास कि जो सुख हम आज भोग रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हो।
2: अच्छा तो क्या ये काका इतना कुछ जानते हैं?
3: अरे हम सब यूं ही उनकी तारीफ थोड़ी करते हैं, काका से मिलते मिलते तो हमारा ज्ञान भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी बढ़ गया है। असल में बात सिर्फ उनकी तारीफ की नहीं है, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलने से अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ अच्छा ढालने का मौका मिलता है। अब मेरी ही बात लो, हूँ तो मैं इतिहास का विद्यार्थी, पर जितना मुझे काका से सुनने को मिला उतना शायद मैं खुद जानने की कोशिश भी नहीं कर।
2: बस बेटा बात का सार तो यही है कि दो चार लोग भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में अपने मित्रों या मिलने जुलने वालों के साथ बातचीत जारी रखे ना, तो उससे मिलने वाली शिक्षा का प्रचार होगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी कुछ तो अपनी जिम्मेदारी और प्रेम के प्रति सजग होगी, जागेगी।
3: आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल काका की तरह। असल में आप जैसे ही यहाँ बस से उतरे ना तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम का वो यात्री याद आ गया, अमरचंद बांटिया। काफी कुछ आपकी सी ही छवि थी उस महान शहीद की भी।
2: अच्छा, अरे भाई आपके काका तो है नहीं आज, आप ही कुछ बताइए कौन थे अमरचंद बांटिया?
3: काका से सुना था, जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ याद है अमरचंद बांटिया के बारे में, बताने की कोशिश करता हूँ। बात तब की है जब श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चल समारोह बीकानेर से ग्वालियर की ओर गया था, और इसमें एक इतिहास भी चल रहा था।
5: इतिहास चल रहा था?
3: हाँ, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। असल में इसी यात्रा में सेठ हमीरचंद बांटिया अपने परिवार और पुत्र अमरचंद के साथ व्यापार व्यवसाय की खोज में ग्वालियर जा पहुंचे। ग्वालियर में प्रतिमा की स्थापना हुई और अमीरचंद भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। अमीरचंद का पुत्र अमरचंद अक्सर मंदिर जाया करता था।

0: आओ अमरचंद जी।
1: क्या चल रहा है महाराज?
0: बस ये सन्यासी आए हैं बाहर से, देश का हाल जान रहा था।
2: बुरी हालत है देश की भाई, अंग्रेजों के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
1: तकलीफ तो ये है कि हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण ये बाहर से आए व्यापारी शासक बन बैठे हैं।
2: ये सब गद्दारों की घुसपैठ का नतीजा है अमरचंद। ये अंग्रेज हमारे ही सैनिकों को तो भेजते हैं मरने कटने के लिए।
3: बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बंगाल से आया सन्यासी हूँ और सैनिकों की बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया। एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी।
1: बताएं महाराज।
3: बात तब की है जब बर्मा से युद्ध छिड़ा था। अंग्रेज सेनाधिकारियों ने 700 बंगाली सैनिकों को गोलियों से भून दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बैलों के पीठ पर बैठकर जलमार्ग से रंगून जाने से मना कर दिया था।
2: घोर अत्याचार, 700 सैनिकों को मार डाला।
1: अंग्रेजों ने सैनिकों पर नहीं हमारे अस्तित्व पर गोलियां चलाई। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को तो खदेड़ दिया जाना चाहिए देश के बाहर।
2: हाँ, इन्हें भगाना ही होगा बाहर।
1: एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, आप साधु सन्यासी लोग आत्मा को जगाने के पुण्य काम में तो लगे ही हैं, लोगों की आप पर आस्था भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब मिलकर इस देश को अपनी आजादी के लिए जगाने का काम करें तो इससे बहुत मदद होगी।
3: हाँ हाँ, अवश्य अवश्य
4: अवश्य
3: अवश्य, अब तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे।
5: हम सब अवश्य इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे अमरचंद भाई।
3: हाँ भाई अवश्य।
4: हाँ अवश्य,
1: इस मुक्ति आंदोलन का मैं भी हिस्सा बनूंगा। याद रखें, इस देश का पहला मुक्ति आंदोलन सन्यासी फकीर विद्रोह था। आप जन जागृति के साथ क्रांति की योजनाओं में भी सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

0: क्या अमरचंद बाटिया यही रहते हैं?
1: जी हाँ, क्या बात है?
0: उन्हें ही बताएंगे, अमरचंद जी को बुलाइए।
1: अच्छा भाई।
2: कहो सिपाही, मैं ही अमरचंद बाटिया हूँ, क्या बात है?
0: राजा धीराज महाराज जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में तुरंत बुलाया गया है आपको।
2: परंतु क्या मैं कारण जान सकता हूँ?
0: मुझे सिर्फ इतना ही आदेश था, आप जल्दी दरबार पहुँचे।
2: ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ।

0: महाराज की जय हो। मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज जो अचानक बुलवा भेजा आपने?
1: आप पहले आसन ग्रहण करें अमरचंद जी, फिर अपराध भी बताया जाएगा। सिपाही दीवान साहब को बुलवाओ।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: राजाधिराज, महाराजा सिंधिया के दरबार में दीवान जी हाजिर हो।

0: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज।
1: आइए दीवान जी, मुझे आपसे गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह करनी थी।
0: जी महाराज, इस पद के लिए हमें सचरित्र, ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति की आवश्यकता है और जिसकी तलाश आपके आदेशानुसार जारी है महाराज।
1: ना ना दीवान जी, अब आपको तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एक सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लिया है।
0: अच्छा, कौन है वो महाराज?
1: सराफा में रहने वाला व्यापारी अमरचंद बाठिया।
0: महाराज, मैं अभी प्रबंध करता हूं उन्हें बुलाने का।
1: कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दीवान जी, वो यहीं उपस्थित है।
2: मैं? महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना है अमरचंद। नाना, घबराओ नहीं, तुम पूरी तरह से इस कार्य के लिए योग्य हो।
2: धन्य हो महाराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ग्वालियर राज्य के कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
1: हमें तुम पर पूरा भरोसा है अमरचंद। आज मैं जीवाजी राव सिंधिया अमरचंद बाठिया को ग्वालियर का कोषाध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से अमरचंद बाठिया ग्वालियर के भामा शाह हुए।
0: बधाई हो भामा शाह, बधाई हो।
3: दस मई 1857, भारत में आजादी की पहली जंग छिड़ी। पूरा देश इस महाक्रांति में भाग ले रहा था। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का ये सिलसिला ग्वालियर तक आ पहुंचा। ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम में क्रांति की अलख जगाने के लिए यात्रा के बहाने आगरा, फतेहगढ़, प्रयाग, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, भोपाल रियासत और उज्जैन का दौरा किया। इस बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी हुआ। इसी दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ग्वालियर आकर अमरचंद बाठिया से मुलाकात की।
2: महारानी की जय हो। आपको यहाँ देखकर हमारा हौसला बढ़ गया है महारानी।
4: इस समय हम बहुत जल्दी में हैं अमरचंद, हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा।
2: आपके शौर्य को प्रणाम महारानी जी।
4: हमारे इस अभियान में एक समस्या है जिसे सिर्फ तुम हल कर सकते हो भामाशाह।
2: आप आदेश कीजिए महारानी, मैं तैयार।
4: हमने मेरठ छावनी के सिपाहियों को दिल्ली कूच के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन समस्या अर्थ की है और हम वचन दे चुके हैं कि पूरा खर्च हम उठाएंगे।
2: आप फिक्र ना करें महारानी जी, अपना गंगाजली राजकोष है ना, जनता के लिए ये कोष हमेशा खुला है। बस एक अफसोस है कि महाराजा आप।
4: महाराज जीवाजी राव सिंधिया अभी अपरिपक्व हैं। उस दीवान के इशारे पर यह सब हो रहा है। खैर, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की खुशहाली के लिए स्वाधीनता यज्ञ में आगे बढ़ें। ये वक्त क्रांति में कूद पड़ने का है भामाशाह।
2: जी महारानी जी, आप आवश्यक राशि ले लीजिए।
4: पर अमरचंद, कोष हमें दे दोगे और तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो?
2: देश की स्वाधीनता के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं महारानी जी।
4: तुम्हारी सहायता से राष्ट्र को गर्व होगा अमरचंद।
3: साल भर के लगातार संघर्ष के बाद 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच क्रांति के महानायक तात्या टोपे, झांसी की रानी और नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में जा पहुंचे और सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों के साथ थी।
5: सेना क्रांतिकारियों के साथ थी, मतलब जीवाजी राव।
3: हाँ, जीवाजी राव सिंधिया और दीवान आगरा ब्रिटिश कमिश्नर के यहाँ जा पहुंचे और यहाँ ग्वालियर का शासन संचालन क्रांतिकारियों के हाथ में था। तभी आर्थिक संकट पड़ा और तात्या टोपी ने ग्वालियर के भामाशाह अमरचंद बाठिया से बात की और तुरंत उनको रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मुलाकात के लिए बुलवाया।
6: आइए भामाशाह अमरचंद, पधारिए।
2: देश रक्षा के इस युद्ध अभियान के आगे मेरा नमन स्वीकार करें रानी साहिब।
6: इस संकट की घड़ी में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है।
2: ये हम सबका संकट है महारानी।
7: ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों और हमारी सेना के सैनिकों को युद्ध अभियान के दौरान कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया, उनके हौसले टूट रहे हैं।
2: नहीं महाराज, स्वराज्य प्राप्ति के लिए हौसले टूटने नहीं चाहिए।
6: तो आप हमारी मदद करेंगे ना?
2: मदद नहीं महारानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने प्रजा की खुशहाली के लिए ही तो कोष का उपयोग करने की शपथ ली थी। अब तो उस संकल्प को पूरा करने का समय आया है।
6: तुम्हारे कर्तव्य और ईमानदारी को हमेशा याद रखा जाएगा भामाशाह।
2: मैं अभी खजाने से धनराशि राव साहब को दिए देता हूँ।
6: बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी। अब हमारे सैनिकों की तलवारें दुगने उत्साह के साथ गरजेगी।
2: जीत हमारी ही होगी।

0: फिर क्या हुआ?
1: 1857 की क्रांति कहने को तो असफल रही, पर पूरे देश में जन जन में आजादी की ललक को जगा गई। देश आजादी की चाह में जलने लगा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इधर राजकीय कोष क्रांतिकारियों में बांट दिए जाने के कारण अमरचंद बांटिया पर मुकदमा चला।
2: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अमरचंद बांटिया, तुम पर दोहरे राजद्रोह का आरोप है।
3: दोहरे राजद्रोह को स्पष्ट करें ब्रिगेडियर नेपियर।
2: इन पर जो चार्जेस लगाए पढ़ के सुनाओ।
4: ग्वालियर के भामाशाह श्री अमरचंद बाठिया पर पहला आरोप है कि अमरचंद ने ग्वालियर स्टेट के गंगा जली कोष का पैसा लक्ष्मीबाई के विद्रोही सैनिकों में बांटा, जो ग्वालियर राज्य के प्रति द्रोह है। दूसरा आरोप कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह है।
3: आपके दोनों आरोप गलत हैं ब्रिगेडियर।
2: तुम अपने बात को साबित करो अमरचंद।
3: जब मैंने अपने गंगाजली कोष का धन सैनिकों में वितरित किया, तब ग्वालियर राज पर रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब का अधिकार था। मैंने रानी की आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाया है, राजद्रोह नहीं किया।
2: दूसरा आरोप को साबित करो।
3: आपका आरोप है मैंने कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह किया, परंतु हम कंपनी सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। आपने छल बल से हमारे राज्य को हथिया लिया है, इस नाते आप हमारे दोस्त नहीं है नेपियर। और दुश्मनों का नाश करने के लिए राष्ट्र कोष खोल देना राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
2: Do not speak anymore. आगे बोलना नहीं, वरना यही शूट कर देगा। He should be hung till death. इस बामाशाह को सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। Hang his body on the tree in front of his house.
1: बाईस जून 1858 के दिन ग्वालियर के सराफा में अमरचंद बांटिया को उन्हीं के घर के सामने नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। और तो और उनकी देह को दुर्गंध आने तक वहीं लटके रहने देने के आदेश थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार इंतजार करता रहा, पर लोग रुके नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े।
5: हे बलिदानी, आप अमर हैं। आपकी देह से फैलने वाली दुर्गंध अनाचार और अत्याचार का साक्ष्य बनकर दूर दूर तक पहुंचेगी। एक एक देशवासी आपके बलिदान की सौगंध खाकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। हम आपके देश को स्वतंत्र कराएंगे। भाइयों बोलो, भामाशाह अमरचंद बाठिया
6: अमर रहे।

0: ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जंग में लड़ना या विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता आजादी प्राप्त करने का। अपनी आजादी के लिए तो हम अन्याय के खिलाफ चुप ना रहकर आखिरी दम तक लड़ सकते हैं, जो अमर चंद जी ने। वो तो कोई सिपाही नहीं थे, पर वो जो थे, जहां थे, वहीं रहकर उन्होंने निष्ठापूर्वक अन्याय के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी।
1: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चटपटी मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ।
4: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया।
3: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है।
4: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना।
3: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं।
4: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना। बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है।
3: जी जी, वो तो है।
4: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
3: जी पूछिए ना।
4: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था।
3: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया। उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा।
4: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी।
3: भाई साहब, बात कुछ और थी। उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया।
4: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
3: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी। मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था।
4: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते, इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें।
3: भाई एक बात पूछें?
4: हाँ हाँ बोलो ना।
3: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर, क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए।
4: ठीक है, देखते हैं।
3: ओम शांति दीदी।
5: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए।
3: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं। उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया।
5: अच्छा, आइए आइए बैठिए। वैसे क्या करते हैं आप?
4: मेरा बिजनेस है छोटा सा।
5: अच्छा।
4: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं।
5: क्या बात है, बोलिए ना।
4: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते।
5: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
4: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना। बार बार मांगने में भी शर्म आती है, कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ।
5: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए।
4: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता, लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा।
5: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है।
4: परखने की शक्ति?
5: जी, परखने की शक्ति। किसे उधार देना है या किसे नहीं, पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ। उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए और प्रेम से याद दिलाओ।
4: लेकिन हम कैसे किसी को जाने? हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा।
5: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
3: जी जी दीदी, बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे, और वैसे ही हुआ।
5: जी बिल्कुल, ये आपकी अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
4: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा को चीज करने से रोक रही होती है,
5: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
4: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
5: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
4: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
5: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
4: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
5: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
4: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
5: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
4: हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
5: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत, गंभीरता पूर्वक, कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
4: और अगर फिर भी ना दे तो?
5: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
4: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
5: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
4: दीदी, आखिर ये कितनी शक्तियां हैं, इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा।
5: जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं।
4: दीदी, ये मन की शक्तियों को कैसे जाने और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
5: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
4: ओ दीदी, इसकी कोई फीस?
5: नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
3: जी दीदी, हम जरूर आएंगे, पूरा 7 का कोर्स करेंगे।
5: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
4: जी दीदी, सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
5: ओम शांति।
3: ओम शांति।

0: राम राम भाई, राम राम।
1: राम राम कंचन, राम राम। और भाई तबीयत ठीक है?
0: तबीयत पानी तो सब ठीक है, पर मारे तो काई है भाई। मन में पंख लाग गया जब मैं सुने कि राजस्थान हाई कोर्ट रोक लगा देनी है आटा साटा पे। तो
1: हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई तू।
0: हाँ,
1: आटा साटा उम्र
0: उम्र
1: भर
0: भर
1: का
0: का
1: घाटा,
0: घाटा।
1: यह प्रथा है गणी ही बुरी। तो बिल्कुल यह बुरी प्रथा है और बहुत अच्छो की दो। तो पहले तो घावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधुओं स्वागत करा। हाँ, आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो अने कार्यक्रम में श्रोता बंधुओं ने आज आप यो ही केवा छावा आटा साटा री बात करा हा, क्योंकि आटा साटा पे आप देख रहे हा राजस्थान रा मायने घणो टाइम हो गयो, या रस्म चाल्या ने या परंपरा चाल्या ने।
0: हाँ, आटा साटा एक प्रकार से राजस्थान के अंदर एक परंपरा ही मान लो,
1: हाँ, जिन्हें
0: है
1: आप कुप्रथा भी कह सका।
0: कुप्रथा है। परंपरा
1: हाँ
0: का ही परंपरा तो अच्छी होया करे, पर
1: हाँ
0: है ना, कहिए कुप्रथा है। और
1: बिल्कुल।
0: आटा साटा में एक ही परिवार बर्बाद नहीं हुआ, एक साथ एक की कमी ने दो परिवार ने भोगना पड़ा।

0: वो सही बात है। देखो आप राजस्थान की बात करा, अभी मैं विशेष करण गांवरी बाता की बात करा आपा, ठीक है। तो गांवरा महीना ज्यादा प्रथा है या शहरा में तो फिर भी अतरो कोई ध्यान नहीं देवे, आटा साटा बहुत कम होवे, लेकिन गांवरा महीने तो बस यो ही है कि आटा साटा में ही ब्याह करनो, भले तो बड़ा भाई की छोरी का एवजे काका की करानी, या अगर सगा भाई बहन में तो भाई बहन की।
1: बिल्कुल सही बात है। मतलब ज्ञान मान ले कि कई बार तो संबंध ही हुआ है आटा साटा के बिना,
0: हाँ, कतरा कई छोरा कुएं जावे।
1: कुंवारा रह जावे, क्योंकि भाई बैठे का ही है भी, परिवार में लड़की नहीं है मान ले, है और तो कही है उड़ो ही है यहाँ।
0: सही बात है।
1: और कई बार या को बहुत ज्ञान मान ले दुखद स्थिति सो
0: अरे
1: परिवार ने
0: दुखद
1: गुजरना
0: स्थिति
1: पड़े।
0: घना परिवार में वेवे, और कटे कटे देखो लोग अच्छा भी होवे, कोई डिमांड कोनी होवे,
1: हाँ
0: कोई डिमांड कोनी हो। मैं अपना आबूरा पास में एक गांव में गया हा, तो
1: हाँ
0: बटे बात की दी महिलाओं, तो वे क्यों बेन जी हमारा गांव में भले लाख बुराई देखो, पर माँ के दहेज री प्रथा अटे कोनी। माँ के जो देवे खुशी खुशी ले लेवे, कोई कई डिमांड कोनी करे कि भाई यो नहीं दी दो, वो नहीं दी दो, माँ को मान नहीं राख्यो, माँ को सम्मान नहीं राख्यो, वो कई बात कोनी। तो मैं क्यों बहुत बढ़िया, देखो ईगो बढ़कर और कई छावे जो पूरा गांव री लेडीज बाता कर रही कि माँ का अटे दहेज कोनी मांगे।
1: अच्छा, आपने आबू रोड की माई नहीं
0: हाँ, आबू रोड का माई नहीं, अपने एक गांव है, नाम नहीं बतावा पर पास में ही है। तो मने अच्छो लाग्यो कि देखो ये भी एक अच्छी बात है, पूरा गांव खाली एक
1: बहुत
0: समाज
1: अच्छी।
0: नहीं, हर समाज की
1: हाँ
0: महिला कह रही कि माँ के अटे कई भी नहीं, माँ परण आया माने कई भी नहीं दी दो।
1: ओ
0: हाँ ठीक है, 5 जोड़ी कपड़ा दीदा जो लेना
1: हाँ
0: गया।
1: जो माता पिता की एक मन
0: हाँ
1: से इच्छा हुआ बस
0: हाँ
1: खाली
0: मन से जो
1: मात्र।
0: इच्छा ही दे दी दो, पर अटिनो यू नहीं, क्यों यो नहीं लाइन वो नहीं लाई। मैं क्यों बहुत बढ़िया, और शिक्षित है, यूं नहीं है
1: हाँ
0: कि हाँ अनपढ़ गांव है, शिक्षित है। तो यह बात देखो हर गांव की विशेषता तो कहीं कहीं होया ही करे।
1: वो बिल्कुल सही बात है कि देख ज्ञान मन खास हुई तो गांव बने,
0: हाँ बिल्कुल,
1: मन
0: हाँ
1: खास ही गांव बने। जान हर मनक की अलग अलग विशेषता हुआ है, यानी हर गांव की भी अलग महक हुआ है, खुशबू हुआ है, विशेषता हुआ है।
0: बिल्कुल। पर वणी गांव रही विशेषता यह है कि हर जोड़ा आटा सटा में
1: ओ
0: अच्छा ही है तो बुरा ही भी है।
1: हाँ देखो भाई, अठे मान ले मारो छोरो है तो बैठे सो मैं लाऊं तो मैंने देनो भी पड़सी,
0: देनो भी
1: ये
0: पड़सी
1: वास्ते ना लेनो
0: न
1: ना
0: देनो।
1: देनो, यानी दहेज प्रथा के मामले में तो आटा साटा को और रोल है।
0: हाँ यो रोल है, तो ठीक है खुशी खुशी कर रहे हैं जदी तो कोई तकलीफ नहीं, पर
1: बस
0: यू है कि कटे मान लो नी बनी बटे गणी मुश्किल हो जावे। वणी घावरों में बात बताऊं, वणी घावरी बेटी सामने वाला के दे रखी, और सामने वाला की बेटी अटे राख रखी, ठीक है। गांव में सामने वाला की बेटी ने हाथा में रखे, तीन टाबर भी हो गया, हाथा में रखे अच्छी रखे, कोई शिकायत नहीं, कोई सब आप आपका हिसाब उरे वह। पर यहाँ की बेटी जाने सामने वाला के दीदी वे गण में न हैरान करे, सारो तो काम करावे, काम करया बावजूद भी पति मारपीट करे और सास गाली गलौज करे।
1: बताओ तो कौन रहा है।
0: हाँ तो वाह कहवे कि अबे मारे नहीं रहनो, और घनी बार मार काटियो कई पति दारू पी वे, और
1: ओ
0: शराब भी तो एक बहुत खराब
1: हाँ
0: आदत है ना।
1: खराब आदत है, और
0: हाँ
1: वाह में तो कोई विवेक तो रहे नहीं,
0: विवेक शक्ति खत्म हो
1: खत्म
0: जावे,
1: हो जावे।
0: और बड़ी टाइम पे वो कतरो मार रहे हो भी नहीं ठाको नहीं होवे।
1: बड़ी बात तो आ है।
0: हाँ तो एक बार तो फ्रैक्चर कर दी दो, हाथ की हड्डी तोड़ दी दी, तो बेचारा माँ बाप लेन आया, क्योंकि अबे वक्त कर ही कौन काम,
1: कौन काम करे।
0: तो बच्चा निगाह में लेन आया, लेन आया बिना हाउ की दी, 2 महीना 3 महीना राखी वे के जॉइंट वे सब की दो, और पाचो वो जमाई तो आई हुई है कि भाई हमारी गलती होगी और अबे मैं शराब नहीं पीऊ, अबे भेज दो। माँ बाप देखियो चलो सुधरवा को एक मौको देवो, ले गया बच्ची भेजी, तीन टाबर पढ़ाई बिगड़ी वहां की, क्योंकि तीन ही टाबर ने भी सास क्यों मैं को नहीं राखू, तो 2 3 महीना अटे रहा, पाचा टाबर बटे गया, ठीक है बटे 15 एक दिन तो हौरिया, और पाचो वो तो शराब पीवा की आदत तो कदी छूटे गई,
1: छुटके।
0: और पाची मार पीट के दी, और अतरी मार पीट के दी वहा हाथ की जो हड्डी पहली फ्रैक्चर भी वहा पाची वेगी,
1: ओहो
0: पाचे माँ बाप के अबे को नहीं भेजा,
1: सही
0: और
1: बात
0: वहां
1: है,
0: भी क्यों अबे मैं हावरा में को
1: अबे
0: नहीं
1: मैं
0: रेव।
1: नहीं जाऊं।
0: तो सासू माँ के भाई खून नहीं रेवे तो थारे तीन ही छोरा छोरी ले जा, तो तीन ही छोरा छोरी ने लेन पियर आएगी, ठीक है। अबे वाकी बेटी अणी गांव में कई तकलीफ को नहीं, और वह भी कतरो ही समझाइयो कि भाई हाउ राखो था के कई तकलीफ है,
1: कई तकलीफ है
0: फिर भी
1: सही
0: नहीं
1: बात है।
0: समझा। और अबे वे के मारो घर टूटियो तो चल थू आ जा पाची, बेटी
1: बताओ
0: ने के वे थू आ,
1: यानी सोचक भी वह परेशान हुए।
0: हाँ अरे भाई था तो मार रहे पर इन्हें तो आराम खाता में रख
1: रहा, खाता में रख रहा, मतलब जबरदस्ती अपनी बेटी को भी घर बिगाड़ रहा
0: है। हाँ या के मैं नहीं आऊ, मैंने कहीं भी तकलीफ को नहीं अटे,
1: बोलो
0: मैं नहीं आऊ, मारो घर को नहीं तोड़ू। दो माँ बाप आन बेटी का लारे अटे मार पीट के दे पिताजी, और उन्हें खींचन ले गया, कथा ना आनो ही पड़ी तन, शर्म नहीं आई रही थारी भाभी अटे आ गई तो तू अटे क्यों बेटी सके। अरे मन का कि देखो विवेक शक्ति खत्म हो जावे जो देखो था तो पराई बेटी ने दुख दे रहा, और यह जो था कि बेटी यानी घर में है बिना हाथा में राख रहा, तो वो थाने फर्क नजर नहीं आ रही हो,
1: यानी एक घर बर्बाद हुआ कि लारे लारे जबरदस्ती दूसरों घर भी बर्बाद कर।
0: हाँ तो वे जबरदस्ती लेन गया, अब लेन जाए तो टाबर की पास में रहे, टाबर ने भी लेन गए, अब वहां के भाई बेंची मारे रेणो को नहीं, मारे तो मारा हावरा में रहो, क्योंकि मारे तो आदमी भी समझदार है और मारा हाउजी भी माँ की न्यान रखे, मारो घर में क्यों तोड़ू,
1: क्यों तोड़ू।
0: पर
1: तो माँ बाप की बुरी,
0: हाँ
1: माँ बाप और भाइया की बुरी,
0: हाँ भाइया की बुरी, तो वो भाई के भाई थू परी की तो थारा ही हाथ पग तोड़ दियो, थारा हराम परी के तो
1: बोलो।
0: अरे भाई तू दारू पीन थार लुगाई ना मार रहे है, बेन का ऊपर दादागिरी बता, दो ही घर तोड़ रहे, आप तो जाता रहे वहां घावरा महीने, आज भी कई वाको तोड़ने
1: फैसला नहीं हुआ।
0: हाँ फैसलो कोई हुआ, और वाह वाका घर है और वाह वाका घर है, और वाह बेचारी रोवे है हमारे हार रहे जानो, हमारे छोरा छोरी की जिंदगी बगड़ जाए, और वाह तो मजदूरी कर रही, वाह तो भाई हो चली दो जाने को नहीं, दो दो बार हड्डिया तोड़ दी थी, कौन जावे,
1: सही बात है,
0: सुधरे को नहीं,
1: और पढ़ी लिखी है नहीं कि कापनो आप,
0: हाँ
1: आप ही फैसलो ले ले वे।
0: देख कंचन एक दौर एड़ो हो कि बेटिया ने पढ़ाता भी कम हा,
1: हाँ
0: और पढ़ती नहीं पढ़ती शादी करा देता,
1: करा देता
0: कि भाई मांडो करो और भेजो बेटी ना हावरे, तो अभी वे बेटिया मंज धार में आ जावे जदी एड़ी स्थिति खड़ी हो,
1: बस बस
0: ना अटी ने जा सके ना अटी ने जा सके,
1: सोच सका
0: अगर साल दो साल में एड़ो हादसो हो जावे तो चलो पाछे दूसरी जगह पे ही ब्याह को हो जाए, अब तीन टावर ने लेन एक माँ की इच्छा नहीं हो एक वकटी जावे,
1: बेचारी पहले तो समझौतो करती रही हुई,
0: हाँ हाँ पहली खूब समझो तो क्यों, अभी सुधरी अभी सुधरी, माँ बाप भी कोशिश करे भाई तो थोड़े एडजस्ट हुए एडजस्ट
1: हुए,
0: पर बच्चा जदि के पानी सिरू ऊपर परो जावे तो डिसीजन लेना ही पड़े, अब आके 17 साल हो गया तीन टाबर, ये थोड़ा मोटा हुआ लाग गया काले यहाँ के ऊपर कई असर भी,
1: कई असर
0: आदमी उधर नहीं रहो, आदमी नहीं उधर रहो पर सासू ने छावे मैं तो हूँ राखू,
1: हाँ कम से कम एक तरफ हो सारो रवे,
0: हाँ अगर वह प्रेम उठती तो भी भटकती,
1: तो भी वो अटकती, और देखो भाई के कई बार कई हो जावे कि आदमी सोचे या नहीं कि भाई यहाँ सास से मारो काम थोड़ी चालनो है,
0: हाँ
1: यानी बुद्धि जागे,
0: हाँ
1: है ना,
0: पर फिर भी देखो तीन टाबर ने लेन अगर अपना घर में रेवा तो किकोक तो प्रेम छावी है, अब वही दुदकारन वही दुदकारन चीज ही नहीं देवे घर में, कई बनाओ कई खाओ,
1: सही बात
0: है, तो अब मजदूरी का काम कर रही, मजदूरी कारण तीन टाबर ने पाल रही और मस्त है, बाकी बहन जी मुँह मेहनत तो नहीं घबराऊ, मेहनत ही की थी ठेठ हुई लोग आके खेता में काम करूं, और जो मतलब मजदूरी मिले देखो मारे टाबर को मैं चलाऊ थोड़ा माँ और भाई भी पूरा करे, क्योंकि भाई को भी घर टूट गयो, तो माँ और भाई भी थोड़ा पूरा करे कि भाई मारी बहन है टाबर है तो कहीं नहीं याने कटे भेजा,
1: यहाँ की विकट स्थिति हो जावे यानी आटा साटा में,
0: हाँ आटा साटा में टूटे बटे जबरदस्त टूटे,
1: जबरदस्त
0: और जटे समझदारी चल रहे बटे समझदारी भी चल,
1: हाँ कि भी मैं परेशान करूं तो देखो मारी बहन ने भी परेशान कर,
0: हाँ यो समझ जावे जदि तो बात ही खत्म हो जावे, पर नशो एडी चीज है सब विवेक शक्ति खत्म कर,
1: खत्म हो जावे।
0: चल भाई कंचन एक आचो गीत सुना दा, वेका बाद पाछा आप लौट नावा, हाँ रिजो कार्यक्रम गावरी बाता में सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: वाह भाई, बहुत चोखो गीत लाग्यो है।
1: हाँ बहुत बढ़िया गीत है यो, यहाँ पर सुनावा।
0: वही मैं सोच रही भाई, कतरो गंभीर विषय हुआ गयो। आटा साटा में काई काई यूज हुआ, आटा साटा का कतरे हानि समाज
1: अरे
0: में
1: गणी
0: बोली
1: हानि होवे
0: है।
1: अपना श्रोता बंधु रो पाछो स्वागत करा, नहीं तो कई दो सहीला बाता करे माने भूल जावे। तो गावरी बाता कार्यक्रम में आप सगला जना रो खूब खूब स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन आपा बात कर रहे हैं कि देखो वो घर टूट्यो है, और कटे कटे समझदार लोग भी है,
0: हाँ।
1: कटे कटे समझदार है। वो एक जगह पे मैं देखो वनीस गांव में है ना, एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको गांव ही अड़ो आटा साटा में ही है।
0: देख भाई,
1: हाँ
0: कही है कि पूरे गांव में जनरली एक ही समाज के लोग रहा करें,
1: हाँ
0: और एक ही समाज विशेष के अंदर ज्ञान की प्रथा हुए।
1: हाँ
0: ज्ञान राजस्थान के अंदर देखो, मैं देखी हूं कि भी पुरोहित लोगा में ज्ञान की प्रथा है, यानी कुम्हार लोगा में। तो मान लो पूरे सगड़ो गांव ही ये समाज पे है, केंद्रित है, तो भी पूरे गांव में ही ज्ञान की प्रथा है।
1: बिल्कुल। और कटे कटे तो देख ले केड़ा केड़ा समाज में तो आटा साटा वगैरह मांडो ही नहीं होवे, ब्याह भी नहीं होवे।
0: ब्याह नहीं हुआ।
1: बात चाली का पहले आपके है छोरी है देवाने, यही
0: हाँ,
1: बात चाली।
0: यानी लेन और देन
1: हाँ
0: दोनों चीजा।
1: हाँ भले आप बेन की छोरी दो, भले भाई की छोरी दो,
0: अच्छा,
1: आप की भी साटा में दो।
0: ओहो
1: हाँ पर अगर छोरी लानी है हामे वाला की तो आपके पास दे।
0: भाई, यहां तो एक महिला ने वस्तु मान लिया भी
1: हाँ वस्तु ही मान ली दे और गए।
0: है,
1: हाँ कतरी
0: बोलो।
1: बार तो अच्छी आपने जो योग्यता वाली छोरिया में ना जो ही गलत जगह पे पड़ी जावे।
0: बहुत गलत बात भाई।
1: अब आटा साटा में देख लागी भाई मारे तो घर में बहू आनी छाई जाए, मारी छोरी ने मुंह सामने दे दू और हामे वाला की छोरी लियो, तो कतरी बार लड़को योग्य नहीं वे वे
0: योग्य नहीं हो
1: सामने,
0: बच्चे
1: और
0: भी।
1: छोरी तो भी अपने बहू छारी अनि वास्ते अपनी छोरी ने खड्डा में दे दीता। अब अनु किस बात सुनो थे कंचन, बहुत ताजा ताजा बात ही है। एक समाज है नाम नहीं ले वहां पर एक समाज में देखियो, पहली बेटा के शादी कराई ठीक है, तो वह छोरी पियर गी, भाई पियर तो भेजे ही है शादी का
0: हाँ
1: बाद मांडो
0: हाँ
1: लांगवा,
0: सही
1: पियर
0: है।
1: गी विका बाद वा आई को नहीं कि मैं तो नहीं आऊं, कई कारण है अबे था को नहीं, कोई कहे वह छोरी के कई लारे चालू है जो भी है,
0: हाँ, खैर
1: पर वह
0: वो
1: नहीं आई ठीक है।
0: हाँ।
1: अबे माँ बाप देखियो कि अबे आपने एक बार को तो भाई वो एक दाग तो लाग गयो ना तो छोरो पड़ियोडो है, अबे
0: पढ़ियों
1: आपने छोरी कौन दी, तो वहां के एक छोरा छोटी छोरी है, तो मैं अबे करनी तो आटा साटा में ही करनी था कि आपने बिंदनी आ जावे ठीक है, तो आटा साटा में देख ली। तो अब आटा साटा में वाके छोरी बढ़िया हारी पड्योड़ी होशियार समझदार, और ये जो टे दे रहा वोटे छोरो प्राइवेट नौकरी करे 15-1 हजार एक दुकान पे बैठे, और छोरी या के एडी होशियार पड़ियोड़ी रूपाली और मतलब हर चीज
0: हर
1: होशियार,
0: चीज में योग्य
1: फिर भी वाके बीनणी छारी अणी वास्ते वे सामने कहीं नहीं देख रहा, नहीं तो
0: बताओ।
1: घर है नहीं वर है। भाई देखो के तो वर देखा
0: सही
1: आजकल
0: बात,
1: तो कहीं छोरो ही देखे।
0: छोरा ही देखा है, वो जमाने तक गया कि आपा घर
1: हाँ
0: और वर की दोनों की एक
1: हाँ
0: बात देख लेता,
1: नहीं
0: चला
1: देखा
0: लेता।
1: वो तो कहीं के वर माती घर था है। गुजराती में कहावत है, तो छोरो होशियार भी तो तुझे घर कर दी,
0: दूसरा घर बनाया।
1: पर न तो छोरो होशियार है न घर दमदार है, पर माँ के स्वार्थ है कि माँ के बीननी छावे। अबे माँ के ठपको लाग गयो तो माँ ने छोरी कौन दी
0: छोरी कुण दी।
1: स्वतंत्र कह रहा तो, और अबे वहां को वाणु जुलाई में ब्याह है, तो माँ ने समझाया कि देखो था कि छोरी एडी होशियार है तो मल जाए, और था भी थोड़ा कहीं गरीब घर की ले जाओ
0: हाँ,
1: छोरी
0: सो तो
1: मिल
0: है
1: जाए।
0: ही
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: पर कह नहीं नहीं भली गरीब की पर माने कौन दी, वणी समाज में थोड़े छोरिया की कमी भी गणी है, तो अच्छा अच्छा छोरा ही वणी समाज में कुंवारा बैठा, तो वे के
0: अच्छा,
1: माने कौन दे, देखो
0: कौन
1: फलानो
0: दे।
1: कुमारो टिकड़ो कुमारो माने कौन दे, माँ के तो ठपको लाग गयो। पर मैं क्यों था का स्वार्थ की वजह छोरी को थोड़ो तो बोचो।
0: सही बात, आपने पेट जाई छोरी।
1: हाँ अणी वजह भी लोग बाग आटा साटा करवा लाग गया।
0: हाँ
1: आपा
0: देखो तो
1: सोचा
0: भाई।
1: आटा साटो बंद हो गयो, गवर्नमेंट भी बंद कर रही है, हाँ वहां की डिमांड कई को नहीं, क्योंकि डिमांड कई करे जाकी छोरी मतलब बिनणी भागी और वहां आटा साटा में कर रहा, अच्छी पार्टी है अच्छो पैसो है, सामने परिस्थिति अतरी नहीं है।
0: और एक ही परिवार को उदाहरण थोड़ी ना है, ज्ञान का
1: हाँ
0: कतरा परिवार है, ज्ञान की समस्या से जूझ रहा है, जो आटा साटा में गलती एक जना की हुआ है और कई परिवार ने खराब करते हुए।
1: बिल्कुल,
0: मान ले वो
1: या
0: लड़की
1: की
0: दूसरे
1: कोई
0: तीसरे परिवार की लाता, मान लो भैया अपनी नणंद की या की भी बेटी के ब्याह पढ़ना, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि और भी कई

0: परिवार खराब
1: हाँ
0: होता।
1: वो तो है, पर आटा साटा में ऐसा नहीं है
0: हाँ
1: कि आटा साटा में यूं नहीं होते कि भली बहन की छोरी काले बढ़ियो नहीं बढ़ियो, तो काले बहन को भी जिंदगी भर को वो भी उलानो रही ना।
0: उड़ानो रह गयो।
1: हाँ कि भाई तू मारी छोरी ने फसाई, पर कई पतो फिर भी अत्रु मोह वे आटा साटा में तैयार हो जावे। ठीक है करो, लेकिन आमने सामने देखो तो खरी कि अपनी छोरी के अनुसार योग्य छोरो है कि नहीं है।
0: और वो बात कही है, थोड़ी शिथिल होनी चाहिए कि भाई अगर इच्छा है तो वो खो, और किने बाध्य नहीं कर सका पा।
1: बाध्य नहीं कर सका। और देखो छोरिया में सहन शक्ति की ताकत देखो, कतर के माँ बाप के सामने कदी नहीं बोले कि भाई मारे आटो साटो नहीं करनो। आज जबकि आज का युग में तो छोरिया खुद पसंद करवा लागी।
0: खुद पसंद करवा लागी। लेकिन देख भाई, अठा मैं थोड़ी सी एक बात यान भी कहूं कि ये जो प्रथा है वो भी समाज में आटा साटा की जट है। नारी शक्ति अति जागरूक होनी, चुपचाप से हर बात ने एक्सेप्ट कर ले,
1: नहीं
0: स्वीकार कर
1: पर
0: ले।
1: जटे आटा साटे बटे तो आटा साटा का है ही नहीं, प्रथा ही नहीं है, फिर भी अबे वेवा लागी क्योंकि छोरिया की कमी हो, छोरिया मिल नहीं रही।
0: अच्छा।
1: हाँ छोरिया नहीं मिल रही, अनिवास से आटा साटा कर रहा के पहली तीजो तगड़े की कोशिश की थी, पर तीजा तगड़ा में सेट नहीं भयो। तीजा तगड़े में यू है तीन पार्टी खड़ी में वह,
0: अच्छा।
1: ठीक है मारी छोरी थारा आटे, थारी छोरी दूसरा काटे, और बाकी छोरी मारा आटे
0: ओ
1: तीजो तगड़ो है शान। अब तीजा तगड़े में वाके सेट नहीं भयो तो बच्चे आटा साटा मिस कर रहा, आटा साटा में कर रहा, पर लड़की को त्याग देखो। कबाब माँ बाप को घर मांडवा का वास्ते, भाई का मांडवा का वास्ते खुद त्याग कर काढ़ो, के सामने वाले कैस नहीं देखियो। बाकी छोरिया भाई जो होशियार है, एक्टिव है, पढ़ोड़ी है और काम कर रही, पार्लर को कोर्स की दो सको है तो पार्लर को काम कर रही, फिर भी नखरा नहीं किता। एड़ा छोरा के लारे में क्या पड़ो,
0: मैं क्या जाऊं।
1: क्योंकि कलारे सेट ही नहीं वे घना ही अड़ोस पड़ोस घना ही कहरा करे ये कई किदो है, कई छोरो ही नहीं देखो खुदो छोरी का लिए, फिर भी देखो छोरी को त्याग देखो।
0: नारी तो देखो हर जगह त्याग ही करे।
1: त्याग ही करे बिल्कुल बेटे। तो ये तो आज का समय की बात है, आज बहुत कम हो रहा है, पर बाकी जनी समाज में आटा साटा कोई रिवाज है वे में तो त्याग ही त्याग है।
0: मैं तो त्याग ही त्याग है। खैर, तू और मैं सरकार को, हाई कोर्ट को ज्ञान के निर्णय में बहुत खुश हैं
1: हाँ
0: कि
1: आपा
0: भी
1: तो खुश है ना भाई, का अच्छा है बहुत बढ़िया है। अरे मैं तो कहूँ छोरा ने एडो शिक्षा और संस्कार दो, एडो होशियार करो कि आपके हमें चालन सगाई आवे,
0: सही बात है।
1: काबिल बढ़ाओ ना।
0: हाँ, आटा साटा ज्ञान की बात ही नहीं हुए।
1: हाँ
0: वो तो कही है, वास्तव में महिला को एक दमन है,
1: दमन ही है।
0: शोषण है
1: हाँ
0: कि भी
1: शोषण ही है।
0: बिना तो इच्छा हुए वीक खूंटे पे बांध दे वहां।
1: हाँ अरे कंचन पहले यूं कहता, अरे छोरिया तो घाई है, गाय ने जटे बांधे वटी बंदी रही,
0: गठे
1: खूटा पे
0: बंदी रहे।
1: बांधो वटी बंदी
0: सही
1: रही।
0: बात है, गाय को नाम दे दो ताकि चुपचाप है वो
1: हाँ
0: स्वीकार कर ले कि मैंने गाय बताई, मैं सीधी
1: बिल्कुल
0: हूं।
1: हाँ। तो बस सरकार को बहुत अच्छा
0: निर्णय है।
1: निर्णय है कि यह प्रथा खत्म हो रही है, तो बहुत बढ़िया। आपा
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: अणि निर्णय राजिया। और चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया है जावा को तो आप जे भाई राम राम।
0: राम राम भाई, राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि कल हमने एक विषय लेकर बात किया था, मैं ही सफलता हूं, तो इसी विषय को लेकर आगे पार्ट टू में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी बातें और रह गई थी जो हम कल नहीं बता पाए, तो आज हम फिर से उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के हमारे खास मेहमान राजेश सर हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चलिए, मैं चाहूंगा कि सफलता मैं ही हूं ये विषय हमने कंटिन्यू करना है, तो कुछ कल की बातें जो रह गई थी आज हम फिर से उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जी।
1: जैसे आपने बताया, कल हमने जाना था कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही आनंद हूँ। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये समझा कि सफलता माना कि हम खुश रहें, आनंद में रहें, प्यार में रहें, प्यार हमको मिले, हम शांति में रहें। तो जब मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैथ में कहते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो इसका मतलब मैं ही सफलता हूँ। लेकिन इसको एक गेम से समझेंगे। जैसे हम बहुत कॉलेजेस में गए और स्टूडेंट्स को जब गेम खिलाई कि आप पेन को पास करो, उनको सिर्फ बोला कि आपको पेन को खुशी से पास करना, सिर्फ इतना ही बताया गया उनको, बोला गया। फिर उनको बोला शांति से पास करो, फिर उनको बोला इसको हंसते हंसते पास करो, तो केवल उनको बोला गया। तो जब उनसे पूछा कि जब आपको ये बोला गया कि आप खुशी से पेन पास करो, तो वो खुशी कहाँ से आई? क्योंकि जब हमने उनको पेन दिया पास करने के लिए, हमने उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, उनको कोई कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स स्कोर नहीं किए, माना उन्हें कुछ बाहरी या कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिला। लेकिन जब कहा गया खुशी से पेन पास करो, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अंदर में खुशी का भाव आ गया और खुशी से वो एक दूसरे से बात करने लगे। तो पूछा खुशी कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा अंदर से आई। जब आपको बोला शांति से पेन पास करो, तो शांति कहाँ से आई, बोले शांति अंदर से आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुशी कहाँ है, शांति कहाँ है? जब बोला प्यार से पेन पास करो, तो प्यार कहाँ से आया, अंदर से आया। इसका मतलब ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो केवल और केवल एक विचार, जब हम अपने आप को विचार देते हैं कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो हमारे अंदर जो है वो बाहर आ जाता, इवोक कर लेते हम उनको। जैसे अगर किसी को कहीं कुछ, मान लीजिए कोई किसी के परिवार में कुछ बुरी घटना हो जाती है और व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही टेलीफोन पे उसको मैसेज मिलता है कि आपके घर में ये हो गया, तो उसका मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो एक विचार उसको उदास कर देता है और एक ही विचार हमको क्या कर देता है, वो खुशी दे देता है, शांति दे देता है। लेकिन वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया, हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब हमको खुशी मिलेगी। हमने कंडीशन कर दिया, मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन अगर, जैसे अभी हमने जाना कि मैं ही खुशी हूँ, खुशी मेरे अंदर है, लेकिन उस खुशी का हम पहले ही अंदर से आह्वान कर लें, तो क्यों नहीं अगर हम खुश होकर काम करें? जब हम खुश होकर काम करेंगे तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हम काम से एक्सपेक्ट ना करें कि काम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपने आप को कंडीशन कर दिया, एक आधार बना दिया, एक शर्त रख दी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर लें कि खुशी तो मेरे अंदर है, प्यार मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, मुझे बाहरी चीज़ों से नहीं मिलने वाली, क्योंकि खुशी, शांति, आनंद ये मुझे स्वयं को चाहिए। ठीक है, मुझे अपने शरीर को भोजन देने के लिए या बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन देने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविकता मेरा जो जन्म हुआ है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ ही हुआ है। तो इस संकल्प के साथ कि मैं खुशी का सितारा हूँ, मैं शांति का सितारा हूँ, अगर रोज़ हम सुबह इसका अभ्यास कर लें, जैसे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा भी था कि रोज़ आप 10 बार लिखें सुबह कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले लिखें, और दिन में भी अभ्यास करें, तो कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम ये आह्वान कर लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, आनंद का सितारा हूँ, प्यार का सितारा हूँ, तो खुशी हमारे अंदर आ जाएगी। और जब वो आएगी तो फिर आप कुछ भी करें, कोई भी काम करेंगे, है ना, या कोई भी आपको कुछ किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो मैं ऑलरेडी खुश हूँ, लेकिन उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जब आप वो काम करेंगे तो क्या होगा, और ही बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी अभिलाषा ही काम होगा तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं हुए तो दुखी हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अंदर मैं पहले खुश हूँ तो फिर जब मेरी अभिलाषा होगी कि काम होगा तो ठीक है, अच्छा होगा तो बहुत, क्योंकि आप खुश हैं तो काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अगर बाई चांस आप में किसी स्किल की कमी है, अगर वो नहीं भी अच्छा होता है, तो आप दुखी नहीं होंगे, उस काम को छोड़ नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप में मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे और उसको अच्छे तरीके से करना है और उसको बढ़िया तरीके से करना है। जैसे गीता में लिखा गया है, गीता के 18वें अध्याय में लिखा है कि निष्काम कर्म करो, लेकिन वो हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या विधि है, उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए यही तरीका है कि पहले हम संकल्प कर लें कि मैं ही खुश हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, प्रेम का सितारा हूँ। अगर हम इस विधि से करेंगे तो हम में वो निष्काम भाव, निष्काम जिसे सेवा कहा गया है या निष्काम कार्य करने का भाव कहा गया है, उसको हम आसानी से अपने जीवन में ला सकते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
0: चलिए राजीव जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने बताया, अगर मैं ही खुश हूँ इस भाव को लेकर हम लोग कार्य करेंगे तो उसमें समझो हमें सफलता तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप खुश हैं। बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि चलो और थोड़ा सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण जिज्ञासा ये होगा कि हाँ ये सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए आप टाइम देंगे, खुशी से सीखेंगे और खुशी से आगे बल्कि करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर मार्जिन ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओ किसी काम के लिए नहीं हो रहा है, तो आपको मार्जिन ये मिलता है कि आप नहीं भी काम होगा तो आप लर्निंग माइंड से आगे बढ़ेंगे, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, तो ये भाव को आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजेश जी। चलिए मैं चाहूँगा कि मैं ही सफलता हूँ इस विषय को आपने बहुत ही अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया है, तो इसका प्रैक्टिस भी हमने जैसे कि कल हमारे सभी विद्यार्थियों को बताया था, और कितना टाइम तक हमें यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा?
1: कहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना, हम सारे जीवन में सारी उम्र तक सीखते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो जितना आप अभ्यास करेंगे, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास होत चिकने पात। जैसे
0: जड़मत होत सुजान।
1: जैसे अभी आपने, अभी एशियन गेम्स चल रही हैं।
0: जी जी जी जी।
1: है ना, उसमें वो कहते हैं तीर कमान लोग चलाते हैं। तो एक आम व्यक्ति भी तीर कमान चलाता है, और जिसमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है वो भी तीर कमान चलाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक लक्ष्य के साथ करता है,
1: एक लक्ष्य के साथ करता है, दूसरा अभ्यास करता है। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप कितनी लगन से, कितनी तमन्ना से, कितने विश्वास के साथ करते हैं। जितना ज़्यादा आपको विश्वास होगा, जितनी लगन होगी, जितनी प्राप्ति की इच्छा होगी, उतनी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको कम से कम कंटिन्यूसली 3 महीने तक करें, वैसे प्राप्ति आपको कईयों को, हमने देखा है कई स्टूडेंट्स को एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कईयों को 2 दिन में मिलता है, कईयों को 10 दिन में मिलता है। लेकिन जब आप इसको अभ्यास करेंगे तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं, अलग अलग व्यक्तित्व जो है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप इसको 3 मास तक करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ हो सकता है। ये एक्चुअली हम कहेंगे कि हमारे मन का भोजन है, जिसके हम कहते हैं शरीर का भोजन तो हम रोज करते हैं, दिन में 3 टाइम करते हैं, लेकिन हमारे मन को भी तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो खुशी, आनंद, प्रेम जो क्या है, ये हमारे मन का भोजन है, तो ये भी हमें भोजन रोज ही करना चाहिए।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रोज ही प्रैक्टिस करना है, रोज ही इसका प्रयोग करना है, तो आपके जीवन में ये सतत जो है निरंतर खुशी बनी रहेगी। और निरंतर खुशी में आप रहकर अगर आप काम करते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी रहेंगे। तो आशा करूंगा कि आज हमने जिस विषय को लेकर, यानी कल का विषय ही कंटिन्यू किया था, मैं ही सफलता हूँ, तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा राजेश जी एक छोटा सा मैसेज कोट करें।
1: मैसेज आज एक मैं अगेन प्रैक्टिकली बात करूँगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हम अपने आप में संकल्प लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, लेकिन कई बार जैसे डेली कोई ना कोई हमें चैलेंजेस आते हैं, रोज़ हम उठते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जीवन नाम ही चैलेंजेस को फेस करने का है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं जो कि हमें इस संकल्प में टिकने नहीं देंगे, आप ये चैलेंज पाएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि जैसे आप लिखेंगे या अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बुरे विचार हैं, या दूसरों ने आपसे बुरा व्यवहार किया या काम नहीं हुआ ना, तो वो आपको आपके उस संकल्प में टिकने नहीं देगा। तो उसके लिए एक विधि है कि रात को सोने से पहले आप 10 बार ये संकल्प तो करें ही करें, जो आप लेंगे, मैं शांति का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ, इसको लिखें। लेकिन साथ साथ अगर आप डायरी पे या किसी कागज़ पर जो आपके साथ आज हुआ, जो आपको कुछ चैलेंज आया या प्रॉब्लम आई या किसी ने आपको तंग किया, दुख दिया, या क्या कारण था आपकी परेशानी का, उसको आप डायरी पर लिख देंगे। जब आप डायरी पर लिखेंगे, लिखने के बाद अपने आप में उस खुशी का आह्वान करके उस आत्मा को जिसने मिसबिहेव किया या जो कारण था चिंता को, उसको माफ़ कर दीजिए, या अगर आपने गलती की तो स्वयं को माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि अगले दिन फिर आप उसी संकल्प में टिक पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगले दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आप कोशिश करेंगे उस संकल्प में टिकने की, लेकिन वो जो नेगेटिव बातें जो कल आपके साथ हुई थी वो याद आ जाएंगी, लेकिन कागज़ पे लिखेंगे तो रात को फिर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ब्रेन में नहीं जाएगा। तो ये भी मैं चाहूँगा अपने श्रोता गणों से कि इसका भी अभ्यास करें।
2: बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास को कैसे बढ़ाना है, ये सुंदर बात आपने बताया। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर। तब तक आप मैं हूँ खुशी, मैं हूँ सफलता, इसका प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को।

0: करे प्रभु।
1: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ अब तो बस करो।
1: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
4: कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: मेरी हॉबीज तो बहुत है, जैसे कि डांसिंग, खेलना, कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
1: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को, बहुत सारी चीजें। शिवांशी, आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
2: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
1: आपको खाना खाना है, मेरी खाना बनाना है।
3: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव क्रिएटिव शब्द सुनाई दे रहे हैं मुझे।
1: दीदी, यहाँ पे हॉबीज की बातें हो रही हैं।
3: अच्छा, इसीलिए मुझे कभी सुनाई दे रहा है खेलना, कभी आर्ट, कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
4: हॉबीज के बारे में।
3: हॉबीज के बारे में, तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना? जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा। तो आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
2: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
0: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
5: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
6: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
8: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
3: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे अपनी अपनी दो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
0: खाना बनाना।
3: खाना बनाना, और
0: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
3: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा,
7: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है।
9: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
8: दीदी, मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
3: दो बताओ उनमें से।
8: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
3: हंसाने के लिए क्या करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना?
8: जोक सुनाना।
3: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है ना? और राघव को क्या पसंद है?
0: आर्ट और डांसिंग।
3: और शिवांशी को?
2: डांस करना और खाना खाना।
3: और राघव क्या बोल रहे थे आप?
0: दीदी, मतलब है ना, जब आप फ्री होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं।
3: सिंगिंग पसंद है आपको? ओके, वेरी नाइस। मजा आना और हॉबी दोनों में क्या अंतर है?

0: हॉबी टैलेंट होता है.
1: वेरी गुड.
0: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है.
1: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है. रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो.
0: दीदी मेरी एक और हॉबी है.
1: क्या?
0: पियानो बजाना.
1: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है. अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है टैलेंट के बारे में पता चलता है
0: दीदी? उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. मतलब पहले जब अपा छोटे होते हैं तो अपा धीरे धीरे कम आर्ट कर, फिर अपा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर अपा आर्टिस्ट बन जाते हैं.
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है. वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट.
2: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कंपटीशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते
3: हैं. और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताएं तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है.
1: राइट,
4: बिल्कुल. और हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते
1: हैं. सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का. बहुत सारे फायदे हैं, है ना, हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं. तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए?
0: लॉन्ग टाइम,
2: जिंदगी भर करना.
1: जिंदगी भर करना चाहिए, बिल्कुल. तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो? क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
4: दीदी हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे.
1: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब?
0: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं.
4: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ.
1: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
5: और जो शाम को हम रेडियो आते हैं उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं.
1: ओके.
5: हमें कुछ सीखना हो तो
2: स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिलता था उसमें भी कर लेते हैं हम.
1: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी प्रैक्टिस?
6: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं.
1: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
6: रात को
1: मिलता है, दिन में नहीं मिलता है. ओके.
3: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क.
1: अच्छा, होमवर्क बाद में.
3: हाँ.
1: ओके.
3: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है.
1: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब. ओके.
2: दीदी पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में.
1: और फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा फिर?
3: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं. मैम
2: प्लीज.
1: हाँ, भाई होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना?
0: हाँ.
1: लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए. अच्छा, ये बताओ हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए? मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज बहुत समय से है ना आपकी,
3: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस.
1: आप इस साल मतलब अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ.
5: हम कहीं से सीख भी सकते हैं.
1: कहीं से सीख सकते हैं? ओके.
3: साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं फन के साथ.
1: हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना.
3: हाँ.
1: फन के साथ. ओके.
4: दीदी अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं.
1: अनुष्का का क्या लगता है?
5: उसमें कुछ नए स्टेप जोड़ दे तो वो और अच्छे बन जाते हैं.
1: हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, उसमें नयापन लेके आना, है ना. मान लो अब हम बना रहे हैं ड्राइंग बहुत समय से, सीनरी बना रहे हैं, तो कुछ उसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारे स्किल को और बढ़ाए. आजकल यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो. जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो. तो अपनी ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं, और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो, है ना. और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को, किसी और को कुछ लगता है?
2: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने की कोशिश, जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है. अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा.
5: यदि माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं. कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना, गुस्सा हो जाते हैं.
1: ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना. अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, लगातार अगर पसंद है तो करते रहना है. और आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग. तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं. तो आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
3: हाँ जी दीदी.
1: क्या करके देखा है बताओ?
3: क्लासिकल डांस.
1: क्लासिकल डांस, ओके, ग्रेट. और किसने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो.
2: ट्रेडिशनल आर्ट कर रखे, मंडला आर्ट.
1: मंडला आर्ट, ओके.
3: शास्त्रीय संगीत.
1: किसने सीखा?
3: मैंने.
1: आपने?
3: हाँ.
1: सीख रहे हो अभी?
3: हाँ.
1: ओके, क्या सीख रहे हो उसमें?
3: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते पियानो पर.
1: क्या कोई राग होता है उसमें?
3: हाँ.
1: अरे वाह, वेरी गुड. और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, इसमें क्या बात है? अब तो बच्चे हो, अभी बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग. नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो.
4: नहीं, मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की.
1: ओके. हाँ, अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
5: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है.
1: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज़ है ना. खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है, लेकिन ज़रूरत भी है ना. सबको आना चाहिए खाना बनाना. एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो.
4: ज़्यादा खाना बनाने में को कम आता है, मतलब ऐसे ही जैसे चावल छोंकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीज़ें.

0: रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गया है।
1: अच्छा, कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
0: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: दीदी मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी है।
1: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो। वेरी गुड। अनुष्का तो अभी छोटी है ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे।
3: दीदी लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ।
1: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को।
3: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी मना करते हैं, इससे पूछता हूँ, ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा हुआ इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है अभी इसमें।
1: हाँ ये तो कोई गलती नहीं आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो।
3: शिवांशी तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होएगा मैं खुद बनाऊंगी। मम्मी तो सो रहे होते हैं तो इसीलिए मना करते हैं, वरना तो मम्मी पी लेते हैं।
1: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
3: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू।
1: अरे वाह, बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है। और
2: दीदी मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया।
1: ओके
4: दीदी मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बना कर सोचे घर वालों को पिलाती हूँ।
1: सबको पिलाते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
4: सोचो कि नहीं, जैसे पापा घर में मुझे तो बोलते सबके लिए नींबू पानी बना।
1: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना।
5: पिज्जा से याद आया, कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था।
1: अरे वाह, तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना, मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं तो मेहनत करते हैं, है ना। तो आपकी हॉबीज एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती है। हमारी हॉबीज कैसे बेनिफिट देती हैं दूसरों को बताओ?
2: कुकिंग से।
1: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है। अच्छा अच्छा और हमारी हॉबीज
5: डांस से भी हो सकते हैं।
1: आर्ट और डांस से क्या हो सकता है दूसरों को?
5: डांस से दूसरों को सिखा सकते हैं, और आर्ट से अगर किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, सिखा सकते हैं।
1: हाँ हम उसको सिखा सकते हैं। और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे है, क्या लगता है आप लोगों को?
0: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बना है।
4: और अगर दीदी उनको डांस सीखना है, कोई स्टेप नहीं आता, तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है।
1: राइट।
4: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो
0: हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं।
1: सिखा सकते हैं, है ना, कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं। और हम मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो, तो भी जैसे मंडला आर्ट है, कुछ यूनिक आर्ट है, तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो, है ना, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को।
4: अभी 11 मई को मदर्स डे था ना, मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
1: मम्मी को। अरे वाह,
0: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था।
4: दीदी आपको पता मैंने कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी।
1: वेरी गुड, क्रिएटिव। तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी हैं, आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे, है ना।
0: पिंक पेपर लिया, उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली, और जब वो खोलते हैं तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे।
1: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना, कितने सारे बेनिफिट्स। तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए।
4: ये तो उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना उससे पता चलता है कि हाँ इनको ये ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा पसंद है, तो इनसे सीख सकते हैं हम।
1: हॉबीज से अच्छा दूसरों को तो बेनिफिट हो गया, हमें क्या फायदा होता है हॉबीज होने से?
4: दीदी हमें ये फायदा

0: होता है उससे जो हमारी हॉबी होती है उससे हम खुद सीखते हैं। जैसे अब मेरे को डांस सीखना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,
1: कुछ नया नया सीखते रहेंगे।
0: नया नया सीखते रहेंगे। जैसे खाना बनाना होता है, अब खाने में जैसे मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही, जैसे मेरे को पहले सिखाया था उसको थोड़ा याद करके बना लेते हैं।
1: अनुष्का, क्या लगता है आपको क्या फायदा होता है हॉबीज का? हमको कोई फायदा होता है? क्या फायदा होता है जो आपको लगे बताओ? कोई बेनिफिट होता है हमें कि मैं डांस करती हूँ या मैं आर्ट करती हूँ, उसका मुझे क्या फायदा है?
0: दीदी, हम किसी और को जैसे आर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं।
1: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
0: दीदी, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हॉबीज और ज्यादा इंक्रीज होगी।
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ
2: और दीदी, हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आती है, तो हम उनको भी सिखा सकते हैं।
1: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो
0: दीदी, डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है। दीदी मान लो, अगर
1: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी।
0: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं।
1: राइट
0: दीदी, अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया है कि मेरे पास ये हो, और उसके उधर कुछ हो रहा है, तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।
1: हाँ, कंपटीशन से अपनी हॉबीज़ को और हम आगे ले जा सकते हैं।
2: और दीदी, अगर हमें कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और दीदी, हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं, तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: दीदी, मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं, कुछ और देते हैं, तो हमको खुशी भी मिलती है।
1: हमको खुद को खुशी मिलती है।
4: दीदी, इतना खाना सुन के भूख लग जाएगी।
1: हाँ, भूख लगने लगी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे, और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं। चलो, तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई हैं, और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी, और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, उसके बड़े सारे फायदे हैं, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बॉडी के लिए फायदेमंद है, खुशी आप खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, कंपटीशन में आगे जा सकते हो, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, कितनी सारी चीजें हैं। तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
5: नहीं,
1: कभी नहीं। और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना, उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ। कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, गाना गा लिया, तो वो हो जाता है छू मंतर। ठीक है, तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स। तो फिलहाल रेडियो मधुबन 107.8 FM से लेते हैं इजाजत, और हमारे दोस्तों को कहते हैं बाय बाय।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए हम लोग इस एपिसोड में अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसे कि कल हमने खास सफलता का आधार मेरे संस्कार इस विषय पे बातें की थी, तो अब बात करते हैं कि संस्कार बनाने की विधि क्या है। कई बार हम लोग संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आज हम लोग बनाने की विधि समझने की कोशिश करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं हमेशा की तरह, और आप सभी के साथ जुड़ेंगे, संस्कार बनाने की विधि आज आपको बताएंगे। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: चलिए, मैं चाहूँगा कि संस्कार बनाने की विधि इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि क्या संस्कार भी बनाए जा सकते हैं?
1: जी, बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं समझता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा जिस पर कार्य करते हैं या काम करते हैं, वो हमारे संस्कार ही हैं, वो हमारी आदतें ही हैं। और जैसे हमने बात पहले की है कि एक व्यक्ति को हम उसकी आदतों और संस्कारों के आधार से ही,
2: माइक थोड़ा आगे ले लो,
1: एक व्यक्ति को हम उसके संस्कारों और आदतों के आधार से ही जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि एज के साथ अपने आप बनती हैं, और कुछ को हम जो है वो सिखाते हैं। लेकिन आदतें बनाने की विधि क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे, या ज़रूरत क्या है उसको हम समझ लेंगे। तो जैसे एक कहेंगे कि नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको प्राप्त करने की या उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसके तरीके जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जितनी भी साइंस में इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी साइंस में साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं, तो उसका सही आधार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमने पहले भी बात की कि सफलता माना खुशी, आनंद, शांति, प्यार, आराम। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे व्यक्ति को पानी पीना प्यास लगती है, लेकिन गर्मी में व्यक्ति सोचते हैं कि हमें क्या है वो ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी उनको अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, ठंडा पानी के लिए क्या किया, बर्फ़ का आविष्कार हुआ। बर्फ़ पहले कारखानों में बनती थी, फिर मुश्किल लगा कि नहीं कारखाने में जाना पड़ता है, फिर साइंसदान ने कहा नहीं आवश्यकता है घर में फ्रिज बना दिया जाए, तो उन्होंने फ्रिज का आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, फ्रिज खोल के अभी बर्फ़ डालनी पड़नी है, इसके लिए क्या बना दो, कूलर बना दो। तो अभी पानी डालो तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी आदतें हमारी आवश्यकता हमारी ज़रूरत पे निर्भर करती हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारी फिज़िकल बॉडी भी है ना। तो इसी तरह हमारी कई तरह की ज़रूरतें होती हैं, वी हैव फिज़िकल नीड्स, वी हैव मेंटल नीड्स, वी हैव इमोशनल नीड्स, वी हैव स्पिरिचुअल नीड्स, वी हैव सोशल नीड्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी फिज़िकल नीड्स क्या हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। फिर हमारी मेंटल नीड्स क्या हैं, हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। हमारी सोशल नीड्स क्या हैं, हमें समाज से क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं, हमें अपनी पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ वापस जाना है, ये मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन इनकी ज़रूरत हमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर पड़ती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन सुख शांति की बात तो बाद में आती है ना, पहले हमें रोटी कपड़ा मकान मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। जब ये चीज़ें हमारे हमें मिल जाती हैं, फिर व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे समाज में इज्जत भी चाहिए। उसके बाद फिर व्यक्ति सोचता है, अरे इज्जत तो मिली लेकिन सच्ची सुख शांति नहीं मिली। फिर वो सोचता है मैं कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे सच्ची सुख शांति कहाँ से मिलेगी, क्योंकि धन मैंने प्राप्त कर लिया, इज्जत भी मुझे समाज से मिल गई, लेकिन वो केवल बाहर से है, लेकिन मुझे अंदर से सदा के लिए कैसे मिले। तो ये सारी ज़रूरतें ही व्यक्ति का आधार बनती है उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को बनाने का।
0: जी राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, और जैसे जैसे आपने बताया कि आविष्कार जो है ज़रूरत की जननी है, जैसे हमें नीड हो जाती किसी चीज़ की चाहत होती है या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है आविष्कार होता है और वो चीज़ हम बना लेते हैं। शायद आज से 50 या 100 200 साल पहले कोई साबुन से नहाता भी होगा या शैम्पू लगाता होगा, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि आज हम बिना साबुन या शैम्पू के कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ लोग थे जो बिना इसके भी काम चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया वैसी ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या ह्यूमन नेचर भी आवश्यकता के समय पर बदलती है क्या?
1: हाँ, ह्यूमन नेचर भी बदलती है, क्योंकि कई बार ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम
0: मोल्ड नहीं कर सकते या चेंज नहीं हो पाता है।
1: चेंज, हाँ, ऐसी कुछ होते जो अपने आप, जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप बदलती हैं। उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो बड़े हैं उनको पता होता है कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में कभी बोला था कि आप में ये संस्कार आदत होनी चाहिए, लेकिन बचपन में वो समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको समझ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, सुबह उठने की आदत है, अमृत वेला उठने की आदत है, तो अमृत वेले जैसे बड़े लोग हैं उनको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं तो आपका मन फ्रेश होने की वजह से आप जो पढ़ाई करते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ाई करेंगे तो आप 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सुबह आप 1 घंटा पढ़ाई कर लेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा। तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है, आपकी शारीरिक सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन वो आपको बचपन में समझ नहीं आती कि हमें सुबह उठना चाहिए। माँ बाप भले हमें कहेंगे कि बेटा उठो उठो, लेकिन हम लोग उठते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमें उस चीज़ की उस एज पे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको एहसास होता जाएगा, तब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आदतें कई होती हैं कि एक एज के हिसाब से भी वो बदलती हैं। दूसरा ये है कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं भी होती, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संस्कार कई में होते हो नेचुरली, जैसे आपने कल भी बात की थी कि बाय बर्थ होते हैं। जैसे कई बच्चे हैं बाय बर्थ उनको हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो तो वो आपके बिना बोले ही ग्राउंड में भाग जाएंगे, क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। और कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का सम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, मेरे पास एक टीचर थे, उन्होंने बीटेक में टॉप किया था, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गाँव में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, उनके गाँव में स्कूल में कोई भी मैथ का टीचर नहीं था, लेकिन वो अपने आप पढ़ना सीख गए क्योंकि उसमें उनका क्या था, इंटरेस्ट था, और ये इंटरेस्ट बाय बर्थ होते हैं। तो जो बच्चे को क्रिकेट खेलने और लेकिन उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, उनको मैथ्स और उनको बोलो कि क्रिकेट खेलो तो उनको बहुत झंझट लगेगा, ग्राउंड में जाना ही मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपने उनमें संस्कार डालना है क्रिकेट खेलने का तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर, वो एक विधि है, वो एक तरीका है। लेकिन उनको बोलो कि मैथ्स के सम अपने आप सॉल्व तो करेंगे, ऐसे जो बच्चा क्रिकेट खेलता है आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलना सीखे, क्योंकि वो नेचुरली सीख ही जाएगा और बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन उसको बोलो कि, और वो मैथ में अच्छा नहीं है, उसको बोलो तुमको मैथ के सम सॉल्व करने हैं तो वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसको मैथ में स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पीछे हमें उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ हमारे में होते हैं। जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा सुबह उठ जाते हैं, कई बच्चे वेजिटेरियन होते हैं, और अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में उनका जन्म हो गया तो मान लीजिए पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और वो नॉन वेज नहीं खाते थे, तो इस जन्म में अगर वो नॉन वेज फैमिली में बाई चांस चले गए तो उनका दिल होगा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊं लेकिन मैं वेजिटेरियन भोजन ही करूं। तो ऐसे हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो हम बिना कहने से हमारे बने बनाए होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अगर हमने उनके ऊपर काम कहें कि पिछले जन्मों में किया है तो फिर हमारे साथ वो अगले जन्म में भी पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे संस्कार जो हमारे इस जन्म में नहीं हैं उनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम में अगर कुछ बुरे संस्कार बाई चांस आ गए हैं तो हमने अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलना है, और वो हम मेहनत से बदल सकते हैं, खुद भी बदल सकते हैं और दूसरों के सहयोग से भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं, हमारे टीचर हमारी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि समय और परिवेश को देखकर चीज़ें बदलती जाती हैं और हम लोग भी अपने आदतों में परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो हम पढ़ने भी लग जाते हैं और जब टीचर शुरू से ही हमको बताते हैं तो हम लोग फिर कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो समय के अनुसार हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाता है, हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जैसे कड़े संस्कारों की बात आती है, समटाइम्स ऐसे रिजिड होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज हम लोग देखते हैं सरकार की तरफ से एडिक्शन केंद्र बने रहते हैं, माना नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं। जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके लिए ये खास प्रायोगिक तौर पे ये सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी देखा गया है कि 90% लोग जब तक वहाँ रहते हैं तब तक तो ज़बरदस्ती उनको छोड़ना पड़ता है, और जैसे ही वो आउट ऑफ द बॉक्स माना वापस आ जाते हैं अपने घर में, फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो रीगेन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पर?
1: देखिए, जो आपने डिडिक्शन सेंटर की बात की है, पहली बात तो ये कि पहले कारण पता लगे कि वो ड्रग्स में गए क्यों हैं। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का ड्रग्स में जाने का कारण अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। पहले तो उसके कारण का पता चले कि उसका कारण क्या है, क्यों वो ड्रग्स में गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को जैसे फ्रेंड्स में स्वीकार किया जाए। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसलिए उस ग्रुप में जाते हैं जहां पे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकें, उनके साथ वो मिल सकें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख को भूलने के लिए, अपने गम को भूलने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ड्रग्स जो है बुरी चीज़ नहीं है। उनके मन में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिलती है या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, ताना मार दिया है, दुख हो गया है, किसी को गम पहुंचा है, या कोई किसी का हक मार लेता है, तो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई आप इन चीज़ों को लेंगे तो अपने गम को भूल जाएंगे, अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी चिंता को भूल जाएंगे, परेशानी को भूल जाएंगे। तो वो तो जो ड्रग्स हैं उनके दोस्त का काम करती हैं। जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल आती है, जिस मुश्किल का, कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो सामना नहीं कर सकते तो क्या करें, उनका मन टूट गया। जैसे कईयों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो दोस्त हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, एक लड़का है एक लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, उनको इतना सदमा पहुंचता है कि उस सदमे को सहन नहीं कर पाते वो लोग। तो उस सदमे को दूर करने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं। तो ये ड्रग्स उनके लिए सहारे का काम करती हैं। तो उनमें पहली बात तो ये है कि उनको हम काउंसिल करें, उनको ये बताएं कि ये ड्रग्स जो आपने जो रास्ता अपनाया या आपने सही नहीं अपनाया था, कि ड्रग्स जो है वो आपकी दुख को दूर नहीं करती, चिंता को दूर नहीं करती, परेशानी को दूर नहीं करती, बल्कि जब तक आप इनको लेते हो तब तक आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही उनका असर ख़त्म हो जाएगा आप और दुख और परेशानी और चिंता में चले जाएंगे। तो हमको उनको वो कोई ना कोई टेक्निक सिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई विधि सिखानी पड़ेगी, जिस विधि के कारण, जैसे किसी बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा, देखो तुम कितने महान हो, तुम्हें दूसरों से अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं ही स्वयं को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, वो उसको ये लगता है कि मेरा प्यार मुझसे चला गया, वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल एक मोटिवेटर का काम करता है, लेकिन प्यार तो अंदर से आता है, खुशी तो अंदर से आती है। तो अगर हम उनको ऐसी विधि सिखा दें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, खुशी मेरे अंदर है, अगर किसी को गम है, दुख है, तो एक ऐसी उसको विधि सिखा दें कि उस विधि से उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस गम को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाए। तो मैं समझता हूँ इन सब का एक, जो हम कहेंगे, जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, राजयोग एक ऐसी विधि है जिस विधि से हमको ये सारी गुण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम राजयोग मेडिटेशन भी, हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर है, वो उनको ये काउंसलिंग की बातें तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे, जब तक वो काउंसलिंग सेंटर पे रहते हैं, मान लीजिए 3 महीने तक काउंसलिंग सेंटर पे रहते हैं, उनके ऊपर विजिलेशन होती है, ध्यान रखा जाता है कि ड्रग्स उनको मिले नहीं, और उसके बाद उनको वो दवाइयाँ भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सुपरविजन छूट जाती है और वो बाहर जाते हैं और उनको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स का ही सहारा लेते हैं, ना चाहते हुए भी उनके कदम उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनमें एक तो विल पावर नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनको लगता है कि मैं ड्रग लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अपने अंदर से वो खुशी, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ढूंढते, लेकिन बाहर से ड्रग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उनको मेडिटेशन सिखा दें, ध्यान सिखा दें, योग सिखा दें, रिलैक्सेशन सिखा दें, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जा कर के उस खुशी को, आनंद को, प्यार को ढूंढ सकते हैं, जिससे उनकी विल पावर भी बढ़ेगी और वो इस नशे को छोड़ पाएंगे। तो मेरी सजेशन रहेगी
0: जी
1: कि हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर हैं, वो राजयोग को एज ए वन ऑफ द काउंसलिंग टूल्स, काउंसलिंग स्किल की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो उनका जो रिलैप्स है डिडिक्शन सेंटर से, जब उनके जो पेशेंट्स हैं निकलते हैं, तो उनका रिलैप्स मैं समझता हूँ बहुत कम हो सकता है, और वो सेल्फ को एम्पावर करके जाएंगे। और ये अगर उनको वहीं पे सिखाया जाए डिडिक्शन सेंटर में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो अपने रास्ते से भटक गए थे, वो अपने रास्ते पे दोबारा वापस आ सकते हैं।
0: चलिए राजेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से हम लोग संस्कारों को बनाने की विधि आज इस पर बात किया है, और जैसे कि आखिरी में आपने डी एडिक्शन वाली चीज़ों को भी आपने इसमें इंक्लूड किया, और जिसमें ये बताया कि कारण पता चले तो फिर निवारण भी हो सकता है, कई बार कारण पता नहीं चलता तो निवारण में मुश्किलें आ जाती हैं, ये भी आपने बताया। और साथ में राजयोग का अगर प्रयोग करते हैं, आत्मचिंतन का अगर प्रयोग करते हैं, तो उनका जो वापस गिव अप करके फिर से वही रास्ते पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और उनको एक दिशा मिल जाएगा, एक एम ऑब्जेक्ट उनके क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो फिर वो एक अच्छे नागरिक बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज संस्कार बनाने की विधि बताने के लिए आपको। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: दोस्तों, जब जिंदगी की शुरुआत होती है, हम आप हर एक यही सोचता है कि जिंदगी की गाड़ी बड़ी इत्मीनान से चलनी चाहिए। हाँ, कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, बीमारियां आदि होती हैं, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर होता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी जीवन की शुरुआत ही किसी खामी से होती है, कुछ ऐसी बीमारियां जिनके साथ वो पैदा होते हैं। ऐसे में परिवार वालों का दिल कितना निराश हो जाता हो, या उन्हें कितना अंधेरा लगता होगा अपने सामने कि ऐसे जीवन को किस प्रकार से सहज बनाया जाए। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। मैं आरजे शांतनु आज आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए एपिसोड में, जहाँ हम मिल रहे हैं डॉक्टर नलिनी जी से, भारत के पुदुचेरी स्टेट से। पोंडिचेरी या पुदुचेरी, इस सुंदर से शहर में रहने वाली डॉक्टर नलिनी भारत देश की वो होनहार बेटी हैं, जिन्होंने भारत में रह रहे कई ऐसे छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्ग भी जो हीमोफीलिया के शिकार हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि जन्मजात बीमारी है। इसके साथ जन्म लेने वाले व्यक्ति को आजीवन इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, और भारत में शुरू शुरू में इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। क्या रही, कैसा रहा डॉक्टर नलिनी जी का सफर, कैसे उन्होंने इन कठिनाइयों का सामना किया, तो ऐसे महान व्यक्तित्व का हम हमारे स्टूडियो में आज स्वागत करते हैं। डॉक्टर नलिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू रेडियो मधुबन स्टूडियो।
1: थैंक यू।
0: सो डॉक्टर नलिनी जी, आई जस्ट वांटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्यूटिफुल अचीवमेंट ऑफ दिस ईयर्स पद्मश्री अवार्ड, बट अलॉन्ग विद दैट द awards that you get on a regular basis is the smiles and the blessings of these little children that you're working with. So that's probably unparalleled to any other award one can think of.
1: Thank you.
0: So Nalini ji, we would begin this little discussion of ours with you narrating your own story in your own words, jisse hamare shrota sathi jante hain aapki kahani aapki zuban. So we would love to hear from you.
1: Yeah, my name is Dr. Nalini. I am a pediatrician by profession. I had a very stormy childhood with a lot of illnesses right from birth, many surgeries from birth, and many doctors had to see me. So all this probably had an impact in my life. When I grew up, I went to school very late, after 7 years. Then I was a good student. And I took to books. I'm a voracious

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: इतना तो हम कर सकते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, संगीत की दुनिया। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में बताया कि नियमित साधना से एक शिल्पी को सफलता सहजता से मिल सकती है। नियमित संगीत साधना या उसको रियाज कहे तो उसके द्वारा ही संगीत के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अपनी संतुष्टि भी तो होती है। नित्य गुरु के पास जाकर शिक्षा लेने से विजयी बन सकते हैं, इसलिए एकांत साधना की आवश्यकता है और साथ में चाहिए गणमान्यों का सानिध्य और अनुप्रेरणाएं। तो ऐसे ही संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: मैं दिल से सबको नमस्कार करती हूँ
3: जी। जैसे हमने आज बताया कि संगीत सीखने की जो कला है,
4: हाँ जी,
3: इस कला में गणमान्यों का या कहो गुरुजनों का सानिध्य भी बहुत आवश्यक है। अपनी साधना तो है, अभ्यास है, मेहनत है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद भी उतना ही काम करता है।
4: जब तक गुरुजन कहो या गणमान्य कहो
3: जी,
4: उसका प्रेरणा बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसको कैसे लगता है, हम संगीत प्रेजेंट करते उपस्थापित करते हैं उस टाइम उसको महसूस कैसे होते हैं, वो देख के इतना खुश हो जाते हैं।
3: इनकी दिल की दुआएं भी हाँ इतनी ही मायना रखती।
4: किसी को जो बीमारी से भरा हुआ है, अगर संगीत सुनने के बाद वो पुनर्जीवित हो जाते हैं।
3: अच्छा,
4: अगर हम औषधि, संगीत औषधि जैसे भी है, हम वो भी सुनाएंगे, औषधि का काम भी करते हैं बीमारी ऊपर।
3: जी जी, आज केदारनाथ में आगे क्या सिखाएंगे हमें?
4: आज क्या करेंगे, हमने पिछले एपिसोड में स्वरलिपि दे दिया, स्थाई अंतरा, आज उसके ऊपर बोल बैठाएंगे।
3: ओके,
4: अगर लिसनर बोल लिख लेते हैं तो अच्छा है, किताब पेन से रेडी हो जाते हैं तो अच्छा है।
3: जरूर,
4: तो मैं थोड़ा स्थाई अंतरा की बोल बोलती हूँ, उसके बाद मैं बैठा दूंगी, ठीक है
3: जी।
4: सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सदगुरु नाम करे सुमरन वा। हर जगह में देखो, गुरु बना कैसे गुण गाऊं, गुरु बिना कुछ शिक्षा भी संपूर्ण नहीं होते हैं, गुरु चाहिए चाहिए। जैसे बचपन में माता पिता गुरु होता है
3: जी, संस्कार तो हमारी माँ और पिता ही
4: दुनिया में देखते हैं ना, बचपन में माता पिता गुरु होता है। जब संसारी बन जाते हैं तब अपना जो हस्बैंड जो गुरु बन जाते हैं, हम सुने हैं कि जो पति जो है परमेश्वर,
3: ऐसी भारतीय संस्कृति कहती है जी।
4: उसके बाद जब वानप्रस्थ जीवन में होता है तो ईश्वर गुरु बन जाते हैं। तो गुरु बिना कैसे गुण गाऊं,
3: मतलब पूरे जीवन में हमको गुरु की आवश्यकता है ही है, हर पड़ाव में,
4: हर पड़ाव में। तो यही बोल रही हूँ, सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सद गुरु नाम करे सुमरन वा, घड़ी घड़ी पले पले उम्र घटते सब। अब देखिए वही बात आ गया ना, जितना बढ़ते जाएंगे उम्र बढ़ते जाएंगे और पल पल कम होते जाएंगे।

0: जी ठीक है ना। आजे हु चेत मति मंद चतुरवा, इसलिए तुरंत ईश्वर से या गुरु से नाम भजन करके दिन बिताते हैं, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं।
1: जी, जी
0: तो हमको क्या करना है, ऐसे बिताना है। तो आप ही ये करते हैं कि ये पहले जो हमने ईश्वर लिपि दिया है उसमें सजा देते हैं, ठीक है। ओके
1: जी।

श्यामली जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में बहुत ही सुंदर एक गीत सुनाना चाहते हैं। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत सुंदर गीत का आनंद लिया। ब्रेक के पहले केदार राग की बंदिश हमने सुनी। श्यामली जी, आगे आप हमें केदार राग से संबंधित क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हमने क्या किया, बंदिश के साथ छोटा विस्तार भी सिखाया है। थोड़ा कैसे होता है विस्तार, आज तो स्वर्गम नहीं दिया है, विस्तार को भी प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी चाहिए ना, थोड़ा सीखना चाहिए ना, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रेरणा से करना है
0: जी।
1: तो हमने किया है थोड़ा छोटा छोटा बिस्तर, उसके साथ आते हैं तो बहुत अच्छा सरगम साथ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, तान दे देंगे
0: जी।
1: 16 मात्रा, 8 मात्रा, साई अंतरा, अभी जैसी सिखाने की नहीं है, क्योंकि जो केदार राग जब से दिया है समझो थर्ड ईयर चल रहा है, अगर थर्ड ईयर तृतीय वर्ष चलते हैं, तीसरा वर्ष चलते हैं,
0: अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही,
1: प्रैक्टिकल करना है ना, उसको क्रिएटिविटी चाहिए, तो तान थोड़ा दे देते हैं। ठीक है
0: जी,
1: सुनाते हैं।

0: शामली जी, इसी तान के साथ बहुत ही क्या कहे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हाँ,
1: क्योंकि अगर एक बार अपना लेते हैं, अपनापन कर लेते हैं, तो उसका मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, शायद लिसनर ध्यान दिया है कि मैंने जिस लय से शुरू किया है
0: जी,
1: अचानक थोड़ा फास्ट कर दिया। जब तक ये
0: फास्ट, इसलिए मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा ऐसा
1: फिर थोड़ा फास्ट कर दिया, द्रुत कर दिया। इसलिए मध्य लय से हमको जो ये जो मध्य लय की जो बंदिश वो करना है, उसके बाद तान जब शुरू करेंगे उस टाइम में थोड़ा द्रुत के साथ करना है।
0: अच्छा,
1: पहले तो वो मैंने मध्य लय से तान वगैरह किया है, जितने सारे तान किया है मध्य लय से किया है, लेकिन उसके बाद जब हम आकार सहयोग से थोड़ा सरगम कर लेते वो उस टाइम में थोड़ा फास्ट कर दिया, मजा नहीं आते हैं
0: जी।
1: वो फास्ट करने में ही मजा आते हैं, थोड़ा द्रुत करने में ही मजा आते हैं। शास्त्रीय संगीत का जो बंदी जो है, एक शास्त्रीय कोई राग के ऊपर वो संपूर्ण उसको
0: पकड़ सकते
1: है
0: जी। शामली जी, जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज भी एक बहुत सुंदर एक गीत लाए हैं। इसमें थोड़ा सरारत भरा हुआ नटखटी है।
0: अच्छा,
1: लास्ट में ये तो आज किदार की लास्ट एपिसोड है, तो हम क्या करते हैं, घर फिल्म किशोर कुमार जी और लता जी एक गीत दोनों में एक साथ किया है, बहुत सुंदर गीत है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है,
0: वाह
1: बहुत सुंदर गीत है। आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा कि किधर के ऊपर ये गीत है। ठीक
0: जी,
1: है
0: जी जी।

0: आपकी भी गजब के अंदाज है। सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: मैं कोशिश कर सकती हूँ।
0: जैसे आपने पहले भी बताया कि बहुत सुंदर गीत है, वैसे
1: नटखटी भी है।
0: जी जी, रमणीय गीत भी तो चाहिए ना। जी जी जी, श्यामली जी आपने सच में फिर से दिल को बाग बाग कर दिया। जाते जाते आपने हमें भी खुशहाल कर दिया।
1: थैंक यू।
0: इसी के साथ दिल तो करता है सुनते रहे, लेकिन समय देता है हमको इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए राग नए रंग के साथ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता, लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
2: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही, कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो प्लीज, मारो सपनो मत तोड़ो माँ प्लीज।
3: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी, सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊं तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वहां को भी सोचना है मारे।
4: देख बेटा, मारी माँ भी मैंने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ, बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारा हूँ दहेज तो खूब आयो, पर टीवी वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चला भी नहीं देऊ तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछे न बताओ।
1: बेटा बींदनी तो घनी अच्छी है ये, पर गूंग तो घनो ओछो काढ़े, यो अभी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पॉटन कसे मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी कही।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: ते केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते अरे मारी मारो किनो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बींदनी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घड़ा दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी ना, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं धारा हूँ कई छुपा, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अतरो दहेज दी दो, पछे तू काई करे इतरा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वही सामान पे बहु रो कोई अधिकार को नहीं वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहु का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन है ना।

0: माँ सीता शक्कर आवे रही है नवा घबराए रही है तो मैं वणी हॉस्पिटल लेन जाओगे।
1: चुप बैठ चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानू, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हाँ, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीननी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीननी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगी ने की बगैर छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बिनणी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बिनणी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा आपने भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बिनणी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय घणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, डीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दर्पा मत राधा।
2: दर्पावा की बात को नहीं का किसा, आजकल लेड़ो हुए रहे है। मैं आई बिनणी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रही है बिनणी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बिनणी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहें तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला होगी पढ़ी लिखी महिला होगी तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी अच्छी पढ़ाई होगी तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, इसलिए जरूर पढ़ाइए।
1: आज सो थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे वणी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनणी को पूरा ध्यान रख जे।
6: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को, चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
7: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन हैं उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए, तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है। कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और

0: को एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं, तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजिशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में।
1: जी
0: उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इशू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए हैं।
1: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए, लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: जी मैडम, आर
0: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलिथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलिथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था
0: जी।
1: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
0: जैसे आपको तो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेके देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेके भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं इकल्ला अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि तो जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग नहीं रहते तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती है। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथीन बीनना, इको ब्रिक्स बनाना, और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके इको ब्रिक्स बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भग जाते थे वहां से। तो इधर उधर काल पे फोन लगा के, और वो क्यों नहीं भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई, और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले

0: लग रहा होगा कि ये कैसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात करी यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार्य है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं। तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे। पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे। तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके, और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलीथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलीथीन दबाई, उसको बढ़िया एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईंट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईंट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है, कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ,
0: रैपर
1: सिंगल
0: की, किस प्रकार के
1: यूज
0: पॉलीथिन?
1: पॉलीथीन, सिंगल यूज जो पॉलीथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलीथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल जो,
0: प्लास्टिक।
1: हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, जितने प्रकार के रेपर, सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े इकोब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन घर
0: जी
1: पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा हो। तो एक ईंट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्ति भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे, या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है मैडम, मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे उपयोग कर सकते
1: तो अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुर्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक
0: यस
1: से जो 2 लीटर की बॉटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको टोस्ट टोस्ट के भर लिया अपन ने, वो उसको कवर सारी बॉटलों के साथ, 9 बोटलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
0: जी,
1: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने का एक मुर्दा बना सकते हैं। हमने बनाया अभी एक मुर्दा उसको बैठने के लिए,
0: तो
1: तो बढ़िया
0: वेस्ट कपड़े
1: फर्नीचर
0: को
1: के बचाने में अपन
0: लेकर
1: काम कर
0: के
1: सकते
0: ढक
1: हैं। हाँ
0: के। जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
1: हाँ
0: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
1: समान
0: बाद
1: सर,
0: उसको चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या ऐसे ही ढक के
1: हाँ
0: उसको स्टूल बना सकते हैं।
1: ये कवर बना के उसका बढ़िया अच्छा है, बिल्कुल
0: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
1: हमने पहला एक हमारे वो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई। तो
0: जी
1: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़े एक जुनून भी था। तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें, तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में। बढ़िया रहा, पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है, पर्यावरण
0: जी
1: प्रेमी करके, तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा, तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बॉटल से इको वृक्ष बना के, इनको अंदर बॉटल के अंदर ये पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की क्यारी बनाई है। तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने, तो
0: जी
1: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
0: जी क्या बात है सर। जी ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके साथ
1: मेरा
0: महिलाएं भी शामिल है अभी। जी बताइए
1: जी
0: सर,
1: मतलब
0: आप
1: मैं सोचना है मेरा कि जैसे कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करें करते रहेंगे उस काम को तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
0: यस बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर आपके साथ महिलाएं भी शामिल हैं, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
1: जी
0: व्यापरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का
1: जी
0: अनुभव कैसा था?
1: वो क्या इतना एक आत्मविश्वास नहीं था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे उस दिन, मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का वो, तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता। आप जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई है उस काम को देख के, और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावना को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था, वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
1: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
0: जी बहुत बढ़िया। सर आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी, और उनकी क्या भूमिका है आप बता सकते हैं?
1: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या एक मेरी दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है एक पिंकी दीदी करके, तो
0: जी
1: मेरा क्या है जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले, तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उन्होंने कि भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है, तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट दिया आपसे, तो उन्होंने कि बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या, तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने कि इसको क्या, मैंने कि इसको इको ब्रिक तो बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे, तो
0: क्या
1: वो
0: बात है
1: लेके
0: जी,
1: आ, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आ, जैसे 20-25 बोतल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई, तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इको ब्रिक से बढ़िया निर्माण करने वाले हैं, मैं तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे, तो वो क्या
0: जी
1: है कि कोई सा भी कार्यक्रम करना महिलाओं का तो 15-20 महिला सहज में इकट्ठी हो जाती थी, किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई तो उनको अच्छा लगा, तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी हैं, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है, वो अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको ब्रिज की वाटर लगा चुकी है पहले, तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्हें उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
0: जी
1: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को, तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए, तो उन्होंने 9 बॉटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की,
0: क्या बात है सर जी,
1: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है,
0: राइट।
1: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली, तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ते गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा, तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
0: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
1: जी
0: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से। तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ, स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को।
1: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास दो मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवाहा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है, क्योंकि तो क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम रोज
0: जी
1: जाते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, पर वो ढेर लगने लगा। तो हमने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया से विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है। तो
0: जी
1: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक
0: जी
1: निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका पॉलिथीन का, तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास
0: जी
1: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकलिंग क्लीन कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
0: जी
1: इसका
0: सर
1: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
0: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
1: ये पेन बॉक्स भी, ये हमने इसका तख्ती का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
0: जी
1: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
0: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक बोलेंगे, तो
1: बहुत अच्छा
0: वो
1: प्रश्न था।
0: आइडिया कहाँ से आया?
1: ये क्या
0: जी
1: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, अब बाटल कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने क्या बाटल को कलेक्ट करने के लिए, हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे, क्या है वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। और मैंने कहा रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते। तो मैंने कहा एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। और लोगों को बताया, वहाँ के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे वो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि भैया कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक पे कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भाई सर ये क्या है बोतल बैंक। मैंने बोला ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है ये, एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500-1000 वर्षों तक ये धरती पे पड़ी रहती है, अपन
0: जी
1: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे बोल सकते हैं कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया, 3-4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं,
0: जी
1: और
0: सर ग्रेट
1: वहां पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं इन 6 महीनों के अंदर।
0: ग्रेट सर ग्रेट सर, ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
1: ये हमने बनवाया, मतलब बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से सेफ देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
0: जी
1: सब
0: आप
1: लोग भी अन्य जगह पे बनवा सकते हो, कोई ज्यादा।
0: जी सर बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
1: हाँ वो बोट जो बोटलों का ढक्कन होता है, मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी, तो मैंने कहा वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया, जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं तो ढक्कनों को भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में। हमने कहा आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को,
0: जी
1: तो अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया मेरी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर
0: आपसे इंस्पायर होके
1: जी।
0: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
1: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी वाटर इकट्ठी हो गई, तो मैंने जब कुछ क्या है बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम, तो
0: जी
1: धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया हैं काना पिशवा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा, तो फिर विचार चला, काना ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई, तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया, तो उसका निर्माण करा एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव प्यावरा हमारे लिए एक बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
0: एब्सोल्युटली जी सर,
1: जी
0: बहुत खूब सर। सर, आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
1: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा, तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं, तो ऐसे आपको मान लो कुछ क्या बर्थडे है शादी है या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क दे के चले जाए और वो वापिस साफ करके हमको दे के चले जाए, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा, क्योंकि कुछ
0: जी
1: चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना, अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो अब वो तो पैकेज में आएगा,
0: जी सर,
1: इसलिए बर्तन
0: तो
1: बैंक का
0: बर्तन मतलब
1: शुभारंभ।
0: किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
1: वो क्या है उनको मान लो बात होगा 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन इनके ले जाना जो उनको हो सकता है, मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच जैसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं वो गिन के वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके इनको दे जाते हैं।
0: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल नहीं
0: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं, फिर वो वापस आपको रीयूज करने के
1: वापिस
0: लिए
1: कर
0: देते
1: जी
0: हैं। जी, बहुत खूब। तो सर, अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
1: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, और छोटे स्तर
0: ओके,
1: से भी कर सकते हैं इसे भी, हमने इको ब्रिज का एक बढ़िया से मतलब किसी को गाँव में करना है तो बढ़िया, जो भी अब गाँव में छोटे 50-100 परिवारों की एक बस्ती रहती है तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गाँव में।
0: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
1: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को, आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं, तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें, कोई तो जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, आवश्यकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
0: जी सर, सर जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
1: हाँ
0: करके
1: कर
0: ये
1: सकते हैं
0: कार्य कर सकते हैं?
1: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना MRF प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, हर नगर पालिका अपने कचरे का सेपरेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस

0: बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते, वो नगर पालिका भी
0: जी
1: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
0: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलीथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाए।
0: जी बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें। आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। वाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोलार गांधी जी से बात करेंगे, यानी कि डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर से बात करेंगे, और सोलार गांधी उन्हें क्यों कहा जाता है उनसे ही जानेंगे। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन क्या है, उनकी स्थापना उन्होंने की है, इस विषय को हम डीपली उनसे ही समझेंगे। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: जी। सर, सर आप IIT से आते हैं और फिर आप जो एनर्जी स्वराज ये जो शब्द है और ये जो फाउंडेशन आपने स्थापन किया है, तो इसके पीछे क्या जर्नी रही है?
3: वेल, हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं
2: जी,
3: और हर व्यक्ति करता है, जाने अनजाने। कई लोगों को ये तो अनुभव है कि हम बिजली का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, LPG पे खाना बना के खाते हैं, ये सब एनर्जी है
2: जी।
3: परंतु जब हम कपड़े पहनते हैं तो भी एनर्जी का उपयोग करने एक तरह से, क्योंकि कपड़े को बनाने में खेत को जोता गया होगा, पानी दिया गया होगा, मोटर का उपयोग किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, केमिकल का, फिर बहुत सारी मशीनें चली है, तब जाके धागा बनाए, कपड़ा बनाए। जब पेस्ट हम सुबह ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, टूथब्रश का उपयोग करते हैं, वॉश बेसिन का उपयोग करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं। जब हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो सीमेंट, कॉन्क्रीट, फर्नीचर, तो ये सब भी एनर्जी का रूप है
2: जी,
3: क्योंकि एनर्जी लगी है इन सबको बनाने में। तो जाने अनजाने हम बहुत सारा एनर्जी उपयोग कर लेते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, और दुर्भाग्य से 80% जो एनर्जी है वो अभी भी कार्बन स्रोत से आती है, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG। और ये कार्बन स्रोत होने के कारण इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये गलत एनर्जी जो हम उपयोग करते हैं, मैं इसको रॉन्ग एनर्जी बोलता हूँ, कोयला, पेट्रोल, डीजल, या काली एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि दिखने में भी काला होता है
2: जी,
3: तो इसका असर के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और उसको ठीक एनर्जी पे या सही एनर्जी पे हमको जाना पड़ेगा। और जो सही एनर्जी पे सही तरीके से जाएंगे तो एनर्जी में स्वराज होगा, एनर्जी में आत्मनिर्भरता होगी। और चूंकि एनर्जी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है
2: जी,
3: तो एनर्जी स्वराज आज के आधुनिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी एनर्जी की समस्या हल होगी, ग्लोबल वार्मिंग की होगी, परंतु साथ में दूसरे कई समस्याओं को भी हम इसमें हल कर पाएंगे।
2: जी सर, तो जैसे कि आपने एमटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से, और फिर आप चाहते तो आप एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते थे, ट्यूशंस ले सकते थे, उससे आप ज़्यादा इनकम कर सकते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं अकेले, तो आपके अकेले दम पर आप इस इंडिया को या भारत की जो एनर्जी लेवल है, जो गुड एनर्जीज आप लाना चाहते हैं, वो आप ले आ सकते हैं?
3: शुरुआत तो अकेले से ही होती है
2: जी,
3: है ना, एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो डेफिनेटली अकेले के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, पर किसी को तो शुरुआत करना है। और मुझे लगता है कि ये जो समस्या है आज की, जलवायु परिवर्तन, मौसम का बदलना, ये मेरी समस्या नहीं, ये आपकी भी है, है ना, माउंट आबू में सभी की है, पूरे देश में है, पर विश्व में हर व्यक्ति की है, तो मेरे अकेले करने से नहीं होगा। और चूंकि सब लोग इसमें शामिल हैं प्रॉब्लम को खड़ा करने में, इसलिए समस्या मतलब हल करने में भी सबको साथ में आना पड़ेगा, और आज और अभी आना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से सीजन बदल रहे हैं, जो गर्मी पहले थी वैसे नहीं है, जो ठंड जैसे थी वैसे नहीं है
2: जी,
3: बारिश जैसे थी वैसे नहीं, सब बदल रहा है, हमारी आंखों के सामने बदल रहा है
2: जी।
3: और ये बदलाव का दुष्परिणाम होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्ट्रेस आएगा, फसल खराब होगी, खाने का उत्पादन कम होगा, है ना, बीमारियां फैलेगी, जंगलों में आग लगेगी, ये सब ज्यादा ज्यादा होगा। तो यदि हम सबको धरती पर जीना है और ठीक से जीना है, तो इसके समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये पसंद या नापसंद का सवाल नहीं है
2: जी सर। तो जो गुड एनर्जीज है वो आमजन कैसे उसे उपयोग में ला सकता है?
3: सबसे पहले हम लोग हमेशा देश में जब चर्चा करते हैं समस्या को हल करने की, तो कैसे करें, कैसे उपयोग में लाएं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है कि सबसे पहला तरीका है कैसे ना करें, वो सीखने की जरूरत है
2: जी।
3: जैसे अभी हम इस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसी चल रहा है
2: जी।
3: और हम माउंट आबू जैसी जगह में बैठे हैं, इस सीजन में अक्टूबर में एसी की जरूरत नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: जो भी गर्मी होती है उसको यदि हम बिल्डिंग ठीक से डिजाइन करते हैं तो उसकी जरूरत ना होती। मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करता, तो कैसे प्रेस ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि प्रेस करने से एनर्जी खर्च होगी, कार्बन उत्सर्जन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो हम यदि कपड़े प्रेस करें उसका भी पर्यावरण पर फर्क पड़ रहा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ है, आयु है, वो 300 साल की होती है
2: जी।
3: मतलब आज जो हम एसी में बैठ के ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका असर दुनिया में 300 साल रहने वाला है
2: जी।
3: तो 300 साल भुगतना पड़ेगा।
2: बिल्कुल,
3: तो हम जाने अनजाने ऐसे काम करते हैं जिसका बहुत लंबा असर हो, तो ये तो पहले समझे कि क्या ना करें। क्या मैं एक साल कपड़े ना खरीदने का संकल्प ले सकता हूँ
2: जी?
3: क्या मैं ये संकल्प ले सकता हूँ कि किसी बड़ी लंबी दूर पे सिर्फ आनंद के लिए ट्रेवल नहीं करने जाएंगे, काम हो गया अलग बात है, पर आनंद के लिए नहीं जाएंगे, छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे
2: जी?
3: क्या मैं बिना फ्रिज के रह सकता हूँ? क्या मैं बिना गर्म पानी के नहाए रह सकता हूँ? तो क्या ना करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करने से। और अभी तक हमने यही सीखा है कि क्या करें, इसको कैसे करें, गाड़ी कैसे चलाएं, तेज कैसे चलाएं, एसी कैसे बनाएं, बढ़िया बिल्डिंग कैसे बनाएं, कपड़े कैसे, यही सब करने के कारण ये जो जलवायु में परिवर्तन है, कैसे ना करें ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल आइडिया है। और जो हमारी मिनिमम जरूरत है, गांधी जी जैसे कहते थे, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं
2: जी।
3: क्यों कहते थे? लोगों से पूछता हूँ, या जो मेरे दर्शक सुन रहे होंगे वो बताएं क्यों कहते थे। सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है दुनिया में, किसी की लालच के लिए नहीं। किसी को इसका उत्तर नहीं बताएं
2: जी, जी।
3: पर सब दीवारों पे लिखा रहता है, हर स्कूल में लिखा रहता है, हर कॉलेज में लिखा रहता है। क्यों कहते थे? क्योंकि एक सत्य है, जैसे सूर्य देवता पूर्व से उगते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, ये तो सत्य है। वैसे ही हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी सब आगे बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज बढ़ नहीं सकता, ये भी सत्य
2: जी।
3: दुनिया की कोई ताकत धरती के साइज को बढ़ा नहीं सकती। तो धरती पे तो पानी, मिट्टी और हवा सब फिक्स है, पर इंसानों को क्या लगता है? प्रगति होना चाहिए, ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ज्यादा कंजम्पशन, कैसे होगा? ये नहीं पॉसिबल है ना, जब जिस धरती से ले तो खुद ही फिक्स है। जब आपकी सैलरी फिक्स हो तो खर्चे फिक्स होना चाहिए ना
2: जी सर।
3: तो धरती फिक्स है तो जरूरतें फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स है? नहीं, सबकी जरूरतें रोज बढ़ती जा रही है, सबको ज्यादा ज्यादा ज्यादा करना है, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा ट्रेवल, ज्यादा ये, ज्यादा वो, ये सब नुकसानदायक है और इसका परिणाम लॉन्ग टर्म होता है।
2: जी,
3: इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, खास करके एसी चलाना है ना, एसी बहुत हाई एनर्जी वाली, ये किसी अपराध से कम नहीं है
2: जी,
3: क्योंकि इसका कार्बन उत्सर्जन का असर 300 साल तक रहेगा, मतलब 10 पीढ़ियां ना, पीढ़ी को 10 साल की 30 साल की माने तो 10 पीढ़ियां इसको भुगतने वाली है। आज जो हम कर रहे हैं, आप सोचिए ये कितना खतरनाक काम है, और सब लोग करते हैं
2: जी,
3: तो
2: कंपटीशन में करते हैं,
3: कंपटीशन में करते हैं। तो जब तक हम ये विषय को ना समझेंगे, और जब तक हमारे लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या स्पिरिचुअल लीडर हो या इंडस्ट्रियल लीडर हो या एकेडमिक लीडर हो, साइंटिफिक लीडर हो, जब तक ये बात को लोगों तक नहीं समझाएंगे, मुझे लगता है दुनिया की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी
2: जी। तो आपके संस्थान का आगे क्या लक्ष्य है?
3: पहले एनर्जी स्वराज लाना है, मतलब ये जो गलत एनर्जी कार्बन वाली उसको छोड़कर सही एनर्जी, क्लीन एनर्जी, शाश्वत एनर्जी में जाना है, परंतु सही तरीके से जाना है
2: जी,
3: है ना। जैसे हम आज देखते हैं आजकल काफी सारे लोग सोलर लगा रहे हैं, और ब्रह्म कुमारीज में भी काफी सोलर लगा है, सूर्य सोलर लगा है। तो प्रश्न ये है कि मान लो हमने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने बोला कि अच्छा मांगो क्या वरदान चाहिए, और हमने कहा है ना भोलेनाथ सब पूरी धरती पे सोलर कर दो
2: जी,
3: तो क्या उससे समस्या हल हो जाएगी?
2: नहीं,
3: नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले हमें जरूरत सीमित करना पड़ेगी, क्योंकि धरती सीमित है
2: जी।
3: बहुत ज्यादा बड़ा घर बना लिया, उस पे 4 AC लगा दिए और चालों को सोलर पे कर लिया
2: जी,
3: तो क्या समस्या हल होगी? नहीं,
2: नहीं।
3: सूखी सोलर पैनल को बनाने में भी एनर्जी लगती है, उसमें आपको उसको खड़ा करने के लिए आयरन लोहा लगता है, कॉपर के केबल लगते हैं, एल्यूमिनियम की फ्रेम लगती है, इन्वर्टर लगता है, सबको बनाने में भी केमिकल लगेंगे, जमीन को खोदना पड़ेगा
2: जी,
3: तो साइड इफेक्ट होगा। तो सोलर एनर्जी पे जाना है, पर सही तरीके से जाना है। तो हमने एक 3-step अप्रोच बनाया जिसका नाम है AMG, अवॉइड मिनिमाइज जनरेट। तो ए तो पहले अवॉइड करो जो अवॉइडेबल है
2: जी।
3: क्या अवॉइडेबल है? जैसे मैंने कहा ना, कपड़े पे प्रेस करना अवॉइडेबल है, एक्जॉटिक जगह पे ट्रेवल करना अवॉइडेबल है, एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े खरीदना अवॉइडेबल है, यू नो अननेसेसरी एसी चलाना अवॉइडेबल है, दिन में लाइट चलाना अवॉइडेबल है, ऐसे हजार काम होंगे जो अवॉइडेबल है
2: जी,
3: क्योंकि जब भी कुछ करोगे कुछ तो होगा
2: जी,
3: पर्यावरण पे जीरो फर्क होगा ऐसा नहीं, कुछ होगा। अवॉइड करो, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो, कम एनर्जी में उसको चलाओ, मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तो जनरेट आखिरी होना चाहिए। तो AMG, अवॉइड फर्स्ट, मिनिमाइज सेकंड, और जनरेट एज अ लास्ट ऑप्शन
2: जी।
3: और हम सब लोग क्या करते हैं देश में, जनरेट सबसे पहला, समस्या आ गई क्या करो, सोलर कर लो
2: जी,
3: वो भी सॉल्यूशन नहीं है, पहले अवॉइड करो, मिनिमाइज करो, तभी जनरेट करो।
2: मतलब मिनिमलिज्म को सबको समझना चाहिए, जैसे हम भारत में पहले परंपरा
3: समझना नहीं समझेंगे तो बहुत मार खाएंगे प्रकृति के हाथ का
2: जी,
3: जो हम खा रहे हैं
2: जी जी,
3: है ना। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही, तो प्रकृति बख्शने वाली नहीं है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। यदि आप धरती की सीमाओं के अंदर ना रहें, तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे शरीर में यदि वो ब्लिस्टर हो जाए, फोड़ा हो जाए कुछ, तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, नहीं ज्यादा निकले तो सर्जरी करके निकाल देते हैं ना
2: जी।
3: तो प्रकृति में यदि हम फूल बन के बने रहेंगे तो प्रकृति हमको साथ रखेगी, और फोड़ा बन जाएंगे तो प्रकृति हमको निकाल के फेंक देगी
2: जी।
3: जैसे होता है
2: जी,
3: कई सारी प्रजातियां है ना विलुप्त हो जाती, तो मनुष्य भी हो सकता है, इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है
2: जी। जी सर, बिल्कुल सर, जैसे कि आपने एक संकल्प लिया है कि 2030 तक है ना, ये जो आपने संकल्प रखा है उसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपने इसके लिए घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, तो इसके पीछे क्या आपके थॉट्स थे?
3: जो मेरी यात्रा है ये 11 साल की है, और मेरी दो बेटियां हैं शादीशुदा हूँ, मैं IIT का प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे में। पर मैंने इसलिए ऐसा संकल्प लिया क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है
2: जी,
3: इसको छोटे मोटे प्रयास से और 1-2 साल से तो हल नहीं किया जा सकता, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का कम से कम 1 दशक तो देना चाहिए। और 2020 में जब मैं इमेजिनेशन कर रहा था, कल्पना कर रहा था, तो फिर लगा 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी यूनाइटेड नेशन का, उसके साथ भी अलाइन होता, और 11 एक शुभ नंबर है, तो 11 साल डिसाइड किया। फिर चूंकि पार्ट और पार्सल में इसको करने से उतना लाभ नहीं होगा कि यू नो सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया, होली दिवाली घर चले गए, तो मुझे लगा कि ये भारत में हम कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि होती है
2: जी,
3: तो इसलिए ऐसा संकल्प लिया है। और मुझे उम्मीद है कि 11 साल की यात्रा में लाखों नहीं करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ों लोग इससे जुड़ेंगे और अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को एक जीने लायक धरती छोड़ के जा सकें
2: जी। कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ?
3: और मेरे साथ जुड़ने का बहुत सरल तरीका है, कुछ ना करना है, वही जुड़ने का तरीका है
2: जी।
3: बहुत कुछ ना करो, एनर्जी को बचाओ, मटेरियल बचाओ। हमारा एक वाह मंडे प्रोग्राम है, वाह रिंकल अच्छे हैं
2: जी।
3: तो मंडे को हमारा आह्वान है सभी से कि बिना प्रेस के कपड़े पहने
2: जी।
3: तो आप हमसे जुड़ गए, यदि आपने दिन में बिजली बचा ली, फालतू नहीं चलाई, तो आप हमसे जुड़ गए। यदि आपने संकल्प लिया कि जब तक सामान की जरूरत ना हो उसको उपयोग करेंगे, तो जुड़ गए। सामान यदि उपयोग कर ले लिया है तो उसके पूरा उसका दुरुपयोग करेंगे, यू नो आजकल यूज एंड थ्रो हो गया है
2: जी।
3: जब तक नहीं फेंक देंगे, कपड़ा फट गया है तो उसको सी के यूज करेंगे, तो अब हमसे जुड़ गए। और एक हमारा ट्रेनिंग है एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग
2: जी,
3: एनर्जी में साक्षरता। वो ट्रेनिंग फ्री है, ऑनलाइन है, 11 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप यदि कोई भी व्यक्ति सच में सस्टेनेबिलिटी को समझना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किसके कारण हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, कब ठीक करना चाहिए, ये सारे विषय को एक ट्रेनिंग बनाइए जो कि ऑनलाइन है, एनर्जी स्वराज पोर्टल
2: जी
3: पे मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एनर्जी लिटरेसी करिए। और ये एक ऐसी समस्या है कि आपके और मेरे करने से नहीं होगा
2: जी।
3: कार्बन डाइऑक्साइड मान लो मैंने कम कर लिया, आपने कम कर लिया उत्सर्जन, पड़ोसी ने कम नहीं किया, तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गया तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो आप उत्सर्जन करें, पड़ोसी करें, पड़ोसी देश करें, भुगतना सबको बराबर पड़ेगा
2: जी।
3: इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हम तो पहले सुधरें, पर साथ में समय खर्च करके, संसाधन खर्च करके लोगों को भी इससे जुड़ें
2: जी सर,
3: और एनर्जी स्वराज की तरफ चलें। तभी मुझे लगता है कि हम सबका उद्धार हो सकता है, वरना जिस स्थिति में हम जा रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कहते कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है, विलुप्त हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो 2-4, 3-4 हजार, 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी धरती पर, कहेगी एक जमाने में धरती पर इंसान हुआ करते
2: जी।
3: तो अभी नहीं सुधरे तो फिर मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं जीवन में इरिवर्सिबल होती है
2: जी,
3: है ना। जैसे रबर को थोड़ा खींचा छोड़ दिया तो वापस अपने पोजिशन में आ जाएगा, ज्यादा खींचा तो टूट जाएगा, वैसे ही धरती को थोड़ा आपने परेशान किया, स्ट्रेस किया तो रिस्टोर हो जाएगा, ज्यादा यदि उसको स्ट्रेस कर दिया तो फिर धरती का कुछ नहीं होगा, सिर्फ मनुष्य नहीं रहेंगे धरती पर, इतना ही होगा, और साथ में 10-20 हजार दूसरे प्रजातियों को भी लेकर डूबेंगे
2: जी। तो सर आपको क्या लग रहा है, अगर भारत का हर एक नागरिक ये प्रयास करे कि वो रीयूज करे, रिसाइकल करे, और एनर्जी का उपयोग तब तक ना करे जब तक आवश्यकता ना हो, तो कितने साल में फिर जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसे हम फिर रिकवर कर सकते हैं?
3: वेल, आई मीन रिकवर करना आसान तो नहीं होगा
2: जी,
3: इसमें कई सारे दशक लगेंगे
2: जी,
3: क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा चुका है उसको आप कैसे रिस्टोर करोगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। तो ये जो यू नो, इसलिए तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है
2: जी।
3: तो ये क्लाइमेट बहुत आसानी से हमने खराब कर दिया, जोड़ना बहुत कठिन होगा, और जितना ज़्यादा तोड़ेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा इसको रिस्टोर करना, रिकवर करना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सारे स्कूल को, कॉलेजेस को, पॉलिटिशियंस को, कि हम एक हफ्ते के लिए सब बंद कर दें
2: जी,
3: है ना। क्या करें, सिर्फ क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हुआ है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, उसको फिर समझे पहले, और समझेंगे तो ही सही इलाज कर पाएंगे। वरना आजकल देखते हैं दुनिया में लोग लगे हैं पेड़ लगाना है, प्लास्टिक बचाना है, अच्छी बात है, पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक बचाना चाहिए, पर क्या इससे हमारा पर्यावरण ठीक होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कैंसर का इलाज आप पैरासीटामोल लेके नहीं कर सकते, राइट
2: जी।

0: कैंसर के इलाज के लिए आपको कीमोथेरेपी करना पड़ती है, ठीक उसी तरह से पर्यावरण बचाने का इलाज आप पेड़ पौधे लगा के नहीं कर सकते या प्लास्टिक फ्री दुनिया बना के नहीं कर सकते। इसके लिए तो जो उसका रूट है, जो जड़ है, वो है कार्बन एमिशन, उसको ही कम करके जीरो करना पड़ेगा, तभी इसको हल कर पाएंगे।
1: तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपकी जो पुस्तक है ऊर्जा स्वराज और सत्य, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं।
0: नहीं, जो मैं 2019 में एक विश्व यात्रा पर गया था और मैंने देखा दुनिया भर के सारे देश, गरीब देश, अमीर देश, सबको आर्थिक प्रगति करना है, भले ही पर्यावरण कितना भी नुकसान हो जाए, और सबके ये जो पर्यावरण बिगड़ता है, नदियां खराब होती है, हवा खराब, उसके पीछे एनर्जी ही है
1: जी,
0: गलत एनर्जी
1: जी।
0: तो यदि हम एनर्जी को ठीक करेंगे तो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी, तो एनर्जी स्वराज उसका सॉल्यूशन का एक तरीका है। तो उसके जो विषय में कंसेप्ट हैं, जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो मैंने इस किताब में लिखी है, और वो उसका जो सबटाइटल है एनर्जी स्वराज, मेरे सोलर के साथ प्रयोग, जैसे गांधी जी की बुक थी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, तो सोलर का उपयोग कैसे होना चाहिए उसका प्रयोग वो भी जानना, सिर्फ सोलर लगाना सॉल्यूशन नहीं है, सोलर कैसे लगाना वो समझना जरूरी है, तभी जाके हम सोलर का उपयोग ठीक से कर पाएंगे, वरना इंसानों की फितरत है, हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी नहीं खड़ी करते
1: जी।
0: तो सोलर आज जिस तरह से यूज कर रहे हैं वैसे ही करते रहें तो आज के 20-30 साल बाद नई समस्या खड़ी हो जाएगी, रिसाइकलिंग का क्या होगा, डंप कहाँ फेंकेंगे, ये सब उसकी समस्या है। स्वराज में वो सब डिस्क्राइब किया कि क्या और कैसे होना चाहिए।
1: तो वो चंद मिनटों में बता सकते हैं कैसे करना चाहिए उपयोग सोलर?
0: वो तरीका, वो फॉर्मूला जो मैंने बताया कि AMG अवॉइड मिनिमाइज, पहले तो अवॉइड करो, दिन में लाइट मत चलाओ, है ना, एसी की मत चलाओ, बिल्डिंग को ठीक करो, एसी को ठीक करने के लिए, है ना, बिल्डिंग को हम ऐसा डिजाइन करें कि वो ठंडी रहे तो एसी की जरूरत ना पड़ेगी, तो उसको करो, तो आपने अवॉइड कर लिया। फिर मिनिमाइज करो, मतलब अच्छे उपकरण को उपयोग करो जो कम एनर्जी में चलते हैं, एलईडी लाइट हो गया, आजकल नए तरह के पंखे आ गए हैं जो आधी बिजली में चल जाते हैं, BLDC पंखे हो गए
1: जी।
0: फ्रिज का उपयोग करना नहीं चाहिए, करना पड़े तो छोटा करो, है ना, 200 लीटर का, 50 लीटर का, 500 लीटर का मत करो। एसी का उपयोग करना नहीं चाहिए, करना ही पड़े तो रूम को छोटा बनाओ ताकि कम एसी लगे, तो मिनिमाइज करो, फिर आखिरी में जनरेट करो। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमारी एनर्जी की जरूरत ही इतनी कम हो जाएगी कि ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लगेगा, और ज़्यादा नहीं लगेगा तो महंगा भी नहीं होगा, सरकार की सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी, पॉलिसी की जरूरत नहीं होगी, हर व्यक्ति अपने लेवल पर आत्मनिर्भर बन सकता है, एनर्जी में स्वराज ला सकता है।
1: जी सर, थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए, और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जाते जाते?
0: वेल, मैसेज तो यही है कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, और हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है, जाने अनजाने हर व्यक्ति को समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के आज बनना पड़ेगा
1: जी,
0: कल का भी समय नहीं है, आज ही, क्योंकि ये जो परिवर्तन इरिवर्सिबल है, एक बार जब उस पार चले गए, लक्ष्मण रेखा कूद गए, तो वापस नहीं आ सकते, फिर तो आपको सिर्फ भुगतना ही भुगतना है, इसलिए आज अभी से हम प्रयास करें, और फार्मूला एक ही है, AMG अवॉइड मिनिमाइज जनरेट। आप ये जो फार्मूला जीवन के हर उस मटेरियल या एनर्जी में लगा सकते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, तो देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, नए कपड़े खरीदने का मन हुआ देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, कहीं जाने का मन हुआ देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, अवॉइड नहीं कर सकते अच्छा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, है ना, कम में काम चला सकते हैं क्या, है ना, या फिर आखिरी में फिर करना पड़े तो जनरेट करो। ये नियम हर क्षेत्र में, कपड़ों में, पानी में, घर में, बिजली में, सब में लगाएं, तब जाके हम इसको सस्टेनेबल जीवन जी सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मध्य आने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों, यहीं पर रुकना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम आपको अच्छा ही लगा होगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आज हमारे मध्य डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर थे, तो यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऊर्जा स्वराज के बारे में जरूर जाने, और सर ने जो कहा AMG अवॉइड मिनिमाइज और जनरेट, जो उनके कही हुई बात है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। नमस्ते।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और हम लोग एक विषय लेकर बात करते हैं, तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट रिमांशु जी उपस्थित हैं, जो करियर काउंसलर है और DMIT जो टेस्ट है उसके भी एक्सपर्ट है। तो DMIT ये क्या है, इसके बारे में और करियर काउंसलिंग की जो विशेष बातें हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की तरफ से रिमांशु जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी रिमांशु जी, कैसे हैं आप? और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए हमें। तो ये DMIT टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे कांटेक्ट करते हैं?
1: तो सबसे पहले इसके लिए ना हमको 100 फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करना होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ।
1: फिर वो लैब में जाते हैं, 100 फिंगरप्रिंट स्कैन होके और उसका एनालिसिस होके, DMIT माना डर्मोटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, डर्मा माना स्किन, ग्लाइफिक्स माना प्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: 1788 से ये रिसर्च चल रहा है, 200 साल पुराना रिसर्च है।
0: अच्छा।
1: अमेरिका ने इसको पेटेंट करके रखा है ना। तो पूरा एनालिसिस होने के बाद 70 पेज की पूरी रिपोर्ट बनती है, उसमें अलग अलग पूरे कॉलम्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, राइट ब्रेन डोमिनेंट है, लर्निंग स्टाइल कैसा है, बच्चा सुन के सीखता है, देख के सीखता है, कर करके सीखता है ना, उसकी इच्छाएं कमियां, तो आगे जाके स्ट्रीम सिलेक्शन का पता चल जाता है किस में वो जा सकता है। अच्छा, उसका साइंस में जाएगा, मैथ्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चलता है कि बच्चे में जो इश्यूज आ रहे हैं, पढ़ने में जो दिक्कतें आ रही है, जैसे स्लो लर्नर है, पढ़ने में दिक्कत है, या क्रिएटिविटी हाई है, इमेजिनेशन पावर बहुत है, तो ऐसे बच्चों का क्या होता है ना, फोकस करने में दिक्कत होता है, बैठेंगे डे ड्रीमर्स जैसे हो जाते हैं, बैठे बैठे ख्वाब।

0: इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए सॉल्यूशन देता है साइकोलॉजिकल तरीके से.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: ये माइंड टेस्ट वो भी सॉल्यूशन देता है कि इसके ब्रेन को कैसे बैलेंस करें. समझ लो उसकी काइनेस्थेटिक एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बहुत हाई है बच्चे की, हाइपर एक्टिव है, तो उसको जितना हम थकाएंगे ना उसकी एनर्जी बैलेंस होगी. जैसे किसी का फाइन आर्ट्स हाथों के द्वारा की कलाकृतियां, फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छी होती है, तो बच्चा लिख लिख के बहुत अच्छा कर लेता है. किसी का वर्बल है तो बोल बोल के ऑडियो बना के याद कर ले. या क्रिएटिविटी हाई है ना तो पिक्चर्स के तौर पर या फिर एनिमेशन देख के है ना कहानी के तौर पर याद करना या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती है उस वैसा याद करना वो बहुत आसान हो जाता है.
1: जी जी जी जी.
0: तो बच्चों को फिर ऐसा डांट डांट के वो करके प्रेशर नहीं करना पड़ेगा. अगर उसकी पर्सनैलिटी समझ आ जाए हमको कि ऐसा लर्निंग स्टाइल है बहुत ईजी हो जाता है पढ़ाना.
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है DMIT टेस्ट करके बच्चों की जो इनबिल्ट टैलेंट है उस तरफ हम लोग उसको जो है मोटिवेट कर सकते हैं या उसको करियर काउंसलिंग में या करियर बनाने में बहुत आसान हो सकता है. तो ये तुरंत पता चल जाता है कि टाइम लगता है या फिर उस दो से तीन दिन लगता है. तो 70 पेज में फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं वैसे?
0: मल्टीपल इंटेलिजेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिकल कितने परसेंट है, क्रिएटिव कैसे हैं, फाइन आर्ट्स कैसा है.
1: जी जी.
0: जो ब्रेन में 10 पावर्स होती है लॉजिक क्रिएटिव फाइन आर्ट्स इमोशंस वो सारा हमारा परसेंटेज में सारा आ जाता है. फिर सेकंड है लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है या राइट ब्रेन डोमिनेंट है. ना लेफ्ट ब्रेन हाई होता है तो व्यक्ति लॉजिकल होता है, लिंग्विस्टिक हाई होता है, ग्लोबल लिंग्विस्टिक अभिव्यक्ति करने की क्षमता अच्छी होती है. और राइट ब्रेन हाई होता है तो आर्टिस्टिक होता है, क्रिएटिव होता है, तो इमोशनल पर्सनैलिटी होती है. उसके बाद पता चलता है कि हमारा पर्सनैलिटी टाइप कैसी है. चार टाइप की पर्सनैलिटीज होती है और वो मिक्स मैच भी होता है, डिपेंड करता है किस प्रकार की पर्सनैलिटी है. तो सबसे पहले अफेक्टिव होते हैं. अफेक्टिव जो लोग होते हैं ना वो लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, सब जल्दी हो जाते हैं, सोशलाइज जल्दी हो जाते हैं, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होती है. अफेक्टिव पर्सनैलिटी का क्या है ना कि उनको बंधनों में नहीं बांध सकते. उनको ओपन एनवायरनमेंट देना जरूरी है. एक खुला मैदान देंगे ना तो और अच्छा एक्सप्लोर करेंगे. ज्यादा बंदिश लगाएंगे, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है ना. अफेक्टिव वाले लोगों की बातों से थोड़ा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं. फिर सेकेंड है रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव ऐसे होते हैं उनको संकरण बहुत लगता है. उनको अमेरिका भेजे वो अमेरिकन हो जाएंगे, गांव में भेजे वो गांव जैसे हो जाएंगे. तो उन बच्चों को थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग चाहिए रहती है कि उसके दोस्त कैसे हैं एक प्रकार से, तो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं. तो रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी का डिसीजन मेकिंग थोड़ा पुअर होता है. मैंने करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, ये ना पहले पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर अपने दोस्तों पर, और फिर स्पाउस पर भी हो जाते हैं. मतलब थोड़ा डिसीजन मेकिंग पुअर होता है. रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी को ना मेंटरशिप की बहुत नीड रहती है. सही मेंटर गाइड मिल गया तो वो बहुत अच्छा कर लेंगे.
1: बिल्कुल.
0: मेंटर अगर बहुत प्रोडक्टिव है तो टॉपर है मेंटर, वो टॉपर बन जाएंगे. मेंटर आलसी है तो आलसी बन जाएंगे. और थर्ड होते हैं कॉग्निटिव. कॉग्निटिव ऐसे होते हैं कि जिद्दी होते हैं, मन की करते हैं, एकदम बोले डीड जैसे होते हैं. कुछ बच्चे होते हैं सुनेंगे ही नहीं, वो नहीं करेंगे ना, अपने मन की करते हैं, सुनते नहीं. सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ लर्नर, हाई विल पावर, डू नॉट गिव अप इजली, आसानी से गिव अप नहीं करते. तो ऐसे बच्चों को ना प्यार प्यार से ही समझा सकते हो. हर पर्सनैलिटी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, और एक उनको आप जितना डांटोगे, जितना प्रेशर करोगे ना, वो उतना आपको अपोज करेंगे. अब जितना प्यार प्यार से कर लोगे तो आपकी बात मान. कॉग्निटिव का क्या है, प्रैक्टिकल लर्नर होते हैं, कर करके सीखते हैं. सुनते नहीं है किसी की, वो ठोकर खाएंगे फिर याद आएगा कि बोला तो सही था उन्होंने. भीड़ भाड़ नहीं पसंद होती है, सॉलिट्यूड चाहिए होता कॉग्निटिव. फिर लास्ट है क्रिटिकल. क्रिटिकल वालों कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रहती है. समाज जिस लय से सोचता है ना हटके सोचते हैं, यूनिक होते हैं, जीनियस होते हैं, थोड़े रिबेलियस जैसे होते हैं. एग्जाम्पल जैसे एलन मस्क जी है हमारे, उन्होंने अपने बच्चे का नाम XUV मतलब उसमें रखा था, और रॉकेट का उनका है ना पूरा कंपनी है, और वो कभी पढ़े भी नहीं है रॉकेट साइंस. तो थोड़ा सा रिवर्स के ट्रेड्स हैं उनके. ये यूनिक होते होते हैं, जीनियस होते हैं, रिबेलियस थोड़े, और हट के एक क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की होती है। तो इससे क्या है, डीएमआईटी से सबसे पहले हमारा जन्मजात टैलेंट क्लियर हो जाता है, कौन क्या क्या टैलेंट्स है हमारे। जैसे रजनीकांत जी टिकट कंडक्टर थे, एक्टिंग स्कूल कभी नहीं गए ना, लता मंगेशकर जी बचपन से गाना गा रही है, तो सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, तो जन्मजात क्या क्या एबिलिटीज है हमारे अंदर वो स्पष्ट हो जाता है। वो चीजें आप भी कनेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ नया नहीं आता है, जैसे जैसे जो आता है डीएमआईटी में इस काउंसलिंग में, वो खुद फिर पेरेंट्स स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, जो जो बताओ उनको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो बोले हाँ बिल्कुल, ये तो थोड़े थोड़े बोर हो जाता है इस प्रकार से। फिर सेकेंड है हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड तक आ जाती है, सुपरियोरिटी है, इंफ्यूरिटी है, ग्रजेस होल्ड करता है ना, कि संग का रंग लग जाता है। सेकेंड पर्सनैलिटी की भी काउंसलिंग होती है साथ में। फिर थर्ड है जो हमारे ब्रेन में अलग अलग पावर्स है, लॉजिकल, क्रिएटिव, फाइन आर्ट्स, इमोशंस, है ना, ये कुछ हाई होती है, कुछ लो होती है, कुछ एवरेज होती है, सबके ब्रेन में ऐसे होता है। तो जो हाई नोट्स पर पावर होती है ना, उसको चैनलाइज करना जरूरी है, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपका शारीरिक बल बहुत है, अब आप उसको थकाओगे नहीं, एक दिशा नहीं दोगे ना, तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, है ना। तो वो रेमेडी होती है कि ब्रेन को बैलेंस करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं, जिसके थ्रू जो हाई नोट्स की पावर है वो रिलीज हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल रिमांशु जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया डीएमआईटी के बारे में, और निश्चित तौर पे जब इतना बड़ा जो 70 पेज का रिपोर्ट आती है, तो उसमें हर चीज़ बच्चे की जो है आ जाती है, और आपने अलग अलग जो बच्चों के इमोशंस हैं उसको लेकर आपने बात की है, तो निश्चित तौर पे जब हम लोग अपने रिपोर्ट को लेकर मम्मी पापा से बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें कनेक्ट भी करते होंगे, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे की जो एबिलिटी ज़्यादा है, इनबिल्ड एबिलिटी, उस तरफ हम उसको अगर फिर आगे भेजते हैं तो वो उसमें एक्सेल कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आइए साथियों, आप भी थोड़ा सोचिए डीएमआईटी के बारे में, और आपको अगर नज़दीक में कहीं आपके लिए ये इस तरह का जो ऑप्शन है, करियर काउंसलर है, और आपको डीएमआईटी टेस्ट करना है, तो ज़रूर करके बच्चे का जो है करियर अच्छा बना सकते हैं। आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। करियर काउंसलिंग की बातें हो रही हैं, रिमांशु जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग DMIT के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप काफ़ी समय से काउंसलिंग कर रहे हैं तो कुछ यूनिक एक्सपीरियंस तो आपने भी किया होगा कुछ बच्चों के, और कुछ स्टोरीज आपके पास होंगे तो मैं चाहूँगा एक दो स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
1: अच्छा, स्कूल क्लाइंट्स हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि एक प्रेजेंटेशन हम देते हैं अलग-अलग स्कूल्स में, किस तरीके से ब्रेन और फिंगरप्रिंट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि करीब 1000 प्लस DMIT कर लिया है, कि जैसे ही मैं स्कूल में जाता हूँ प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो आउटर कोर पर्सनैलिटी ऐप से देख के हम ऑन स्टेज बता देते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, सबसे पहले हम प्रिंसिपल और डायरेक्टर का करते हैं DMIT, उसके बाद फिर
0: सबका का
1: बच्चों का। तो वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बाकी जैसे एक एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको, एक बच्चा था वो उसके इमोशंस बहुत हाई थे, इस प्रकार से बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी, और वो हॉस्टल में रहता था, स्कूल का था बच्चा हॉस्टल पर रहता था, तो वो मदर फादर से सिर्फ 20 मिनट बात करने मिलता था हफ्ते में एक दिन। तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता था माँ बाप से, और उसको क्या चाहिए, कोई शेयरिंग के लिए भी चाहिए। तो वहाँ मैंने चीज़ ये देखी कि जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, तो कम उम्र में हॉस्टल में डालने से बच्चों को वो इशू आता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि डेफिनेटली माँ बाप की एक नीड होती है, एक दोस्त की नीड होती है, अपनी चीज़ें शेयर करें, तो कुछ टीचर से भी वो शेयर करता था, तो जैसे उसने मेरे से शेयर किया सारा किया ना, उसको बहुत रिलीफ मिला था, और वो चाहता था कि मैं किस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करूँ। एक्चुअली इमोशनल पर्सनैलिटी की ना नीड होती है, हाउ वो लोग रहते हैं ना, समझ लो उनको कोई कंधा चाहिए रोने के लिए, और लॉजिकल का इससे अपोजिट होता है। लॉजिकल के हर चीज़ में बुरा भाग, प्रॉफिट लॉस की समझ, तर्क वितर्क।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है बच्चों का काउंसलिंग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। एक ये भी एक तरह का स्टडी है, रिसर्च ही है कहेंगे हम लोग, जिसमें हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। अच्छा रिमांशु जी, मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग आज के समय में बहुत सारे मल्टीपल जो टास्क हैं हमारे बीच में हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमारे पास है, और पहले अगर समझे हम लोग एक 40-50 साल की बात करें हम लोग, तो उस समय इतने स्ट्रीम्स नहीं थे, आज जितने स्ट्रीम्स हैं, तो उस समय का और अभी का थोड़ा क्या कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस बता सकते हैं आप?
1: अलग अलग फील्ड्स में, और अभी एजुकेशन भी एक्सप्लोर हो गया है, और साथ ही साथ पहले जमाने में जब ऑफलाइन पूरी स्टडीज होती थी,
0: जी जी,
1: ऑफलाइन स्टडीज में बहुत कम ऑप्शंस होते थे हमारे पास। सबसे बड़ा बच्चे का चैलेंज होता था कि दिल्ली जाना है, मुंबई जहाँ भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके रहना है, और अभी इतने सारे कोर्सेस हो गए हैं कि बाहर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है ऐसे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: कि आपको इंडिया में बैठ के, घर में बैठ के, आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया USA वहाँ की डिग्री आप यहाँ ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो सबसे बड़ा तो ये फायदा हो गया है कि आज के समय में ऑनलाइन होने से बहुत है ना जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हो, MBA मतलब अलग अलग डिग्रीज भी अब ऑनलाइन बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो पहले बहुत कम ऑप्शन थे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी कम थी, अभी पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई, और साथ में AI टेक अलग अलग ग्रोथ भी बहुत हो गया है। आज के समय में नीड भी बदल गई है, कि जिस प्रकार से पहले इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था, एप्स डेवलप नहीं होते थे ना, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल को आई बहुत कम ही समय हुआ, 7-8 अराउंड।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है हमारी नीड्स बदल गई है। आज के समय में हमारा मोबाइल ही सारा काम कर देता है, चाहे कैमरा का, बैंक का, बैंक भी हमारा मोबाइल ही है, कैमरा हमारा मोबाइल है, मैप है हमारे पास, उसमें टॉर्च है, टॉर्च की भी नीड खत्म हो गई, कॉल करने के लिए तो है ही, इसके अलावा मैसेजिंग के लिए पहले फेसबुक, ऑरकुट तो बंद ही हो गया,
0: ऑरकुट बंद ही हो गया,
1: ऑरकुट चलता था, ऑरकुट था,
0: और भी बहुत सारी चीजें थी,
1: अलग अलग जो थे,
0: स्काइप भी बंद ही हो गया, अभी कोई यूज नहीं करता स्काइप, वीडियो कॉल जैसे ही आ गया। पहले स्काइप से ही लोग जो है देश विदेश में बात करते थे।
1: तो अभी तो जूम का जमाना है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस प्रकार से पहले क्या होता था ना कि खुद जाना पड़ता था, होटल जाना, कहीं जाना, सारा। अभी जैसे ऑनलाइन डिलीवरी का एप्स का बहुत जमाना हो गया कि मोबाइल के थ्रू ना कोई भी ग्रोसरीज मंगा ले, फूड मंगा ले। उस प्रकार से अभी हमारी नीड बदल गई है। अभी क्या है कि हर व्यक्ति को शॉर्ट टर्म में चाहिए सारा। इतनी लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है ना, सब लोग दौड़ भाग ही रहे हैं आज के समय में। हर प्रकार से हर चीज शॉर्ट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए सर,
0: इंस्टेंट चाहिए।
1: उस हिसाब से फिर टेक्नोलॉजी का ही एक जमाना है, हम ये बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: खासकर AI ने आके इस पे एक अलग ही दुनिया बना दी आज के समय में।
0: मैं चाहूँगा कि एक हद जो आपने DMIT टेस्ट किया हो, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, यूनिक थोड़ा सा हटके हो। जी, उनके माता पिता कुछ और बनाना चाहते थे, बच्चा कुछ और सोचता था। हाँ,
1: एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस है।
0: जी,
1: इंदौर के। तो उनके फादर डेंटल डॉक्टर हैं, तो फादर का ये था कि मुझे इनको डॉक्टर ही बनाना है। रहता एक डॉक्टर के प्रेस्टीज की, ये भी डॉक्टर बने, उस प्रकार से उस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट था उनमें। लेकिन जैसे ही DMIT टेस्ट हुआ, तो उसके बाद उनको पूरा कन्विंस किया कि जो चीजें हैं अगर आप बना भी दोगे ना, तो बच्चा सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएगा। आप ही को फिर वो रेजिस्ट करेगा चीजों के लिए, या बेमन से जा रहे आप डांटोगे तो भी उतना रिजल्ट भी नहीं आएगा, साथ में बच्चे और आपका कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होगा। आज के समय में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यही होता है पेरेंट्स के साथ। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, नहीं नहीं ये बनाना, ये बनाना है। बच्चे की कुछ अलग एबिलिटीज है, उसकी अलग चीजें, तो उसमें उसकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी थी। MBA HR का बहुत अच्छा उनका पॉसिबिलिटी थी कि वो MBA HR कर ले, MBA के फील्ड में चलेगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो पेरेंट्स को तो हम सबसे पहले पर्सनैलिटी बताते हैं, डायरेक्ट करियर में नहीं जाते। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इमोशनल इश्यूज क्या है ना, किस तरीके से वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है चीजों के लिए, पूरा पहले कन्विंस कर लेते हैं एक घंटे में पूरा। उसकी काउंसलिंग कर देते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, अपने ऊपर कैसे काम करना है, अपनी वीकनेसेस पर काम करना है। फिर बताते हैं कि ये करियर चूज करना है तो क्यों करना है, कि ये एबिलिटीज है। जैसे MBA HR बोला, तो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की गुल्ले मिलने की शक्ति बहुत अच्छी है, लोगों से गुल्ले मिलने की, लोगों के इमोशंस को समझने की, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है ना। और उसका जो माइंड था वो लॉजिक थोड़ा सा एवरेज था। कि डॉक्टर के माइंड के लिए जो जो चाहिए ना, उससे ज्यादा उसका

0: मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी थी
1: hmm.
0: तो उस प्रकार से हमने पेरेंट्स को पूरा कन्विंस किया कि देखो डॉक्टर के लिए चाहिए लॉजिक बहुत जरूरी है, टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, चीजों को याद कर सके
1: hmm.
0: और बच्चा तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है ना, उस प्रकार का उसका माइंड सेट है, बिजनेस माइंड सेट है थोड़ा सा. तो उस प्रकार से पूरा कन्विंस किया, तब पेरेंट्स भी कन्विंस हुए कि ठीक है ना, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो, और इसकी चीजें ही अलग है तो क्यों हम वो चीजें करें. तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया था और फिर वो उसमें मैनेजमेंट की लाइन में.
1: चलिए, बहुत अच्छा स्टोरी आपने बताया. आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें, और आशा करूँगा कि जब हम लोग एक्सपर्ट्स से मिलते हैं, काउंसलर से मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, एक राइट डिसीजन लेने में हमें बहुत हेल्प मिलता है. आजकल भारत में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी अभी थोड़ा जागरूक हुए हैं, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि बच्चों को करियर काउंसलिंग करते ही नहीं है.
0: बैंक में ही जाना
1: सीधा.
0: अगर एमआर की फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में है तो वो बोले
1: डॉक्टर में ही जाना,
0: डॉक्टर ही बनाओ, इंजीनियर है तो वो करो. चैलेंज हो जाता है बच्चे के लिए भी.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कई बार ऐसा भी होता है कुछ चीज़ें जो हैं पारिवारिक माहौल से बच्चे सीख लेते हैं, चलिए वो ठीक है, लेकिन जब बच्चा का डिसीजन लेने की बात आती है तो वहाँ पर क्योंकि इतना प्यार मिला रहता है तो बच्चा खुल के बोल भी नहीं पाता. बचपन से सबका
0: डिसीजन बच्चे को ही लेने, नहीं तो क्या होता है ना, आप कोटा में देखेंगे ना कितने बच्चे सुसाइड करते हैं.
1: जी जी जी जी जी जी.
0: अभी क्या किया है, कोटा में जो फैन आते हैं ना, स्प्रिंग वाले फैन लगाए.
1: अच्छा, हाँ हाँ हाँ.
0: कोई अगर किया भी ना तो स्प्रिंग से नीचे आ जाएगा.
1: अच्छा अच्छा अच्छा.
0: वो तो आउटर कोर पर काम कर रहे हो ना.
1: हाँ.
0: और दूसरा ना, बच्चे को ना पेरेंट्स को अपना ईगो सेटिस्फाइड करने का एक टूल नहीं बनाना चाहिए.
1: हाँ हाँ
0: हाँ. ना कि पेरेंट्स प्रेशर करते हैं कि भैया तू आईआईटी की तैयारी कर, ये कर, यही करना है तेरे को,
1: हाँ.
0: तो मेरा समाज में बदनामी हो जाएगी, है ना.
1: जी, इस तरह की भी कई बातें.
0: डेफिनेटली वो भी एक पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेस, अपनी लाइफ है. तो उस प्रकार के उसको जीने दो.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए पेरेंट्स और चाइल्ड का. एक तरफा रहेगा वो ज्वाइन कर भी लेगा, घुटेगा तो फिर ना. अभी देखो कितने सुसाइड के रेट्स भी बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के प्रेशर के कारण. उनको यही नहीं पता कि लाइफ इतनी बड़ी है. वो अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं कि चलो आईआईटी अटेम्प्ट नहीं उनका फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है वो शेफ बन जाए, इंटीरियर डिजाइनर बन जाए, और हो सकता है आईआईटी से अच्छा कमा ले.
1: बिल्कुल.
0: आज के समय में इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूट्यूब है, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: जो अपनी चीजों को आप शो कर सकते हो हर प्रकार से.
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया. आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को और हमारे सभी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि करियर काउंसलिंग कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, ये हम आप ही समझ रहे हैं. तो निश्चित तौर पे ऐसा भी कहा जाता है, हो सकता है कि पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हो, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले ज़माने में लोग जो है उनकी नीड के हिसाब से चीज़ें बनती थी. आज हमारा जो है हमारी नीड के अनुसार चीज़ें बन रही हैं और उस तरह के जो है चीज़ें उपलब्ध भी है. तो जो चीज़ें मार्केट में आ रहे हैं मना कहीं ना कहीं आपकी नीड की ज़रूरत के अनुसार वो इन्वेंट हुए हैं. तो उन चीज़ों को समझिए और उसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं. आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन. इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जीवन कौशल. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें कर रहे हैं रिमांशु जी से जो करियर काउंसलर है, बहुत ही सुंदर बातें बता रहे हैं आपको। और DMIT ये जो है इसका विस्तार से आपने आज जानकारी लिया, तो निश्चित तौर पे आपको इस तरह का जो टेस्ट है ज़रूर करवाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका इनबिल्ड जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाए और उसके लिए उसको करियर खोजने में या करियर बनाने में बहुत आसानी हो। रिमांशु जी फिर से एक बार स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि कुछ जैसे कि आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए जब आप पहली बार DMIT से जुड़े।
1: तो सबसे पहले DMIT टेस्ट से जुड़ा, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल काउंसलिंग करता था।
0: हाँ,
1: साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी थी नॉर्मल बेसिस पर, हस्बैंड वाइफ अलग अलग अपने इश्यूज बता रहे थे। तो DMIT का कोर्स करने का मेरा ये पर्पस था कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता चल जाए। जनरल क्या होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं ना, जो असेसमेंट होता है करियर काउंसलिंग के लिए, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चनियर बेस्ड रहता है। उसकी भी एक प्रकार से लिमिटेशंस है, लेकिन DMIT टेस्ट से ना सब कुछ आ जाता है क्लियरली। सबसे पहले मेरा ही DMIT टेस्ट हुआ एक्चुअली।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। मुझे मेरे बारे में सब पता चल गया, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, मेरे इनबॉर्न टैलेंट्स क्या है, इमोशनल इश्यूज क्या है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर कि ये करियर है आप चूज कर लो, क्या करियर चूज करना है, क्यों करना है, प्लस साथ में ये आपकी कमियां है पर्सनैलिटी में, इन पर आप काम करो तो उस करियर में सक्सेस भी मिलेगी फिर आपको। तो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से पहचान पाता है इससे, खुद के बारे में सारी चीजें। और करियर काउंसलिंग तो है ही DMIT टेस्ट का, इट इज गुड फॉर पेरेंटिंग, कपल काउंसलिंग भी होती है इसके, DMIT टेस्ट के कपल काउंसलिंग भी होती है, और साथ में सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत यूज आते हैं खुद के बारे में जानने के लिए। कि चाहे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, गुस्सा आता है। 4 साल की छोटी बच्ची क्लाइंट है और 63 ओल्ड बुजुर्ग हमारे क्लाइंट है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन खुद के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, व्यक्तित्व विकास एक प्रकार से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जीवन के अंदर हमें जो है इनबिल्ड भी कुछ चीज़ें हमारी होती हैं, कुछ इंट्यूशन हमें आती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: डेफिनेटली आप खुद देखिए कि हम हर चीज ट्रेनिंग स्कूल में नहीं सीखते। देखिए बचपन से कोई है जो अच्छा गाना गा रहा है या फिर अच्छा खाना बना रहा है, बहुत सारी आप देखेंगे फीमेल्स को बचपन से ही बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, चाहे मेहंदी, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ड्राइंग। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम जा के स्कूल में सीखते हैं या उसी का ज्वाइन करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि बचपन से ही किसी का, एक छोटा बच्चा है वो गीता कंठस्थ है उसको सारा उसका, लेकिन गीता के श्लोक पाठ, तो ये सारे इनबॉर्न टैलेंट्स हैं। उस इनबॉर्न टैलेंट के ही दम पे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आप देखोगे कि बड़े बड़े जो बिलियनियर्स भी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, शायद 10th फेल भी हैं। मेरे फादर खुद शायद 11th 12th ही किया है उन्होंने, तो उस प्रकार की एजुकेशन नहीं है, पर अभी उनका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है पूरा, गवर्नमेंट सप्लाई का काम है। वैसे बहुत से लोग हैं जो बिजनेस एंटरप्रोनर है, बड़े बड़े लेवल पर है। एक अंकल है हमारे उड़ीसा में, तो उनकी हॉस्पिटल है और उनका खुद का रियल स्टेट का बिजनेस है रायपुर में, बहुत बड़ा रियल स्टेट का उन्होंने सोसाइटी पूरी खड़ा की है। और अभी हॉस्पिटल का एक ऐप बना रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ हाँ, डॉक रेला करके एक ऐप है, उस पर काम कर रहे हैं वो। तो बेंगलोर में उन्होंने ऑफिस खोला है, तो जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया IT इंजीनियर्स के सामने सबके, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो IT इंजीनियर बोल रहे थे सर आपने कहाँ से MBA किया हुआ है? वो बोले यार मैं तो 10th फेल हूँ।
0: चक्कर आ गया होगा फिर।
1: तो वो चीज है इनबोर्न टैलेंट वाली, कि हाँ किस टाइप का आपके अंदर ट्रेड्स है ना, डेफिनेटली वर्क करता है। बाहर की स्टडी तो एक ट्रेनिंग जरूरी है उनके हिसाब से जो अपन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है DMIT के बारे में बता रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या, युवा साथी हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे?
1: सबसे पहली चीज़ सर कि आज जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से मोबाइल पर बहुत डिपेंडेंट हो गए, मोबाइल सोशल मीडिया
0: तो
1: एक गलत छवि में चले गए, उसी को ही प्रेशर मारना शुरू कर दिया है ना। सबसे पहले तो खुद पर उनको टाइम देना चाहिए कि आजकल एक प्रकार से लैपटॉप में ही पढ़ना, टैब में पढ़ाई करना, हार्ड कॉपी में पढ़ो, उसका एक अलग रिसर्च है पूरा, वो ब्रेन में अलग प्रकार के वेव्स जनरेट होते हैं। या आप अगर हार्ड कॉपी से पढ़ोगे ना, खासकर राइटिंग लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है बुक से, और खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताए। अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया न्यू प्रकार से पूरा दिन उसी में लगे रहना, वेब सीरीज देखना, फेसबुक, मतलब उसमें फंसता जा रहा है यूथ, और सोशलाइजेशन बहुत कम होता जा रहा है। पहले आप देखते थे ना कि सब मिलते थे चौल चपाटी में रहता था, आज सब ऐसा लगता है सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और सबसे ज्यादा ये यूथ है। तो अगर यूथ मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा ना तो उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: फिर पढ़ाई करेगा तो याद नहीं रहेगा उनको फिर। तो स्पोर्ट्स में टाइम देना चाहिए, अच्छी चीजों में वो प्रोडक्टिविटी का काम करेंगे ना, अलग पर्सनैलिटी बनेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए अभी आजकल यूथ में टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गई, थोड़ी सी अनसक्सेस मिलती है, पास नहीं हुए तो उसमें ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, और खासकर स्लीपिंग इश्यूज भी बहुत है आजकल यूथ को, देरी से सोना, देरी से उठना, मेहनत ना करना, ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, इतने कम उम्र में अलग अलग बीमारियां। तो सबसे ज्यादा सफर मुझे लगता है यूथ का चैलेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो 90s 80s वाले भी है ना, उनको भी उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, सुबह जल्दी उठना, जो भी उनको संस्कार डले हुए हैं ना, प्राणायाम करना, वॉक करना, वो कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। खासकर यूथ देरी से सोना और ऑनलाइन ऑर्डर करना ना, वो सब जंक फूड्स वगैरह बहुत ज्यादा, मेहनत कम हो रही है। और
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, इनको फिर कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: सबसे बेहतरीन है मेडिटेशन सीखे ब्रह्म कुमारी में,
0: जी जी जी,
1: 7 डे का कोर्स करे ब्रह्म कुमारी का,
0: और
1: जो ब्रह्म कुमारी लाइफस्टाइल बताते हैं कि आप जल्दी उठो सुबह ना, अपने लिए टाइम दो ना, मेडिटेशन करो, रात में जल्दी सो, सुबह 4 बजे उठने का, और जैसे रात में 10 बजे सो जाने का, साथ ही साथ जैसे ब्रह्म कुमारी की स्टडीज है ना, कि आपको व्यर्थ नहीं देखना है, चाहे न्यूज का हो गया, सात्विक सुनना पढ़ना, और साथ ही साथ भोजन की भी जो धारणाएं हैं, भोजन का भी अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव है, तो ये पूरी साइंटिफिक नॉलेज है ब्रह्म कुमारी की। डेफिनेटली अगर मेडिटेशन सीखेंगे ब्रह्म कुमारी का है ना, तो यूथ इन सारी चीजों को अपना पाएंगे। मेडिटेशन करने से उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी चीजों के लिए, तो जरूर वो एक्सपीरियंस करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर वो खुद देखेंगे पढ़ाई के रिलेटेड है, चाहे उनको जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है वो सब कम नजर आता आएगा, रिलेशनशिप अच्छे होते आएंगे, ये सारा पॉजिटिव साइंस उनको दिखेंगे मेडिटेशन से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है, और मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सोसाइटी बनाने के लिए काम आता है, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान और ज्ञान तो हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना के लेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। रिमांशु जी, चलिए मैं जाते जाते एक ही छोटा सा सवाल, आपका ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो ज़रूर बताइए।
1: अच्छा, नीचे चीजें थी लाइफ में। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया ना कि दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो अशांत था मैं। और बस ऐसे एक दिन बैठा था और देखते देखते शिवानी दीदी का टीवी में शो आ रहा था।
0: जी जी जी।
1: तो मैंने शो देखा ना, तो शिवानी दीदी संस्कार के बारे में बोल रही थी, थॉट्स के बारे में बोल रही थी, अपने आप पर कैसे काम करो। पहले मैंने बैस देखा तो मुझे लगा सब भक्ति वाला है, मंदिर जाता था मैं, मैंने कोई विशेष ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा मंदिर में। भले वो क्रियाकर्म करते हैं, जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो रोज मंदिर जाना और सारा था, लेकिन संस्कार में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा था। क्रियाकर्म बहुत अच्छा है जो सारा करते हैं, पर एक लेवल पर जो एंगर है हमारा, चाहे स्ट्रेस है, नींद है, वो चीजें नहीं उस प्रकार से उतने लेवल पर नहीं हो रही थी। तो जैसे ही शिवानी दीदी का मैंने देखा और सुना तो मेरे थॉट्स बदलना शुरू हो गए। जो प्रवचन थे एक प्रकार से लेक्चर था पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, और मैंने बार बार सुना, उसका नोट्स भी बनाया मैंने, बोलती थी अच्छे से, कि मेरे लिए दवाई हो गई थी वो, मैं कुछ खोल ही रहा था ऐसा कि ना जो गुस्सा चिड़चिड़ा कुछ तो हुआ सारे सॉल्यूशन इसका। और जैसे ही फिर मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया, पहले दो साल तो करीब शिवानी दीदी के रेगुलर सुना, रोज लिखा, नोट्स बनाया। और फिर उन्होंने एक दिन बोला कि आपको अगर आगे जाना है जर्नी में तो आपको सेंटर पर जाके मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। जैसे ही मैं सेंटर पर मेडिटेशन सीखने गया तो फर्स्ट डे जैसे बीके सिस्टर ने कोर्स कराया सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, सोल के बारे में, तो शायद ये परमात्मा की ही एक प्रकार से डिवाइन एक्सपीरियंस था कि सुबह 3:30-4 बजे ना मैंने अपने आप को देखा कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और पंखे के सीलिंग के पास हूँ, मच्छरदानी लग गया है और नीचे मेरा शरीर है। वो शुरू के दिन एकदम वंडरफुल, एक तो एक होता थ्योरी पार्ट हाँ है, ये थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में, लेकिन वो जो डिवाइन एक प्रकार से एक्सपीरियंस था ना वो लाइफ चेंजिंग था शुरुआत का। फिर ऐसे ही सेकेंड दिन मैंने देखा, जैसे पीके सिस्टर ने मुझे परमात्मा का कोर्स कराया, सेकेंड दिन भी सुबह 3:30-4 बजे ट्रांस जैसा था, ज्योति बिंदु लाइट थी, आओ मीठे बच्चे, और वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था ना कि एकदम आंसू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था जन्म जन्म से जिसको ढूंढ रहे थे। और शुरू के दिन भगवान के प्यार प्यार में बहुत बीते, तो वो जो शुरू का जो डिवाइन एक्सपीरियंस था ना वो लाइफ को टर्निंग पॉइंट था सारा, कि ये जो ज्ञान है वो सिर्फ थ्योरिटिकल नहीं है कहीं ना कहीं, और कोई डिवाइन एनर्जी है ना, परमात्मा कहीं ना कहीं खुद इस चीज को हमको दे रहे हैं। उसके बाद से फिर मैंने सारी चीजें छोड़ दी, सुबह जल्दी उठना है ना, दोस्तों का संग छोड़ दिया, रेगुलर ना ब्रह्म कुमारी की क्लासेस करना, ये सारी चीजें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक जमाना ऐसा था कि मैं खुद दोस्तों पर डिपेंडेंट था, कि जो बॉयज भी दोस्त है, गर्ल्स या सिबलिंग्स मेरे हैं, मैं खुद एकदम सब स्ट्रेस वाली एंग्जाइटी वाले फेज में ही था, कुछ चाहिए, तनाव, गुस्सा, ये सारी चीजें। और शायद परमात्मा की कृपा है कि ना पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने ना, और दूसरा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया काउंसलिंग साइकोलॉजी में, करियर काउंसलिंग का कोर्स किया, सर्टिफाइड DMIT काउंसलर हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग। तो परमात्मा की कृपा है कि फिर इस फील्ड में आने का मौका मिला, आज के समय में लोगों को गाइड करने का मौका मिल रहा है काउंसलिंग के थ्रू भी, और डिजिटल डिटॉक्स का भी सेवा करते हैं स्कूल्स और उसमें प्रोजेक्ट्स करते हैं, मोबाइल एडिक्शन के कैंप्स करते हैं, तो ईश्वरीय सेवा का भी मौका मिला। वो 180 डिग्री
0: चलिए रिमांशु जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना लाइफ का, और आशा करूँगा हमारे युवा साथियों को भी कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी से मोटिवेशन मिल ही रहा होगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने देखा कि रिमांशु जी अपने लाइफ में कैसे 180 डिग्री चेंज हो गया उनका लाइफ, जब वो अपने एक तलाश थी उनकी रास्ते में कि भाई मेरा जीवन कैसे बदले, और उस खोज ने उनको जो है एक वीडियो के माध्यम से शिवानी दीदी के क्लासेस उपलब्ध हो गए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको सीखा और प्रैक्टिस किया, और आज उनका लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री चेंज है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अगर मानते हैं कि आपको कोई नया रास्ता चाहिए और आपके लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए एक ताकत चाहिए, एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है, एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चेंज लाने के लिए आपको पॉजिटिव ओरा के लिए, पॉजिटिव

एनर्जी के लिए किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जहाँ पर मेडिटेशन रेगुलर होता है वहाँ बैठने से आपका ओरा चेंज होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव ताकत मिलेगा जैसे रिमांशु जी को मिला, और फिर आपके जीवन में बदलाव करना आपको बहुत आसान रहेगा। बिना एनर्जी के आप जितना भी बदलाव करेंगे वो टेम्परेरी रहता है और बार बार स्किप होता है, ड्रॉप होता है। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपको मेडिटेशन सेंटर से कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आपकी जो आदतों में वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आप स्ट्रेंथली अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। और आशा करूँगा आज हमने जो काउंसलिंग की बातें की, DMIT की बातें की, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अगर अपने बच्चों को लेकर या आप खुद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। DMIT एक टेस्ट है, इसके माध्यम से या DMIT काउंसलर्स होते हैं उनके ज़रिए आपका जो है ये प्रॉब्लम जीरो हो जाएगा। आप अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करूँगा आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आई ओपनर रहा होगा जो करियर के बारे में कन्फ्यूज़ है। तो आप सभी कंफ्यूज मत हो जाइए, क्लियर रहें, क्लिस्टर क्लियर होकर अपने फोकस करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह एक नए एपिसोड, एक नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया। ओम शांति। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार को। गुलजार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम जुनून में।
1: थैंक यू सो मच बुलाने
0: तो
1: के
0: जी,
1: लिए।
0: और गुलजार की पहचान हम बाद में बताएंगे कि गुलजार कहाँ से आती हैं और कैसे अपने आसपास के समाज और अपने देश को कैसे गुलजार कर रही हैं अपने काम से, और उनके जीवन की क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या सीखा है और क्या समझा है समाज के बारे में, और कैसी दुनिया, सुंदर दुनिया वो देखना चाहती हैं, और उनका जुनून क्या है। तो देखिए ना, आज हम जुनून में ले आए हैं एक जाने पहचाने चेहरे को, एक युवा चेहरे को। तो गुलजार, हम बात करते हैं। गुलजार, थोड़ा बताइए ना अपने जीवन की अपब्रिंगिंग, आप कहाँ से आते हैं, किस समाज से आते हैं, आपकी क्या शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे।
1: थैंक यू सो मच। मेरा नाम गुलजार, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और मैं जिस समाज की महिला हूँ, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँगी कि जिस समाज से आती हूँ, मैं मुस्लिम तबके से आती हूँ, मुस्लिम तबके की महिला हूँ मैं।
0: जी
1: और मैं जैसा समाज चाहती हूँ कि इक्वलिटी वाला, एक बराबरी, जिस तरह से जीने का, सबको हक हो। जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तो मैं अपना राइट्स, मेरे क्या हक है, मैं नहीं जानती थी।
0: जी
1: मुझे केवल ये लगता था कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, इवन जो हो रहा है मेरे साथ वो ठीक है। लेकिन मेरी शुरुआत ऐसे हुई जीवन की कि मेरा फर्स्ट में तो पहले मेरा बाल विवाह हुआ, उसके कारण तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन
0: जी
1: मैंने सोचा पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन जीवन में मौका नहीं मिला। फिर बाल विवाह होने के बाद किसी ऐसी समस्या के चलते हम लोग अलग हो गए हस्बैंड से, और अलग होने के बाद मैंने अपने जीवन की शुरुआत वहीं से की। तो मेरी पढ़ाई भी वहीं से स्टार्ट हुई, मेरा 10th भी नहीं था, लेकिन मेरे को किसी टीचर ने मोटिवेट किया, बेटा जीवन में ऐसे मत रहो, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, 2 साल डिप्रेशन में रही, मेरा एक छोटा बच्चा भी था तब। तो मैंने सोचा अपने लिए ना सही, मैं एक माँ हूँ तो मुझे तो स्ट्रगल करना ही है। मुझे वो सोचती कि भाई मेरे लिए ना सही, क्योंकि मेरा क्या हक है मैं अपने बारे में जानती नहीं थी। मैंने शुरुआत की ऐसे में, मैं एक एनजीओ सेक्टर में आई। एनजीओ सेक्टर में आने के बाद मेरा स्ट्रगल रुका नहीं था, क्योंकि जीवन में काफी चीजों से जूझ के मैं निकली थी। मैंने सोचा अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं
0: ठहरते
1: पता
0: हैं
1: कि
0: गुलजार, ठहरते हैं। आप बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, आप एनजीओ पे आ गए सीधे। हम एनजीओ पे आएंगे, आपके करियर पे आएंगे, आपके करियर की शुरुआत पे बात करेंगे, लेकिन हमें बताइए कि ये बाल विवाह किन परिस्थितियों में हुआ, और अजमेर के समाज में या अजमेर जिस अरावली में आप रहते हैं वहां पर बाल विवाह कितना आम है।
1: बाल विवाह अगर देखा जाए, जिस समाज से आती हूँ मैं, जैसे कि पहले ही होता था कि लड़कियों के एक, वो कहते हैं ना, एक खाने में सभी लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए,
0: वो तो आज भी
1: और
0: होता है गुलजार।
1: बिल्कुल होता है। लेकिन मेरा जो रहा था कि फैमिली में हम लोग 4 बहनें थे, तो बड़ी वाली सिस्टर के साथ सोचा कि भाई इनकी भी कर देना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि बेटियों को जितना जल्दी ब्याह दो उतना अच्छा है,
0: जी
1: एक सेंटेंस है कि बेटियों को अपने ठिकाने लगा दो, बेटियां मतलब बेटियां कांच की तरह होती हैं, तो वाला सेंटेंस सब फॉलो करते हैं। मेरी फैमिली ने भी वही फॉलो किया, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पापा ज्यादा शिक्षित नहीं थे, वो थर्ड स्टैंडर्ड पुल पढ़े थे, तो और जीवन को शायद उन्होंने उस तरह से देखा भी नहीं था।
0: जी
1: तो जो समाज और जो हमारे जो पंचायत के लोग होते हैं, उन्होंने कहा, वही चीजों को फॉलो किया। इसके चलते मेरा भी, मेरी बड़ी दीदी के साथ मेरी भी शादी हो गई। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि कम एज में शादी का क्या मायना है हम लोग नहीं समझ पाते। वही चीज मेरे साथ भी हुआ कि उसके चलते मेरा तलाक होना था, तो
0: जी
1: मैं इन चीजों से जूझ रही थी। तो इसके चलते पापा ने सोचा कि भाई समाज में जैसे लोग कहते हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, पंचायत है, जो कहते हैं उनको फॉलो करना है, वो जो कहते
0: जी
1: हैं भाई बेटियां कांच की तरह होती है, तो पापा ने भी वही चीज को फॉलो किया। और पापा को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन
0: जी
1: वहां से जब मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मेरा स्ट्रगल के एक तो दहेज को लेके, कि दहेज को लेके भी टॉर्चर किया कि भाई दहेज अच्छा देना चाहिए, क्योंकि फैमिली में जो था वो पापा ने, अब 4 बहनें हैं हम, तो पापा ने जो उचित लगा उस समय पापा ने दिया, क्योंकि कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। लेकिन
0: जी
1: शादी के बाद डिमांड होने लगी कि भाई मिलना चाहिए था, वो उस टाइम नहीं
0: जी
1: की, लेकिन बाद में करने लगे कि अच्छा दहेज नहीं
0: जी
1: दिया, अगर अच्छा दहेज देते तो अच्छा होता। तो इसके चलते फिर, और फिर भी था कि एक कम एज में शादी के मेच्योर नहीं होते रिश्तों को लेके, तो
0: जी
1: फिर लास्ट में एंड ये हुआ कि 3-4 साल में चीजों से जूझती रही मैं। कैदी जो होता है ना, कैदी समान थी मेरी जिंदगी, कि अगर फैमिली से भी बात करूंगी तो स्पीकर पे फोन होगा, तो मैं अपनी इच्छाओं के बारे में या अपनी तकलीफ के बारे में परिवार में शेयर नहीं कर पाती। तो जिस तरह से मेरे साथ जो दहेज को लेके जो मेरे साथ
0: जी
1: प्रताड़ना हुई, मैं उन
0: जी
1: चीजों को नहीं बता पाती थी। लेकिन बहुत टाइम बाद ये हुआ मेरे को कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ करना ही था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तो अपनी फैमिली में आ गई, उस टाइम मैंने शेयर किया अपनी मम्मी से, और फिर चुप हो गए, ठीक है कोई नहीं। फिर वो बेबी होने के बाद

0: वापस गई तो मैं बच्चे का स्ट्रगल नहीं ये कर सकती थी, क्योंकि मेरे को बच्चे को भी, मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ पे इतना पूरे दिन, एक महिला हूँ पूरे दिन घर को संभालती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे का अच्छा जीवन नहीं है। और फिर मुझे एक चीज फील हुई, मैंने एक महिला थी जो घरेलू काम करती, मैंने उसको देखा, वो दूसरों के घर में जाके काम करती है, उसको पैसा भी मिलता है और उसको एक सम्मान भी मिलता है, वो अपने घर लौटती है तो पैसे से लेके। और तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पूरा दिन पूरी रात इतना काम करती हूँ, ना तो मेरे पास पगार है ना मेरी वो वैल्यू है। तो ये चीज ने मुझे झंझोड़ के रखा अंदर से कि भाई वो कामगार महिला कितनी वैल्यू है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो इस घर की बहू हूं ना, इसलिए नहीं है। तो वो चीज मेरे माइंड में, और बच्चे वाला था जो मेरे दिमाग में घूमा के मुझे अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए मुझे निकलना है। तो मैंने एक टाइम पे आके डिसीजन लिया, हालांकि मेरे डिसीजन के सब खिलाफ थे। सबसे पहले तो फैमिली, पापा ने
1: आपने
0: ऐसा
1: समाज में
0: सोचा,
1: बगावत कर दी गुलजार। हाँ,
0: समाज में
1: आप
0: भी होती
1: समाज से
0: है
1: भिड़ लिए।
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि समाज से झगड़ लो, परिवार से झगड़ो तो परिवार अगर निकाल दे तो वो बड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है। जब मैं घर आई तो मैंने बोला कि मैं अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मैं, मेरे बच्चा हो गया था, तो मैंने बोला अब मैं नहीं जाऊंगी पापा, मेरा जाने का नहीं है। तो पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था।
1: ओहो,
0: जो बेटी हमारी नहीं सुन रही, हम उसको घर में नहीं रखेंगे। उस टाइम मैं 10th भी नहीं थी, तो मैं उतना कैपेबल नहीं थी, लेकिन मैं कुछ जगह कुछ अरबी वगैरह पढ़ाती थी, तो कुछ अर्निंग सोर्स होता था मुझे। उस टाइम 400 रुपये अर्निंग होता था मुझे। तो मैंने एक रूम लिया, वो रूम पापा ने निकाल दिया था, तो मेरे को रूम लेना था, मैंने जाके रूम लिया, बच्चा भी साथ था। वो 300 रुपये मैंने रूम के दिए, वहां पे मेरे पास बिछाने को चटाई भी नहीं थी। बहुत वो टाइम जो मेरा था कि ना चटाई है ना मटकी है पानी की, फिर मैंने किसी पड़ोसी से मटकी ली, और मम्मी ने मुझे उस टाइम में थोड़ा सपोर्ट किया, मम्मी ने आके मुझे चटाई वगैरह घर में ला के दी। इवन मैंने वहां से स्टार्ट किया। फिर सब जो समाज के लोग, जो आसपास के लोग थे ना, वो पापा को कहने लगे आपकी बेटी आपसे अलग रहती है, इसका रीजन क्या है? तो पापा उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा। और फिर पापा ने बुलाया, पापा ने बोला उसको बुला लो भाई, मेरी तो बदनामी कर दी उस लड़की ने, वो घर से जाने को तैयार है मगर मेरी बात मानने को तैयार नहीं।
1: जी, इसे कहते हैं श्रोताओं जुनून। ये है जुनून। जी श्रोताओं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे साथ हैं गुलजार और साझा कर रही है अपनी जीवन की कहानी, जो संघर्ष से भरी हुई है और साहस से भरी हुई है। जी गुलजार, ओवर टू यू।
0: थैंक यू। और फिर मैंने डिसीजन ले लिया, फिर मुझे किसी टीचर ने मोटिवेट किया, बोले बेटा तुम तो 10th भी नहीं हो लेकिन मैं चाहती हूँ तुम 10th करो। मैंने कहा मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला बेटा तुमको मैं लगाती हूँ। तो वहां पे एक टिफिन सेंटर चलता था मदरसे के पास, अब मैं टिफिन सेंटर में लगी, मुझे मात्र 850 रुपये मुझे मिलते थे। तो मैंने सोचा कि कम से कम 1600 रुपये फीस थी उस टाइम ओपन बोर्ड की, मुझे जिन्होंने टीचर ने सजेस्ट किया था। मैंने बोला मैडम मेरे पैसे तो चलो टिफिन सेंटर से जो आएंगे, खाना बना रही हूँ मैं, वहां से आ जाएंगे, और मेरे को किताबों के लिए चाहिए, मुझे किताबें आप कहीं से कर दीजिए ना। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये दिए। जब उन्होंने 300 रुपये दिए, वो 300 रुपये मेरे 3 लाख के बराबर थे, ऐसा मानो, क्योंकि मेरे पास एक बुक्स नहीं थी पढ़ने की, मेरा एग्जाम का मैं फॉर्म तो भर देती अपने पैसे से। फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला, मैंने कहा तुम भी करो, तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है। तो मैंने उसके भी पैसों का अरेंजमेंट किया, फिर हम लोग ऐसे करके हम लोगों ने, दोनों ने फॉर्म भरा, मैंने भी भरा उसका भी भरवाया, मैंने कहा तू भी पढ़। फिर हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम लोग पापा सो जाते, पापा को नहीं बताया, और टिफिन सेंटर का जो काम करने जाती थी मैं चोरी से जाती थी, और पढ़ाई भी रात को चोरी से करती थी, अगर पापा को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ के क्या करेंगी, उनके एक सेंटेंस जो थे ना माइंड में रिविजन, एकदम रिविजन होते थे। तो मैंने ये सोचा अभी उनको नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो भाई डांटेंगे। फिर हमारा एग्जाम्स का टाइम आया, फिर हम लोग गए, और कई बार तो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारे पास 20 रुपये भी नहीं होते थे, हम लोग पैदल निकल जाते थे। तो मैंने वो टाइम चीजों को फोकस किया, और हालांकि वो टाइम पे मेरा एक बैग भी लगा, एक सब्जेक्ट्स में बैग भी लगा। फिर मैंने सोचा जीवन में यार मैं इतनी सारी लड़ाई से नहीं हार मानी हूँ खुद को, तो मुझे लगता है इस बैग से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बहुत सारी चीजों को झगड़ के आगे बढ़ी हूँ, मुझे लगता है जिंदगी में मुझे इस बैग से भी झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आपको हारने के बाद ही जीत का मजा आता है। तो मैंने कहा अब हमको हारना नहीं है, अगर हार भी गए तो उसका बुरा नहीं मानना, आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री मेरे लिए कोई फर्क नहीं। फिर मेरे को फिर पैसे करने थे, तो उस टाइम टिफिन सेंटर अचानक से बंद हुआ, तो मुझे एक भैया थे समोसे बनाने वाले, मेरे को बोलते थे 20 रुपीज के मेरे रोज समोसे बना, और ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा, तो मैं समोसे बना के देती थी, तो वो मेरे को पैसे देते थे। मैं खुश थी कि मेरी पढ़ाई सप्लीमेंट्री में जो बैग लगाई मैंने उसके पैसे निकल जाएंगे। तो इस तरह से मेरा 10th क्लियर हुआ। 10th क्लियर होने के बाद में मैं एक एनजीओ सेक्टर में, मैं एज अ हेल्प के रूप में लगी वहां पे, और वहां पे मुझे पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट देखना था। पर एनजीओ सेक्टर में होता क्या है मुझे ये नहीं पता था। एक आंटी मिली थी मुझे, वो आंटी मुझे वहां ले गई थी कि बेटा तुम्हें यहाँ चाय बनानी है और खाली चाय बनानी है, साफ सफाई करने वाली आएगी वहां देखना और ऑफिस का जो भी मैनेजमेंट है वो देखना, तुम थोड़ा तो पढ़े हो। फिर वहां गई ना, जो एंट्री मिली सबसे मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी कि वहां पे पूछा गया कि आप 10th हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मैं 10th हूँ। फिर मेरे माइंड में ख्याल आया अगर मैं 10th नहीं करती तो शायद आज मुझे यहाँ जगह भी नहीं मिलती, तो मेरे लिए एक शॉक
1: जी
0: लेवल था वो। तो मैंने कहा
1: जी
0: मैंने बहुत अच्छा किया, तो मैंने कहा मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए, वो 10th पढ़
1: इट
0: के
1: वाज अ
0: मैंने क्यों
1: पॉजिटिव
0: रुकना।
1: शॉक,
0: यस यस
1: खुशी देने वाला शॉक जी।
0: खुशी, मैं बोली, मैंने मम्मी को बोला आके पहले तो, और फिर पापा को भी शेयर किया। मैंने कहा पापा मैंने 10th कर ली और मैं पास हो गई। पापा बोले बहुत अच्छा किया कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझसे एक पैसे ना मांगना, तुमको एक पैसे नहीं मिलेंगे हमसे। मैंने कहा पापा खाली आप इतनी परमिशन दे दो मैं बाहर निकल जाऊं, मेरे लिए उतना काफी है, बाकी फतेह मैं खुद कर लूंगी जंग में। तो
1: जी
0: फिर मैंने बोला पापा मैं ना एक जॉब मिली है मुझे वहां, है ना 8,000 देने को बोला है। तो पापा ने कहा ठीक है, पर है ना मैं नहीं चाहता हूँ बेटा बाहर जाए। मैंने कहा पापा मुझे करना पड़ेगा, एक बात बताओ आप खाना तो खिला दोगे, बाकी जरूरतें तो मेरी है जो मुझे पूरी करनी है ना, बच्चा भी
1: जी
0: है। तो पापा ने बोला भाई देख ले मैं तो नहीं बोलूंगा। फिर पापा को कैसे तैसे मनाया, पापा की सोच इतनी जल्दी बदली नहीं, पापा को तैसे तैसे मना के मैं निकली। फिर मैं वहां जॉब करने लगी, वहां मैनेजमेंट देखती थी, वहाँ बहुत सारी चीजें। लेकिन कहते हैं ना जिंदगी में संघर्ष जो होता है ना वो आपको पूरे जीवन में, एक तो लर्निंग और एक संघर्ष,
1: जी
0: पूरे जीवन जब तक जीवित हो आपको, आप सीखते रहोगे और
1: जी जी
0: संघर्ष आपके जीवन में छोटे मोटे आते रहेंगे। वहां गई, वहां ज्वाइन करने के बाद में 1 साल हुआ था, और 1 साल बाद मुझे पता चला जिस पोस्ट पे मैं थी उस पोस्ट को कई लोग अप्लाई करना चाहते थे और मतलब नहीं हुआ, तो वो कैसे ना कैसे एफर्ट्स लगा रहे थे क्योंकि वहीं के लोग थे। लेकिन उस टाइम मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो मेरे लिए बहुत शॉक लेवल था, और मैं बहुत रोई भी उस टाइम। और सबसे बड़ा शॉक लेवल ये था, वहां पे क्या हुआ, वहां पे नींबू की शिकंजी बनाते थे। कुछ नींबू की शिकंजी बनाने के बाद है ना नींबू मैंने सुखा दिए, किसी ने बोला सुखा दो आप ये नींबू काम आएंगे, तो मैंने सुखाने के बाद में तो नींबू पे फफूंदी वगैरह लग गई तो वो काले काले हो गए। तो किसी ने बोला वहां पे कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो मैंने देखी थी, वो सोचते थे कि अगर ये चीजें मैंने जो देखी है किसी और को बताऊंगी तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा भाई, कैसे ना कैसे निकालना है, तो उन्होंने
1: जी
0: क्या किया मुझ पे इल्जाम लगाया कि तुमने जादू किया। मैंने बोला मैडम जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया मैंने उनके ऊपर भी नहीं किया, और आप पढ़े लिखे हो के ऐसी बात मानते हो, तो मैं तो इतना पढ़ी हुई भी
1: श्रोताओं,
0: नहीं हूँ जितना आपको ज्ञान है।
1: समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है गुलजार, उसकी बात कर रहे हैं। और रेडियो मधुबन का मिशन है या जुनून है कि हमें समाज से अंधविश्वास हटाना है, जो कि देश के संविधान की भी बात है। तो गुलजार जो है संविधान की बात कर रही है। ध्यान से सुनते और सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए माउंट आबू की वादियों से। जी गुलजार, ओवर टू यू। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है।
0: थैंक यू। उसके बाद में मैंने बोला आप इतने पढ़े लिखे हो आप इस चीज को मानते हो, तो मैंने उनको बोला मेरे को जो थोड़ा समझ में आया, मैंने कहा आप इसको नींबू को लेप में भेजो, अगर मैं गुनाहगार हूं तो बिल्कुल मुझे सजा मिलना लाजमी है इस पे। तो
1: जी
0: उन्होंने बोला लैब नहीं भेजेंगे हम, तो तुम्हें पुलिस में भिजवाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल भिजवाओ, पुलिस भी तो जांच करेगी ना। तो कुल मिला के मुझे निकालना जो बहाना था, आपस में उन्होंने इतने सारे लोग थे आपस में क्या, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी पोस्ट पे थी, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात जो था मुझे अपने हक के बारे में और संविधान के बारे में नहीं पता था, दूसरा पोस्ट जो होता है पोस्ट के बारे में मुझे नहीं पता था। सबसे बड़ी आहत करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मुझे पोस्ट का नहीं पता था, अपने अधिकार के बारे में नहीं पता था। एनजीओ सेक्टर में भी जो महिलाओं के लिए या उनके ह्यूमन राइट्स के लिए जो गाइडलाइन होती है मैं उन चीजों को भी नहीं जानती थी।
1: जी
0: तो मैं उस टाइम मैं रोई, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं बहुत ज्यादा रोई, मैंने जाते जाते लेकिन कुछ बात कहते गई, क्योंकि वहां मैं एक ये था ना कि मैं एक मुस्लिम हूँ तो मुझे उस वजह से भी वो लोग ऐसा करते थे। तो मैं जाते जाते मैंने वहां के जो सीनियर थी मैंने उनको शेयर किया, मैंने कहा मुझे निकालने का रीजन आप बिल्कुल बेशक निकाल देते, लेकिन मुझे आप निकालते तो इज्जत के साथ निकालते, मुझ पर तरह से जो लगाए गए हैं ब्लेम वो बहुत सरासर गलत है, लेकिन मैं जा रही हूँ कोई बात नहीं। मैं चली गई, मैंने मन को खुद को बहुत समझाया और मैंने खुद को मोटिवेट किया कि अच्छा होने से पहले बुरा होना जरूरी है लाइफ में, उसके बिना हमको ना नॉलेज होगी और ना ही हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ मेरे को एक बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे और अच्छी सैलरी पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फील्ड कोऑर्डिनेटर की,
1: जी
0: और उसमें मैं घुमंतू समुदाय और मुस्लिम राइट्स पे काम करने लगी, और वहां पे
1: जी
0: मैं एट्रोसिटी पे भी काम करने लगी, जो मतलब एट्रोसिटी होती थी मैं उस पे भी समझने लगी। तो
1: जी
0: मेरे खुशी के पल थे, फिर मैंने बुरे चीजों को ऐसे सोच के भुला दिया, मैंने कहा आज अच्छा हुआ है तो शायद बुरा होना भी जरूरी था मेरे साथ, तो मुझे समझ आया। लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को इन छोटी छोटी चीजों से हार नहीं माननी चाहिए, अभी तो मेरा बहुत सारा जीवन है। उस फील्ड लेवल में जो मेरी एक जो नॉलेज बढ़ी कि मैं अभी अगर स्टार्ट करके अगर हार मान जाती ना, आगे नहीं बढ़ती, वो एक लाइन याद आ रही है, अभी तो ये अंगड़ाई आगे जीवन की ओर लड़ाई है।
1: जी
0: तो वो सेंटेंस ने मेरे दिमाग को और मेरे को बिल्कुल ऐसा एकदम बिल्कुल चलना है, हार नहीं माननी है। तो
1: जी
0: मैं कंटिन्यू करती गई उस प्रोजेक्ट में, और मैंने उस प्रोजेक्ट में क्राइम से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इवन मेरा 12th कंप्लीट हो गया उसके साथ साथ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन भी चल रहा था मेरा इस तरह से, और मैं काम भी कर रही थी।
1: और श्रोता
0: और
1: हूँ,
0: फिर
1: आपको बता दूं कि अब गुलजार मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, राइट?
0: थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल राइट।
1: तो देखिए, एक 10वीं नहीं पूरी कर पाने की जद्दोजहद के बीच और आज आप मास्टर्स हैं सोशल वर्क के और समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं, और जो दलित राइट से लेकर महिलाओं के अधिकार और धर्म विशेष के लोगों के साथ जो कभी भेदभाव यदि होता है, और घुमंतू समाज के व्यक्तियों के साथ, जो हमारे देश में घुमंतू समाज है जो बड़ी संख्या में इधर से उधर यहाँ से वहां, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके जीवन को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस क्षेत्र में गुलजार का अनुभव है और विशेषज्ञता है। श्रोताओं, हम किसी धर्म विशेष या किसी जाति के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में हम उससे सहमत नहीं है, हम उससे बिल्कुल भी हमारा कोई विश्वास नहीं है ऐसी किसी बातचीत पर, परंतु अगर ये गुलजार के व्यक्तिगत अनुभव है और गुलजार इसको रखने के लिए आजाद है, तो गुलजार मुझे ये बताइए कि इस पूरी बातचीत के बाद और इस पूरे संघर्ष के बाद आपसे हम जो बात करना चाहते हैं, जब मैं अजमेर की पोस्टिंग के दौरान हम साथ में थे, हम काम कर रहे थे।
0: जैसे कि कोविड के बारे में बता रही थी, जस्ट कोविड आया और मैं एक फेलोशिप को ज्वाइन की थी, और जैसे कि मैं ऑलरेडी करके आई थी तो मेरे को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता था। और जिस तरह से हम लोग एक जो मन में जो एहसास होता है ह्यूमन इंसानियत के प्रति, वो चीज़ें मैं काफ़ी सीख गई थी, और मुझे खुद के हक के साथ दूसरों के हक के बारे में भी नॉलेज हुई थी। उसके बाद जैसे ही कोविड आया तो हमारी जो परमिशन थी, जैसे कि मेरी मुलाकात शरद त्रिपाठी सर से हुई थी, नेहरू युवा केंद्र के जो थे, उनसे मिलने के बाद
1: हाँ, आज मैं
0: मैंने
1: यहाँ पर आरजे भी हूँ। जी
0: इवन मैंने नहीं सोचा था कि आप
1: जी
0: इतने बड़ी पोस्ट पे एक अधिकारी, हम लोगों से इतना मतलब डीपली, एक होता है ना नॉर्मली एक फ्रेंड जो टाइप से होते हैं उस तरह से बिल्कुल एक नॉर्मली वे में बात करना। और हमारी जो परमिशन सर की वजह से हुई, और कुछ चीजें कभी भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सर को कॉल करते थे और सर से शेयरिंग करते थे कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। और हमारे को कोविड में मैं जो देख रही थी के लोग है ना भाग रहे हैं इधर से उधर, अफरा तफरी मची है, लोगों को खाने को तक नहीं है। तो उस टाइम में हम लोगों को जैसे कि जिला प्रशासन की तरफ से तो हम लोग थे कि जिला प्रशासन में जो हम लोगों को लगाया गया था कि जहाँ पे जरूरत है खाने की दवाइयों की, हम लोग उनको दे सकें। और हमें गाड़ियां वगैरह भी करवाई थी जिला प्रशासन ने, तो हम लोग लगे हुए थे एनजीओ सेक्टर में। पर सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि हमें अपनी सुरक्षा करनी, तो सबसे ज्यादा जो चिंतित थे ना फैमिली के लोग थे।
1: जी
0: मैंने देखा है मेरा खुद का तो, और मेरे पापा का भी जो बदलाव देखा है ना कोविड के बाद ही
1: जी
0: देखा है मैंने। जैसे जूझ रहे थे लोग, तो लोग मुझे एनजीओ सेक्टर से, लोगों ने मुझे काफी मदद भी की थी कि जिस तरह से हम एनजीओ सेक्टर से कनेक्ट थे, तो उन्होंने हमें लाखों का सामान दिलवाया था, मेरे आसपास के लोग और जहाँ जरूरतमंद प्रवासी थे उनके लिए भी। और काफी जैसे कि एक्शनेट में भी कुछ थे जिनसे मैं कनेक्ट थी एक प्रोग्राम के जरिए, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की। और प्रवासी जो आए थे उनको जाने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, उनके पास पैसा नहीं था, तो
1: जी
0: एक्शनेट ने मुझसे कनेक्ट हुए होके, और उन्होंने एक्शनेट ने बोला आप प्रवासियों के नंबर लो, प्रवासियों के
1: जी
0: नंबर लोगे तो हम आपको अकाउंट नंबर लोगे तो हम उनके अकाउंट में अमाउंट डलाते हैं ताकि उनको जाने में दिक्कत ना हो। तो
1: जी
0: प्रवासियों की भी मदद की और आसपास के लोगों की मदद की, और काफी ऐसे लोग थे, हम तो देख रहे थे जहां से जिसके लिए मदद होती है हम लोग को उनके लिए आगे जाना है, उनकी मदद करनी है। और इंसान
1: जी
0: के साथ साथ हम लोग जानवरों के लिए, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, इवन अदर जो हैं, हम उनके लिए भी सोच रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो भी हमारा हिस्सा है और हमारे समाज का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है, तो हम लोग उनके लिए भी मदद करने में। और जो हृदय होता है ना, इतना हृदय कोमल हो गया कि क्या ही बोलूं, मैं तो किसी की तकलीफ नहीं देख सकती थी वो टाइम में। मुझे लग रहा था आधी रात को भी बाहर रहना है डेफिनेटली।
1: जी
0: मम्मी मेरे को पूछते थे फोन करके कब आ रहे हो। कई बार रमजान में मैंने रोजा बाहर खोला है रोड पे, मैंने बोला मम्मी मैं बाहर आई हूँ और खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ये टाइम खत्म हो गया तो ना खाना मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि काफी एनजीओ सेक्टर जो थे पका हुआ खाना, और काफी लोग दानदाता थे जो पका हुआ भोजन शाम को वितरित करने के लिए हमको देते थे
1: जी
0: भूखियों को।
1: जी
0: तो वो मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैं बोलती थी मम्मी को, मम्मी मैं एक भूखी रहूं, मेरे पीछे हजारों भूखे रहेंगे, चलेगा मेरे को क्या, बोलो। तो मम्मी ने बोला नहीं जाओ तुम। मम्मी ने परमिशन दे दी, पापा ने परमिशन दे दी, आधी रात को घर पे लौट रहे हैं, उनको बस चिंता रहती थी, फोन वगैरह करते थे। लेकिन जो लोगों को हमने देखा है ना कि उनको खाने से मदद करें, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि आसपास जो कोविड को पॉजिटिव होने के बाद उनसे लेन देन बन, उनकी मदद बन, तो हम लोग उनके घर तक भी पहुंच रहे थे, यहाँ तक कि क्लिनिक पे जाके उनके लिए दवाइयाँ जो होती है उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे
1: जी
0: थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जिला प्रशासन में जब मैं आपके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, तो हम लोग भी जो आप लोगों के साथ मिलके कर सकते थे वो हम लोग भी कर रहे थे, बिकॉज आप
0: हाँ
1: हमारे वॉलंटियर्स थे, आप हमारे हैंड्स थे, है ना।
0: नहीं, आपका सपोर्ट बहुत था, इवन हम लोग जहाँ भी अटकते थे आप लोगों से सपोर्ट मांगते थे, और डेफिनेटली
1: जी
0: 100% उसी टाइम हम लोग को सपोर्ट मिलता था। ये प्राउड मोमेंट था। और सबसे बड़ी बात जब हमारे लिए था कि हम एक पहाड़ी पे चढ़े जो
1: जी
0: रूठी रानी महल के नाम से फेमस है, और दो बंदियां
1: जी
0: 40 बंदों के बीच में, वो बड़ा एक था, तो मेरे साथ
1: जी
0: जो थी मैंने उनको बोला, इनको सबको मैं जानती हूँ, हालांकि जानती मैं नहीं थी, मैं सिर्फ खाना देने गई थी उनको। मैंने
1: जी
0: बोला अगर
1: जी
0: मैं कह दूंगी मैं नहीं जानती हूँ तो ये भी थोड़ा घबरा जाएंगे, हमें तो उनको खाना पहुंचाना था। तो हम खाना पहुंचाने एक पहाड़ी पे चढ़े थे, क्योंकि उसका टाइम था, काफी लोग आए थे, तो जैसे वो हुआ कोविड का बंद हुआ तो लोग इधर से उधर हो गए थे, तो सब लोग डरे हुए भी थे, तो कि हमारे साथ क्या होगा। तो वो एक बहुत दुख का विषय भी था कि हम लोग एज ए ह्यूमन, और कई बार तो अपने भी अपनों को छोड़ के रास्ते पे जा रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ टाइम जब खुलता था मार्केट जो गाने लगती थी, कई बार
1: जी
0: ऐसा होता था कि उनकी दुकानें बंद करा दी जाती थी, या तो कुछ ऐसी चीजें होती थी कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है तो वो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनके साथ उनका सामान भी फेंक दिया जाता था। तो वो मुझे बहुत रुला देता था उस टाइम कि इनका सामान फेंक दिया है बेचारे, कैसे तो कैसे अरेंज करके आए, तो वो चीजें भी आहत कर रही थी। लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ सिस्टम का कुछ ऐसा रीजन था, मैं
1: वो
0: कुछ
1: हमारे
0: चीजों
1: प्रशासनिक
0: को।
1: निर्णय थे, वो हमें कई बार लेने होते थे, सख्ती करनी पड़ती थी, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि हम सख्ती करें। सरकार कभी नहीं चाहती कि आवाम को परेशान किया जाए, परंतु वो सब हम लोगों ने आपके सहयोग से उन चीजों को समझा, और हम लोगों ने जितना हम बेहतर कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया, और सरकार ने भी बसेस लगाई, हम लोगों ने
0: बिल्कुल
1: कैंप लगाए, चप्पल की व्यवस्था की, और सूखा राशन तो हम लोग नियमित रूप से आप लोगों के माध्यम से पहुंचा ही रहे थे। तो
0: बिल्कुल।
1: ये सारी चीजें हो रही थी। जी जी गुलजार, ओवर टू
0: और
1: यू।
0: ये भी हो रहा था, माध्यम सबसे बड़ा था कि आप लोगों का जो सपोर्ट था, अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, तो ये समझते हम कि कई बार हम लोग आम जनता जो होते हैं सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, हम लोग इतने अपने इसमें हो जाते हैं मगन कि हमें जो सिस्टम होता है उसको, हम सिस्टम को नहीं देख पाते। तो हमको उसको सिस्टम को भी समझना पड़ेगा कि भाई सिस्टम क्या है। कई बार हम सिस्टम को ना समझ के गलतियां करते हैं और फिर हमारे साथ चीजें गलत होती हैं, तो हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं, ये एक अपने समझ का फेर है।
1: जी।
0: और बाकी उसके बाद में कोविड के जस्ट बाद में जब हम आपके साथ ही थे, आपके साथ भी गए थे, जब हमें सम्मानित किया, और आप हमारे लिए आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे हमेशा, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा। इवन जब हमको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया, उसके साथ जहां पे भी सम्मानित किया, इवन प्राउड मोमेंट था, हर मोमेंट को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। आज मैं उसी चीज में चली गई हूँ, एक अगर देखे तो पीछे चली गई हूँ, उन चीजों को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सब उतरे थे और आप हमारे साथ थे जब हमें सम्मानित किया जा रहा था हर जगह, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। और मेरे पापा सबको देख के इंस्पायर हो रहे थे मेरे लिए कि और है। और सबसे बड़ी बात, पापा की सोच जो है ना कोविड के बाद बदली। आज मेरे घर में फ्रीडम, आजाद हूं मैं, और संविधान को पढ़ा, संविधान को समझा, बिकॉज इक्वलिटी राइट्स, सभी को एक बराबरी जीने का हक है, और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही समाज हो, वो सोच पापा की बदली। तो पापा को उस टाइम जो चीज की नीड थी, मैंने पापा को बाहर नहीं निकलने दिया, तो पापा को सब लोग कहते थे अरे ये तो तुम्हारे बेटे को भी फेल कर दिया इसने, तो देखो। तो पापा को जब लोग कहते थे ना, और पापा जब देखते थे मेरे अखबारों में नाम आता था, पापा भी प्राउड फील करते थे। फिर पापा ने एक जो मेरी वैल्यू जो थी ना डाउन, जो पापा की सोच थी कि भाई लड़कियां और लड़कों में अंतर होता है, वो सोच बदली। आज मेरे पापा इक्वलिटी वाला राइट से, कि मेरे बिना डिसीजन के तो पापा भी कुछ नहीं डिसीजन लेते हैं। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं, सबसे पहली बात होती है हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं, अपने परिवार में रह के लड़ना एक टिपिकल सिचुएशन होता है, तो मैं उन चीजों से लड़ के निकली हूँ, बिकॉज मेरा MA कम्प्लीट हो गया है। इवन प्राउड फील होता है कि मैं अपने जीवन को इस तरह से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक पहुंची हूँ। और इसके साथ साथ फिर मुझे काफी फेलोशिप का मौका मिला, अभी लास्ट में प्रामल फेलोशिप में थी, वहां पे मैंने काफी चीजें सीखी प्रामल फेलोशिप में, और प्रामल सर
1: जी
0: से भी, अरे
1: श्रोताओं,
0: प्रामल
1: आपको
0: सर
1: बता
0: से।
1: दूं, फेलोशिप जो है वो समाज कार्य के क्षेत्र में एक सामान्य बात है, जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं वो अपने एक मिशन के साथ

0: में उनको एक फेलोशिप दी जाती है, जो एक देश की प्रेस्टिजियस फेलोशिप पीरामल फेलोशिप गुलजार के पास है, और गुलजार उसके माध्यम से अपने इस काम को जारी रख पा रही हैं। और काम क्या है, जुनून है। जुनून है जैसे कोविड में किसी को भूखा नहीं रहने देना है, जुनून है कि कोई अपने शहर को छोड़ के जा रहा है, कोई मजदूर अपने अपने देश को अपने स्टेट को जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको वो सुरक्षित अपने अपने गांव पहुंच सके। प्रवासी जो है वो जुनून है, जुनून है। किसी की आंखों में अगर आंसू है तो उसके आंसू पोछे जाए और उसकी जो मदद संभव है वो की जाए। ये एज अ वॉलेंटियर, एज अ स्वयं सेवक करना समाज सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है। तो गुलजार हमारे लिए एक रोल मॉडल है, एक मिशन को लेकर चल रही है। तो वही बातचीत अब हम कर रहे हैं, और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। हालांकि मैं हंस के बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, मुस्कुराने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें इतनी गमगीन कई बार कर देती हैं, पुरानी यादों में भी ले जाती हैं, मुझे भी और गुलजार को भी। लेकिन समाज में जो ये समस्याएं हैं, जो जो गरीबी है, मुफलिसी है, इसका जो सोल्यूशन है, इसकी इसकी जो समस्या की जो निजात पाने में हम सबको इकट्ठा होना होगा। और यही कार्यक्रम में हमारे जुनून की बात है, मकसद है कि हम आप तक इस विचार को पहुंचा पाए, इस बात को पहुंचा पाए कि देश को कैसे हम सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं। तो गुलजार से जो बात हो रही है, गुलजार अपने कोविड के दौरान के जो एक्शन है उसको बता रही है, और गुलजार ने अपनी पढ़ाई की जो यात्रा है, अपने संघर्ष की जो यात्रा है, उसको भी साझा किया है। वो बात अलग है कि अब जिला प्रशासन में रहते हुए जो छोटा सा सहयोग मैं वॉलंटियर्स के लिए कर सकता था, क्योंकि जो समाज से जो लोग निकल कर आए हैं, अपने घर को छोड़कर आए हैं, लीड करने के लिए आए हैं, उनको सपोर्ट करना जिला प्रशासन या सरकार का पहला फर्ज है। और वही हमने कोविड से लड़ने के लिए जन भागीदारी के रूप में गुलजार जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ हमने मिलकर काम किया। और गुलजार का सम्मान तो छोटी सी बात है, और परिवार जो है, जो गुलजार के फादर का रस्म गुलजार बता रही हैं कि परिवार या कहते हैं कि पिताजी का सहयोग, जो कोविड में जो एक्शन देखा उन्होंने, सम्मान देखा कि सरकार कैसे एक्नोलेज कर रही है इनके काम को, तो वही बात थी। और वही शायद मुझे लगता है चेंज मेकिंग पॉइंट था, और हमारे जुनून में और उससे इजाफा हो गया। तो गुलजार, लेकिन बात इतनी सी है कि आपने पूरी कहानी अपनी बताई, कोविड की बात भी की, हमने लड़ाई की बात भी की, और आपके बाल विवाह से बाहर निकलने की बात भी आपने की। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जुनून आता कहाँ से है, और इस जुनून का आगे का रास्ता क्या है।
1: डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी।
0: जी
1: मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में कि बचपन में जब मम्मी हमको हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, तो गिरते
0: जी
1: जरूर हैं। तो
0: जी
1: गिरना बहुत जरूरी है चलने के लिए, बहुत बेहतर चलने के लिए, क्योंकि
0: जी
1: मम्मी पूरी जिंदगी आपको उंगली पकड़ के नहीं चला सकती। तो जुनून मुझे वहीं से आता है। हार
0: जी
1: मानना मतलब गिरने जैसा होता है छोटे बच्चे के। तो
0: जी
1: एक जो जुनून होता है ना, कि जो जुनून है वो जुनून बरकरार रखना चाहिए कि मेरी जीत होगी। वो मैंने एक सेंटेंस जो अभी दोहराया था, मैं वापस दोहराना चाहूंगी। मैं जब भी चीजों में डगमग होती हूँ या डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं एक चीज याद रखती हूँ, अभी तो ये अंगड़ाई है मेरी आगे और लड़ाई है। तो ये सेंटेंस मुझे मोटिवेट करता है कि जिंदगी में हम लोग छोटी छोटी चीजों से जूझ के बड़ी सफलताओं को हासिल करेंगे। लेकिन एक जो होता है ना जुनून, जुनून रखना बहुत जरूरी है। अगर हम जुनून नहीं रखेंगे, हार मान जाएंगे, तो मुझे लगता है अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गोल, और गोल के साथ हमें मोटिवेट करना कि मैं हार नहीं सकती। और मैं एक सेंटेंस बहुत अच्छे से याद करती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया। मैं गिरी
0: जी
1: हूँ, फिर संभली हूँ, और बहुत बेहतर चलना सीखी हूँ। जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी हार महसूस करते, तो हमें सोचना चाहिए हम अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी, और बेहतर इंसान और बेहतर खड़ा होने के लिए एक बार गिरना जरूरी है। तो हार कभी नहीं माननी है, जीत से ज्यादा हार एक्सपीरियंस देती है। होता ना एग्जाम में, जैसे कि मेरा बैक लगा, तो वो बैक मेरे लिए एक वो था कि मुझे खड़ा होना है इवन, और करना है, और बहुत अच्छा किया मैंने। प्राउड फील होता है मुझे उस चीज के लिए। उस टाइम तो फीस भी थी, अब तो गवर्नमेंट ओपन बोर्ड को फ्री कर दिया है, प्राउड फील होता है। और अभी जो गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए फ्री किया है, तो मैं चाहती हूँ लड़कों के लिए भी फ्री करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो इक्वलिटी की बात करते हैं अपने देश में, एक बराबरी की, तो मुझे लगता है जो लड़के हैं उनके लिए भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी की बात है हमारे लिए। तो लड़कियों के साथ लड़कों की भी पढ़ाई फ्री होनी चाहिए ओपन बोर्ड में। तो हो सके तो मेरा ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई बार लड़के होते हैं ना, सफर करते हैं वो भी अपने जीवन में। तो मैंने लड़कों को भी ऑब्जर्व किया है, वो काम के साथ कई बार पढ़ाई भी करते हैं, और कई लड़के तो ऐसा होते हैं कि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। जिस तरह से
0: जी
1: मैं समाज में लोगों को देखती हूँ, तो मैंने देखा, बोले दीदी लड़कियों की तो पढ़ाई फ्री करती, हम लड़कों का क्या कसूर है, हमारा भी तो फ्री करना चाहिए ना। तो तो वो एक सेंटेंस मुझे एक लड़के का बहुत अच्छे से याद आया कि मैं जॉब करता हूँ दीदी, मैं ना मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और अभी यहाँ भी फीस लग रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बात एक जरूर पहुंचे, क्योंकि मुझे लगता है लड़कों के लिए भी फ्री होना चाहिए गवर्नमेंट
0: जी
1: में, जिस तरह से लड़कियों के लिए फ्री हुआ। और मैं समाज को ऐसा ही देखना चाहती हूँ, इक्वलिटी वाला, एक बराबर से जीने का, और मेरे समाज में जितने लोग हैं सब प्रेम और भावनाओं के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को देखें, और एक दूसरे की तकलीफ से तकलीफ महसूस हो, वो एज ए ह्यूमन
0: जी
1: एक मानवता।
0: जी और पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो शांति से गुलजार हो जाए, राइट गुलजार?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुलजार हो जाए। थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी तो गुलजार ये बताइए ना कि आपने जुनून की जो बात की है और जुनून के साथ आपने बताया कि कैसे है, तो थोड़ा बताइए घुमंतू समाज में आप काम कर रहे हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं और क्या एक समझ हमारे श्रोताओं को, मैं चाहता हूँ कि वो जाने रेडियो मधुबन के माध्यम से कि हमारे मधुबन में कुछ फूल जो है घुमंतू परिवार वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जी
1: घुमंतू समुदाय के सबसे जो पहले उनके साथ जो भेदभाव होता है वो बड़ा बेकार है।
0: जी
1: अब जैसे कि मेरासी समुदाय, मैं इतना मानती हूँ हम लोगों के पास धीरे धीरे चीजें मिलती है, साधन मिलते हैं, तब हम उतना कैपेबल बनते हैं। और जो घुमंतू समुदाय के लोग हैं उनके पास जरूरत की पूरी चीजें नहीं है, वो उतना कैपेबल नहीं है हमारी तरह। और
0: जी
1: उनकी जो सबसे समस्या, उनको जो चैलेंज आते हैं, जैसे घुमंतू समुदाय एक जगह नहीं अलग अलग एरिया में घूम के वो अपना निवास करता है और अपना रोजगार करता है। जैसे कि मैंने एक चीज ये भी देखी थी कि मेरे यहाँ मेरासी समुदाय भी है, दूसरे भी हैं, मेरासी समुदाय इधर से उधर घूम के अपना गुजारा करते हैं, वो भी घुमंतू में है। तो मैंने देखा है कई बार मेरे एरिया में इधर से उधर गए तो कई बार जहाँ पे एरिया में चोरी होती है तो इन पे आ जाता है ब्लेम। और कई बार जो इनके साथ भेदभाव होता है, उनके आसपास के जो एरिया के लोग होते हैं ना, उनकी पानी जो देना होता है उनको पानी पीने के लिए तो दूर से देते हैं, एक ये बहुत बड़ा उनके लिए है। और दूसरी बात, आंगनवाड़ी में भी कई बार ऐसी चीजें हुई है, तो हमने खुद ने बात की, हमने बोला संविधान सबको एक बराबरी का राइट देता, मैडम आप इन बच्चों को जब तक आने नहीं दोगे, मौका नहीं दोगे, तो कैसे ये बच्चे करेंगे। वो कहते हैं ना कि कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उनसे बोलते हैं एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं उनसे बोलती हूँ अगर हर कोई एक्सपीरियंस की बात करेगा तो उनमें एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, मौका भी देना चाहिए कुछ करने का। जब
0: जी
1: जो घुमंतू समुदाय को अगर मौका नहीं मिलेगा तो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएंगे, उनको मौका
0: जी
1: मिलना चाहिए, शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। और एक जाजम पे बैठ के, अब जैसे कि मेरी फैमिली में जब हमारे आते हैं मेरे घर, तो मैं वो कभी नीचे बैठते हैं तो मैं उनको नीचे नहीं बैठने देती हूँ, कहती हूँ आप मेरे बराबर बैठो। और सबसे बहुत अच्छा कनेक्शन है, मैं बोलती हूँ मेरे बराबर बैठो, आप भी मेरी तरह इंसान हो, आपका अपना हक है। और मैं ये भी बोलती हूँ यहाँ नहीं कहीं भी जाओगे तो अपने हक के बारे में बात करो, जब आपके साथ कोई गलत करता है तो उनको बोलो मेरा हक है और आपको देना पड़ेगा, वो आपका हक है। कहीं डॉक्टर के जा रहे,
0: तो आपको बता दें गुलजार जिस समुदाय के बारे में बात कर रही है वो समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी रोजी रोटी के लिए मूवमेंट करता रहता है, चलता रहता है, रास्ते में रुकता नहीं है और अपने कैंप में रहता है, पक्के घर बना के नहीं रहता है वो समुदाय, और शिक्षा से बहुत दूर है और इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा आज भी हमारे देश के लिए एक चुनौती है और सरकारें इस पर आज भी चिंतन कर रही है कि इन बच्चों को हम कैसे मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में शिक्षा से जोड़ सकते हैं। जी गुलजार बताएं थोड़ा सा और इसके बारे में।
1: बाकी सभी लोग मेरे को सुनेंगे मुझे यकीन है, और मैं सभी तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। अगर हम उनको चाहते हैं कि वो भी अपने में चेंज आए, उनमें चेंज आए, वो भी हमारी तरह हो, तो उनको हमारे को हमारे साथ लेके चलना पड़ेगा। वो एक है ना सेंटेंस के, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ से होगा जब तक हम साथ नहीं लेके चलेंगे। वो शिक्षा से
0: जी
1: वंचित रहेंगे, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे, वो अपने रोजगार को
0: हाँ, और
1: बढ़ावा
0: तो और
1: नहीं।
0: गुलजार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया है देश को कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और जो बच्चे आज पढ़ाई से छूट जाएंगे या जिनका बाल विवाह हो जाएगा तो वो अगले 20 साल बाद वो विकसित राष्ट्र के भाग नहीं बन पाएंगे ना। हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की कड़ी में कहीं ना कहीं हमें समस्या आएगी, तो हमें आज ही बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा, बाल विवाह को बिल्कुल बंद करना होगा। जी जी गुलजार
1: और बच्चों को शिक्षा में जैसे घुमंतू समुदाय के लाने के लिए मुझे लगता है कि सभी को प्रयत्न करना पड़ेगा, सभी को कोशिश करनी पड़ेगी, मेरे समाज के लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे जो देश के लोग हैं, और उनका सबका योगदान बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि जब तक हम
0: जी
1: उन्हें एक साथ लेके नहीं जाएंगे, उनको एक साथ बैठने का मौका नहीं देंगे, या हम उनके अधिकारों के लिए दूसरों से लड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है कि जब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं खाली गुलजार अकेली नहीं, मेरा पूरा देश, मेरे पूरे देश के लोग और जितने लोग हैं आसपास के, सभी लोगों को इन चीजों को समझना होगा। जब हम, हमारा देश संविधान में इक्वलिटी का राइट देता है, हमको एक बराबरी का हक देता है, तो हमें हक नहीं है किसी के साथ गलत करने का। तो हमें लगता है कि हमको सबको एक साथ लेके चलने के लिए उनको मौका देना है, उनको साथ लेके चलना है। जहाँ कहीं वो रहते हैं उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो उनको ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि वो उनकी समस्या है, कि समस्याओं को अपनी समस्या समझो, वो उनके साथ जो घटना हो रही है उनको अपनी घटना समझो। क्योंकि एज अ
0: जी
1: ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते हमें ये तो समझना है, ये मन है जो इन चीजों सबको देख के विचलित तो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो मेरा यही है कि उन सब के लिए हमको आगे बढ़ना है, उनके जो चुनौतियां हैं उनमें उनको हमें सपोर्ट करना है, उनसे लड़ने के लिए हमको उनके साथ खड़े होना है। और मैं अकेली गुलजार नहीं, सभी लोगों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है योगदान।
0: जी बिल्कुल। और गुलजार, आपने साथ साथ आपने प्रिवेंशन ऑफ वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क प्लेस की बात भी की थी, तो वो भी थोड़ा बताइए ना, पॉश के बारे में बताइए ना, पॉश क्या कहता है और कैसे महिलाओं को पॉश के बारे में पता होना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब मैं गई थी तो मुझे पोश के बारे में नहीं पता था। जो मेरे साथ फर्स्ट घटना हुई थी वो मेरे लिए बहुत एक ये था, लेकिन उन चीजों के बाद जब मैंने दूसरे एनजीओ को ज्वाइन किया, जब मैं घुमंतू और अदर समुदाय के साथ काम कर रही थी उनके राइट्स में, तो मैंने पोश के बारे में जाना कि हमारे लिए पोश बना, जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं उनके लिए पोश का एक वो है, वहां पे अगर उनको कोई काम के दौरान उनके साथ कोई समस्याएं होती है तो वहां उनको बताना, उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उनका नाम भी गुप्त रखा जाता है। तो हम महिलाएं जो भी हैं या हमारे साथ जो घटनाएं
0: थोड़ा खुल
1: होती
0: के
1: है वो,
0: बताइए ना, थोड़ा खुल के बताइए ना, किस तरह की समस्या है।
1: जैसे कि काम के दौरान महिलाओं के साथ उनके साथ ऐसी हिंसा हो रही है, छेड़छाड़ वाले मामले हैं, कई बार महिलाओं को बहुत देखना पड़ता है। मेरे साथ भी कई बार ये चीजें हुई हैं और मैंने उसमें ये लिया है कि अकेली महिलाएं होती हैं जब काम के दौरान, लोग सोचते हैं भाई अकेली महिलाएं काम करी, कई बार उनको मिसयूज करने का भी सोचते हैं, वो उनके साथ गलत करने का भी सोचते हैं कि भाई हम इनका फायदा उठाएं। तो कई बार वो पोष कानून को नहीं जानती हैं तो वो चुप हो जाती हैं या वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। जो पोष कानून हमारे लिए बनाए, हमारे देश में जो हमारे लिए कानून बने सभी बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि हमें उनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा और जानकारी हासिल हो करनी पड़ेगी, और उनके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे लिए जब कानून बने तो हमें डरना क्यों है। तो पोष
0: जी
1: का हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी मामले में, कोई छेड़छाड़ का मामला है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई काम के दौरान आपके साथ चाहता है कि भाई हम मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ मैं आपका प्रमोशन करा दूं लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मेरे से रिलेशनशिप में आना है, कई बार होता है ऐसा। तो मुझे लगता है वहां पे पोष अपने लिए बहुत अच्छा है, इवन पोष का सपोर्ट लेना चाहिए और हमें अपनी बातों को अंदर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पोष कमेटी जो बनी, पोष कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, वहां पे महिलाएं भी होती है, खाली पुरुष नहीं होते, हम वहां पे महिलाओं से भी अपनी बात कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि महिलाओं के साथ महिलाएं कंफर्टेबल होती हैं, तो पोष में जो मेंबर होते हैं वहां पे महिलाएं भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पोष में अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो हमको पोष का सपोर्ट लेना चाहिए, इवन पोष से हमारी शेयरिंग करनी चाहिए और हमारे लिए जो हो उचित कार्रवाई करते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी इंटीग्रिटी, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और देश का कानून उनको वर्क प्लेस पे समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लैंगिक भेदभाव के काम करने का अधिकार देता है, और किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना से उनको बचाने में मदद करता है। तो पॉश एक्ट के बारे में आप भी पढ़िए, जानिए श्रोताओं। और गुलजार ने तो उसके उस पर उसकी तरफ एक इशारे में कम समय में थोड़ी सी बात रखी ही है, हालांकि इसके बारे में विस्तार से हम रेडियो के किसी और शो में बात करेंगे। तो जुनून, हमने जुनून की बात करी गुलजार से, और गुलजार ऐसी कोई बात जो मैं जिसका सवाल आपसे नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आप श्रोताओं से कहना चाहते हो, तो कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आप कह सकते हैं।
1: मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने महिलाओं को देखा है, हमारे देश में बहुत सारे कानून है और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छे राइट्स हैं, तो मुझे ये मानना चाहिए कि जैसे मैंने अपने संघर्ष से जीवन को आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि मेरी जैसी गुलजार होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है महिलाओं में, जिस प्रकार मैं काम कर रही हूँ महिलाएं डर जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, कहती हैं भाई आपके जैसा सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं बोलती हूँ कई बार उनको, मेरे पापा ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था, आप और कैसे सपोर्ट की बात करोगे, मैंने तो अपने स्तर को ऐसे स्टार्ट किया, तो आपको हार नहीं माननी है। तो मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी कि कभी भी हार मत मानो, जुनून हमेशा जिंदा रखो अपने में, जिंदा दिल होने की यही निशानी है कि जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तो आप अपनी लाइफ में जरूर, आज मैं यहाँ पहुंची हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं फेलोशिप को करके इवन आगे आगे बढ़ के मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ, इवन अब मैं LLB के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। दोस्तों, जिस गुलजार को ये भी नहीं पता था उसके क्या कानून है, आज वो कानून की पढ़ाई पढ़ने वाली है। तो ये एक प्राउड मोमेंट है कि भाई मैं अपने राइट के बारे में नहीं जानती थी, आज
0: जी
1: मेरे फैमिली में जब बात होती है पापा को, तो मैं एक ही कहती हूँ, पापा अपने सबके हक हैं, तो पापा पता है बराबर में खड़े होके कहते हैं, बेटा मुझे अच्छा लगता है तेरे को देख के। और पापा जो घर से नहीं निकलने देते थे, आज मैं बिंदास राजस्थान से मुंबई, दुनिया में पता नहीं किस किस कोने में घूम रही हूँ। वही पापा हैं, वही मैं हूँ, और मुझे लगता है कि सही गलत पे हमें बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे बड़े गलत कहते हैं, ये नहीं, हम बड़ों को समझना है और समझाना है। कुछ चीजें हमारे घर के बड़े होके भी कुछ चीजों को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको उस पर ज्ञान नहीं होता है कई बार कुछ चीजों को लेके। तो मुझे लगता है कि वो जरूर पापा से शेयरिंग की ना, मैंने पापा से शेयरिंग की, और आज पापा प्राउड फील करते हैं इस बात के लिए कि भाई बेटी मेरी कहाँ, मैंने रोका था वो कहाँ से कहाँ। वो कहते हैं ना, जिद्दी है तू, जिद्दी जुनून का
0: क्या
1: एक एक नाम है। तो जिद्दी जुनून के लिए जिद्दी होना जरूरी है, और
0: बात
1: सबसे बड़ी बात कि हार नहीं माननी। अगर हार मान गए ना, और मेरे को कुछ चीजें इंस्पायर करती है कि मैं पीछे जो चीजें लड़के आई हूँ, वो मेरी लड़ाई छोटी नहीं थी, तो ये
0: जी
1: लड़ाई छोटी नहीं है, और हार वहां भी नहीं मानी हूँ और जीत के आई हूँ। तो मुझे लगता है सफल होने के लिए जिद्दी और जुनूनी बहुत जरूरी है।
0: जी
1: तो जुनून, थैंक यू
0: क्या
1: सो
0: बात
1: मच।
0: है। खुश होता हूँ, ऐसे ही किसी जिद्दी से हम आपको मिलवाते रहेंगे, और जल्दी ही एक जिद्दी आपके शो पे और आएगा, और हम उस जिद्दी से बात करेंगे कि तुम्हारा जुनून क्या है। तो गुलजार के जुनून को आपने जाना, समझा, आपने समय निकाला हमारे शो के लिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शरद आपको धन्यवाद देता हूँ इस शो से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। लेकिन एक बात, चलते चलते मैं देख पा रहा हूं अपनी खिड़की के बाहर से सूरज ढल चुका है, अंधेरा आ गया है। लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहते हैं ना, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और भारत उठेगा। जय हिंद। शरद त्रिपाठी साइनिंग ऑफ।
1: जय हिंद, जय भारत।

0: आप दुनिया के किसी भी रास्ते से गुजर जाइए, आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो अपनी मजबूरियों का वास्ता देकर आपसे आर्थिक मदद चाहते हैं। इनमें से कुछ तो वास्तव में अपनी मजबूरियों से मजबूर हैं, तो कुछ अपनी आदत से। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में तो इनके जैसे ही लगते हैं, पर उन्हें इनकी श्रेणी में रखना उनके साथ अन्याय होगा और हम उनके अपराधी। कॉलेज बंद होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी एक आवाज हमारे कानों में गूंजी,
1: भैया जूतों पर पॉलिश कर दूं क्या?
0: हमने देखा हमारे सामने लगभग 7-8 साल का लड़का खड़ा था, जिसके कंधे से एक फटा पुराना गंदा सा थैला लटका था। कमीज के एक दो बटन भी गायब थे और जो लगे भी थे उनका कमीज से कोई वास्ता नहीं था। कमीज और पैंट पर पड़ी सलवटें कपड़ों की वृद्धावस्था का प्रमाण दे रही थी। पैरों में जो चप्पलें थी उनकी शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा अंतर था और दोनों ही अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मेरे सभी दोस्तों के पॉलिश कराने से मना करने पर उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। उसकी आंखों में पानी तो था पर इतना नहीं कि छलक पाए। ये देखकर मैंने पूछा, कितना लेते हो पॉलिश करने का? उसने बड़े ही करुण स्वर में कहा, 5 रुपए भैया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 5 रुपए के आसपास की राशि वाला नोट तलाशने लगा। यूं तो पर्स में कई

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक का द्वारा थेमरो रेडियो थेमरो वास्ते।

0: पट्टी दानबाब उमरिनी पासी गणकाय, पहले गणका भी हमारा उमरिन का अंदर में था, लेकिन आज डिवाइडर होने के बाद दो ग्राम पंचायत और दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई। तो इस स्कूल को आज हम आए हैं बच्चों को एक मंच देने के लिए। तो देर किस बात की, बच्चों का आवाज़ ना हो ये हो ही ना सकता, और बच्चों का भावना को, भाव को, आस्था और विश्वास को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम आज उपस्थित हैं। और हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह गतिविधि कराते हैं। तो आज पढ़ाई का साथ साथ बच्चों को एक मनोरंजन का साथ साथ आस्था विश्वास में जो ध्यान रखते हैं उनको भी एक मंच देते। तो पहला प्रस्तुति एक प्रार्थना सत्र में होगा, और इसका श्रेय तो प्रधान अध्यापक और हमारा प्रिंसिपल साहब को जाता है, और सब स्टाफ को सब एक इस तरह से हमें चांस दिए हैं, कोई सूचना नहीं था, फिर भी अचानक बच्चे आए तो सुनाएंगे एक प्रस्तुति। सभी पहले परिचय देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा क्लास।
1: माय नेम इज आलिया बानो, माय क्लास इज 7th।
2: माय नेम इज रविंद्रा, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
3: वेरी गुड।
4: माय नेम इज पूजा, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: कौन बच्चे बोलते भाई, हमारा शहरांचल बच्चों को भी ग्रामांचल बच्चे टक्कर देंगे और इंग्लिश में बोलने शुरू कर दिए, ऐसे होना चाहिए क्योंकि सभी चीज में होशियार है। चलिए एक प्रस्तुति होगी, सुनाएंगे एक प्रार्थना सत्र में जिसे माँ सरस्वती को याद करते हैं, एक प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं सुनाएंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत में जब हम सुन रहे थे ध्यान से, तो ध्यान से सुन रहे थे और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको जब फॉलो करेंगे, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ जाना है। हम खुद कौन है ये अज्ञानता है, नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरा कौन है नहीं मालूम था, ये अज्ञानता। जब उसको ज्ञान में सुनते हैं जे मैं कौन हूँ, अभी पता चल गया हम सब कौन है कि नहीं। आप कौन है?
1: आत्मा।
0: देखा उत्तर आया, ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर है कि नहीं। तुमको पता चला
1: मैं आत्मा हूँ।
0: आत्मा और ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम बताया था ना, तुम्हारा नाम नाम और तुम अलग है ना, तो ये ही अज्ञानता से ज्ञान की ओर। अभी हम समझदार बन गए ना, वास्तव में हम सब कौन है, कौन है बच्चे?
1: आत्मा।
0: क्योंकि ये शरीर को चलाने वाला और मेरा जो बोलते है शरीर, ओके, ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रकाश हुआ कि नहीं। और हमारा मन को शांत चाहिए और कौन देगा? माँ सरस्वती। माँ, माँ सरस्वती नाम सुने ना सभी, किसका बेटी है कौन बताएगा? माँ सरस्वती किससे ज्ञान लाती है, हमें देती है, कौन बताएगा? उसका माँ बाप तो होंगे ना, होंगे कि नहीं?
1: ब्रह्मा।
0: अरे बात, ताली बजाओ। ये ज्ञान तो एक ज्ञान मिला उसका आगे भी मिल जाता है, मिलता है कि नहीं। इसलिए ब्रह्मा का नंदिनी कहते हैं, किसको? सरस्वती को। और हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए ना, ब्रह्मा का बेटी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कुमारी। क्या बोलते हैं?
1: ब्रह्मा कुमारी।
0: तो माँ सरस्वती कौन हुआ? ब्रह्मा कुमारी। ताली बजाओ। हाँ, ये तो अच्छा ज्ञान मिला कि नहीं? किसको पता था? नहीं था, अभी पता चल गया इनके द्वारा, हुआ कि नहीं। तो माँ सरस्वती का ड्रेस कौन सा कलर?
2: सफेद।
0: सफेद है कि नहीं? डेली पूजा करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी बच्चे और सभी शिक्षकगण भी सुन रहे हैं और ये वास्तविक असली जो वास्तविक परिचय होना जरूरी है, ओके। सभी माँ सरस्वती दुर्गा हमें काली सभी को पूजा करते हैं, अल्लाह को भी पूजा याद करते हैं। तो हमारा बिंदु नूर, नूर होता है ना, आत्मा नूर है, आत्मा नूर है, कोई नूर कहते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब हम प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं ना? विद्या शिक्षा क्या करते हैं? शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान अर्जन करने, क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते करते कि नहीं। हाँ, और गीत तो प्रस्तुत किए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ सरस्वती हर स्कूल में, हर विद्यालय में हमें प्रार्थना सत्र में करते, क्योंकि हमें वो ज्ञान

0: प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
1: डॉक्टर।
0: हाँ, देखो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना, जब तक मंजिल हासिल नहीं होगा तब तक पढ़ते रहना, पढ़ना छोड़ना नहीं है। तुम बड़े कर
1: टीचर,
0: टीचर मैम, मैम देखिए आप समान मैम का पद चिन्ह पर चलेंगे ना, मैम का व्यवहार पढ़ाने का तरीका सीखना है तब बन जाएंगे ना। हाँ, तुम
1: डॉक्टर,
0: हाँ डॉक्टर इंजीनियर जो भी काम आपको करना है, चाहे अच्छा किसान भी बनना है, अच्छा गृहिणी भी बनना है, लेकिन आप एक एक महान है। डॉक्टर को कौन खिलाएगा, किसान तक चाहिए ना, तो अच्छा किसान भी बन सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था विद्यार्थी विकास में, चरित्र निर्माण में, आत्म प्रबंधन में, बच्चों का आत्मज्ञान को जागृत किया रेडियो मधुबन। छोटी सी बच्ची आए दोनों परिया, लेकिन लेंगे उनको पहले एक ब्रेक।

हल्के हल्के बोल न, हल्के हल्के बोल न, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल न, हल्के बोल न, हल्के हल्के बोल न, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल न, हल्के।

बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।

0: उलझे रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे खास कर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनका अंदर में जो होश है जोश है, कौन बोलेगा भाई आदिवासी बच्चे, लेकिन आदिवासी बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और उनका पास कोई झिझक नहीं। चलिए हमारा साथ दो छात्रा है, परी क्या नाम है?
1: पुष्पा।
0: अरे वाह वेरी गुड। तुम्हारा?
1: वीरू।
0: वीरू और पुष्पा दोनों सहेली है, दोस्ती है। और क्या बताएंगे आज, गीत गाएंगे? हाँ चलिए शुरू करो।

0: को दो दे मुको दो को नोज नहाते रोज नहाकर खाना खाते खाना खाकर पढ़ने जाते जंगल में ना मोर बजा रहा है ढोल गंदा पानी मत तुम पीना संगा मैं भी कबीर जीना।
1: क्या बात, ताली बजा भाई।
2: छोटे बच्चे हैं, इन छोटे भी कमाल करते हैं। अभी 12 क्लास का सभी बच्चे बैठे, लेकिन छोटी बच्ची भी हिम्मत देखो, इतना बहुत का अंदर में जूनियर होकर भी सीनियर को टक्कर दिए, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह कार्यक्रम में जोड़ते हैं,
3: साथ देने के लिए छोटी सी बच्ची आई है, तो उनको स्वागत करते। क्या नाम है आपका?
4: लक्ष्मी।
3: कौन सा क्लास में पढ़ती तुम?
4: छठी।
3: छठी। स्कूल का नाम?
4: राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका।
3: विद्यालय में कौन सा मैडम आपको अच्छी लगती है, कौन सा सर आपको अच्छे लगते हैं?
4: जानकी मैडम अच्छी लगती है, और भगवाना सर अच्छे लगते हैं।
3: क्यों?
4: क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी करवाते हैं। और
3: अच्छा, कभी मार भी देते हैं? कभी मारते हैं?
4: हाँ, गलती होती है तो मारते हैं।
3: अच्छा, आप कभी गलती करते हैं? नहीं नहीं,
4: कभी हो भी जाती है।
3: हाँ, अच्छा अच्छा, बच्चे सच सच बताती है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा लगती होगा, और कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
4: हिंदी अच्छी लगती है, ऐसा सब विषय अच्छा लगता है।
3: अच्छा लगता है, तो बड़े होकर आप क्या बनेगी?
4: डॉक्टर।
3: अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा एम्बिशन है। तो पढ़ाई कितना घंटा करते हैं?
4: घर में कभी 2 घंटे भी होते जाते हैं, कभी 1 भी।
3: कौन सा गुलाब आपको अच्छा लगता
4: है? गुलाब।
3: गुलाब, अच्छा, क्यों गुलाब? क्यों?
4: क्योंकि वो भगवान के लक्ष्मी माँ के नीचे होते हैं।
3: इसलिए आप लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता के नीचे गुलाब कलर होता है और आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कलर में आपको गुलाब पसंद है। खेल कूद में कौन सा खेल आपको पसंद है?
4: खेल
3: खेल खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल।
4: कबड्डी।
3: कबड्डी क्या है, भाई लोग का खेल तो कबड्डी है, बहन भी खेलते हैं
4: जी।
3: कितना है वहाँ पर टीम में, कितना लोग रहते हैं?
4: यहाँ पे तो बता नहीं सर, इतने तक क्या मालूम।
3: अरे गांव में तुम जो क्या खेलते हैं गांव में, घर में?
4: घर में तो छुपन छुपी।
3: अच्छा, लक्ष्मी आप बताओ, आप तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर काम क्या होता है?
4: डॉक्टर सुई देते हैं, चेक करते हैं।
3: अच्छा, बीमारी को ठीक करते हैं। अच्छा, और कौन सा फूल आपको अच्छा लगता है?
4: गेंदे का।
3: गेंदे का फूल अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा बात पता है। मैं सुने आपका पीछे से कोई बोल रहे हैं इनको कविता बहुत अच्छी आती है, तो कविता सुनाएंगे अभी?
4: जी। द छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची नौ। छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 8। 8 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 7। 6 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 6। 6 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 5। 5 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 4। 4 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 3। 3 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 2। 2 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 1। 1 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचा 0।
3: चलो हिम्मत रखी, बिना झिझक से पहली बार जब मिली, फिर भी इनका उमंग उत्साह को सलाम करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन को, क्योंकि छोटी बच्ची है फिर भी अपना बात को तो रखी हिम्मत से। चलिए पुष्पा दीदी हमारे साथ इस कविता को सुन रही थी, इस कविता से क्या सीख मिलती है वो बताएगी।
5: इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कविता के जरिए टीचर बताती है बच्चों को कि गिनतियों में से 1 घटा तो कितने बचे, ये सब सिखाया गया है।
3: बच्चे कैसे गिनती सीख जाते हैं और घटाना जोड़ना इस चीज बच्चे सीखते हैं, जैसे 10 से 1 गया तो 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, तो ऐसे सीखते हैं बच्चे। आज कविता के माध्यम से लक्ष्मी अपना बात को रखी। लक्ष्मी, आपका गांव में आज हम लोग आए हैं रेडियो मधुबन, आपको खुशी लगी
4: जी?
3: कितना खुशी है?
4: बहुत सारा
3: बहुत सारा कुछ है। ऐसे बार बार होना चाहिए
4: जी।
3: अच्छा, आपको पहला बार रेडियो में मौका मिला
4: जी,
3: तो आपको कोई झिझक डर
4: नहीं लगा? नहीं सर,
3: कोई डर नहीं लगा?
4: नहीं।
3: अल्प विराम का पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: चलिए कार्यक्रम तो एक के बाद एक बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को स्वागत करते पुनः इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस बन रहा है और सबका सहयोग। चलिए हमारा साथ पुनः उनको स्वागत करते हैं, अपना परिचय पुनः देना है।
2: मेरा नाम अभिनय, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आलिया, मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ।
1: बड़े अच्छा लगता है, घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन वगैरह।
1: और घर में कोई भी नया चीज आता है, अभी आम का सीजन है, पक्का आम आएगा तो किसको मिलेगा? पहले भाई को मिलेगा ना तुमको मिलेगा?
3: सबको ही मिलेगा।
1: भाई हो चाहे बहन हो, सबको मिलेगा। भाई भाई को आगे देगा पीछे, सभी को बराबर देखते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी लेकर हम जो बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर का दो फूल है, सबको बराबर होना चाहिए और उनका घर में कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर। पक्का कोई भी नया चीज ड्रेस आएगा तब भी आपको मिलता है, पहले आपको मिलता है? पहले ना सबको मिलता है,
3: सबको मिलता है,
1: सबको मिलता है। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करो।
4: ओ देश मेरे, तेरी शान बेशद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा हे जी जी दीवाने की, कही बोल सुहानी देखी मंजू।

0: यही
1: जो भी तू चुने देश मेरे मेरे शान पे सदके कोई धन है क्या मेरी दूर से भर के धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा जी दीवाने की यहाँ बोर्ड सुहानी देखी मंजूर रहे जो भी तू चुने ओ देश मेरे मेरे शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी दूर से बढ़ के तेरी धूप से रोशन मेरे हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुत है। और अचानक आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था, और एवर रेडी, जब चाहे रेडी सर। और एक अंतरा भाई एक मुखड़ा भी बोले, लेकिन जो हिम्मत है ये काम नहीं है, इसका श्रेय तो माँ बाप को जाता है और उनका गुरुजन को जाता है। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा कलर को आप अच्छा पसंद करते हैं?
3: ब्लैक।
2: ब्लैक कलर में उनको ब्लैक पसंद है क्योंकि ब्लैक उनको अच्छा लगता है। और बड़े होकर तो बनेगी ना कुछ तो बनेगी, है ना? क्या बनेगी?
3: टीचर।
2: टीचर बनेगी, पहले भी बोला था। और इसका श्रेय किसको देंगे, धन्यवाद किसको देंगे?
3: मेरे गुरुजनों को।
2: गुरुजनों को, बड़े जो गुरुजन में कौन कौन आते हैं? गुरुजन मैंने बड़े आपके कौन कौन है?
3: मेरे माता पिता।
2: माता पिता
3: और टीचर।
2: टीचर और बड़ा भाई,
3: बहने वगैरह,
2: बहने, दादा दादी काका काकी सब लोग आते हैं। तो उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि उनका प्रेरणा में वो आगे बढ़ेंगे, टीचर बनेंगे। और टीचर बनेंगे तो आपका पहला पोस्टिंग कहाँ पर होंगे, कहाँ पर आपको पसंद होगा? ना अब रोड में, ना गनका में। गनका के, गनका में अभी पढ़ रहे। और जब बड़े होंगे तो हमारा सीबीओ साहब याद रखेंगे, जब भी उस समय सीबीओ साहब होंगे तो जरूर पोस्टिंग हमको यहीं पर ही उनको दे देगा, खुशी लगेगा ना?
3: हाँ,
2: अभी से एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारा मैम भी सुन रहे, मैडम आप कैसे हैं, पोस्टिंग हुई है, आपको क्या मेहनत करना पड़ा, अभी उस आपका बारे में बता। मैडम बनेंगे तो आप कैसे मैडम बने?
4: बहुत पढ़ाई की फिर बने।
2: हाँ, बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब तक आपका मंजिल मिल नहीं रहा तब तक पढ़ाई करते हैं, है ना मैम
4: जी?
2: तो इसलिए अभी भी आप मैडम बने, तो आपको क्या लग रहा है? ऐसे भी कभी बच्चे थे आप?
4: जी हाँ, थे ना बच्चे,
2: अभी बड़े हो गए।
4: बड़े हो गए
2: तो अच्छा लग रहा है अभी।
4: हाँ।
2: तो अभी तो पैसा ही मिल रहा है,
4: ठीक
2: है ना? बच्चे पैसा मिलेगा तो सब कुछ कर सकते कि नहीं? हाँ, इसलिए पढ़ाई करेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा इंसान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का आवाज़ और मैडम का भी आवाज़। मैडम आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, जो बच्चों को क्या सीखने को मिला?
4: इस तरह से बच्चे मतलब कुछ बोलना सीखते, आगे होके आते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है इनको, और अच्छा है।
2: अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा हुआ है। और धन्यवाद देते।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते श्रोता मित्र और ग्रामवासी, खासकर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी गणका के नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज़ सुनने के पश्चात चलते हैं उपलागढ़ के नन्हे मुन्ने बच्चों का भी आवाज़ सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए 12th क्लास के बच्चियाँ उपस्थित हैं, तो उनको भी हमारा कार्यक्रम में सजाने के लिए स्वागत करते हैं। नाम के साथ सभी अपना अपना स्कूल और गांव का नाम का साथ खुद का नाम बताएंगे और बारी बारी अपना प्रस्तुतियां देंगे। तो हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने, क्योंकि आदिवासी अंचल का जो देसी गीत है, जो फक सॉन्ग है, वो अपना अंदाज से गाते हैं। छोटे बच्चे भी बड़ों को देख कर सीख जाते हैं। जैसे त्यौहार हो, चाहे शादी हो, चाहे विदाई हो, सभी जगह में जब मौका मिलता है वो गीत गाते हैं। तो आज भी हमारा कार्यक्रम को सजाएंगे। उपलागढ़ के बच्चों का आवाज़ आपको अभी सुनने को मिलेगा।
2: मेरा नाम अंकिता है, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़ है।
3: मेरा नाम विनीता, मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गाँव का नाम उपलागढ़ है।
4: मेरा नाम है उर्मिला, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। गाँव का नाम उपलागढ़।
5: मेरा नाम है पुण्य कुमारी, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।
6: मेरा नाम है रमीला कुमारी, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।
7: मेरा नाम है जमुना कुमारी, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे किसी बात को लेकर। आज के लिए आप सभी से इजाजत, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

तो सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात। और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। मन की आंखों से में हमने बहुत सारे हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों को आज तक रिकॉर्ड किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको समझने की कोशिश की है कि वो आंखें नहीं होते हुए, या कहें कि वर्चुअली नजर ना होते हुए भी जीवन जीने का इतना नजरिया कहाँ से लाते हैं। और उसी की तलाश में हम निकल पड़े थे आज से 3 से 4 साल पहले। और मन की आंखों से के इस शो से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं, और हमने यही जानने की कोशिश की कि ये आंखें ना होते हुए भी जीवन को कैसे आंखें मिलती हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन की आंखें रखते हैं हमारे वो साथी जिनको हम नेत्रहीन कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। और हमारे साथ ही हमारी एक सीनियर साथी जिन्होंने एक समय पे न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया, और इसके साथ साथ अब स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे शहर लखनऊ से कहें कि मुस्कुराए।

0: हमारे रेडियो मधुबन ऐप पे भी, और कुछ दिनों बाद हम इसको लेकर आएंगे स्पॉटिफाई पे भी, तो आप उसको सुन पाएंगे हमारे रेडियो शो को रेगुलर नियमित, और रखिए अपने दिल के पास इस शो को। तो मन की आंखों से ममता जी हमारे साथ हैं और ममता जी से हमको ढेर सारी बातें करनी है, और अब आप थाम के बैठ जाइए आपका दिल अगले एक घंटे के लिए। देखिए ना कहाँ से इस पिटारे में कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन से जीवन के वो महत्वपूर्ण अनुभव निकलते हैं जो शायद आपको रोशनी देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, माउंट आबू की वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार के रेडियो शो में एक और साथी जो हमारे डिसेबल साथी है, हमारे ही कम्युनिटी से है, लेकिन उनकी चुनौती जो है वो थोड़ी सी अलग है। और आपको तो पता है हम मन की आंखों में से ऐसे साथियों को भी रिकॉर्ड करते रहे हैं जो नेत्रहीनता से अलग डिसेबिलिटीज के साथ जूझते रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं की कराया कि वो परेशान है या हैरान। तो हम इस बार हमारी जो साथी हैं, जो ममता कपूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं और व्हीलचेयर बाउंड हम उन्हें कह सकते हैं, आप व्हीलचेयर का उपयोग करती हैं। तो ममता जी, हम आपकी यात्रा को शुरू करेंगे, तो यात्रा की शुरुआत होती है बचपन से, अब आप बहुत तुले हैं बचपन से ऊपर, तो आपने डिसेबिलिटी कैसे एक्वायर की और आपके बचपन की जो शुरुआत है, जो हम कहते हैं ना 55 साल पहले आपका जो बचपन था वो कैसा था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी और उनके पास शादी के 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। जैसे गांव में मेरा बिलग्राम नाम के गांव में जन्म हुआ था, गोले छुड़ाए गए, आतिशबाजी की गई, लेकिन 2 साल की जन्म में हुई और चली नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है कराने के लिए दर दर भटके, वो एलोपैथ डॉक्टर होम्योपैथ उन्होंने मतलब यहाँ से लेके अमेरिका तक, और आयुर्वेद से लेके कोई भी पैथी किसी तरह की, कोई कहता कि अंग्रेज महिला आई हुई है वो कुछ पानी देके वो करती है, कोई जादू टोना भी कर रहा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत सीनियर ऑफिसर रिजर्व बैंक पे हुआ करते थे, लेकिन वो हर जगह ले लेके मुझे दौड़े, लेकिन 13 साल तक जब सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गई, फिर उन्होंने पढ़ाई पे मेरे ध्यान देना शुरू किया। अक्षमता पे कोई उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया और तब तक मुझे वो स्कूल के पेपर्स लाके देते थे, ट्यूटर आता था, मेरे एग्जाम लेते थे और मैं एक के बाद एक क्लास ऊपर चढ़ती गई। हर साल मेरे एग्जाम लिए जाते थे घर पे, लेकिन मेरी तकदीर कहे या मेरी लगन कहे, क्योंकि मुझे कुछ बन कर दिखाने की तमन्ना, मैं जब 5 साल की थी तब से ही मुझे लगता था कि इस शारीरिक अक्षमता को मुझे बहुत पीछे छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं जो थी, और जहाँ रचा होती है वहाँ राह होती है, तो मैं मेरे घर के सामने ही एक स्कूल खुल गया। तो मेरे पिता ने बात की, तब तक मैं 9th पास कर चुकी थी, तो फिर मैंने 10th क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक सफलताएं पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई। मैंने वहाँ पे SSC बोर्ड होता था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, फिर ग्रेजुएशन की, फिर ये लगा कि अब कॉलेज कैसे जाऊंगी, तो मेरी सिस्टर जो जस्ट मेरे से छोटी थी उसने मुझे कहा कि आप दीदी चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हुई ना आपके साथ, तो वो और मैं, मेरे से वो 1.5-2 साल छोटी है, तो हम दोनों ने ही एक साथ ही SSC बोर्ड पास किया था। तो फिर मैं, हम दोनों ने गुजरात कॉलेज जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पढ़ाई की है, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज में, मैंने अहमदाबाद में, मेरे पापा तब उस समय अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया और वहाँ भी मुझे दिया इतना कोऑपरेशन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुनती थी कभी, हम जैसे बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, पर मुझे आज तक किसी भी जंक्शन पे इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं कराया मुझे भाई किसी तरह की कमी है। मेरी पढ़ाई की बुलंदियों को देखकर,

0: मेरे मार्क्स को देख के सब लोग मुझसे जुड़ते चले जाते थे, और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि आप सोचिए कि 4 साल जो कॉलेज के थे, रूम नंबर 16 में ट्यूटोरियल्स, सारे लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स सब उसी क्लास में करवाए। मुझे कहीं भी मतलब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और साथियों का भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला। ये जरूर था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद उससे लोग जुड़ना भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एबिलिटी जो है उससे लोग इम्प्रेस होके भी और प्यार से, पर दया से कभी नहीं, मेरे कोई भी मुझे कुछ पे दया कभी नहीं दिखाई। और मैं सच बताऊं भाई, कभी भी मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ रही कि मुझे कोई फिजिकली हैंडीकैप कह दे या बेचारी बेचारी शब्द का यूज कर ले मेरे लिए। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई, और लेकिन मैं मेरिट स्कॉलरशिप को मैंने उन गरीब बच्चों को दान दे दी जो अपनी पढ़ाई करके नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मैंने साहित्य रत्न किया वर्धा यूनिवर्सिटी से। मेरी पढ़ाई की चाहत कभी खत्म ही नहीं हुई, मुझे ये था कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे कोई ये ना समझे कि ये फिजिकली अक्षम है इसलिए ये काम नहीं कर पाए, ये बात मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसके पश्चात फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना शुरू किया, उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे शायद, मैंने हर एक एग्जाम को क्लियर किया, यहाँ तक कि ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फिर इनकम टैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन्स, इनकम टैक्स, हर एक के एग्जाम मैंने पास किए, लेकिन फाइनली मैंने रिजर्व बैंक को चूज किया और वहाँ फिर मैंने फिर जीवन के 37 साल अबाध गति से करे, और वहाँ भी मतलब राइट फ्रॉम प्यून टू टॉप ऑफिशियल्स सबने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, और मैंने भी अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपने आड़े आने नहीं दिया। मुझे मेरा चूंकि ग्रेजुअली ये तकलीफ होती गई इसलिए बढ़ती गई, तो पहले मैं लिख के सारे स्टेटमेंट्स बनाती थी, सब करती थी, फिर धीरे धीरे भगवान भी मेरे साथ हमेशा मददगार रहा। जब हाथ में अक्षमता आनी शुरू हुई तो कंप्यूटर युग आ गया। मेरे एक साथी ने कहा कि दीदी आपने इतना अचीव किया, कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरे सब साथी इतने अच्छे थे, लेडीज हो या जेंट्स, हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, और मैं आप विश्वास करें मतलब आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूटराइज माई सीट फुल्ली, मैं अपने पूरे काम को फुल्ली कंप्यूटराइज कर पाई। हाँ, और मतलब तो मेरी क्षमता और भी बढ़ गई, और फिर मैंने अपने प्रमोशंस के लिए भी एग्जाम दिए, आई रिटायर्ड एज मैनेजर। मेरे सब बॉसेस, मेरे सब साथी सब साथ तो देते ही थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे, बस ये था कि मुझे कभी भी किसी चीज से कभी हार नहीं माना। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी का फायदा कभी नहीं लिया सरकार से, मैंने हमेशा जनरल कैंडिडेट की तरह हर एग्जाम में मैं अपीयर हुई, क्योंकि मुझे पसंद था ही नहीं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप कहलाऊं। मैं अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्षम बनी रही, और लोगों ने अपने साथ से मुझे बनाया भी, मेरा आत्मविश्वास हमेशा हाई पे रहा और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही।
1: तो आपने अपने बचपन से लेकर और अपने यंग एज तक की सारी चीजें हमसे लगभग साझा कर ली हैं, लेकिन हम उस बातें और ढूंढना चाहेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिहैबिलिटेशन, और जब हमारे दिव्यांग साथी का रिहैबिलिटेशन हो जाए वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये अवसर नहीं मिल पाता और उनके माँ बाप बहुत सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चे की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से यही कहते हैं या हम उनको यही बताना चाहते हैं और आप जैसे हमारे साथियों के माध्यम से भी हम ये बात का प्रचार प्रसार लोगों तक करना चाहते हैं जागरूकता कि आप बेशक इलाज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ आपको ट्राई करना है वो आप बिल्कुल बेशक आप ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको एक देश के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सक ने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर हमें बाबाओं और नीम हकीमों के चक्कर में हमारे बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहिए और उसके रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार करना चाहिए कि वो कैसे मुख्य धारा में आ सकता है, वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकता है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन हो सकता है और वो कैसे अपने साथियों का सहयोग ले सकता है। तो हम इसी परिकल्पना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों तक जैसे आपका रिहैबिलिटेशन हो पाया। बेशक आपके माता पिता ने आपका इलाज कराने का भी भरपूर प्रयास किया और वो अमेरिका तक पहुंच गए, परंतु उन्होंने आपकी शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरती, आपको एक अच्छे विद्यालय में जाने का अवसर मिला और आपने वहां पर अपने प्रेम से अपने जज्बे से लोगों को प्रभावित किया और उनका प्रेम और सहयोग भी पाया। और आपका जो बात आपने रखी है कि दिव्यांग कहलाना मुझे पसंद नहीं है, निश्चित रूप से वो हम भी इस बारे में जानते हैं कि हम एक आदमी की जो गरिमा है जो देश के संविधान ने उसको दी है तो यह वो गरिमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ में भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है और वो दोनों ही आपने उसको मिसाल बनाते हुए आपने जीवन को दिया है और इसलिए हम लखनऊ से आपसे जुड़ पाए। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मन की आंखों से 107.8 FM और मैं हूं आपका होस्ट शरद। तो आज के इस शो में ममता जी से फिर हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जो उन्होंने बात कही है, देखिए 2016 का जो कानून देश में लागू है और आज भी हम देखते हैं कि बिल्डिंगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहीं रैंप नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है और बहुत सारी समस्याएं एक व्हीलचेयर पे चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन जैसा ममता जी ने बताया कि हम उनके बचपन से लेकर उनके यंग एज तक का जो स्ट्रगल है उन्होंने बताया कि वो कैसे अपना लोगों का सहयोग ले पाई, एक ही कमरे में उनको सारी चीजें उपलब्ध रहे, कमरा नंबर 16 उनके लिए एक माइलस्टोन बन गया है तो जिसको उन्होंने जिक्र भी किया, तो ये कमरा नंबर 16 की कहानी क्या है वो हम इनसे जानना चाहेंगे और कैसे वो सहयोग मिल पाया और बिल्डिंगों की जो हम हालात आज भी देखते हैं कि बिल्डिंगें एक्सेसिबल नहीं है और पोस्टिंग और ट्रांसफर के दौरान भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की चुनौतियां आती है, वहां उसको रियलाइज होता है कि मैं डिसेबल्ड हूँ, लोग कहे बिना ही कह देते। ममता जी के इंसिडेंस आपको मैं बताऊं कि एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल के मालिक से मेरी एक दिन डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उनको कहा कि आपका मॉल तो बहुत सुंदर है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, हमारे दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ सकते, आपने इसको एक्सेसिबल नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, हमें रैंप बनाने की जरूरत ही क्या है, आप पहले रैंप बनाइए फिर देखिए कि वो कैसे इस जगह
0: कैसे आप आते हैं,
1: इस मॉल को कैसे घेर लेंगे, तो आप एक बार मौका तो देखिए दीजिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वही बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सरदार पटेल को कही थी कि आप, मैं किसान का बेटा हूँ मुझे एक मौका तो दीजिए संविधान लिखने के लिए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात जो बात आपने अभी कही, तो ममता जी इन सारी बातों पर हम आपको सुनना चाहेंगे।
0: देखिए जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स थे, तो मैं जैसे ही पहुंची तो मैं और मेरी सिस्टर, तो उन्होंने 4 लड़के आए और जैसे गॉड सेंट होते हैं उस तरह उन्होंने मेरी व्हीलचेयर सहित मुझे उठा के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे भगवान के 8 हाथ आए और उन्होंने मुझे उठाया और ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारे क्लास नीचे थे, कुछ क्लासेस नीचे भी थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन मेरे साथियों ने जो मैंने को एजुकेशन में ही हमेशा थ्रू आउट पढ़ा है, तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके कोई ब्रदर है क्या, तो मैंने कहा अरे आप एक ब्रदर की बात करते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई हैं, आप लोग मेरे क्या हैं, भाई तो हैं बस उस दिन का दिन। उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अप्रोच किया और मेरी प्रॉब्लम को बताया, मुझसे मिलवाया और उसके बाद तो प्रिंसिपल मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक क्लास क्या मतलब हर क्लास हर ट्यूटोरियल हर लाउड साइड लेक्चर सब रूम नंबर 16 फॉर ऑल द 4 इयर्स वहीं पे ऑर्गेनाइज हुए। इतना ज्यादा सहयोग मुझे मिला, मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे रिक्शे से लेके जाती थी, ईश्वर की दया ही, मैं तो हर अपने मैंने जो किया सो किया लेकिन ईश्वर का पूरा हाथ मेरे पर रहा, वरदहस्त जिसको कहते हैं, मेरे परिवार ने जो मदद की उसके अलावा साथियों ने और ईश्वर का वरद हस्त हमेशा मेरे पर रहा। मुझे कॉलेज ले जाने के लिए एक भैया जी मिल गए, रिक्शे वाले। तब हम लोगों के पास कार तो हुआ नहीं करती थी, तो हम दोनों रिक्शे से जाते थे। वो हाँ, हम लोगों को बहुत उससे ले जाते थे। मुझे बैडोली उठा के व्हीलचेयर पे बैठाते थे और फिर वहाँ रैंप बनवा दिया गया था, तो वो जो स्टार्टिंग के 4 जीने थे वो भी मेरे लिए बाधा नहीं बन सके। और उसके बाद तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वही वर्धा यूनिवर्सिटी से साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त की, फिर ये रिजर्व बैंक ज्वाइन किया। लेकिन पढ़ाई की वो तो भूख मेरी कभी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके LLB की शिक्षा प्राप्त की। मैंने LLB भी की भी डिग्री पाई और वहाँ ज्वाइन करा नहीं, लेकिन मैं एग्जाम देने गई और वहाँ के जो डीन थे वो स्वयं मुझे अपने घर बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ममता, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर लो आके मेरे घर पे। और मैं उनके घर में जाती थी और वो मुझे गाइड करते थे। और इस तरह मैंने अपना LLB भी कंप्लीट किया। मुझे शरद जी हमेशा से डॉक्टर बनने की बड़ी अभिलाषा थी, पर
1: जी
0: चूंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम थी तो ये तमन्ना कैसे मेरी पूरी होती। लेकिन देखिए, भगवान, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तमन्ना को ये समझिए कि मैंने पत्राचार द्वारा बावेली लोबियो मिशन से करस्पॉन्डेंस का होम्योपैथ के डॉक्टर का कोर्स किया,
1: जी
0: और उसके बाद मैंने वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं बन गई। और मैं होम्योपैथ की सेवाएं भी अपने ऑफिस में पहले तो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज को जब पता चला कि इस फील्ड में भी मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे लिए एक अलग से चैम्बर दे दिया और मैं उस पे बैठ के 10:45 से शाम को 5 बजे तक तो ऑफिशियल अपना कार्य का निर्वहन करती थी। और उसके बाद एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं अपने चैम्बर में बैठती थी 3 से 5, और वहाँ दवा की डिस्पेंसिंग के लिए मेरे पास कोई ना कोई आ जाता था और मैं दवा प्रिस्क्राइब किया करती थी। तो होम्योपैथ की डॉक्टरी भी मैंने इस तरह प्राप्त की और मेरी ये तमन्ना भी पूरी हो गई कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लिख गया, मैं डॉक्टर ममता कपूर हो गई। फिर
1: जी जी
0: उसके पश्चात मैंने एक फील्ड और भी, मुझे पता चला कि भारतवर्ष में रेकी का बहुत प्रचार हो रहा था उस तकरीबन 1992 में। तो मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, तो उसने कहा कि जमशेदपुर में आजकल दीदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और इससे लोगों को फायदे हो रहे हैं। तो उसने तो इस लालच में मुझे बुलाया था कि शायद मेरी अक्षमता कुछ कम हो जाए और मैं एक सामान्य जीवन बिता पाऊँ। तो मैं वहाँ गई, मैंने अट्यूनमेंट्स लिए। मुझे तो खैर मेरा आत्मविश्वास तो पहले भी कम नहीं था, लेकिन उससे और बढ़ा। लेकिन मुझे उसके बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा जब मैं होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करती थी या मैं लोगों को रेकी करती थी, तो उससे लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो ग्रेट ज्ञान वाटर मास्टर थे, उन्होंने मुझे मास्टरशिप दे दी। तो अब मैं रेकी मास्टर भी हूँ और अपना रेकी द्वारा भी ट्रीटमेंट देती हूँ, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। और इस तरह मेरा, सही पूछे तो मेरे को अपना दिन थोड़ा 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा महसूस होता है।
1: जी, तो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना यही इंसान की कुवत है और यही इंसान का जज्बा है। और जब हमारे साथ कोई समस्या हो जाए या कहीं कि
0: हाँ
1: हमें कोई चुनौती आ जाए, तो फिर उस चुनौती को पार पा जाना ही इंसान होना है। तो आपने सिर्फ अपने कॉलेज में रैंप, अपने स्कूल में रैंप ही नहीं बनवाया, और बल्कि आप अभी आज बहुत सारे लोगों को इलाज भी दे पा रही हैं, या कहें कि उन्हें जीवन दान भी दे कर पा रही हैं अपने मेडिकल की शिक्षा के माध्यम से। तो मैं उन प्रिंसिपल, उन आचार्य का नाम इस शो में जरूर चाहूंगा जिन्होंने इतना मेहरबान होके, या आपसे मुतमईन होके उन्होंने वो रैंप जो है वहां पर बनवा दिया, और जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि भले ही मुझे रैंप की ऐसी आवश्यकता नहीं है नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते, परंतु मेरे शहर में ही एक पास में ही एक शौचालय बन रहा था, साबित कॉलेज से कहते हैं, और उस पर रैंप नहीं बनवाए बिना ही उसका उद्घाटन किया जा रहा था। तो मैंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके लिए चेताया कि आप रैंप आवश्यक रूप से बनाएं, देश का कानून भी है और आवश्यकता भी है। फिर वो काम बड़ा देर सवेर हुआ और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शहर के शौचालय बन पाए, उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया गया। मैरिज गार्डन्स को एक्सेसिबल किया जा सके, उसके लिए मैंने एक कंप्लेन कोर्ट में लगाई और बहुत सारा एडवोकेसी करते करते करते ये जो बात है ये प्रोटेस्ट तक पहुंच गई। और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर भी कायम हुए और बहुत सारे अन्य दिव्यांगों पर भी कायम हुए राजस्थान में, और फिर मेरी नौकरी भी चली गई इस वजह से। लेकिन वो सारी चीजें हुई, हालांकि फिर वापस से नौकरी कायम हुई, फिर मैंने वापस से चीजों को किया। लेकिन वो जो जज्बा है, तो एक देखिए ना, एक वो सज्जन है जिन्होंने रैंप बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बनाया। और ऐसे भी हमारे जीवन में ऐसे भी लोग भी हैं हमारे आसपास जो जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर बात नहीं कर पा रहे, और बहुत के द्वारा कई बार बर्बरता भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे भी अनुभव हमारे कई साथियों के हमारे सामने हैं। लेकिन आपने जो बताया कि वो सज्जन कौन है, पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और बाकी साथियों पे क्या प्रभाव पड़ा आपके, वो मैं जानना चाहूंगा।
0: कॉलेज में जो गुजरात कॉलेज में तो डॉक्टर सांडिल थे
1: जी,
0: उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं मेरे लिए की और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आजीवन रहूंगी। और रिजर्व बैंक में तो सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है, वो क्योंकि मेरा कार्यकाल 36 साल का, मैंने 1975 में ज्वाइन किया रिजर्व बैंक और 2011 में वो किया, तो बहुत सारे मेरे साथ जो यहाँ पे रह चुके वो मेरी कार्य और मेरे जज्बे को देख के कहिए वो इम्प्रेस होके या मतलब सहयोग के उससे, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है। ये जो चीफ होते हैं बैंकों के उनको तो हर 3-5 साल में ट्रांसफर होकर जाना, पर जो आया उसने ये मदद की। किसी एक के नाम को नहीं कह सकती हूँ, हाँ इसमें एक हमारे बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके रिटायर हुए मिस्टर दीपक सिंघल, उन्होंने जब हमारा ऑफिस विजिट किया तो वहाँ पे जो जब मेरा पुराने ऑफिस में तो लिफ्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ लकड़ी का रैंप रख दिया जाता था, रोज मेरा रिक्शे वाला, और फिर मैंने कार ले ली थी तो खैर मेरा ब्रदर मुझे लेके जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे से दो छोटी और मेरा ब्रदर है, उनका भी बहुत सहयोग मिला माता पिता के साथ ही, और उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं की होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा ब्रदर मुझे कार से लेके जाता था और वो रैंप जो लकड़ी का बैंक ने बनवा के दिया था उसके थ्रू मैं चली जाती थी। लेकिन जब मेरा नया ऑफिस बना तो वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं थी, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर मिस्टर सिंघल वहाँ आ गए, तो मैं बैंक में शरद जी दीदी के नाम से ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तब मुझे ममता दीदी के नाम से ही, आई वॉज पॉपुलरली नोन एज ममता दीदी, तो मुझे शायद ममता कपूर के नाम से लोग कम जानते थे, ममता दीदी के नाम से बहुत जानते थे और सम्मान और प्यार भी देते थे, और बल्कि लोग कहा करते थे कि अगर किसी को कभी कोई डिप्रेशन हो तो जाके ममता के पास बैठ जाओ तो तुम्हारा डिप्रेशन तुरंत दूर हो जाएगा। दीपक सिंघल जी वहाँ आए और उन्होंने मुझे पैर लगा के व्हीलचेयर से चढ़ाते हुए देखा, और उन्होंने हमारे जो लोकल इंचार्ज थे उनसे कहा, अरे दीदी को इतनी परेशानी हो रही है आपने देखा नहीं उस दिन? मतलब आप ये सोचिए कि सुबह मैं जब आई हूँ तब मुझे पीछे से रेस्ट करके उठाना पड़ा था, और शाम को जब मैं गई हूँ तो रैंप से गई, रैंप से वापस गई, इतना कोऑपरेशन मतलब मुझे मिला
1: जी। और आपको मैं बताऊं कि श्रोता तो आपको सुन ही रहे हैं और श्रोताओं को आपको महसूस भी हो रहा होगा कि एक रूहानी रोशनी हमारे साथ है ममता दीदी के रूप में, और ममता दीदी से बात हो पा रही है। ममता जी, आप जिस संस्था में काम कर रहे थे उस संस्था में एक विशाल नाम, बहुत बड़ा नाम उस समय के डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा, जिन्हें हम हमारा कई लोग दिव्यांग लोग हमारा अपना भगवान भी कहते हैं, और भारत रत्न के भी वो दावेदार हैं, परंतु वो कब मिलेगा, कब भारत सरकार समझेगी जानेगी वो हमें नहीं पता। उनका नाम है डी आर मेहता, जो महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष हैं, और महावीर विकलांग समिति आप जानते हैं कि देश में दुनिया भर में काम कर रही है, खासतौर पे उस क्षेत्र में वाना जैसे कहते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका आज जो जल रहा है कुछ नेताओं की, क्या कहें कि भूख या हवस के चलते, और उस

0: उन देशों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग बमबारी की वजह से विकलांग हो गए हैं,
1: बहुत
0: तो
1: परेशान हो
0: उनको
1: गए
0: उनको
1: हैं।
0: लगातार वो पैर लगाने का काम वो कर रहे हैं, जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं। तो डीआर मेहता जी के आपकी संस्था में आए, तो कभी आपका उनसे कोई परिचय या कोई संपर्क कभी हुआ या कैसा उनको?
1: नहीं, उनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि
0: जी
1: मेरे मेरे उसके दौरान वो आए नहीं कभी, लेकिन मुझे नाम से अवश्य जानते होंगे। यहाँ
0: हाँ
1: लखनऊ से लेके पूरे इंडिया में एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मेरा काफी नाम रहा। ये बात को मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहना चूंकि जरूरी था तो मैंने बताया। तो मतलब मैं मेरे अपने काम के लिए तो मैं जानी गई, लेकिन एज ए होम्योपैथ डॉक्टर और रेकी स्पेशलिस्ट की तरह मुझे बहुत मिली है।
0: बिल्कुल, कुछ चीजें मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ और श्रोता भी जान रहे हैं कि समाज में कई बार कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस जहाँ पर कम है, वहां पर तो लोग ये भी समझते हैं कि सुबह सुबह अगर दिव्यांग व्यक्ति को देख लिया तो उनको लगता है कि आज हमें भोजन भी नहीं नसीब नहीं है। तो ये भी धारणा कई बार लोग हमारे बारे में कई इलाकों में रखते हैं। तो मैं तो
1: हाँ
0: यही कहना चाहता हूं, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मन की आंखों के माध्यम से, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बहन हैं,
1: बिल्कुल
0: और जहां तक आदमी की जो पहचान है उसकी काबिलियत तो उससे काम से होनी चाहिए, ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस जाति से आता है, या उसका लिंग क्या है, या वो दिव्यांग है कि नहीं। ये हमारे जीवन के मूल्यांकन, किसी व्यक्तित्व के मूल्यांकन के मानक नहीं हो सकते। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम आप जैसे शख्सियत के साथ बात करते हुए इन बातों पर फोकस करते हैं कि समाज में जितनी भी ये कुरीतियां और खास तौर पे अंधविश्वास फैला हुआ है दिव्यांगता को लेकर, ये दूर हो सके, कि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है, वो भी विवाह कर सकता है यदि चाहे तो, और वो भी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क में, अपने हुनर से, अपने कौशल से समाज को में योगदान करने की स्थिति में है। तो डीआर मेहता जी ने भी कुछ ऐसे ही दिव्यांगों से शायद वो प्रभावित हुए होंगे, और उनको फिर महावीर विकलांग समिति उन्होंने बनाने का निर्णय लिया, और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको तो कोई याददाश्त में रहा ही होगा कि वो कुछ 1990 से लेकर शायद 1991 से लेकर कुछ समय के लिए आपके यहाँ डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे, और उस दौरान
1: हाँ,
0: उन्होंने बहुत सारा काम देश भर में वो कर पाए। जी
1: मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकली चैलेंज को देती है उसके लिए भी हुआ था, नाम
0: नॉमिनेट हुआ था
1: मेरा
0: आपका नाम?
1: फर्स्ट नॉमिनेट हुआ था। हाँ,
0: जी
1: और यहाँ पर भी इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो,
0: जी
1: उसने लखनऊ में यूपी से 7 ज्वेल्स को चुना था, उसमें भी मेरा 2009 में चयन हुआ था और मुझे बहुत सम्मान उन्होंने दिया था।
0: बहुत सारी बातें आज देखिए ना, हमने मन की आंखों से के शो में आपके डॉक्टर चांडिली को भी याद कर लिया, आपके रिक्शे वाले भैया को भी याद कर लिया, उन भैया को भी याद कर लिया, वो 8 हाथ, वो हेवनली 8 हाथ जो आपके साथ आते हैं उनको भी
1: हाँ
0: हमने
1: हाँ
0: याद किया, हमने डीआर मेहता जी को भी याद किया, और हमने आपके वो सारे साथी सहयोगी उन सबको भी याद किया जो आपके जीवन में आपके साथ रहे। जी
1: बहुत अमूल्य योगदान जिनका रहा है।
0: जी और इस हरफन मौला शख्सियत को बता दूं श्रोताओं कि देखिए ना, कि चिकित्सा विज्ञान से लेकर और बैंकिंग तक की रेंज मैंने तो किसी व्यक्ति के आज तक नहीं देखी, और खैर आप पहली शख्सियत हैं जो इतनी बड़ी रेंज में इतने विशाल डायस्पोरा के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपने इधर से लेके उधर तक, के से लेके जेड तक की आपके साथ एक हुनर आपके पास है। तो ये सब जो करने की का जज्बा क्या माता पिता का रहा, या कैसे सिर्फ आपसे ऑटोमेटिकली होता रहा, कोई बाबा जैसी शक्ति आपके अंदर आई और वो चलता रहा, कैसे हुआ ये?
1: मुझे तो लगता है कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास और मतलब आगे बढ़ने के मेरी जो जज्बा था
0: जी
1: और आत्मविश्वास से और सबके सहयोग से और भगवान के वरद हस्त के कारण ये सब संभव हो पाया। नहीं तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सबके बदौलत हूँ।
0: और मैं आपको बताऊं, हमारी दो बेटियां होती हैं, एक का नाम भावना होता है ना, और तो जो भावना नाम की जो बेटी है है ना, वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है। उसको हम खिलाते पिलाते नहीं है, उसका पोषण नहीं करते, तो उसको लोगों की बहुत जल्दी से आहत होती है। तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भैया अपनी थोड़ी भावना नाम की जो बेटी है उसको आप थोड़ा खिलाए पिलाए, उसका पोषण करें, जिससे जल्दी से आहत ना हो। तो इस पर भी लोगों से हमें बात करने की आवश्यकता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में रहते हैं, और वहाँ पर तो भाईचारा बहुत सालों से अमन बना हुआ है समाज में। और मैं एक जमाने में, एक दौर में, कुछ बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रही हैं, दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं दोनों ही समुदाय से, या कहीं समुदाय से हम और भी समुदाय उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में समाज में, कि आप एक लीडर हैं और एक दिव्यांग लीडर भी हम कहेंगे आपको, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: नहीं, ये जो मुझे तो कभी भी ये जाति और धर्म और ये सब में, भाई इंसान को बस इंसान होना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इंसान में अगर इंसानियत है तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई वो नहीं है। बस केवल इंसानियत अगर उसपे है और प्यार सबके दिल में हो, इज्जत सबके सम्मान हो, बस इसी की समाज को आवश्यकता है। और बहुत दुखद है कि वो कम होती जा रही है
0: जी।
1: ये तकलीफ दे बात है
0: जी। जी बिल्कुल, समाज में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं, और हम सबको जैसे लीडरान को इस पर काम करने की जरूरत है, जो समाज में लगातार इन मुद्दों पर भी बोल सकें, बात कर सकें, और जब भी ये भावना नाम की बेटी आहत हो तो उनसे बात करें कि भैया अपनी भावना को संभाल के रखो, ये बहुत जल्दी आहत हो जाती है, इसको बाहर ना आने दिया। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे कि देखिए आपकी जो बात है, श्रोताओं आप जान लें कि खासतौर पर कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, कोई यीशु मसीह हो, वो तालीम को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो शिक्षा को बड़ी, वो बाबा साहब तो कहते हैं कि ये वो दूध है जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा और लड़ेगा। तो वही आप देखिए, आप दिव्यांग होते हुए या कहें कि आप स्त्री होते हुए भी, आपकी शिक्षा पे आपके वालिद ने, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने ध्यान दिया और आपने जीवन में अपना एक मुकाम पाया, और उसका कारण है शिक्षा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी बहुत सारे देश के बच्चों की जो हालात है आप देखते हैं
1: कि मैं कुछ बातें और भी बताना चाहूंगी। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं जो है स्कूल के, यहाँ के टॉप फोर स्कूल के बच्चों का मेरे लगातार 15-16 साल ये सब स्कूल्स के बच्चों को मैं इनवाइट करती थी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में, अपने ओआईसी से परमिशन लेके, और उनके कॉम्पिटिशन्स मैंने लगातार 15 साल करवाए हैं, और उससे भी मेरा बहुत नाम हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा आर्ट कंपटीशन का रिजल्ट, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो जब वाजपेयी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वो लखनऊ आए हुए थे और हमारा नेक्स्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो हमने उन्हें इनवाइट किया, और वो इतने जनरस और इतने अच्छे इंसान थे कि मेरी एक छोटी सी संस्था यंग फ्रेंड्स एसोसिएशन, जिसको कि मैंने रजिस्टर करवाया था, जिसके तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम मैं कराती थी, तो उसमें आने के लिए वो तैयार हो गए और वो 1.5 घंटे तक लगातार हमारे साथ रहे। सर जी, मैं 5 साल पहले मधुबन से एक हमारे पहले के जाने वाले अनिल भट्टागर, जो कि ब्रह्म कुमार और उनकी वाइफ भी ब्रह्म कुमारी में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, वो हमारे वहाँ आए, वो मुझे पहले से जानते, मेरी सिस्टर के साथ वो पढ़ा करते थे, तो वो आए, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का घर पे ही बैठे बैठे, इस पे भी मैं ईश्वर की दया ही कहूँगी कि सामने से चल के ईश्वर मेरे घर आ गए, निमित्त बन के, किसी को निमित्त बनाया उन्होंने अपना, और मिस्टर भट्टागर ने मुझे 7 दिन तक ये राजयोग और ये ब्रह्म कुमारी इसके बारे में बताया, और पिछले 5 सालों से मैं पूरी तरह बाबा की हो चुकी हूँ, बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हो चुकी हूँ, और मुझे पूरा पूरा बाबा पे विश्वास है। मैं बाबा की होने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ, और अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, ये सारी बातें अब ब्रह्म कुमारी में आने के बाद मुझे पता चली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं वो सब आत्माएं हैं और उनका हमारे साथ अटूट और भाई भाई का नाता है और ईश्वर से हमारा अटूट नाता है जो कि मुक्ति धाम शांति धाम में रहते हैं। और मैं रोज अमृत वेला में उनसे मिलन मनाती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है इसलिए मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करते हुए लेटे लेटे ही बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ और बाबा से रू रूहान करती हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और मेरी यही तमन्ना है कि मेरा जो अब बाकी जीवन जो बचा है वो बाबा की याद और साथ में गुजरे और बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैं आत्मसात करूं और धारण करके मैं बाबा के श्रीमत पे चलूं और उनके डायरेक्शन अनुसार जितना मैं मनसा वाचा कर्मणा से लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं।
0: बहुत बढ़िया श्रोताओं, आज मजा आ गया बात करके और आज हम इस बात का, इस कार्यक्रम का समापन जो है मनसा वाचा कर्मणा से ही करेंगे। मन वचन और कर्म से जब समानता आ जाती है तो जीवन के सारे रोग और सारे दुख मिट जाते हैं। ये संदेश हमको ममता जी ने अपनी बात में कहा और यही हम आज का हमारा टेक अवे है इस कार्यक्रम के लिए। मन की आंखों से केशव को जमाने और सजाने और आपकी आवाज की बुलंदी से हमें जोड़ने के लिए हम ममता जी की जो आत्मा है हम उसका धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हमसे जुड़े रहें और श्रोताओं फिर से ऐसी ही एक सत्य से मुलाकात होगी 107.8 FM पर आपके फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। और मैं आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ।
1: शरद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना और आपके इतने बड़े सम्मान के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो के काबिल मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपकी जब ज्ञान की गंगा बह रही थी तो धैर्य तो आना जरूरी था। बहुत सारे अनुभव आपने बहुत अच्छे अनुभव साझा किए हैं, मजा आ गया। आशा है कि

0: रिक्शा।
1: कहाँ जाना है माँ जी?
0: रेलवे स्टेशन। कितना लोगे?
1: 200 रुपया।
0: क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ यहाँ से।
1: इतना कम नहीं होता, अब बोहनी का टाइम है माँ जी, चलना है तो चलिए वरना जाने दो मुझे। सुबह सुबह बुढ़िया दिमाग खा रही।
0: क्या बोला, जोर से बोलो।
1: 150 लूंगा, उससे कम नहीं होगा।
0: मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ। और रिक्शा आते रहते कितने?
2: माता जी आलू गैस पर रखे हैं, एक सीटी हो गई है, एक दो और होने दो।
0: दीदी इस रिक्शा में मत जाना, ये रेलवे स्टेशन तक का ही 150 मांग रहा है, दूसरी रिक्शा मिलेगी ना।
1: अरे दीदी आप हो, आइए आइए, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, आइए ना, 120 में ही चलेंगे।
2: चलो चलती हूँ मैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना।

0: भैया माताजी से तो 150 मांग रहे थे और मुझसे 120 क्यों?
1: दीदी आपको क्या झूठ बोले, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है रहने में।
0: भैया आप रिक्शा चालकों की एक कम्युनिटी है, आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है, आपका मीटर क्यों नहीं चलता?
1: कौन मीटर चलाता है अब? सच कहूँ तो आज के जमाने में सच बोलकर कोई अमीर नहीं बना, जो चल रहा है वही करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाएं।
0: अगर दुनिया झूठ बोलती है तो क्या आप भी वही करें?
1: क्या बताऊं दीदी, आजकल सच्चाई से काम नहीं चलता, अगर मैं सही रेट बोलूं फिर भी कहेंगे भैया थोड़ा तो कम करो।
0: तो आप पहले से ज्यादा रेट बोलते हो?
1: हाँ हाँ, पहले ज्यादा बोल देता हूँ, फिर जो बार्गेनिंग करता है उसे सही रेट बता देता हूँ, ग्राहक खुश हो जाता है और मुझे भी नुकसान नहीं होता।
0: लेकिन भैया यही तो शुरुआत है उस आदत की जो पूरे समाज को बिगाड़ती है।
1: अब हम जैसे लोग अगर सच भी बोलें तो लोग हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते, इतनी धूप में इतने खराब रास्तों पर दिन भर सवारी ढोते रहते हैं, हालत खराब हो जाती है पूरी।
0: भैया सोचिए, जब आप ज्यादा रेट बताते हो तो आप ही ग्राहक को बार्गेनिंग करने की छूट दे रहे हो, क्यों ना शुरू से ही फिक्स रेट बताएं?
1: बोलना आसान है दीदी, पर जीना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े बड़े दुकानों में मॉल में कोई मोल भाव नहीं करते, पर हम गरीबों से हर बार मोल भाव करते हैं।
0: आप दिन भर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा कमाई के चक्कर में जो 30-40 रुपए ज्यादा लोगे, वही पैसा शायद अगले हफ्ते आपकी गाड़ी पंक्चर करवा देगा या घर में कोई ऐसी जरूरत खड़ी कर देगा कि वो 30 की जगह 300 चले जाएंगे। क्योंकि छोटा मोटा झूठ बोलकर पैसा तो आ सकता है, लेकिन पुण्य नहीं आता, और जो धन दुआओं के बिना आता है वो चैन और सुख कभी नहीं लाता।
1: आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया।
0: हर ग्राहक के साथ एक कर्म जुड़ता है, आप चाहो तो रोज 2 रुपए कम ले जाओ, लेकिन 2 सच्ची दुआएं साथ ले जाओ, वही दुआएं आपके बच्चों की रक्षा करेगी और घर में शांति लाएगी।
1: ये आदत तो बहुत पुरानी है, अचानक कैसे बदले?
0: जब आपकी नियत साफ, भाषा विनम्र और आत्मविश्वास पक्का होगा तो लोग आपको विश्वास से देखेंगे। फिक्स रेट बोलिए, प्रेम से बोलिए और डटे रहिए। हर बड़ी आदत एक छोटे से संकल्प से बदलती है।
1: आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, काश हर कोई ऐसा सोच पाता। कभी कभी तो कोई सवारी गुस्से से बात करती है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम चिढ़ जाता हूँ।
0: हाँ तो आप भी सेंटर आ जाया करो, आप जैसे कई लोग सेंटर पर आते हैं, आप सेंटर के सामने से ही कई बार आते जाते होंगे।
1: हाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करता रहता हूँ, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं।
0: जी भैया, लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहूँ मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं।
1: कर्म अच्छे हो वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते।
0: कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
1: ओ, अब मैं समझा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने उस दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है।
0: देखा, लाइव प्रूफ। भैया एक मिनट, कॉल आ रहा है।
2: हेलो दीदी, अब
0: अरे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते

0: कि वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने।
1: दीदी दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था।
0: क्या हुआ भैया, क्या बात है?
2: पापा इस दुनिया में नहीं रहे।
0: क्या?
3: हे भगवान।
0: शायद इसलिए भगवान कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: हाँ दीदी, सच में मुझे आज रोहन का कॉल आया। जब उसने ये बताया तो सच में मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
2: दो दिन पहले ही तो वो मिलने आए थे और कल ही उनका कॉल भी आया था। बोल रहे थे जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों साथ में सेंटर जाएंगे।
0: मैं अभी जाती हूँ उनके घर मिलने।
1: अभी रोहन की माँ से कोई बात नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, उनको बड़ा धक्का लगा है।
0: अच्छा ठीक है भैया, जब आप वहाँ जाओ तो रोहन से मेरी फोन पर बात करा देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
1: हाँ दीदी जरूर, मैं रोहन से बात करवाऊंगा।
0: देखा भैया, सुना आपने?
3: हाँ सुना मैंने, जानता हूँ मैं उनको, बड़ा भला आदमी था। लेकिन देखो ना, धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
0: साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है।
3: हाँ दीदी सच कहा आपने, आज से मैं सच के रास्ते पर चलूंगा और सिर्फ धन के लिए नहीं दुआएं भी कमाऊंगा।
4: आज जमाना बदलने का समय है, बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते, इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं, यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।

0: देखो एक बार फिर से बारिश का मौसम आ गया। क्या आपके इलाके में भी घनघोर घटा छाई हुई है और टिप टिप बारिश हो रही है? अगर नहीं हो रही हो तो हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं बादलों को, इन बादलों में छुपे प्रेम को और बारिश की बूंदों को स्वीकार कीजिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज हम देखना चाहते हैं कि बारिश के मौसम से, इस ऋतु परिवर्तन से पर्यावरण में, प्रकृति में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और यह चेंजेस देखने के लिए महसूसता की शक्ति को बढ़ाना है और सुनना है आज के गीतों को। तो रेडियो मधुबन 107.8 FM कार्यक्रम है गुलदस्ता। मैं हूँ आपकी वही सुरों की सहेली स्वर्णलता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी। क्यों ना हम उसे

0: ऋतु परिवर्तन से मनमोहक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे ही कोई ऋतु का परिवर्तन होता है, उस समय इंसान के मन में भी और बाहर प्रकृति में भी कुछ न कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, जिससे हमारा मन हर्षित हो जाता है और हर्षित मन कुछ न कुछ इजहार करना चाहता है। हर्षित मन कुछ न कुछ नया करना चाहता है ना? सुर से मन को हरने आ जाती हूँ मैं स्वर्णलता, और घटाओं बूंदों पानी से रिमझिम रिमझिम ये जो बरखा की बूंदे हैं, यह भी हम सब के हृदय को हर लेते हैं। घटा दीवानी है, नदियाँ गीत गाती है, लहरों में सरगम की गूंज होती है, मस्तानी पुरवाई चलने लगती है, बूंदों में है छमछम। तो मनमोहक बादल को देखने के लिए और प्रकृति में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसे समझने के लिए आज के गीतों को हम सुनेंगे। आज के गीतों में सिर्फ वोकल सॉन्ग्स ही नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रा भी है, साज भी सुनने को मिलेंगे, तो है ना कमाल की बात। बने रहिएगा अंत तक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुरों की सहेली के साथ आप बने रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक सुनते हुए मुस्कुराते हुए।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: मेघा गरजे बूंदन बरसे। बरखा ऋतु के आगमन पर आपने देखा कितना मन हर्षित हो रहा था, और अपने इस हर्षित स्थिति को दर्शाने के लिए मेघ मल्हार गाया जा रहा था। रिमझिम रिमझिम बूंदे आई, अपने संग ठंडी पुरवाई लाई, खिले बाग और महके चमन, भा गई बारिश सबका मन, काले बादल नभ पर छाए, देखो मोर भी नाच दिखाए। मेंढक ने गीत सुनाया, बरखा रानी का मन ललचाया। तो जब बारिश का मौसम आता है या बरखा ऋतु मेहरबान होती है, उस दौरान बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, जैसे टिप टिप पानी बरसा, घनन घनन मेघ गरजा, मेघा बरसे, छम छम नाचत आई बहार। ये सब काव्य जगत की रौनक को बढ़ाते हैं, खासकर ये शब्द। तो ऐसे ही हमारे गीतों में भी ये शब्द भरे पड़े हैं। इन शब्दों को आप चुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और मैं हूँ सुरों की मल्लिका स्वर्णलता।
1: 10 प्रकार ऑफ मल्हार, लेट्स बिगिन। मिया मल्हार।

ओम शांति, मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: बैक टू बैक दो प्रस्तुतियों का अपने आनंद लिया कार्यक्रम गुलदस्ता में, जहां पर आज हम बरखा ऋतु के आने के बाद जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे हम मनुष्यों में, चाहे प्राणी जगत में, चाहे वनस्पति जगत में, यह सब हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे म्यूजिक बनाने वाले भी इन सब बातों को देखते हैं और उसे शामिल करते हैं, चाहे धुन में, चाहे शब्दों में, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, पर वो उस सिचुएशन में सटीक शब्द ज़रूर पिरोते हैं, है ना। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हम सब एंजॉय कर रहे हैं बरखा के गीतों को। कार्यक्रम है गुलदस्ता। दोस्तों, एवरी ईयर बारिश को लाने का प्रयास किया जाता है। हमारे दिल में शास्त्रीय संगीत की जो मिठास है वह रंग जाती है। बारिश ऋतु से तपती धरती को शीतलता मिलती है और प्राणियों के हृदय में भी, वनस्पति जगत में भी हरियाली छा जाती है। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बीत जात बरखा। तो इस गीत को हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वर्षा ऋतु का आनंद आप एकांत में भी ले सकते हैं, तो परिवार वालों के साथ भी ले सकते हैं। और हाँ, यह ऋतु अपनों की याद दिलाती है, जिनके साथ आपका रेगुलर उठना बैठना होता है, जिनके साथ बहुत मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग, ऐसी रूहें आपको याद ज़रूर आएंगे। ऐसे दिनों में आपने कौन सा खास कार्य मिलकर किया जिससे आनंद दुगुना हो गया था बीते दिनों, वो बातें भी याद आती हैं। रेडियो मधुबन पर आप सब छाए हैं और आप सबको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने 10 प्रकार के आपको मल्हार सुनवाए थे। उसमें एक शब्द आया था सावन, पर जनाब अभी सावन आया नहीं है। बरखा ऋतु दो भागों में विभाजित होते हैं, एक मॉनसून का मौसम जो बरखा ऋतु लेकर आता है, और दूसरा सावन जब बारिश और तेज़ हो जाती है। तो अभी मॉनसून का प्रभाव चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। जी हाँ, मॉनसून के कारण भी बारिश में तीव्रता आ जाती है। तो आज के कार्यक्रम को आप एंजॉय कर रहे हैं और आज हमने कुछ वाद्य यंत्र भी शामिल किए हैं जिससे आप मेघ मल्हार भी सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने बैक टू बैक प्रस्तुतियों में सुना था। तो इन दिनों मेरे मन में तो बारिश के शब्द ही गूंज रहे हैं मन में। धरती पर हरियाली छाई, खेत खेत में खुशहाली आई, बच्चों ने कागज की नाव बनाई, पानी में फिर उसे दौड़ाई। तो ऐसी बातें आप भी नोट कर रहे होंगे, तो आप भी रच डालिए कोई कहानी या कोई कविता। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।
1: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बारिश पर और बरखा ऋतु पर हम विविधता से भरे गीत सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज हम सभी ने जाना कि बारिश का जो पहला फेज होता है वह मॉनसून कहलाता है और दूसरे फेज में हम सावन के महीने में एंटर करते हैं। तो सावन के महीने में बारिश अति तीव्रता में होती है और मॉनसून जो है उस समय भी बारिश बहुत होती है, लेकिन तेज हवाओं का बहाव उस समय बहुत होता है। तो मॉनसून आखिर क्या है? मॉनसून एक अरबी शब्द मौसिन से बना है जिसका अर्थ है मौसम। यह मुख्य रूप से जून से सितंबर तक हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम हवाओं द्वारा होते हैं। तो इस मौसम में क्या होता है कि गर्मियों में ज़मीन तेज़ी से गर्म हो जाता है और समुंदर से ठंडी और नमी भरी हवाएं ज़मीन की तरफ चलती हैं, जिसके कारण बारिश होती है, तूफान आते हैं, बहुत हवाएं बहती हैं और उथल पुथल खूब होती है इस समय। तो आज के प्रोग्राम को आप ध्यान से सुन रहे होंगे हमेशा की तरह। तो आइए हम अगले गीत की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां आपको सुनवाना चाहूंगी। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छा रहे हैं, गुड़ गुड़ करके बादल भी गरज रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि बरखा ऋतु में ऐसे शब्द बार बार हमें पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: तपती धरती को खुश करने के लिए और तपते मन को भी खुश करने के लिए, बारिश की बूंदों को लाने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं। कोई वाद्य यंत्र बजाकर, कोई गीत गाकर, कोई तो कविता पढ़कर, कोई तो कुछ उपन्यास रचकर। तो देखिए ना, इस समाज में लोग तरह तरह के कार्यों में लगे हैं ताकि बारिश आप तक पहुंच सके। तो उनकी इन प्रयासों को भी हम करते हैं प्रणाम, नमस्कार। और आप ऐसे ही हर साल बारिश को लाने के निमित्त बनते हैं। तो बारिश ऐसे ही नहीं आ जाती, कहीं ना कहीं उसे लाने के लिए लोगों की जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो काम करती हैं। सुखद प्रयास ही सुखद फल देते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी आपने मन को हर्षाने वाला, मन को प्रज्वलित करने वाला राग मेघ सुना, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आप सभी ने सुना और यह खास आप सबके लिए हमने पेश किया सितार में। सितार जो कि बहुत ही चर्चित वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र में हमने राग मेघ को एंजॉय किया हम सभी ने। तो आज के प्रोग्राम की विशेषता यही है कि हमने वोकल सॉन्ग के अलावा इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग भी आपके लिए रखा है। हम इसे भी सुन लें, थोड़ा सा हम अपना जो टेस्ट है वह भी बदल लें सुनने का, है ना। 10 प्रकार के मल्हार तो आपको हमने सुनवाए और इसलिए हमने राग मेघ को सुनवाया वाद्य यंत्र में। तो आज स्वर्णलता को जाने की इजाज़त दीजिए और जाते जाते आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि बारिश के पानी को हम सब थैंक यू करें, क्योंकि इसके कारण सारे रास्ते धुल जाते हैं। बड़े बड़े कार्यालय जिसको आप बाहर से धो नहीं सकते, लेकिन बारिश के पानी के कारण ये धुल जाते हैं, है ना। बारिश में कलाकारों की महफिल भी खूब सजती है, वे भी आनंद स्थिति को वातावरण में फैलाते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसके अलावा हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही हर साल हम बारिश के मौसम का लुत्फ उठाएं और बारिश हमेशा हम सबको आगे बढ़ाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही, मन को भा रही है, बागों में लताओं पर फूल खिल रहे हैं। तो आज स्वर्ण लता को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: जी मैडम, आज
0: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलीथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था
0: जी।
1: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
0: जैसे आपको जो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेकर देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथिन मुक्त को लेकर भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं इकल्ला अगर अपने अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि जब तक किसी काम को

0: हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना
1: नहीं
0: करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं।
0: जी
1: कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथीन बीनना, एक वृक्ष बनाना, और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके एक वृक्ष बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भाग जाते थे वहां से। तो इधर उधर
0: जी
1: काल पे फोन लगा के, और वो क्यों भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे, उनकी भी रुचि बढ़ती गई, और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात की यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार्य है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं। तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे। पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे। तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके, और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलिथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलिथीन दबाई उसको, बढ़िया एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है, कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ,
0: रैपर
1: सिंगल
0: की, किस प्रकार के
1: यूज
0: पॉलीथिन?
1: पॉलिथीन, सिंगल यूज जो पॉलिथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलिथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल जो,
0: प्लास्टिक।
1: हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, जितने प्रकार के रेपर, सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े एकोब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन
0: जी
1: घर पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा। तो एक ईंट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्त भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है, मैंने मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे
1: हाँ
0: उपयोग कर
1: बिल्कुल,
0: सकते
1: अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुर्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक्स
0: यस
1: की 2 लीटर की बॉटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको ठोस ठोस के भर लिया अपन ने, उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बोतलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
0: जी,
1: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने का एक मुर्दा बना सकते हैं। हमने बनाया है अभी एक मुर्दा उसको बैठने के लिए,
0: तो
1: तो बढ़िया
0: वेस्ट कपड़े
1: फर्नीचर
0: को
1: की दिशा में भी अपन
0: लेकर
1: काम कर
0: के ढक
1: सकते हैं। हाँ
0: के। जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
1: हाँ
0: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
1: समझ
0: बाद उसको
1: सकते,
0: चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या
1: हाँ
0: ऐसे ही ढक के उसको
1: ये
0: स्टील बना सकते हैं।
1: कवर बना के उसका बढ़िया। अच्छा है जी,
0: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
1: हमने पहला एक हमारे जो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई। तो
0: जी
1: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़ी एक जुनून भी था। तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है। उनको बताया सब सारी चीजें, तो

0: उनका भी कुछ जो उसमें मेम वगैरह भी थी, टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में। बढ़िया रहा। पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है, पर्यावरण
1: जी
0: प्रेमी करके, तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया, जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा, तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बोतल से इको वृक्ष बना के, इनको अंदर बोतल के अंदर पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार के क्यारी बनाई है। तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा है इन्होंने।
1: जी
0: तो वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
1: जी क्या बात है सर। जी ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके साथ
0: मेरा
1: महिलाएं भी मिल रहे हैं अभी। जी बताइए
0: जी
1: सर,
0: मतलब
1: आप
0: मैं सोचना है मेरा कि जैसे कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करें करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
1: यस बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर आपके साथ महिलाएं भी शामिल हैं, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
0: जी
1: व्यापरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का
0: जी
1: अनुभव कैसा था?
0: अब क्या इतना एक आत्मविश्वास नहीं था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का वो, तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई है उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावनाओं को, कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
0: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
1: जी बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी और उनकी क्या भूमिका है, आप बता सकते हैं?
0: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या एक मेरे दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है एक पिंकी दीदी बनते, तो
1: जी
0: मेरा क्या है जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उन्होंने की भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है, तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट दिया आपसे। तो उन्होंने की बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने कि इसको क्या, मैंने कि इसको इको ब्रिक तो बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो
1: क्या
0: वो
1: बात है
0: लेके
1: जी,
0: आया, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आया, तो 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इको ब्रिक से बढ़िया निर्माण करने वाले में, तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो क्या
1: जी
0: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना महिलाओं का, तो 15-20 महिलाएं सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई, तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी हैं, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है। वो
1: जी
0: अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको वृक्ष की बाटल लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्हें उन्होंने वीडियो देखा, तो उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
1: जी
0: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए। तो उन्होंने 9 बॉटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की।
1: क्या बात है सर जी,
0: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ते गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
1: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
0: जी
1: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से। तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं।
0: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास दो मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है। क्योंकि तो क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम रोज
1: जी
0: जाते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज बर्थडे बनाते थे, पर वो ढेर लगने लगा। तो हमने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है। तो
1: जी
0: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक
1: जी
0: निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका पॉलिथीन का। तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास
1: जी
0: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
1: जी
0: इसका
1: सर
0: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
1: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
0: ये पेन बॉक्स भी ये हमने इसका तख्ती का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
1: जी
0: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
1: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक
0: बहुत
1: बोलेंगे, तो
0: अच्छा
1: वो
0: प्रश्न था
1: आइडिया कहाँ से आया?
0: ये, क्या
1: जी
0: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, अब बाटल कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने क्या बाटल को कलेक्ट करने के लिए, हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे, क्या है वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। और मैंने क्या रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते। तो मैंने क्या एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। और तो लोगों को बताया, वहां के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि भैया कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक में कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भैया ये क्या है बोतल बैंक। मैंने बोला ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है, ये एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500-1000 वर्षों तक ये धरती पर पड़ी रहती है, अपन
1: जी
0: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे उनसे बोल सकते कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया 3-4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं,
1: जी
0: और
1: सर ग्रेट
0: वहां पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं इन 6 महीनों के अंदर।
1: ग्रेट सर ग्रेट सर, ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक, या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
0: ये हमने बनवाया, मतलब बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से सेफ देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे देखे हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
1: जी
0: लोग, सब
1: आप,
0: लोग भी अन्य जगह पे बनवा सकते हो, कोई ज्यादा।
1: जी सर, बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
0: हाँ वो बोट, जो बोटलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया। जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं, तो ढक्कनों का भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, इस दिशा में हमने कहा। आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को, तो
1: जी,
0: अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया, मेरी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर।
1: आपसे इंस्पायर होके।
0: जी
1: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
0: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी वाटर इकट्ठी हो गई, तो मैंने जब कुछ क्या है बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम,
1: जी
0: तो धीरे धीरे धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया हैं, काना कुशवाहा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा, तो फिर इसे विचार चला, काना ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई, तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी
1: जी
0: पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया। तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव प्यावरा हमारे लिए एक बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
1: एब्सोल्युटली जी सर,
0: जी
1: बहुत खूब सर। सर आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
0: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा, तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मान लो कुछ क्या बर्थडे है, शादी है, या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले, धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा है हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क देके चले जाए, और वो वापिस साफ करके हमको देके चले जाए, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा, क्योंकि
1: जी
0: कुछ चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना, अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा,
1: जी सर,
0: इसलिए
1: तो
0: बर्तन बैंक का
1: बर्तन
0: शुभारंभ।
1: मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
0: बोल क्या है उनको, मान लो सर 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन इनके ले जाना, जो उनको आवश्यकता है, मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच ऐसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, वो गिन के ले जा, वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके इनको दे जाते हैं।
1: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
0: जी बिल्कुल नहीं,
1: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं, फिर वो वापस आपको रीयूज
0: जी
1: करने के
0: वापिस
1: लिए
0: कर,
1: देते हैं।
0: जी
1: जी, बहुत खूब। तो सर, अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
0: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, और छोटे
1: ओके
0: स्तर से भी कर सकते हैं इसे भी, हमने इकोब्रिक्स का एक बढ़िया से मतलब किसी को गांव में करना है, तो बढ़िया जो भी अब गांव में छोटे 50 को परिवारों की एक बस्ती रहती है, तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गांव में।
1: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
0: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को, और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं उस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे विश्व देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था की पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, हो सकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
1: जी सर। सर जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
0: हाँ,
1: करके
0: कर
1: ये
0: सकते
1: कार्य
0: हैं
1: कर सकते हैं?
0: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना MRF प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं। जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते, वो नगर
1: जी
0: पालिका भी
1: सर।
0: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
1: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलिथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
1: जी बिल्कुल। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोलार गांधी जी से बात करेंगे, यानी कि डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर से बात करेंगे, और सोलार गांधी उन्हें क्यों कहा जाता है उनसे ही जानेंगे। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन क्या है, उनकी स्थापना उन्होंने की है, इस विषय को हम डीपली उनसे ही समझेंगे। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: जी। सर, सर आप IIT से आते हैं और फिर आप जो एनर्जी स्वराज ये जो शब्द है और ये जो फाउंडेशन आपने स्थापन किया है, तो इसके पीछे क्या जर्नी रही है?
3: वेल, हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं
2: जी,
3: और हर व्यक्ति करता है, यू नो, जाने अनजाने। कई लोगों को ये तो अनुभव है कि हम बिजली का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, LPG पे खाना बना के खाते हैं, ये सब एनर्जी है
2: जी।
3: परंतु जब हम कपड़े पहनते हैं तो भी एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि कपड़े को बनाने में खेत को जोता गया होगा, पानी दिया गया होगा, मोटर का उपयोग किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, केमिकल का, फिर बहुत सारी मशीनें चली है, तब जाके धागा बनाए, कपड़ा बनाए। जब पेस्ट हम सुबह ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, टूथब्रश का उपयोग करते हैं, वॉश बेसिन का उपयोग करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं। जब हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो सीमेंट, कॉन्क्रीट, फर्नीचर, तो ये सब भी एनर्जी का रूप है
2: जी,
3: क्योंकि एनर्जी लगी है इन सबको बनाने में। तो जाने अनजाने हम बहुत सारा एनर्जी उपयोग कर लेते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, और दुर्भाग्य से 80% जो एनर्जी है वो अभी भी कार्बन स्रोत से आती है, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG। और ये कार्बन स्रोत होने के कारण इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये गलत एनर्जी जो हम उपयोग करते हैं, मैं इसको रॉन्ग एनर्जी बोलता हूँ, कोयला, पेट्रोल, डीजल, या काली एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि दिखने में भी काला होता है
2: जी,
3: तो इसका असर के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और उसको ठीक एनर्जी पे या सही एनर्जी पे हमको जाना पड़ेगा। और जो सही एनर्जी पे सही तरीके से जाएंगे तो एनर्जी में स्वराज होगा, एनर्जी में आत्मनिर्भरता होगी। और चूंकि एनर्जी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है
2: जी,
3: तो एनर्जी स्वराज आज के आधुनिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी एनर्जी की समस्या हल होगी, ग्लोबल वार्मिंग की होगी, परंतु साथ में दूसरे कई समस्याओं को भी हम इसमें हल कर पाएंगे।
2: जी सर, तो जैसे कि आपने एमटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से और फिर आप चाहते तो आप एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते थे, ट्यूशंस ले सकते थे, उससे आप ज़्यादा इनकम कर सकते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं अकेले, तो आपके अकेले दम पर आप इस इंडिया को या भारत की जो एनर्जी लेवल है, जो गुड एनर्जीज आप लाना चाहते हैं, वो आप ले आ सकते हैं?
3: वेल, शुरुआत तो अकेले से ही होती है
2: जी,
3: है ना, एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो डेफिनेटली अकेले के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, पर किसी को तो शुरुआत करना है। और मुझे लगता है कि ये जो समस्या है आज की, जलवायु परिवर्तन, मौसम का बदलना, ये मेरी समस्या नहीं, ये आपकी भी है, है ना, माउंट आबू में सभी की है, पूरे देश में है, पर विश्व में हर व्यक्ति की है, तो मेरे अकेले करने से नहीं होगा। और चूंकि सब लोग इसमें शामिल हैं प्रॉब्लम को खड़ा करने में, इसलिए समस्या मतलब हल करने में भी सबको साथ में आना पड़ेगा, और आज और अभी आना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से सीजन बदल रहे हैं, जो गर्मी पहले थी वैसे नहीं है, जो ठंड जैसे थी वैसे नहीं है
2: जी,
3: बारिश जैसे थी वैसे नहीं, सब बदल रहा है, हमारी आंखों के सामने बदल रहा है
2: जी।
3: और ये बदलाव का दुष्परिणाम होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्ट्रेस आएगा, फसल खराब होगी, खाने का उत्पादन कम होगा, है ना, बीमारियां फैलेगी, जंगलों में आग लगेगी, ये सब ज्यादा ज्यादा होगा। तो यदि हम सबको धरती पर जीना है और ठीक से जीना है, तो इसके समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये पसंद या नापसंद का सवाल नहीं है
2: जी सर। तो जो गुड एनर्जीज है वो आमजन कैसे उसे उपयोग में ला सकता है?
3: वेल, सबसे पहले हम लोग हमेशा देश में जब चर्चा करते हैं समस्या को हल करने की, तो कैसे करें, कैसे उपयोग में लाएं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है कि सबसे पहला तरीका है कैसे ना करें
2: जी,
3: वो सीखने की जरूरत है
2: जी।
3: जैसे अभी हम इस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसी चल रहा है
2: जी,
3: और हम माउंट आबू जैसी जगह में बैठे हैं, इस सीजन में अक्टूबर में एसी की जरूरत नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: जो भी गर्मी होती है उसको यदि हम बिल्डिंग ठीक से डिजाइन करते हैं तो उसकी जरूरत ना होती। मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करता, तो कैसे प्रेस ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि प्रेस करने से एनर्जी खर्च होगी, कार्बन उत्सर्जन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो हम यदि कपड़े प्रेस करें उसका भी पर्यावरण पे फर्क पड़ रहा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ है, आयु है, वो 300 साल की होती है
2: जी।
3: मतलब आज जो हम एसी में बैठ के ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका असर दुनिया में 300 साल रहने वाला है
2: जी,
3: तो 300 साल भुगतना पड़ेगा।
2: बिल्कुल,
3: तो हम जाने अनजाने ऐसे काम करते हैं जिसका बहुत लंबा असर हो, तो ये तो पहले समझे कि क्या ना करें। क्या मैं एक साल कपड़े ना खरीदने का संकल्प ले सकता हूँ
2: जी?
3: क्या मैं ये संकल्प ले सकता हूँ कि किसी बड़ी लंबी दूर पे सिर्फ आनंद के लिए ट्रेवल नहीं करने जाएंगे, काम हो गया अलग बात है, पर आनंद के लिए नहीं जाएंगे, छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे
2: जी?
3: क्या मैं बिना फ्रिज के रह सकता हूँ? क्या मैं बिना गर्म पानी के नहाए रह सकता हूँ? तो क्या ना करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करने से। और अभी तक हमने यही सीखा है कि क्या करें, इसको कैसे करें, गाड़ी कैसे चलाएं, तेज कैसे चलाएं, एसी कैसे बनाएं, बढ़िया बिल्डिंग कैसे बनाएं, कपड़े कैसे, यही सब करने के कारण ये जो जलवायु में परिवर्तन आया है। कैसे ना करें, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल आइडिया है। और जो हमारी मिनिमम जरूरत है, गांधी जी जैसे कहते थे, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं
2: जी।
3: क्यों कहते थे, लोगों से पूछता हूँ या जो मेरे दर्शक सुन रहे होंगे वो बताएं क्यों कहते थे, सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है दुनिया में, किसी की लालच के लिए नहीं। किसी को इसका उत्तर नहीं बताएं
2: जी, जी।
3: पर सब दीवारों पे लिखा रहता है, हर स्कूल में लिखा रहता है, हर कॉलेज में लिखा रहता है। क्यों कहते थे, क्योंकि एक सत्य है, जैसे सूर्य देवता पूर्व से उगते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, ये तो सत्य है। वैसे ही हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी सब आगे बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज बढ़ नहीं सकता, ये भी सत्य है
2: जी।
3: दुनिया की कोई ताकत धरती के साइज को बढ़ा नहीं सकती। तो धरती पे तो पानी, मिट्टी और हवा सब फिक्स है, पर इंसानों को क्या लगता है, प्रगति होना चाहिए, ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ज्यादा कंजम्पशन, कैसे होगा, ये नहीं पॉसिबल है ना। जब जिस धरती से ले तो खुद ही फिक्स है, जब आपकी सैलरी फिक्स हो तो खर्चे फिक्स होना चाहिए ना
2: जी सर।
3: तो धरती फिक्स है तो जरूरतें फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स है? नहीं, सबकी जरूरतें रोज बढ़ती जा रही है, सबको ज्यादा ज्यादा ज्यादा करना है, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा ट्रेवल, ज्यादा ये, ज्यादा वो, ये सब नुकसानदायक है और इसका परिणाम लॉन्ग टर्म होता है। जी, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, खास करके एसी चलाना है ना, एसी बहुत हाई एनर्जी वाली, ये किसी अपराध से कम नहीं है
2: जी,
3: क्योंकि इसका कार्बन उत्सर्जन का असर 300 साल तक रहेगा, मतलब 10 पीढ़ियां ना, पीढ़ी को 10 साल की, 30 साल की माने तो 10 पीढ़ियां इसको भुगतने वाली है। आज जो हम कर रहे हैं, आप सोचिए ये कितना खतरनाक काम है, तो सब लोग करते हैं
2: जी, तो कंपटीशन में करते हैं,
3: कंपटीशन में करते हैं। तो जब तक हम ये विषय को ना समझेंगे, और जब तक हमारे लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या स्पिरिचुअल लीडर हो या इंडस्ट्रियल लीडर हो या एकेडमिक लीडर हो, साइंटिफिक लीडर हो, जब तक ये बात को लोगों तक नहीं समझाएंगे, मुझे लगता है दुनिया की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी
2: जी। तो आपके संस्थान का आगे क्या लक्ष्य है?
3: पहले एनर्जी स्वराज लाना है, मतलब ये जो गलत एनर्जी कार्बन वाली उसको छोड़कर सही एनर्जी, क्लीन एनर्जी, शाश्वत एनर्जी में जाना है, परंतु सही तरीके से जाना है
2: जी,
3: है ना। जैसे हम आज देखते हैं आजकल काफी सारे लोग सोलर लगा रहे हैं, और ब्रह्म कुमारीज में भी काफी सोलर लगा है, सूर्य सोलर लगा है। तो प्रश्न ये है कि मान लो हमने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने बोला कि अच्छा मांगो क्या वरदान चाहिए, और हमने कहा है ना भोलेनाथ सब पूरी धरती पे सोलर कर दो
2: जी,
3: तो क्या उससे समस्या हल हो जाएगी?
2: नहीं,
3: नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले हमें जरूरत सीमित करना पड़ेगी, क्योंकि धरती सीमित है
2: जी।
3: बहुत ज्यादा बड़ा घर बना लिया, उस पर 4 AC लगा दिए और चालों को सोलर पे कर लिया
2: जी,
3: तो क्या समस्या हल होगी? नहीं,
2: नहीं।
3: सूखी सोलर पैनल को बनाने में भी एनर्जी लगती है, उसमें आपको उसको खड़ा करने के लिए आयरन लोहा लगता है, कॉपर के केबल लगते हैं, एल्यूमिनियम की फ्रेम लगती है, इन्वर्टर लगता है, सबको बनाने में भी केमिकल लगेंगे, जमीन को खोदना पड़ेगा
2: जी,
3: तो साइड इफेक्ट होगा। तो सोलर एनर्जी पे जाना है, पर सही तरीके से जाना है। तो हमने एक 3-स्टेप अप्रोच बनाया जिसका नाम है AMG, अवॉइड मिनिमाइज जनरेट। तो ए तो पहले अवॉइड करो जो अवॉइडेबल है
2: जी।
3: क्या अवॉइडेबल है? जैसे मैंने कहा ना, कपड़े पे प्रेस करना अवॉइडेबल है, एग्जॉटिक जगह पे ट्रेवल करना अवॉइडेबल है, एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े खरीदना अवॉइडेबल है, यू नो अननेसेसरी एसी चलाना अवॉइडेबल है, दिन में लाइट चलाना अवॉइडेबल है, ऐसे 1000 काम होंगे जो अवॉइडेबल है
2: जी,
3: क्योंकि जब भी कुछ करोगे कुछ तो होगा
2: जी,
3: पर्यावरण पे 0 फर्क होगा ऐसा नहीं, कुछ होगा। अवॉइड करो, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो, कम एनर्जी में उसको चलाओ, मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तो जनरेट आखिरी होना चाहिए। तो AMG, अवॉइड फर्स्ट, मिनिमाइज सेकंड, और जनरेट एज अ लास्ट ऑप्शन
2: जी।
3: और हम सब लोग क्या करते हैं देश में, जनरेट सबसे पहला, समस्या आ गई क्या करो, सोलर कर लो
2: जी,
3: वो भी सॉल्यूशन नहीं है, पहले अवॉइड करो, मिनिमाइज करो, तभी जनरेट करो।
2: मतलब मिनिमलिज्म को सबको समझना चाहिए, जैसे हम भारत में पहले परंपरा
3: समझना नहीं समझेंगे तो बहुत मार खाएंगे प्रकृति के हाथ का
2: जी,
3: जो हम खा रहे हैं
2: जी जी,
3: है ना। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही, तो प्रकृति बख्शने वाली नहीं है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। यदि आप धरती की सीमाओं के अंदर ना रहें, तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे शरीर में यदि वो ब्लिस्टर हो जाए, फोड़ा हो जाए कुछ, तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, नहीं ज्यादा निकले तो सर्जरी करके निकाल देते हैं ना
2: जी।
3: तो प्रकृति में यदि हम फूल बन के बने रहेंगे तो प्रकृति हमको साथ रखेगी, और फोड़ा बन जाएंगे तो प्रकृति हमको निकाल के फेंक देगी
2: जी।
3: जैसे होता है कई सारी प्रजातियां है ना विलुप्त हो जाती, तो मनुष्य भी हो सकता है, इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है
2: जी। जी सर, बिल्कुल सर, जैसे कि आपने एक संकल्प लिया है कि 2030 तक है ना, ये जो आपने संकल्प रखा है उसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपने इसके लिए घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, तो इसके पीछे क्या आपके थॉट्स थे?
3: जो मेरी यात्रा है ये 11 साल की है, और मेरी 2 बेटियां हैं शादीशुदा हूँ, मैं IIT का प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे में। पर मैंने इसलिए ऐसा संकल्प लिया क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है
2: जी,
3: इसको छोटे मोटे प्रयास से और 1-2 साल से तो हल नहीं किया जा सकता, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का कम से कम 1 दशक तो देना चाहिए। और 2020 में जब मैं इमेजिनेशन कर रहा था, कल्पना कर रहा था, तो फिर लगा 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी यूनाइटेड नेशन का, उसके साथ भी अलाइन होता, और 11 एक शुभ नंबर है, तो 11 साल डिसाइड किया। फिर चूंकि पार्ट और पार्सल में इसको करने से उतना लाभ नहीं होगा कि यू नो सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया, होली दिवाली घर चले गए, तो मुझे लगा कि ये भारत में हम कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि होती है
2: जी,
3: तो इसलिए ऐसा संकल्प लिया है। और मुझे उम्मीद है कि 11 साल की यात्रा में लाखों नहीं करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ों लोग इससे जुड़ेंगे और अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को एक जीने लायक धरती छोड़ के जा सकें
2: जी। कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ?
3: कोई मेरे साथ जुड़ने का बहुत सरल तरीका है, कुछ ना करना है, वही जुड़ने का तरीका है
2: जी।
3: बहुत कुछ ना करो, एनर्जी को बचाओ, मटेरियल बचाओ। हमारा एक वाह मंडे प्रोग्राम है, वाह रिंकल अच्छे हैं
2: जी।
3: तो मंडे को हमारा आह्वान है सभी से कि बिना प्रेस के कपड़े पहने
2: जी।
3: तो आप हमसे जुड़ गए, यदि आपने दिन में बिजली बचा ली, फालतू नहीं चलाई, तो आप हमसे जुड़ गए। यदि आपने संकल्प लिया कि जब तक सामान की जरूरत ना हो उसको उपयोग करेंगे, तो जुड़ गए। सामान यदि उपयोग कर ले लिया है तो उसके पूरा उसका दुरुपयोग करेंगे, यू नो आजकल यूज एंड थ्रो हो गया है
2: जी।
3: जब तक नहीं फेंक देंगे, कपड़ा फट गया है तो उसको सी के यूज करेंगे, तो अब हमसे जुड़ गए। और एक हमारा ट्रेनिंग है एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग
2: जी,
3: एनर्जी में साक्षरता। वो ट्रेनिंग फ्री है, ऑनलाइन है, 11 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप यदि कोई भी व्यक्ति सच में सस्टेनेबिलिटी को समझना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि किसके कारण हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, कब ठीक करना चाहिए, ये सारे विषय को एक ट्रेनिंग बनाइए जो कि ऑनलाइन है, एनर्जी स्वराज पोर्टल
2: जी
3: पे मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एनर्जी लिटरेसी करिए। और ये एक ऐसी समस्या है कि आपके और मेरे करने से नहीं होगा
2: जी।
3: कार्बन डाइऑक्साइड मान लो मैंने कम कर लिया, आपने कम कर लिया उत्सर्जन, पड़ोसी ने कम नहीं किया, तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गया तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो आप उत्सर्जन करें, पड़ोसी करें, पड़ोसी देश करें, भुगतना सबको बराबर पड़ेगा
2: जी।
3: इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हम तो पहले सुधरे, पर साथ में समय खर्च करके, संसाधन खर्च करके लोगों को भी इससे जुड़े
2: जी सर,
3: और एनर्जी स्वराज की तरफ चले, तभी मुझे लगता है कि हम सबका उद्धार हो सकता है। वरना जिस स्थिति में हम जा रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कहते हैं कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है, विलुप्त हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो 2-4, 3-4 हजार, 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी धरती पर, वो कहेगी एक जमाने में धरती पर इंसान हुआ करते
2: जी।
3: तो अभी नहीं सुधरे तो फिर मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं जीवन में इरिवर्सिबल होती है
2: जी,
3: है ना। जैसे रबर को थोड़ा खींचा छोड़ दिया तो वापस अपने पोजिशन में आ जाएगा, ज्यादा खींचा तो टूट जाएगा, वैसे ही धरती को थोड़ा आपने परेशान किया, स्ट्रेस किया तो रिस्टोर हो जाएगा। ज्यादा यदि उसको स्ट्रेस कर दिया तो फिर धरती का कुछ नहीं होगा, सिर्फ मनुष्य नहीं रहेंगे धरती पर, इतना ही होगा, और साथ में 10-20 हजार दूसरे प्रजातियों को भी लेकर डूबेंगे
2: जी। तो सर आपको क्या लग रहा है, अगर भारत का हर एक नागरिक ये प्रयास करे कि वो रीयूज करे, रिसाइकल करे, और एनर्जी का उपयोग तब तक ना करे जब तक आवश्यकता ना हो, तो कितने साल में फिर जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसे हम फिर रिकवर कर सकते हैं?
3: वेल, आई मीन रिकवर करना आसान तो नहीं होगा
2: जी,
3: इसमें कई सारे दशक लगेंगे
2: जी,
3: क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा चुका है उसको आप कैसे रिस्टोर करोगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। तो ये जो यू नो, इसलिए तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है
2: जी।
3: तो ये क्लाइमेट बहुत आसानी से हमने खराब कर दिया, जोड़ना बहुत कठिन होगा, और जितना ज़्यादा तोड़ेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा इसको रिस्टोर करना, रिकवर करना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सारे स्कूल को, कॉलेजेस को, पॉलिटिशियंस को, कि हम एक हफ्ते के लिए सब बंद कर दें
2: जी,
3: है ना। क्या करें, सिर्फ क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हुआ है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, उसको फिर समझे पहले, और समझेंगे तो ही सही इलाज कर पाएंगे। वरना आजकल देखते हैं दुनिया में लोग लगे हैं पेड़ लगाना है, प्लास्टिक बचाना है, अच्छी बात है, पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक बचाना चाहिए, पर क्या इससे हमारा पर्यावरण ठीक होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कैंसर का इलाज आप पैरासिटामोल लेके नहीं कर सकते, राइट
2: जी।
3: कैंसर के इलाज के लिए आपको कीमोथेरेपी करना पड़ती है, ठीक उसी तरह से पर्यावरण बचाने का इलाज आप पेड़ पौधे लगा के नहीं कर सकते, या प्लास्टिक फ्री दुनिया बना के नहीं कर सकते। इसके लिए तो जो उसका रूट है, जो जड़ है, वो है कार्बन एमिशन, उसको ही कम करके जीरो करना पड़ेगा, तभी इसको हल कर पाएंगे।
2: तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपकी जो पुस्तक है ऊर्जा स्वराज और सत्य, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं।
3: नहीं, जो मैं 2019 में एक विश्व यात्रा पर गया था और मैंने देखा दुनिया भर के सारे देश, गरीब देश, अमीर देश, सबको आर्थिक प्रगति करना है, भले ही पर्यावरण कितना भी नुकसान हो जाए, और सबके ये जो पर्यावरण बिगड़ता है, पानी, नदियां खराब होती है, हवा खराब, उसके पीछे एनर्जी ही है
2: जी,
3: गलत एनर्जी
2: जी।
3: तो यदि हम एनर्जी को ठीक करेंगे तो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो एनर्जी स्वराज उसका सॉल्यूशन का एक तरीका है। तो उसके जो विषय में कंसेप्ट हैं, जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो मैंने इस किताब में लिखी है, और वो उसका जो सबटाइटल है एनर्जी स्वराज, मेरे सोलर के साथ प्रयोग, जैसे गांधी जी की बुक थी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, तो सोलर का उपयोग कैसे होना चाहिए, उसका प्रयोग वो भी जानना, सिर्फ सोलर लगाना सॉल्यूशन नहीं है, सोलर कैसे लगाना वो समझना जरूरी है, तभी जाके हम सोलर का उपयोग ठीक से कर पाएंगे। वरना इंसानों की फितरत है, हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी नहीं खड़ी करते
2: जी।
3: तो सोलर आज जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं वैसे ही करते रहें तो आज के 20-30 साल बाद नई समस्या खड़ी हो जाएगी। रिसाइकलिंग का क्या होगा, डंप कहाँ फेंकेंगे, ये सब उसकी समस्या है। स्वराज में वो सब डिस्क्राइब किया कि क्या और कैसे होना चाहिए।
2: तो वो चंद मिनटों में बता सकते हैं कैसे करना चाहिए उपयोग सोलर?
3: वो तरीका, वो फॉर्मूला जो मैंने बताया कि AMG अवॉइड मिनिमाइज, पहले तो अवॉइड करो
2: जी।
3: दिन में लाइट मत चलाओ, है ना, AC की मत चलाओ, बिल्डिंग को ठीक करो, AC को ठीक करने के लिए, है ना, बिल्डिंग को हम ऐसा डिजाइन करें कि वो ठंडी रहे तो AC की जरूरत ना पड़ेगी, तो उसको करो। तो आपने अवॉइड कर लिया, फिर मिनिमाइज करो, मतलब अच्छे उपकरण को उपयोग करो जो कम एनर्जी में चलते हैं। LED लाइट हो गया, आजकल नए तरह के पंखे आ गए हैं जो आधी बिजली में चल जाते हैं, BLDC पंखे हो गए
2: जी।
3: फ्रिज का उपयोग करना नहीं चाहिए, करना पड़े तो छोटा करो, है ना, 200 लीटर का, 50 लीटर का, 500 लीटर का मत करो। AC का उपयोग करना नहीं चाहिए, करना ही पड़े तो रूम को छोटा बनाओ ताकि कम AC लगे, तो मिनिमाइज करो, फिर आखिरी में जनरेट करो। हम ऐसा करने से क्या होगा, हमारी एनर्जी की जरूरत ही इतनी कम हो जाएगी कि ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लगेगा, और ज़्यादा नहीं लगेगा तो महंगा भी नहीं होगा, सरकार की सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी, पॉलिसी की जरूरत नहीं होगी, हर व्यक्ति अपने लेवल पे आत्मनिर्भर बन सकता है, एनर्जी में स्वराज ला सकता है।
2: जी सर, थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए। और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जाते जाते?
3: वेल, मैसेज तो यही है कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, और हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है, जाने अनजाने हर व्यक्ति को समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के आज बनना पड़ेगा
2: जी,
3: कल का भी समय नहीं है, आज ही, क्योंकि ये जो परिवर्तन इरिवर्सिबल है, एक बार जब उस पार चले गए, लक्ष्मण रेखा कूद गए, तो वापस नहीं आ सकते, फिर तो आपको सिर्फ भुगतना ही भुगतना है, इसलिए आज अभी से हम प्रयास करें। और फार्मूला एक ही है, AMG, अवॉइड मिनिमाइज जनरेट। आप ये जो फार्मूला जीवन के हर उस मटेरियल या एनर्जी में लगा सकते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, तो देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, नए कपड़े खरीदने का मन हुआ देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, कहीं जाने का मन हुआ देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, अवॉइड नहीं कर सकते अच्छा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, है ना, कम में काम चला सकते हैं क्या, है ना, या फिर आखिरी में फिर करना पड़े तो जनरेट करो। ये नियम हर क्षेत्र में, कपड़ों में, पानी में, घर में, बिजली में, सब में लगाएं, तब जाके हम इसको सस्टेनेबल जीवन जी सकते हैं
2: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मध्य आने के लिए, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: दोस्तों, यहीं पर रुकना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम आपको अच्छा ही लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आज हमारे मध्य डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर थे, तो यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऊर्जा स्वराज के बारे में जरूर जाने, और सर ने जो कहा AMG, अवॉइड मिनिमाइज और जनरेट, जो उनके कही हुई बात है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। नमस्ते।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी के संघर्ष की अमर गाथा, जिन जाने अनजाने अनगिनत शहीदों के खून से लिखी गई है, उन्हीं में से एक हैं अमरचंद बांठिया। बांठिया ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया के गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद बांठिया को एक बार एक सन्यासी ने बताया था कि 700 बंगाली सैनिकों को अंग्रेज सेनाधिकारियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने गाय को आराध्य मानते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर जल मार्ग से रंगून जाने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बारे में सुनकर अमरचंद बांठिया क्रूर अत्याचारी और बर्बर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देने के लिए छटपटा उठे। उन्हें ये अवसर तब मिला जब झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटी। सैनिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमरचंद बांठिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष क्रांतिकारियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीबाई के गौरवमय बलिदान के चार दिन बाद ही 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के 3 दिन बाद तक शहीद बांठिया का शव उसी पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोगों में आतंक फैला रहे और भविष्य में फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर न उठा सके। बांठिया ने अनूठे बलिदान की परंपरा को कायम करके आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की प्रेरणा दी थी।

0: आप लोग?
1: हाँ बेटा, हम लोग व्यापारी हैं और तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं। ईश्वर,
0: आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। इधर अंदर आइए, इधर अंदर खाट लगवा दूं तो आराम कर लीजिए।
1: हाँ सही कह रहे हैं आप। एक तो ये कमर दर्द, ऊपर से बस में सफर। बड़ा धन्यवाद है आपका। अरे कमल, मैं अंदर छांव में हूँ, ड्राइवर से कहो वो आराम कर ले थोड़ी देर।
2: जी महाराज।
0: आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए।
1: अरे भाई, इतनी सारी तस्वीरें और वो भी स्वतंत्रता संग्राम पर। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से हैं क्या?
0: अरे भाई, खानदान तो अलग ही बात है, पर हमारे काका को तो शौक है उन लोगों के बारे में जानने का। काका तो कहते हैं कि बेटा, काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो बात ही कुछ।
3: अरे काका, पहले पैदा हो गए होते तो हम जैसों को पता ही नहीं चल पाता क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें कुर्बान होने वाली जानों की कीमत।
0: कौन कराता हमें एहसास कि जो सुख हम आज भोग रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हो।
1: अच्छा, तो क्या ये काका इतना कुछ जानते हैं?
0: अरे हम सब यूं ही उनकी तारीफ थोड़ी करते हैं। काका से मिलते मिलते तो हमारा ज्ञान भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी बढ़ गया है। असल में बात सिर्फ उनकी तारीफ की नहीं है, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलने से अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ अच्छा ढालने का मौका मिलता है। अब मेरी ही बात लो, हूँ तो मैं इतिहास का विद्यार्थी, पर जितना मुझे काका से सुनने को मिला उतना शायद मैं खुद जानने की कोशिश भी नहीं करूँ।
1: बस बेटा, बात का सार तो यही है कि दो चार लोग भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में अपने मित्रों या मिलने जुलने वालों के साथ बातचीत जारी रखे ना, तो उससे मिलने वाली शिक्षा का प्रचार होगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी कुछ तो अपनी जिम्मेदारी और प्रेम के प्रति सजग होगी, जागेगी।
0: आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल काका की तरह। असल में आप जैसे ही यहाँ बस से उतरे ना, तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम का वो यात्री याद आ गया, अमर चंद बाठिया। काफी कुछ आपकी सी ही छवि थी उस महान शहीद की भी।
1: अच्छा, अरे भाई आपके काका तो है नहीं आज, आप ही कुछ बताइए, कौन थे अमरचंद बाठिया?
0: काका से सुना था, जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ याद है अमरचंद बाठिया के बारे में, बताने की कोशिश करता हूँ। बात तब की है जब श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चल समारोह बीकानेर से ग्वालियर की ओर गया था, और इसमें एक इतिहास भी चल रहा था।
1: इतिहास चल रहा था?
0: हाँ, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। असल में इसी यात्रा में सेठ हमीरचंद बाटिया अपने परिवार और पुत्र अमरचंद के साथ व्यापार व्यवसाय की खोज में ग्वालियर जा पहुंचे। ग्वालियर में प्रतिमा की स्थापना हुई और अमीरचंद भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। अमीरचंद का पुत्र अमरचंद अक्सर मंदिर जाया करता था,

0: आओ अमरचंद जी।
1: क्या चल रहा है महाराज?
0: बस ये सन्यासी आए हैं बाहर से, देश का हाल जान रहा था।
2: बुरी हालत है देश की भाई, अंग्रेजों के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
1: तकलीफ तो ये है कि हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण ये बाहर से आए व्यापारी शासक बन बैठे हैं।
2: ये सब गद्दारों की घुसपैठ का नतीजा है अमरचंद। ये अंग्रेज हमारे ही सैनिकों को तो भेजते हैं मरने कटने के लिए।
3: बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बंगाल से आया सन्यासी हूँ और सैनिकों की बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया। एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी।
1: बताएं महाराज।
3: बात तब की है जब बर्मा से युद्ध छिड़ा था। अंग्रेज सेना अधिकारियों ने 700 बंगाली सैनिकों को गोलियों से भून दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बैलों की पीठ पर बैठकर जलमार्ग से रंगून जाने से मना कर दिया था।

0: अत्याचार, 700 सैनिकों को मार डाला।
1: अंग्रेजों ने सैनिकों पर नहीं, हमारे अस्तित्व पर गोलियां चलाई। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को तो खदेड़ दिया जाना चाहिए देश के बाहर।
0: हाँ, इन्हें भगाना ही होगा बाहर।
1: एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, आप साधु सन्यासी लोग आत्मा को जगाने के पुण्य काम में तो लगे ही हैं, लोगों की आप पर आस्था भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सब मिलकर इस देश को अपनी आजादी के लिए जगाने का काम करें तो इससे बहुत मदद होगी।
2: हाँ हाँ, अवश्य अवश्य
3: अवश्य
2: अवश्य,
3: अब तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे।
4: हम सब अवश्य इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे अमरचंद भाई।
2: हाँ भाई अवश्य।
5: हाँ अवश्य,
1: इस मुक्ति आंदोलन का मैं भी हिस्सा बनूंगा। याद रखें, इस देश का पहला मुक्ति आंदोलन सन्यासी फकीर विद्रोह था। आप जन जागृति के साथ क्रांति की योजनाओं में भी सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

0: क्या अमरचंद बाठिया यहीं रहते हैं?
1: जी हाँ, क्या बात है?
0: उन्हें ही बताएंगे, अमरचंद जी को बुलाइए।
1: अच्छा भाई।
2: कहो सिपाही, मैं ही अमरचंद बाठिया हूँ, क्या बात है?
0: राजा अधिराज महाराज जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में तुरंत बुलाया गया है आपको।
2: परंतु क्या मैं कारण जान सकता हूँ?
0: मुझे सिर्फ इतना ही आदेश था, आप जल्दी दरबार पहुँचे।
2: ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ।

0: महाराज की जय हो। मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज जो अचानक बुलवा भेजा आपने?
1: आप पहले आसन ग्रहण करें अमरचंद जी, फिर अपराध भी बताया जाएगा। सिपाही, दीवान साहब को बुलवाओ।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: राजाधिराज, महाराजा सिंधिया के दरबार में दीवान जी हाजिर हो।

0: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज।
1: आइए दीवान जी, मुझे आपसे गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह करनी थी।
0: जी महाराज, इस पद के लिए हमें सचरित्र, ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति की आवश्यकता है और जिसकी तलाश आपके आदेशानुसार जारी है महाराज।
1: ना ना दीवान जी, अब आपको तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एक सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लिया है।
0: अच्छा, कौन है वो महाराज?
1: सराफा में रहने वाला व्यापारी अमरचंद बाठिया।
0: महाराज, मैं अभी प्रबंध करता हूं उन्हें बुलाने का।
1: कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दीवान जी, वो यहीं उपस्थित है।
2: मैं? महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना है अमरचंद। नाना, घबराओ नहीं, तुम पूरी तरह से इस कार्य के लिए योग्य हो।
2: धन्य हो महाराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ग्वालियर राज्य के कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
1: हमें तुम पर पूरा भरोसा है अमरचंद। आज मैं जीवाजी राव सिंधिया अमरचंद बाठिया को ग्वालियर का कोषाध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से अमरचंद बाठिया ग्वालियर के भामाशाह हुए।
0: बधाई हो भामाशाह, बधाई हो।
3: दस मई 1857, भारत में आजादी की पहली जंग छिड़ी। पूरा देश इस महाक्रांति में भाग ले रहा था। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का ये सिलसिला ग्वालियर तक आ पहुंचा। ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम में क्रांति की अलख जगाने के लिए यात्रा के बहाने आगरा, फतेहगढ़, प्रयाग, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, भोपाल रियासत और उज्जैन का दौरा किया। इस बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी हुआ। इसी दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ग्वालियर आकर अमरचंद बाठिया से मुलाकात की।
2: महारानी की जय हो। आपको यहाँ देखकर हमारा हौसला बढ़ गया है महारानी।
4: इस समय हम बहुत जल्दी में हैं अमरचंद, हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा।
2: आपके शौर्य को प्रणाम महारानी जी।
4: हमारे इस अभियान में एक समस्या है जिसे सिर्फ तुम हल कर सकते हो भामाशाह।
2: आप आदेश कीजिए महारानी, मैं तैयार।
4: हमने मेरठ छावनी के सिपाहियों को दिल्ली कूच के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन समस्या अर्थ की है और हम वचन दे चुके हैं कि पूरा खर्च हम उठाएंगे।
2: आप फिकर ना करें महारानी जी, अपना गंगाजली राजकोष है ना, जनता के लिए ये कोष हमेशा खुला है। बस एक अफसोस है कि महाराजा आप।
4: महाराज जीवाजी राव सिंधिया अभी अपरिपक्व हैं। उस दीवान के इशारे पर यह सब हो रहा है। खैर, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की खुशहाली के लिए स्वाधीनता यज्ञ में आगे बढ़ें। ये वक्त क्रांति में कूद पड़ने का है भामाशाह।
2: जी महारानी जी, आप आवश्यक राशि ले लीजिए।
4: पर अमरचंद, कोष हमें दे दोगे और तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो?
2: देश की स्वाधीनता के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं महारानी जी।
4: तुम्हारी सहायता से राष्ट्र को गर्व होगा अमरचंद।
3: साल भर के लगातार संघर्ष के बाद 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच क्रांति के महानायक तात्या टोपे, झांसी की रानी और नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में जा पहुंचे और सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों के साथ थी।
5: सेना क्रांतिकारियों के साथ थी, मतलब जीवाजी राव।
3: हाँ, जीवाजी राव सिंधिया और दीवान आगरा ब्रिटिश कमिश्नर के यहाँ जा पहुंचे और यहाँ ग्वालियर का शासन संचालन क्रांतिकारियों के हाथ में था। तभी आर्थिक संकट पड़ा। और तात्या टोपे ने ग्वालियर के भामाशाह अमरचंद बाठिया से बात की और तुरंत उनको रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मुलाकात के लिए बुलवाया।
6: आइए भामाशाह अमरचंद, पधारिए।
2: देश रक्षा के इस युद्ध अभियान के आगे मेरा नमन स्वीकार करें रानी साहिब।
6: इस संकट की घड़ी में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है।
2: ये हम सबका संकट है महारानी।
7: ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों और हमारी सेना के सैनिकों को युद्ध अभियान के दौरान कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। उनके हौसले टूट रहे हैं।
2: नहीं महाराज, स्वराज प्राप्ति के लिए हौसले टूटने नहीं चाहिए।
6: तो आप हमारी मदद करेंगे ना?
2: मदद नहीं महारानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने प्रजा की खुशहाली के लिए ही तो कोष का उपयोग करने की शपथ ली थी। अब तो उस संकल्प को पूरा करने का समय आया है।
6: तुम्हारे कर्तव्य और ईमानदारी को हमेशा याद रखा जाएगा भामाशाह।
2: मैं अभी खजाने से धनराशि राव साहब को दिए देता हूँ।
6: बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी। अब हमारे सैनिकों की तलवारें दुगने उत्साह के साथ गरजेगी।
2: जीत हमारी ही होगी।

0: फिर क्या हुआ?
1: 1857 की क्रांति कहने को तो असफल रही, पर पूरे देश में जन जन में आजादी की ललक को जगा गई। देश आजादी की चाह में जलने लगा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इधर राजकीय कोष क्रांतिकारियों में बांट दिए जाने के कारण अमरचंद बांटिया पर मुकदमा चला।
2: आदर आदर आदर, अमरचंद बांटिया, तुम पर दोहरे राजद्रोह का आरोप है।
3: दोहरे राजद्रोह को स्पष्ट करें ब्रिगेडियर नेपियर।
2: इन पर जो चार्जेस लगा है पर के सुनाओ।
4: ग्वालियर के भामाशाह श्री अमरचंद बाठिया पर पहला आरोप है कि अमरचंद ने ग्वालियर स्टेट के गंगा जली कोष का पैसा लक्ष्मीबाई के विद्रोही सैनिकों में बांटा, जो ग्वालियर राज्य के प्रति द्रोह है। दूसरा आरोप कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह है।
3: आपके दोनों आरोप गलत हैं ब्रिगेडियर।
2: तुम अपने बात को साबित करो अमरचंद।
3: जब मैंने अपने गंगाजली कोष का धन सैनिकों में वितरित किया, तब ग्वालियर राज पर रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब का अधिकार था। मैंने रानी की आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाया है, राजद्रोह नहीं किया।
2: दूसरा आरोप को साबित करो।
3: आपका आरोप है मैंने कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह किया, परंतु हम कंपनी सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। आपने छल बल से हमारे राज्य को हथिया लिया है, इस नाते आप हमारे दोस्त नहीं है नेपियर। और दुश्मनों का नाश करने के लिए राष्ट्र कोष खोल देना राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
2: Do not speak anymore. आगे बोलना नहीं, वरना यही शूट कर देगा। He should be hung till death. इस बामाशाह को सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। Hang his body on the tree in front of his house.
1: बाईस जून 1858 के दिन ग्वालियर के सराफा में अमरचंद बांटिया को उन्हीं के घर के सामने नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। और तो और उनकी देह को दुर्गंध आने तक वहीं लटके रहने देने के आदेश थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार इंतजार करता रहा, पर लोग रुके नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े।
5: हे बलिदानी, आप अमर हैं। आपकी देह से फैलने वाली दुर्गंध अनाचार और अत्याचार का साक्ष्य बनकर दूर दूर तक पहुंचेगी। एक एक देशवासी आपके बलिदान की सौगंध खाकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। हम आपके देश को स्वतंत्र कराएंगे। भाइयों बोलो, भामाशाह अमरचंद बाठिया
6: अमर रहे।

0: ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जंग में लड़ना या विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता आजादी प्राप्त करने का। अपनी आजादी के लिए तो हम अन्याय के खिलाफ चुप ना रहकर आखिरी दम तक लड़ सकते हैं, जो अमर चंद जी ने किया। वो तो कोई सिपाही नहीं थे, पर वो जो थे, जहां थे, वहीं रहकर उन्होंने निष्ठापूर्वक अन्याय के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी।
1: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ।
1: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया।
0: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है।
1: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना।
0: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं।
1: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना। बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है।
0: जी जी, वो तो है।
1: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
0: जी पूछिए ना।
1: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था।
0: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया। उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा।
1: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी।
0: भाई साहब, बात कुछ और थी। उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया।
1: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
0: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी। मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था।
1: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते। इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें।
0: भाई एक बात पूछें?
1: हाँ हाँ बोलो ना।
0: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर। क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए।
1: ठीक है, देखते हैं।
0: ओम शांति दीदी।
2: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए।
0: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं। उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया।
2: अच्छा, आइए आइए बैठिए। वैसे क्या करते हैं आप?
1: मेरा बिजनेस है छोटा सा।
2: अच्छा।
1: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं।
2: क्या बात है, बोलिए ना।
1: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते।
2: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
1: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना। बार बार मांगने में भी शर्म आती है, कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ।
2: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए।
1: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता। लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा।
2: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है।
1: परखने की शक्ति?
2: जी, परखने की शक्ति, किसे उधार देना है या किसे नहीं। पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ। उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ।
1: लेकिन हम कैसे किसी को जाने, हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा।
2: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
0: जी जी दीदी, बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे और वैसे ही हुआ।
2: जी बिल्कुल, ये आपके अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
1: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा को चीज करने से रोक रही होती है,
2: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
1: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
2: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
1: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया, अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
2: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
1: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
2: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
1: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
2: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
1: हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
2: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
1: और अगर फिर भी ना दे तो?
2: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
1: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
2: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
1: दीदी आखिर ये कितनी शक्तियां हैं, इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा।
2: जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं।
1: दीदी ये मन की शक्तियों को कैसे जाने, और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
2: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
1: ओ दीदी, इसकी कोई फीस?
2: नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
0: जी दीदी, हम जरूर आएंगे, पूरा 7 का कोर्स करेंगे।
2: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
1: जी दीदी, सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक का द्वारा थेमर रेडियो थेमर वास्ते ये रेडियो कार्यक्रम होता है। आज बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट प्रतिभा जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे क्योंकि सरकार का मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए, चाहे उनका लोकगीत हो चाहे उनका प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं उसको एक मंच एक स्टेज देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका में पहुंचे। गणका तो अपना स्टेशन का पास है क्योंकि तलेटी दानबा उमरिनी पास ही गणका है। पहले गणका भी हमारा उमरिनी का अंदर में था लेकिन आज डिवाइडर होने के बाद दो ग्राम पंचायत और दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई। तो इस स्कूल को आज हम आए हैं बच्चों को एक मंच देने के लिए। तो देर किस बात की, बच्चों का आवाज़ न हो ये हो ही ना सकता और बच्चों का भावना को भाव को आस्था और विश्वास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आज उपस्थित है और हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह गतिविधि कराते हैं। तो आज पढ़ाई का साथ साथ बच्चों को एक मनोरंजन का साथ साथ आस्था विश्वास में जो ध्यान रखते हैं उनको भी एक मंच देते। तब पहला प्रस्तुति एक प्रार्थना सत्र में होगा और इसका श्रेय तो प्रधान अध्यापक और हमारा प्रिंसिपल साहब को जाता है और सब स्टाफ को सब एक इस तरह से हमें चांस दिए हैं। कोई सूचना नहीं था फिर भी अचानक बच्चे आए तो सुनाएंगे एक प्रस्तुति। सभी पहले परिचय देंगे अपना अपना नाम और कौन सा क्लास।
1: माय नेम इज आलिया बानो, माय क्लास इज 7th।
2: माय नेम इज रविंद्र, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
3: माय नेम इज पूजा, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: कौन बच्चे बोलते भाई, हमारा शहरांचल बच्चों को भी ग्रामांचल बच्चे टक्कर देंगे और इंग्लिश में बोलने शुरू कर दिए, ऐसे होना चाहिए क्योंकि सभी चीज में होशियार है। चलिए एक प्रस्तुति होगी, सुनाएंगे एक प्रार्थना सत्र में जिसे माँ सरस्वती को याद करते हैं एक प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं सुनाएंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत में जब हम सुन रहे थे ध्यान से, तो ध्यान से सुन रहे थे और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको जब फॉलो करेंगे, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ जाना है। हम खुद कौन है ये अज्ञानता है, नहीं जानते मैं कौन हूँ।

0: नाम सुने ना सभी, किसका बेटी है कौन बताएगा? माँ सरस्वती किससे ज्ञान लाती है, हमें देती है, कौन बताएगा? उसका माँ बाप तो होंगे ना, होंगे कि नहीं?
1: ब्रह्मा।
0: अरे ताली बजाओ। ये ज्ञान तो एक ज्ञान मिला उसका आगे भी मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा का नंदिनी कहते हैं। किसको? सरस्वती को। और हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए ना। ब्रह्मा का बेटी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कुमारी। क्या बोलते हैं?
1: ब्रह्मा कुमारी।
0: तो माँ सरस्वती कौन हुआ? ब्रह्मा कुमारी। ताली बजाओ। हाँ, ये तो अच्छा ज्ञान मिला कि नहीं? किसको पता था? नहीं था, अभी पता चल गया इनके द्वारा, हुआ कि नहीं? तो माँ सरस्वती का ड्रेस कौन सा कलर?
2: सफेद।
0: सफेद है कि नहीं? डेली पूजा करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी बच्चे और सभी शिक्षकगण भी सुन रहे हैं, और ये वास्तविक असली जो वास्तविक परिचय होना जरूरी है। ओके, सभी माँ सरस्वती दुर्गा हमें काली सभी को पूजा करते हैं, अल्लाह को भी पूजा याद करते हैं। तो हमारा बिंदु नूर, नूर होता है ना, आत्मा नूर है, आत्मा नूर है, कोई नूर कहते हैं, ठीक है? तो कहने मतलब हम प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं ना? विद्या शिक्षा क्या करते हैं? शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान अर्जन करने, क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते करते कि नहीं? हाँ। और गीत तो प्रस्तुत किए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ सरस्वती हर स्कूल में, हर विद्यालय में हमें प्रार्थना सत्र में करते, क्योंकि हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
1: डॉक्टर।
0: हाँ, देखो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना? जब तक मंजिल हासिल नहीं होगा तब तक पढ़ते रहना, पढ़ना छोड़ना नहीं है। तुम बड़े कर?
1: टीचर।
0: टीचर, मैम। मैम देखिए आप समान मैम का पद चिन्ह पर चलेंगे ना, मैम का व्यवहार पढ़ाने का तरीका सीखना है, तब बन जाएंगे ना। हाँ, तुम
1: डॉक्टर।
0: हाँ, डॉक्टर इंजीनियर जो भी काम आपको करना है, चाहे अच्छा किसान भी बनना है, अच्छा गृहिणी भी बनना है, लेकिन आप एक एक महान है। डॉक्टर को कौन खिलाएगा? किसान तक चाहिए ना, तो अच्छा किसान भी बन सकते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था विद्यार्थी विकास में, चरित्र निर्माण में, आत्म प्रबंधन में, बच्चों का आत्मज्ञान को जागृत किया रेडियो मधुबन। छोटी सी बच्ची आए, दोनों परिया, लेकिन लेंगे उनको पहले एक ब्रेक।

न हल्के हल्के बोल न हल्के हल्के बोल न हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल न हल्के बोल न हल्के हल्के बोल न हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल न हल्के।

होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के।

बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।

0: उलझे रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना।
1: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: यस्तै कार्यक्रमको आगे बढाते आप सब सुन पारे खास गरेर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणकाका बच्चोको छोटे छोटे बच्चे लेकिन उनका अंदर में जो होश है जोश है कौन बोले कि भाई आदिवासी बच्चे लेकिन आदिवासी बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और उनका पास कोई झिझक नहीं। चलिए हमारा साथ दो छात्रा है, परी क्या नाम है?
1: पुष्पा।
0: पुष्पा, अरे वाह वेरी गुड। तुम्हारा?
1: वीरू।
0: वीरू और पुष्पा दोनों सहेली है, दोस्ती है। और क्या बताएंगे आज, गीत गाएंगे? हाँ चलिए शुरू करो।

0: खुला कर कर मुँह को धोते, मुँह को धो कर रोज नहाते, रोज नहा कर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते, जंगल में ना मोर बजा रहा है ढोल, गंदा पानी मत तुम पीना, संगा में भी कबीर जीना।
1: क्या बात, ताली बजा भाई। छोटे बच्चे हैं, इन छोटे भी कमाल करते हैं। अभी बाहर क्लास का सभी बच्चे बैठे, लेकिन छोटी बच्ची भी हिम्मत देखो, इतना बहुत का अंदर में जूनियर होकर भी सीनियर को टक्कर दिए, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह कार्यक्रम में जोड़ते हैं,
2: साथ देने के लिए छोटी सी बच्ची आई है, तो उनको स्वागत करते। क्या नाम है आपका?
3: लक्ष्मी।
2: कौन सा क्लास में पढ़ती तुम?
3: छठी।
2: छठी। स्कूल का नाम?
3: राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका।
2: विद्यालय में कौन सा मैडम आपको अच्छी लगती है, कौन सा सर आपको अच्छे लगते हैं?
3: जानकी मैडम अच्छी लगती है, और भगवाना सर अच्छे लगते हैं।
2: क्यों?
3: क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी करवाते हैं। और
2: अच्छा, कभी मार भी देते हैं? कभी मारते हैं?
3: हाँ, गलती होती है तो मारते हैं।
2: अच्छा, आप कभी गलती करते हैं? नहीं नहीं,
3: कभी हो भी जाती है।
2: हाँ, अच्छा अच्छा, बच्चे सच सच बताती है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा लगती होगा, और कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
3: हिंदी अच्छी लगती है, ऐसा सब विषय अच्छा लगता है।
2: अच्छा लगता है, तो बड़े होकर आप क्या बनेंगी?
3: डॉक्टर।
2: अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा एम्बिशन है। तो पढ़ाई कितना घंटा करते हैं?
3: घर में कभी दो घंटे भी होते जाते हैं, कभी एक भी।
2: कौन सा कलर आपको अच्छा लगता?
3: गुलाब।
2: गुलाब, अच्छा, क्यों गुलाब? क्यों?
3: क्योंकि वो भगवान के, लक्ष्मी माँ के नीचे होते हैं।
2: इसलिए आप लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता के नीचे गुलाब कलर होता है और आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कलर में आपको गुलाब पसंद है। खेल कूद में कौन सा खेल आपको पसंद है?
3: खेल
2: खेल खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल।
3: कबड्डी।
2: कबड्डी क्या है, भाई लोग का है खेल तो कबड्डी है। बहन भी खेलते हैं
3: जी।
2: कितना है वहाँ पर टीम में, कितना लोग रहते हैं?
3: यहाँ पे तो बता नहीं सर, इतने तो क्या मालूम।
2: अरे गांव में तुम जब क्या खेलते हैं गांव में, घर में?
3: घर में तो छुपन छुपी।
2: अच्छा, लक्ष्मी आप बताओ, आप तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर काम क्या होता है?
3: डॉक्टर सुई देते है, चेक करते है।
2: अच्छा, बीमारी को ठीक करते हैं। अच्छा, और कौन सा फूल आपको अच्छा लगता है?
3: गेंदे का।
2: गेंदे का फूल अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा बात पता है। मैं सुने आपका पीछे से कोई बोल रहे हैं तो कविता बहुत अच्छी आती है, तो कविता सुनाएंगे अभी?
3: जी। द छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची नौ छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची आठ। आठ छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची सात। सात छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची छह। छह छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची पांच। पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची चार। चार छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची तीन। तीन छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची दो। दो छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची एक। एक छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बचा जीरो।
2: चलो हिम्मत रखी, बिना झिझक से पहला बार जब मिली, फिर भी उनका उमंग उत्साह को सलाम करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन को, क्योंकि छोटी बच्ची है फिर भी अपना बात को तो रखी हिम्मत से। चले, पुष्पा दीदी हमारा साथ इस कविता को सुन रही थी, इस कविता से क्या सीख मिलती है वो बताएगी।
4: इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कविता के जरिए टीचर बताती है बच्चों को कि गिनतियों में से एक घटा तो कितने बचे, ये सब सिखाया गया है।
2: बच्चे कैसे गिनती सीख जाते हैं, और घटाना जोड़ना इस चीज बच्चे सीखते हैं, जैसे 10 से 1 गया तो 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, तो ऐसे सीखते हैं बच्चे। आज कविता के माध्यम से लक्ष्मी अपना बात को रखी। लक्ष्मी, आपका गांव में आज हम लोग आए हैं रेडियो मधुबन, आपको खुशी लगी
4: जी?
2: कितने खुशी है?
3: बहुत सारा
2: बहुत सारा खुशी है। ऐसे बार बार होना चाहिए
3: जी।
2: अच्छा, आपको पहला बार रेडियो में मौका मिला
3: जी,
2: तो आपको कोई झिझक डर
3: नहीं
2: लगा?
3: नहीं सर,
2: कोई डर नहीं लगा?
3: नहीं।
2: और पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: चलिए, कार्यक्रम तो एक के बाद एक बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को स्वागत करते पुनः इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस बन रहा है और सबका सहयोग। चलिए हमारा साथ पुनः उनको स्वागत करते हैं, अपना परिचय पुनः देना है।
2: मेरा नाम अरुणा, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आलिया, मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ।
1: बड़े अच्छा लगता है। घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन वगैरह।
1: और घर में कोई भी नया चीज आता है? अभी आम का सीजन है, पक्का आम आएगा तो किसको मिलेगा? पहले भाई को मिलेगा ना तुमको मिलेगा?
3: सबको ही मिलेगा।
1: भाई हो चाहे बहन हो, सबको मिलेगा। भाई भाई को आगे देगा पीछे नहीं, सभी को बराबर देखते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी लेकर हम जो बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर का दो फूल है, सबको बराबर होना चाहिए। और उनका घर में कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर। पक्का कोई भी नया चीज ड्रेस आएगा तब भी आपको मिलता है? पहले आपको मिलता है? पहले ना सबको मिलता है?
3: सबको मिलता है,
1: सबको मिलता है। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करो।
3: देश मेरे तेरी शान बेशद के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे जी जी दीवाने की, कही बोल सुहानी देखी, मंजूर यही तेरी तू चुने। देश मेरे मेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या मेरी धूल से बढ़ के, धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे अर्जी दीवाने की, यहाँ बोर्ड सुहानी देखी, मंजूर रहे जो भी तू चुने। ओ देश मेरे मेरे शान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, मेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुत। और अचानक आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था, और एवर रेडी, जब चाहे रेडी सर। और एक अंतरा एक मुखड़ा भी बोले, लेकिन जो हिम्मत है ये काम नहीं है, इसका श्रेय तो माँ बाप को जाता है और उनका गुरुजन को जाता है। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा कलर को आप अच्छा पसंद करते हैं?
2: ब्लैक।
1: ब्लैक कलर में उनको ब्लैक पसंद है, क्योंकि ब्लैक उनको अच्छा लगता है। और बड़े होकर तो बनेगी ना कुछ तो बनेगी, है ना? क्या बनेगी?
2: टीचर
1: बनेगी, पहले भी बोला था। और इसका श्रेय किसको देंगे, धन्यवाद किसको देंगे?
2: मेरे गुरुजनों को।
1: गुरुजनों को, बड़े जो गुरुजन में कौन कौन आते हैं? गुरुजन मैंने बड़े आपके कौन कौन है?
2: मेरे माता-पिता।
1: माता-पिता
2: और टीचर।
1: टीचर और बड़ा भाई,
2: बहने वगैरह,
1: बहने, दादा, दादी, काका, काकी, सब लोग आते हैं। तो उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनका प्रेरणा में वो आगे बढ़ेंगे, टीचर बनेंगी। और टीचर बनेंगे तो आपका पहला पोस्टिंग कहाँ पर होंगे, कहाँ पर आपको पसंद होगा? ना अब रोड में, ना गणका में। गणका के, गणका में अभी पढ़ रहे हैं। और जब बड़े होंगे तो हमारा सीबीओ साहब याद रखेंगे, जब भी उस समय सीबीओ साहब होंगे तो जरूर पोस्टिंग हमको यहीं पर ही उनको दे देगा, खुशी लगेगा ना?
2: हाँ,
1: अभी से एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारा मैम भी सुन रहे, मैडम आप कैसे हैं, पोस्टिंग हुई है, आपको क्या मेहनत करना पड़ा, अभी वो आपका बारे में बताए। मैडम बनेंगे तो आप कैसे मैडम बने?
4: बहुत पढ़ाई की फिर बने।
1: हाँ, बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब तक आपका मंजिल मिल नहीं रहा तब तक पढ़ाई करते हैं, है ना मैम
4: जी?
1: तो इसलिए अभी भी आप मैडम बने, तो आपको क्या लग रहा है? ऐसे भी कभी बच्चे थे आप?
4: जी हाँ, थे ना बच्चे,
1: अभी बड़े हो गए।
4: बड़े हो गए
1: तो अच्छा लग रहा है अभी।
4: हाँ।
1: तो अभी तो पैसा ही मिल रहा है,
4: ठीक
1: है ना? बच्चे पैसा मिलेगा तो सब कुछ कर सकते कि नहीं? हाँ, इसलिए पढ़ाई करेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा इंसान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का आवाज़ और मैडम का भी आवाज़। मैडम आप जाते थे, क्या कहना चाहेंगे इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, जो बच्चों को क्या सीखने को मिला?
4: इस तरह से बच्चे मतलब कुछ बोलना सीखते, आगे होके आते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है इनको, और अच्छा है।
1: अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा हुआ है, और धन्यवाद देते हैं।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते श्रोता मित्र और ग्रामवासी, खासकर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी गणका के नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज़ सुनने के पश्चात चलते हैं उपलागढ़ के नन्हे मुन्ने बच्चों का भी आवाज़ सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए 12th क्लास के बच्चियाँ उपस्थित हैं, तो उनको भी हमारा कार्यक्रम में सजाने के लिए स्वागत करते हैं। नाम के साथ सभी अपना अपना स्कूल और गांव का नाम का साथ खुद का नाम बताएंगे और बारी बारी अपना प्रस्तुतियां देंगे। तो हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने, क्योंकि आदिवासी अंचल के जो देसी गीत हैं, जो फक सॉन्ग है, वो अपना अंदाज से गाते हैं। छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं। जैसे त्यौहार हो, चाहे शादी हो, चाहे विदाई हो, सभी जगह में जब मौका मिलता है वो गीत गाते हैं। तो आज भी हमारा कार्यक्रम को सजाएंगे। उपलागढ़ के बच्चों का आवाज़ आपको अभी सुनने को मिलेगा।
2: मेरा नाम अंकिता है, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़ है।
3: मेरा नाम विनीता, मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गाँव का नाम उपलागढ़ है।
4: मेरा नाम है उर्मिला, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। गाँव का नाम उपलागढ़।
5: मेरा नाम है पुण्य कुमारी, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।
6: मेरा नाम है रमीला कुमारी, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।
7: मेरा नाम है जमुना कुमारी, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे किसी बात को लेकर। आज के लिए आप सभी से इजाजत, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: राम राम भाई, राम राम।
1: राम राम कंचन, राम राम। और भाई तबीयत ठीक है?
0: तबीयत पानी तो सब ठीक है, पर मारे तो काई है भाई। मन में पंख लाग गया जब मैं सुने कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा देनी है आटा साटा पे।
1: हाँ,
0: तो
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज सुनाई थू।
0: हाँ,
1: आटा साटा उम्र
0: उम्र
1: भर
0: भर
1: का
0: का
1: घाटा,
0: घाटा।
1: यह प्रथा है गणी ही बुरी। तो बिल्कुल यह बुरी प्रथा है और बहुत अच्छो की दो। तो पहले तो घावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधुओं रो स्वागत करा। हाँ, आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो अने कार्यक्रम में श्रोता बंधुओं ने आज आपा यो ही केवा छावा, आज आटा साटा री बात करा है। क्योंकि आटा साटा पे आपा देख रहे हैं राजस्थान रा मायने घणो टेम हो गयो, या रस्म चालिया ने या परंपरा चालिया ने।
0: हाँ, आटा साटा एक प्रकार से राजस्थान के अंदर एक परंपरा ही मान लो,
1: हाँ, जिन्हें
0: है
1: आपा कुप्रथा भी कह सका।
0: कुप्रथा है। परंपरा
1: हाँ
0: का ही परंपरा तो अच्छी होया करे, पर
1: हाँ
0: है ना, कहिए कुप्रथा है। और
1: बिल्कुल।
0: आटा साटा में एक ही परिवार बर्बाद नहीं हुआ, एक साथ एक की कमी ने दो परिवार ने भोगनो पड़े।
1: वो सही बात है। देखो आपा राजस्थान की बात करा, अभी मैं विशेषकरण गांवरी बाता की बात करा आपा, ठीक है? तो गांवारा महीने ज्यादा प्रथा है, या शहरा में तो फिर भी अत्रो कोई ध्यान नहीं देवे, आटा साटा बहुत कम होवे, लेकिन गांवरा महीने तो बस यो ही है कि आटा साटा में ही ब्याह करनो, भले तो बड़ा भाई की छोरी का एवजे काका की करानी, या अगर सगा भाई बहन वे तो भाई बहन की।
0: बिल्कुल सही बात है। मतलब ज्ञान मान ले कि कई बार तो संबंध ही हुआ है आटा साटा के बिना,
1: हाँ, कतरा का छोरा कुएं जावे।
0: कुंवारा रह जावे, क्योंकि भाई बैठे का ही है भी, परिवार में लड़की नहीं है मान ले, और तो कही है उड़ो ही है यार।
1: सही बात है।
0: और कई बार या को बहुत यान मान ले दुखद स्थिति सो
1: अरे
0: परिवार ने
1: दुखद
0: गुजरना
1: स्थिति
0: पड़े।
1: घना परिवार में वेवे, और कटे कटे देखो लोग अच्छा भी होवे, कोई डिमांड कोनी होवे,
0: हाँ
1: कोई डिमांड कोनी हो। मैं अपना आबूरा पास में एक गांव में गया हा, तो
0: हाँ
1: बटे बात की दी महिलाओं, तो वे क्यों बेन जी, हमारा गांव में भले लाख बुराई देखो पर माँ के दहेज री प्रथा अटे कोनी। माँ के जो देवे खुशी खुशी ले लेवे, कोई कई डिमांड कोनी करे कि भाई यो नहीं दी दो, वो नहीं दी दो, माँ को मान नहीं राख्यो, माँ को सम्मान नहीं राख्यो, वो कई बात कोनी। तो मैं क्यों बहुत बढ़िया, देखो ईगो बढ़कर और कई छावे जो पूरा गांव री लेडीज बात कर रही कि माँ का अटे दहेज कोनी मांगे।
0: अच्छा, आपने आबू रोड की माई
1: हाँ, आबू रोड
0: नहीं।
1: का माई नहीं, अपना एक गांव है, नाम नहीं बतावा पर पास में ही है। तो मने अच्छो लाग्यो कि देखो यह भी एक अच्छी बात है, पूरा गांव खाली एक
0: बहुत
1: समाज
0: अच्छी।
1: नहीं, हर समाज की
0: हाँ
1: महिला कह रही कि माँ के अटे कई भी नहीं, माँ परण आया माने कई भी नहीं दी दो।
0: ओ
1: हाँ ठीक है, 5 जोड़ी कपड़ा दीदा जो लेन आ
0: हाँ,
1: गया।
0: जो माता पिता की एक मन
1: हाँ
0: से इच्छा हुआ बस,
1: हाँ
0: खाली
1: मन से जो
0: मात्र।
1: इच्छा ही दे दी दो, पर अटिनो यू नहीं, क्यों यू नहीं लाइन वो नहीं लाई। मैं क्यों बहुत बढ़िया, और शिक्षित है, यूं नहीं
0: हाँ
1: है कि हाँ अनपढ़ गांव है, शिक्षित है। तो यह बात देखो, हर गांव की विशेषता तो कहीं कहीं होया ही करे।
0: वो बिल्कुल सही बात है कि देख जियान मन खास हुई तो गांव बने,
1: हाँ बिल्कुल।
0: मन
1: हाँ
0: खास ही गांव बने। जान हर मनक की अलग अलग विशेषता हुआ है, यानी हर गांव की भी अलग महक हुआ है, खुशबू हुआ है, विशेषता हुआ है।
1: बिल्कुल, पर वणी गांव रही विशेषता यह है कि हर जोड़ा आटा साटा में।
0: ओ
1: अच्छा ही
0: तो
1: है तो बुरा ही भी है।
0: हाँ,
1: और
0: देखो भाई, अठे मान ले मारो छोरो है तो बठे सो मैं लाऊं तो मने देणो भी पड़सी,
1: देनो भी
0: ई
1: पड़सी
0: वास्ते ना लेणो
1: न
0: ना
1: देनो।
0: देणो, यानी दहेज प्रथा के मामले में तो आटा साटा को और रोल है।
1: हाँ यो रोल है। तो ठीक है, खुशी खुशी कर रहे हैं जदी तो कोई तकलीफ नहीं, पर
0: बस
1: यू है कि कटे मान लो नी बनी बटे गणी मुश्किल हो जावे। वणी घावरे में बात बताऊं, वणी घावरी बेटी सामने वाला के दे रखी और सामने वाला की बेटी अटे राख रखी, ठीक है? गांव में सामने वाला की बेटी ने हाथा में रखे, तीन टाबर भी हो गया, हाथा में रखे अच्छी रखे, कोई शिकायत नहीं, कोई सब आप आपका हिसाब उरे वह। पर यहाँ की बेटी जाने सामने वाला के दीदी वे गण में न हैरान करे, सारो तो काम करावे, काम करया बावजूद भी पति मारपीट करे और सास गाली गलोच करे।
0: बताओ तो कौन रहा है।
1: हाँ तो वाह के वह कभी मारे नहीं रेणो, और घनी बार मार काटियो, कई पति दारू पी वह, और शराब भी तो एक बहुत खराब
0: हाँ,
1: आदत है ना।
0: खराब आदत है, और
1: हाँ
0: वहां में तो कोई विवेक तो रहे नहीं,
1: विवेक शक्ति खत्म हो जावे,
0: खत्म हो जावे।
1: और बाणी टाइम पे वो कतरो मार रहे हो भी नहीं ठाको नहीं होवे।
0: बड़ी बात तो आ है।
1: तो एक बार तो फ्रैक्चर कर दी, हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। तो बेचारा माँ बाप लेन आया, क्योंकि अब कर ही कौन काम,
0: कौन काम करे।
1: तो बाचा अनि गांव में लेन आया, लेन आया बिना हाउ की दी, 2 महीना 3 महीना राखी मैं के जॉइंट वे सब की दो। पाचा वो जमाई तो आयो ही है कि भाई मारी गलती होगी और अबे मैं शराब नहीं पीऊ, अबे भेज दो। माँ बाप देखो चलो सुधरवा को एक मौको देवो। ले गया बाची भेजी, तीन टाबर पढ़ाई बिगड़ी वाकी, क्योंकि तीन टाबर ने भी सास क्यों मैं को नहीं राखू। तो 2-3 महीना अटे रहा, पाचा टाबर बटे गया ठीक है, बटे 15 एक दिन तो हौरिया और पाचा वो तो शराब पीवा की आदत तो कदी छूटे गई,
0: छूटक गई
1: और पाची मार पीट की दी, और अतरी मार पीट की दी वहा हाथ की जो हड्डी पहली फ्रैक्चर भी वहा पाची वेगी।
0: ओहो
1: पाचे माँ बाप के अबे को नहीं भेजा,
0: सही बात,
1: और वहां भी क्यों अबे मैं हावरा में
0: अबे मैं नहीं जाऊं।
1: तो सासू माँ के भाई थू नहीं रहे तो थारे तीन ही छोरा छोरी ने ले जा, तो तीन ही छोरा छोरी ने लेन पियर आएगी ठीक है। अबे वाकी बेटी अनी गांव में कोई तकलीफ को नहीं, और वा भी कतरो ही समझाइयो कि भाई हाउ राखो था के कई तकलीफ है,
0: कई तकलीफ है,
1: फिर भी नहीं समझा। और अबे वे के भाई के मारो घर टूटियो तो चल थू आ जा पाची, बेटी ने के भाई थू आ,
0: यानी सोचक भी वे परेशान हुए।
1: हाँ अरे भाई था तो मार रहा, पर इन्हें तो आराम हो खाता में राख
0: रहा, खाता में राख रहा, मतलब जबरदस्ती अपनी बेटी को भी घर बिगाड़ रहा
1: है। हाँ या के मैं नहीं आऊ, मैंने कई भी तकलीफ को नहीं अटे,
0: बोलो
1: मैं नहीं आऊ, मारो घर को नहीं तोड़ू। तो माँ बाप आन बेटी का लारे अटे मारपीट के दे पिताजी, और उन्हें खींचन ले गया, कथा ना आनो ही पड़ी, तन शर्म नहीं आई रही, तारी भाभी अटे आ गई तो तू अटे क्यों बेटी सके। अरे मन का के देखो विवेक शक्ति खत्म हो जावे, जो देखो था तो पराई बेटी ने दुख दे रहा, और यह जो था कि बेटी यानी घर में है बिना हाथा में राख रहा, तो वो थाने फर्क नजर नहीं आ रही हो,
0: यानी एक घर बर्बाद हुआ कि लारे लारे जबरदस्ती दूसरो घर भी बर्बाद कर।
1: हाँ तो वे जबरदस्ती लेन गया, अब लेन चाहे तो टाबर की के पास में रहे, टाबर ने भी लेन गए, अब वहां के भाई बेंची मारे रेणो को नहीं, मारे तो मारा हावरा में रेणो, क्योंकि मारे तो आदमी भी समझदार है और मारा हाउजी भी माँ की न्यान रखे, मारो घर में क्यों तोड़ू,
0: क्यों तोड़ू।
1: पर
0: तो माँ बाप की बुरी,
1: हाँ
0: माँ बाप और भाइया की बुरी,
1: हाँ भाइया की बुरी। तो वो भाई के भाई थू परी की तो थारा ही हाथ पग तोड़ दे, थारा हराम परी के तो
0: बोलो।
1: अरे भाई तू दारू पीन थार लुगाई ने मार रहे हो है, बेन का ऊपर दादागिरी बता, दो ही घर तोड़ रहे
0: बताओ।
1: आप तो जाता रहे वहां घावरा महीने, आज भी कई वाको तोड़ने
0: फैसला नहीं हुआ,
1: हाँ फैसलो कोई हुआ। और वाह वाका घर है, और वाह वाका घर है, और वाह बेचारी रोवे है कि हमारे हार रहे, जानो हमारे छोरा छोरी की जिंदगी बगड़ जाए, और वाह तो मजदूरी कर रही, वाह तो भाई हो चली दो, जाने को नहीं, दो दो बार हड्डियां तोड़ दी थी, कौन जावे,
0: सही बात है,
1: सुधरे को नहीं,
0: और पढ़ी लिखी है नहीं की कापनो में बाप,
1: हाँ
0: आप ही फैसलो ले ले वे।
1: देख कंचन एक दो एड़ो हो कि बेटा ने पढ़ाता भी कम हा,
0: हाँ
1: और पढ़ती नहीं पढ़ती शादी करा देता,
0: करा देता
1: कि भाई मांडो करो और भेजो बेटी ना हावरे। तो अभी वे बेटिया मंच धार में आ जावे, जदी एड़ी स्थिति खड़ी हो,
0: बस बस
1: ना अटी ने जा सके ना अटी ने जा सके,
0: सोच सका।
1: अगर साल दो साल में एड़ो हादसो हो जावे तो चलो पाछे दूसरी जगह पे ही ब्याह को हो जाए। अबे तीन टावर ने लेन, एक माँ की इच्छा नहीं हो एक वकटी जावे,
0: बेचारी पहले तो समझौतो करती रही हुई,
1: हाँ हाँ पहली खूब समझौतो की अभी सुधरी अभी सुधरी, माँ बाप भी कोशिश करे भाई तू थोड़े एडजस्ट हुए एडजस्ट हुए, पर बच्चा जदी के पानी सिरू ऊपर परो जावे तो डिसीजन लेना ही पड़े। अब आके 17 साल हो गया, तीन टाबर ये थोड़ा मोटा हुआ लाग गया, काले यहाँ के ऊपर कई असर भी,
0: कई असर,
1: आदमी उधर नहीं रहो, आदमी नहीं उधर रहो, पर सासू ने छावे मैं तो हूँ राखू,
0: हाँ कम से कम एक तरफ हो सारो रवे,
1: हाँ अगर वह प्रेम उठती तो भी वह अटकती,
0: तो भी वो अटकती। और देखो भाई के कई बार कई हो जावे कि आदमी सोचे या नहीं कि भाई यहाँ सास से मारो काम थोड़ी चालनो है,
1: हाँ
0: भी सही है। जागे
1: हाँ
0: है ना,
1: पर फिर भी देखो तीन टाबर ने लेन अगर अपना घर में रेवा तो किकोक तो प्रेम छावी है, अब वही दुदकारन वही दुदकारन चीज ही नहीं देवे घर में, कई बनाओ कई खाओ,
0: सही बात
1: है। तो अब मजदूरी का काम कर रही, मजदूरी कारण तीन टाबर ने पाल रही और मस्त है, बाकी बहन जी मुँह मेहनत तो नहीं घबराऊ, मेहनत ही की थी ठेठ हुई लोग आके खेता में काम करूँ, और जो मजदूरी मिले देखो मारे टाबर को मैं चलाऊ थोड़ा के माँ और भाई भी पूरा करे, क्योंकि भाई को भी घर टूट गयो, तो माँ और भाई भी थोड़ा पूरा करे कि भाई हमारी बहन है टाबर है तो कहीं नहीं, याने कटे भेजा,
0: यहाँ की विकट स्थिति हो जावे, यानी आटा साटा में,
1: हाँ आटा साटा में टूटे बटे जबरदस्त तो टूटे,
0: जबरदस्त
1: और जटे समझदारियों चल रहे बटे समझदारियों भी चल रहे,
0: कि भी मैं परेशान करूँ तो देखो हमारी बहन ने भी परेशान कर,
1: यो समझ जावे जदी तो बात ही खत्म हो जावे, पर नशो एडी चीज है सब विवेक शक्ति खत्म कर
0: खत्म हो जावेगा।
1: चल भाई कंचन एक आचो गीत सुना दा, वेका बाद पाछा आप लौट नावा हा, यारी जो कार्यक्रम गावरी बाता में सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वाह भाई, बहुत चोखो गीत लाग्यो है।
1: हाँ बहुत बढ़िया गीत है यो, यहाँ पर सुनावा।
0: वही मैं सोच रही भाई, कतरो गंभीर विषय हुआ गयो। आटा साटा में काई काई यूज है, आटा साटा का कतरे हानि समाज
1: अरे
0: में
1: गणी
0: बोली
1: हानि होवे
0: है।
1: अपना श्रोता बंधुरो पाछू स्वागत करा, नहीं तो कई दो सहेला बात करे माने भूल जावे। तो गावरी बाता कार्यक्रम में आप सगला जनारो खूब खूब स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन आपा बात कर रहे हैं कि देखो वो घर टूट्यो है, और कटे कटे समझदार लोग भी है,
0: हाँ।
1: कटे कटे समझदार है। वो एक जगह पे मैं देखो मनीष गांव में घना एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको गांव ही एडो ही आटा साटा में ही है।
0: देख भाई,
1: हाँ
0: कही है कि पूरे गांव में जनरली एक ही समाज के लोग रहे अपने,
1: हाँ
0: और एक ही समाज विशेष के अंदर ज्ञान की प्रथा हुए है।
1: हाँ
0: ज्ञान राजस्थान के अंदर देखो, मैं देखी हूं कि भी पुरोहित लोगा में ज्ञान की प्रथा है, यानी कुमार लोगा में। तो मान लो पूरे सगड़ो गांव ही ये समाज पे है, केंद्रित है, तो भी पूरे गांव में ही ज्ञान की प्रथा है।
1: बिल्कुल। और कटे कटे तो देख ले केड़ा केड़ा समाज में तो आटा साटा वगैरह मांडो ही नहीं हुआ है, ब्याह भी नहीं हुआ है।
0: ब्याह भी नहीं हुआ।
1: बात चाली विका पहले आपके है छोरी है दीवाने, यही
0: हाँ,
1: बात चाली।
0: यानी लेन और देन
1: हाँ
0: दोनों
1: हाँ
0: चीजा।
1: भले आप बेन की छोरी दो, भले भाई की छोरी दो,
0: अच्छा,
1: आप की भी साटा में दो।
0: ओहो
1: हाँ पर अगर छोरी लानी में हामे वाला की तो आपके पाचे देगी।
0: भाई, यहां तो एक महिला ने वस्तु मान लिया भी
1: हाँ वस्तु ही मान ली दे और
0: है,
1: गई। हाँ कतरी
0: बोलो।
1: बार तो अच्छी आपने जो योग्यता वाली छोरिया में ना जो ही गलत जगह पे पड़ी जावे।
0: बहुत गलत बात भाई।
1: अबे आटा साटा में देख लागी भाई मारे तो घर में बहू आनी छई जाए, मारी छोरी ने मुंह सामने दे दू और हमें वाला की छोरी लियो, तो कतरी बार लड़को योग्य नहीं वे वे
0: योग्य नहीं हो
1: सामने,
0: पछे
1: और
0: भी।
1: छोरी तो भी अपने बहू छारी अनि वास्ते अपनी छोरी ने खड्डा में दे दीता।
0: हाँ
1: अबानु किस बात सुनो थे ने कंचन, बहुत ताजा ताजा बात ही है। एक समाज है नाम नहीं ले वहां पर एक समाज में देखियो पहली बेटा के शादी कराई, ठीक है तो वह छोरी पियर गी, भाई पियर तो भेजे ही है शादी का
0: हाँ
1: बाद मांडो
0: हाँ
1: लांगवा,
0: सही
1: पियर
0: है।
1: गी विका बाद वा आई को नहीं कि मैं तो नहीं आऊं, कई कारण है अबे ठाको नहीं, कोई कहे वा छोरी के कई लारे चालू है जो भी है,
0: हाँ,
1: पर
0: खैर
1: वा
0: वो।
1: नहीं आई। ठीक है अबे माँ बाप देखियो कि अबे आपा ने एक बार को तो भाई वो एक दाग तो लाग गयो ना तो छोरो पनियोड़ो है, अबे आपा ने
0: पढ़ने
1: छोरी कौन दी, तो वहां के एक छोरा छोटी छोरी है, तो अबे करनी तो आटा साटा में ही करनी था कि आपने बिंदनी आ जावे। ठीक है तो आटा साटा में देख ली, तो अब आटा साटा में वाके छोरी बढ़िया आ रही, पड्योड़ी होशियार समझदार, और ये झोटे दे रहा वोटे छोरो प्राइवेट नौकरी करे 15,000 ये की दुकान पे बैठे, और छोरी या की एडी होशियार पड्योड़ी रूपाली और मतलब हर चीज
0: हर
1: होशियार,
0: चीज में योग्य
1: फिर भी वाके बिंदनी छारी अणी वास्ते वे सामने कहीं नहीं देख रहा, नहीं तो
0: बताओ।
1: घर है नहीं वर है। भाई देखो के तो वर देखा
0: सही
1: आजकल
0: बात
1: है
0: है,
1: तो कई छोरो ही देखे।
0: छोरा ही देखा है, वो जमाने तक गया कि आपा घर
1: हाँ
0: और वर की दोनों की एक
1: हाँ
0: बात देख लेता,
1: नहीं
0: चला
1: देखा
0: लेता।
1: वो तो कई के वर माती घर था है, गुजराती में कहावत है, तो छोरो होशियार भी तो तुझे घर कर दी,
0: दूसरा घर बनाया।
1: पर न तो छोरो होशियार है न घर दमदार है, पर माँ के स्वार्थ है कि माँ के बिंदनी छावे, अबे माँ के ठपको लाग्यो तो माँ ने छोरी कौन दी
0: छोरी कुण दी।
1: स्वतंत्र कह रहा तो, और अबे वा को वाणु जुलाई में ब्याह है, तो माँ ने समझाया कि देखो था कि छोरी एडी होशियार है तो मल जाए, और था भी थोड़ा कहीं गरीब घर की ले आ जाओ
0: हाँ,
1: छोरी
0: सो तो
1: मिल
0: है
1: जाए।
0: ही
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: पर क्या नहीं नहीं भली गरीब की पर माने कुण दी, मणि समाज में थोड़े छोरिया की कमी भी गणी है, तो अच्छा अच्छा छोरा ही बनी समाज में कुंवारा बैठा, तो वे के
0: अच्छा,
1: माने कुण दे, देखो
0: कौन
1: फलानो
0: दे।
1: कुंवारो टिकड़ो कुंवारो माने कुण दे, माके तो ठपको लाग गयो, पर मैं क्यों था का स्वार्थ की वजह छोरी को थोड़ो तो बोचो।
0: सही बात, आपने पेट जाई छोरी।
1: हाँ अणी वजह भी लोग बाग आटा साटा करवा लाग गया।
0: हाँ
1: आपा
0: देखो तो
1: सोचा
0: भाई।
1: आटो साटो बंद हो गयो, गवर्नमेंट भी बंद कर रही है, हाँ वहां की डिमांड कई कोनी, क्योंकि डिमांड कई करे जाकी छोरी मतलब बिंदनी भागी और बाकी आटा साटा में कर रहा, अच्छी पार्टी है अच्छो पैसो है, सामने परिस्थिति अतरी नहीं है।
0: और एक ही परिवार को उदाहरण थोड़ी ना है, ज्ञान का
1: हाँ
0: कतरा परिवार है, ज्ञान की समस्या से जूझ रहा है, जो आटा साटा में गलती एक जना की हुआ है और कई परिवार ने खराब करते हुए।
1: बिल्कुल
0: मान ले वो
1: या
0: लड़की
1: की
0: दूसरे
1: कोई
0: तीसरे परिवार की लाता, मान लो भैया अपनी नणंद की या की भी बेटी की ब्याह पड़ना तो एक नहीं दो नहीं बल्कि और भी कई परिवार खराब होता
1: है। वो तो है, पर आटा साटा में ऐसा नहीं है कि आटा साटा में यूं नहीं होते कि भली बेन की छोरी काले बनियो नहीं बनियो, तो काले बेन को भी जिंदगी भर को वो भी उलानो रही ना।
0: उलानो रह गयो।
1: हाँ कि भाई तू मारी छोरी ने फसाई, पर कई पतो फिर भी अत्रु मोह वे वे आटा साटा में तैयार हो जावे। ठीक है करो, लेकिन आमने सामने देखो तो खरी कि अपनी छोरी के अनुसार योग्य छोरो है कि नहीं है।
0: और वो बात कही है थोड़ी शिथिल होनी चाहिए कि भाई अगर इच्छा है तो वो खो और किने बाध्य नहीं कर सका पा।
1: बाध्य नहीं कर सका। और देखो छोरिया में सहन शक्ति की ताकत देखो, पत्र माँ बाप के सामने कभी नहीं बोले कि भाई मारे आटो साटो नहीं करनो, आज जबकि आज का युग में तो छोरिया खुद पसंद करवा लागी।
0: खुद पसंद करवा लागी। लेकिन देख भाई अठा मैं थोड़ी सी एक बात यान भी कहूं कि ये जो प्रथा है वो भी समाज में आटा साटा की जट है। नारी शक्ति अति जागरूक होनी, चुपचाप से हर बात ने एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार
1: कर ले। जटे आटो साटो बटे तो आटा साटा का है ही नहीं, प्रथा ही नहीं है। फिर भी अबे वेवा लाग गई क्योंकि छोरिया की कमी हो, छोरिया मिल नहीं रही।
0: अच्छा
1: हाँ छोरिया नहीं मिल रही, अनिवास आटो साटा कर रहा है। पहली तीजो तगड़े की कोशिश की थी पर तीजा तगड़ा में सेट नहीं हो। तीजा तगड़ा में यू है तीन पार्टी खड़ी वे वह।
0: अच्छा
1: ठीक है मारी छोरी थारा आटे, थारी छोरी दूसरा का आटे, वाकी छोरी मारा आटे। तीजो तगड़ो है शान। अब तीजा तगड़ा में वाकई सेट नहीं हुआ तो बच्चे आटा साटा मिस कर रहा, आटा साटा में कर रहा। पर लड़की को त्याग देखो, कबा विका माँ बाप को घर मांडवा का वास्ते, भाई का मांडवा का वास्ते खुद त्याग कर काढ़ो, सामने वाले कैस नहीं देखो। बाकी छोरिया भाई जो होशियार है, एक्टिव है, पढ़ोड़ी है और काम कर रही, पार्लर को कोर्स की दो सको है तो पार्लर को काम कर रही, फिर भी नखरा नहीं किता। एड़ा छोरा कलारे में क्या
0: मैं क्या जाऊं।
1: क्योंकि कलारे सेट ही नहीं बेवे, घना ही अड़ोस पड़ोस घना ही केरा करे, ये कई किदो है, कई छोरो ही नहीं देखो हुदो छोरी का लिए, फिर भी देखो छोरी को त्याग देखो।
0: नारी तो देखो हर जगह त्याग ही करे।
1: त्याग ही करे बिल्कुल बेटा। तो ये तो आज का समय री बात है, आज बहुत कम हो रहा है, पर बाकी जनी समाज में आटा साटा कोई रिवाज है, वी में तो त्याग ही त्याग है।
0: वी में तो त्याग ही त्याग है। खैर तू और मैं सरकार को हाईकोर्ट को ज्ञान के निर्णय में बहुत है, खुश है।
1: हाँ कि आपा तो खुश है ना भाई का, अच्छा है,
0: है?
1: बहुत बढ़िया है। अरे मैं तो कहूँ छोरा ने एड़ी शिक्षा और संस्कार दो, एड़ो होशियार करो कि आपके हमें चालन सगा यहाँ आवे,
0: सही बात है,
1: काबिल बनाओ ना।
0: हाँ आटा साटा ज्ञान की बात ही नहीं हुए।
1: हाँ
0: वो तो कही है, वास्तव में महिला को एक दमन है,
1: दमन
0: शोषण है।
1: हाँ
0: कि
1: शोषण ही है,
0: बिना तो इच्छा हुए वीक कुटे पे बांध दे।
1: हाँ अरे कंचन पहले यूज कहता, अरे छोरिया तो घाई है, गाय ने जटे बांधे वटी बंदी रही, खूटा पे बांधो वटी बंदी।
0: सही बात है, गाय को नाम दे दो ताकि चुपचाप है।
1: हाँ,
0: वो
1: हाँ,
0: स्वीकार कर ले कि मैंने गाय बताई, मैं सीधी हूँ।
1: हाँ तो सरकार को बहुत अच्छा
0: निर्णय है,
1: निर्णय है कि यह प्रथा खत्म हो रही है, तो बहुत बढ़िया। आपा तो अणी निर्णय राजिया। और चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया जावा को, तो आप जे भाई राम राम।
0: राम राम भाई, राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि कल हमने एक विषय लेकर बात किया था, मैं ही सफलता हूं, तो इसी विषय को लेकर आगे पार्ट टू में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी बातें और रह गई थी जो हम कल नहीं बता पाए, तो आज हम फिर से उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के हमारे खास मेहमान राजेश सर हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चलिए, मैं चाहूंगा कि सफलता मैं ही हूं ये विषय हमने कंटिन्यू करना है, तो कुछ कल की बातें जो रह गई थी आज हम फिर से उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जी।
1: जैसे आपने बताया, कल हमने जाना था कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही आनंद हूँ। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये समझा कि सफलता माना कि हम खुश रहें, आनंद में रहें, प्यार में रहें, प्यार हमको मिले, हम शांति में रहें। तो जब मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैथ में कहते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो इसका मतलब मैं ही सफलता हूँ। लेकिन इसको एक गेम से समझेंगे। जैसे हम बहुत कॉलेजेस में गए और स्टूडेंट्स को जब गेम खिलाई कि आप पेन को पास करो, उनको सिर्फ बोला कि आपको पेन को खुशी से पास करना, सिर्फ इतना ही बताया गया उनको, बोला गया। फिर उनको बोला शांति से पास करो, फिर उनको बोला इसको हंसते हंसते पास करो, तो केवल उनको बोला गया। तो जब उनसे पूछा कि जब आपको ये बोला गया कि आप खुशी से पेन पास करो, तो वो खुशी कहाँ से आई? क्योंकि जब हमने उनको पेन दिया पास करने के लिए, हमने उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, उनको कोई कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स स्कोर नहीं किए, माना उन्हें कुछ बाहरी या कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिला। लेकिन जब कहा गया खुशी से पेन पास करो, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अंदर में खुशी का भाव आ गया और खुशी से वो एक दूसरे से बात करने लगे। तो पूछा खुशी कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा अंदर से आई। जब आपको बोला शांति से पेन पास करो, तो शांति कहाँ से आई, बोले शांति

0: घटना हो जाती है और व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही टेलीफोन पे उसको मैसेज मिलता है कि आपके घर में ये हो गया, तो उसका मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो एक विचार उसको उदास कर देता है और एक ही विचार हमको क्या कर देता है, वो खुशी दे देता है, शांति दे देता है, लेकिन वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया, हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब हमको खुशी मिलेगी। हमने कंडीशन कर दिया, मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन अगर जैसे अभी हमने जाना कि मैं ही खुशी हूँ, खुशी मेरे अंदर है, लेकिन उस खुशी का हम पहले ही अंदर से आह्वान कर लें, तो क्यों नहीं अगर हम खुश होकर काम करें। जब हम खुश होकर काम करेंगे तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हम काम से एक्सपेक्ट ना करेंगे काम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपने आप को कंडीशन कर दिया, एक आधार बना दिया, एक शर्त रख दी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर लें कि खुशी तो मेरे अंदर है, प्यार मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, मुझे बाहरी चीज़ों से नहीं मिलने वाली, क्योंकि खुशी शांति आनंद ये मुझे स्वयं को चाहिए। ठीक है, मुझे अपने शरीर को भोजन देने के लिए या बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन देने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविकता मेरा जो जन्म हुआ है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ ही हुआ है। तो इस संकल्प के साथ कि मैं खुशी का सितारा हूँ, मैं शांति का सितारा हूँ, अगर रोज़ हम सुबह इसका अभ्यास कर लें, जैसे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा भी था कि रोज़ आप 10 बार लिखें सुबह कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले लिखें और दिन में भी अभ्यास करें, तो कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम ये आह्वान कर लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, आनंद का सितारा हूँ, प्यार का सितारा हूँ, तो खुशी हमारे अंदर आ जाएगी। और जब वो आएगी तो फिर आप कुछ भी करें, कोई भी काम करेंगे, है ना, या कोई भी आपको कुछ किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो मैं ऑलरेडी खुश हूँ, लेकिन उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जब आप वो काम करेंगे तो क्या होगा, और ही बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी अभिलाषा ही काम होगा तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं हुए तो दुखी हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अंदर मैं पहले खुश हूँ तो फिर जो मेरी अभिलाषा होगी कि काम होगा तो ठीक है, अच्छा होगा तो बहुत, क्योंकि आप खुश हैं तो काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अगर बाय चांस आप में किसी स्किल की कमी है, अगर वो नहीं भी अच्छा होता है, तो आप दुखी नहीं होंगे, उस काम को छोड़ नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप में मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे और उसको अच्छे तरीके से करना है और उसको बढ़िया तरीके से करना है। जैसे गीता में लिखा गया है, गीता के 18वें अध्याय में लिखा है कि निष्काम कर्म करो, लेकिन वो हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या विधि है, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए यही तरीका है कि पहले हम संकल्प कर लें कि मैं ही खुश हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, प्रेम का सितारा हूँ। अगर हम इस विधि से करेंगे तो हम में वो निष्काम भाव, निष्काम जैसे सेवा कहा गया है या निष्काम कार्य करने का भाव कहा गया है, उसको हम आसानी से अपने जीवन में ला सकते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
1: चलिए राजीव जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने बताया, अगर मैं ही खुश हूँ इस भाव को लेकर हम लोग कार्य करेंगे तो उसमें समझो हमें सफलता तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप खुश हैं। बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि चलो और थोड़ा सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण जिज्ञासा ये होगा कि हाँ ये सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए आप टाइम देंगे, खुशी से सीखेंगे और खुशी से आगे बल्कि करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर मार्जिन ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओ किसी काम के लिए नहीं हो रहा है तो आपको मार्जिन ये मिलता है कि आप नहीं भी काम होगा तो आप लर्निंग माइंड से आगे बढ़ेंगे, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, तो ये भाव को आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव जी। चलिए मैं चाहूँगा कि मैं ही सफलता हूँ इस विषय को आपने बहुत ही अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया है, तो इसका प्रैक्टिस भी हमने जैसे कि कल हमारे सभी विद्यार्थियों को बताया था, और कितना टाइम तक हमें यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा
0: कहते हैं कि

0: हमारा जीवन जो है ना, हम सारे जीवन में सारी उम्र तक सीखते हैं।
1: जी जी जी
0: तो जितना आप अभ्यास करेंगे, कहते ना करत करत अभ्यास होत चिकने पात। जैसे
1: जड़मत होत सुजान।
0: जैसे अभी आपने, अभी एशियन गेम्स चल रही हैं
1: जी जी जी जी,
0: है ना, उसमें वो कहते हैं तीर कमान लोग चलाते हैं। तो एक आम व्यक्ति भी तीर कमान चलाता है और जिसमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है वो भी तीर कमान चलाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक लक्ष्य के साथ करता है,
0: एक लक्ष्य के साथ करता है, दूसरा अभ्यास करता है। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप कितनी लगन से, कितनी तमन्ना से, कितने विश्वास के साथ करते हैं। जितना ज़्यादा आपको विश्वास होगा, जितनी लगन होगी, जितनी प्राप्ति की इच्छा होगी, उतनी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको कम से कम कंटिन्यूसली 3 महीने तक करें। वैसे प्राप्ति आपको, कईयों को हमने देखा है, कई स्टूडेंट्स को एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कईयों को 2 दिन में मिलता है, कईयों को 10 दिन में मिलता है। लेकिन जब आप इसको अभ्यास करेंगे तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं, अलग अलग व्यक्तित्व जो है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप इसको 3 मास तक करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ हो सकता है। ये एक्चुअली हम कहेंगे कि हमारे मन का भोजन है, जिसके हम कहते हैं शरीर का भोजन तो हम रोज़ करते हैं, दिन में 3 टाइम करते हैं, लेकिन हमारे मन को भी तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो खुशी, आनंद, प्रेम जो क्या है, ये हमारे मन का भोजन है, तो ये भी हमें भोजन रोज़ ही करना चाहिए।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रोज ही प्रैक्टिस करना है, रोज ही इसका प्रयोग करना है, तो आपके जीवन में ये सतत जो है निरंतर खुशी बनी रहेगी। और निरंतर खुशी में आप रहकर अगर आप काम करते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी रहेंगे। तो आशा करूँगा कि आज हमने जिस विषय को लेकर, यानी कल का विषय ही कंटिन्यू किया था, मैं ही सफलता हूँ, तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा राजेश जी एक छोटा सा मैसेज कोट करें।
0: मैसेज आज एक, मैं अगेन प्रैक्टिकली बात करूँगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हम अपने आप में संकल्प लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, लेकिन कई बार जैसे डेली कोई ना कोई हमें चैलेंजेस आते हैं, रोज़ हम उठते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जीवन नाम ही चैलेंजेस को फेस करने का है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं जो कि हमें इस संकल्प में टिकने नहीं देंगे। आप ये चैलेंज पाएंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि जैसे आप लिखेंगे या अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बुरे विचार हैं, या दूसरों ने आपसे बुरा व्यवहार किया या काम नहीं हुआ, है ना, तो वो आपको आपके उस संकल्प में टिकने नहीं देगा। तो उसके लिए एक विधि है कि रात को सोने से पहले आप 10 बार ये संकल्प तो करें ही करें, जो आप लेंगे, मैं शांति का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ, इसको लिखें। लेकिन साथ साथ अगर आप डायरी पे या किसी कागज़ पर जो आपके साथ आज हुआ, जो आपको कुछ चैलेंज आया या प्रॉब्लम आई या किसी ने आपको तंग किया, दुख दिया, या क्या कारण था आपकी परेशानी का, उसको आप डायरी पर लिख देंगे। जब आप डायरी पर लिखेंगे, लिखने के बाद अपने आप में उस खुशी का आह्वान करके उस आत्मा को जिसने मिसबिहेव किया या जो कारण था चिंता को, उसको माफ़ कर दीजिए, या अगर आपने गलती की तो स्वयं को माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि अगले दिन फिर आप उसी संकल्प में टिक पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगले दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आप कोशिश करेंगे उस संकल्प में टिकने की, लेकिन वो जो नेगेटिव बातें जो कल आपके साथ हुई थी वो याद आ जाएंगी। लेकिन कागज़ पे लिखेंगे तो रात को फिर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ब्रेन में नहीं जाएगा। तो ये भी मैं चाहूँगा अपने श्रोता गणों से कि इसका भी अभ्यास करें।
1: बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास को कैसे बढ़ाना है, ये सुंदर बात आपने बताया। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर। तब तक आप, मैं हूँ खुशी, मैं हूँ सफलता, इसका प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

वक्त गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को।

0: प्रभु।
1: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ अब तो बस करो।
1: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
4: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 5 जुलाई 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2010 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा कहे ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा सिर्फ संगम के इसी समय दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि बाबा कहे आप सब ने बाप को फिक्र देके रिटर्न में क्या ले लिया? फकूर ले लिया है, रिप्लेस कर दिया है फिक्र को फकूर से, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा कहे जो बेफिक्र बादशाह होते हैं उसके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है, और अगर फिक्र है, जो बेफिक्र बादशाह है उनके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है, और अगर फिक्र आ जाता है तो क्या दिखाई देता है? जैसे बोझ की टोकरी आ जाती है। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग किस रूप में दिखाते हैं? डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज, बेफिक्र बादशाह का लाइट का ताज, और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहीपन का ताज, बादशाहपन का ताज अर्थात रत्न जड़ित ताज। बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या कहते हैं? सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है, हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। सहज है ना? पूछते बाबा। बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय का इशारा देते हुए बाबा कहते कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर बच्चे को अपने को ये अटेंशन देना है कि एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा एक सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। बाबा क्यों ये बिंदी लगाने के लिए कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते आने वाले समय में जो लक्ष्य है कि बाप के साथ चलेंगे तो बाप तो एक सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है, तो बाबा तो एक सेकंड में जाएगा। लेकिन हमें भी अगर अभ्यास होगा बिंदु लगाने का तो बाबा के साथ जा सकेंगे। इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि उसके लिए दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। कौन सी दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो? एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए बाबा ये एक एक सेकंड की वैल्यू बताते हैं, इसलिए बाबा उसको
अंडरलाइन करने लिए कहते, और दूसरा संकल्प का खजाना। संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। तो बाबा कह, चेक करो समय की रफ्तार, सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि तो समय अमूल्य है और संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। बाप दादा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे अव्यर्थ खाते को समाप्त करो। कितना प्यार करते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे अव्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। समाप्त तो करना है, लेकिन फिर उस समय को सफल किया, सफल करना ही सफलता है।

बाबा कहते इसको विदाई दे दो। बाबा कहते आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। पुरुषार्थ को, संकल्प के खजाना और संगम के समय के खजाने को अंडरलाइन लगाओ। बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही बाबा कहते याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। तो विकर्म विनाश होंगे तब तो साथ साथ चलेंगे, इसलिए बाबा कहे याद की सब्जेक्ट पर भी विशेष अटेंशन दो। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। सभी तख्त पर तो नहीं बैठेंगे लेकिन रॉयल फैमिली में आए। अच्छा, इसकी परख क्या कि हम रॉयल फैमिली में आ सकते हैं नहीं आ सकते, कैसे पता चले? तो बाबा कहे जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ के संबंध में रहेंगे और नई दुनिया में भी रॉयल फैमिली के नजदीक संबंध में आएंगे। तो बाबा ने सर्टिफिकेट तो दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास है, अब सब सब्जेक्ट में पास होना है और पास रहना है। बाबा के पास रहना है, पास होना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन और संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा किसको देख रहे हैं? अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, सिर्फ संगम युग पर ही ये दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, इसलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। संगम के समय पर ही बाबा आकर के हम बच्चों से सारे फिक्र लेकर के हमें बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। आप सभी सवेरे से उठते हो तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो? बाबा कहते हैं अमृत वेले उठो तो भी बेफिक्र स्थिति में, सारे दिन में खाते पीते कर्म करो तो भी कोई फिक्र नहीं, और रात को सो जाओ तो भी बेफिक्र। तो बाबा कहे ऐसे बादशाह और बेफिक्र सारे दिन अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र देके फकूर ले लिया है। उस फिक्र को दे करके रिटर्न में क्या ले लिया? रिप्लेस कर दिया, फकूर ले लिया है, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? बाबा कहते हैं अगर चलते फिरते कोई फिक्र आ भी जाता है तो ये फिक्र क्या बना देता है? फकूर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है, और अगर फिक्र

आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। कहां लाइट का ताज और कहां टोकरी, बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? या फिक्र है तो बोझ है, और जहां बेफिक्र है वहां लाइट है एकदम। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं कि बच्चे इस बेफिक्र बादशाह की स्थिति में टिक जाओ। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग ने ऐसा बनाया है, डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। एक लाइट का ताज और एक रत्न जड़ित ताज, बादशाह बन करके बादशाह पने का ताज, तो डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। बाबा युक्ति बताते कि बच्चे सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? विधि बाबा बताते, सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। इतनी सहज विधि है, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, तै और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सहज है ना? हाँ, कितना सहज है। बने हो ना बेफिक्र बादशाह, प्रैक्टिकल में भी बाबा के बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकूर के बजाय फिक्र आता है, फकूर मन नशा, तो फकूर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। फिक्र कब आता है? जब तेरे के बदले मेरा कर दिया तो फिक्र आता है, जब मेरे से तेरा कर दिया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? बाबा पूछते हैं, सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकूर छोड़ के फिक्र में आ जाते हैं, क्या है रिजल्ट? पूछते हैं बाबा, ये फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकूर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह, पूछते बाबा, पक्का? कभी कभी, कभी कभी बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं, बाबा ने देखा जिन्होंने हाथ उठाया उसमें कभी कभी वाले भी हैं। बाबा कहते सेवा का फिक्र वो अलग बात है, लेकिन वह फिक्र, सेवा का फिक्र जो है वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है, मान लो अपने संस्कार से फिक्र आता है, तो उसको उसी समय ही क्या करो, मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बस इतनी सहज विधि है। फिक्र आया तो उसी समय देख लो कहां मेरा पनाया और तुरंत तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकूर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेकर फकूर देने। तो चेक करो
मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार तो नहीं होता है? मेरा मेरा करने में बहुत समय का संस्कार इमर्श तो नहीं होता है? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने बहुत बार ये इशारा दे दिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को ये अटेंशन देना है कि एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। फिक्र से फारिग होने के लिए एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा एक सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है? पूछते बाबा कि उस समय समय के सर्कमस्टेंस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहो, क्यों क्या में चले जाओ, वो सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु है। बाबा कहे बाप तो बिंदु है, सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है, तो बाबा का तो एक सेकंड में चला जाएगा तो साथ में कैसे जा सकेंगे। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे, बिंदु लगाने के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो, इस अभ्यास के लिए दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी है? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां है सब प्राप्त कराई है बाबा ने, हर चीज हमें प्राप्त कराई है। क्योंकि यह संगम का समय, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, तो यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो। ये संगम के समय को वरदान है, अमूल्य है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन कितना है? तो बाबा कहे एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। दूसरा संकल्पों का खजाना, ये समय का खजाने की वैल्यू बाबा ने बताई। और संकल्प
इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। संकल्प शक्ति हमारे इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भाव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन मना भाव ये फाउंडेशन है, संकल्प की शक्ति आधार है उस फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। विशेष संकल्प की कमेंट्री देते हुए अभ्यास कराते हैं ना, तो बाबा कहे तो सब चेक करो। समय की रफ्तार, सारे दिन में चलते फिरते, कर्म करते, संबंध में आते, अमूल्य रूप से रही। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिमान बनाता है। समय अमूल्य है और संकल्प हमें सर्वशक्तिमान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, अव्यर्थ खाते को समाप्त करो। बाबा की यही चाहना है कि अव्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। बाबा कहते सफल करना ही सफलता है। दोनों खजाने को सफल करो, समय और संकल्प। एक सेकंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ ये सोचना है। व्यर्थ गया ये नहीं सोचो, या साधारण गया ये नहीं सोचो, लेकिन वो सेकंड सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो कि एक सेकंड में फुल स्टॉप और उसको सफल करना उस सेकंड को। बाबा कहते अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था अलबेले नहीं बनना, और बाद में सोचो बाप दादा ने कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है और जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा ही नहीं था, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, 15 दिसंबर की मुरली है, तो बाबा ये भी इशारा दे रहा है कि अभी वर्ष भी नया आने वाला है। तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है 15 दिन, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना, और आलस्य अलबेलेपन को क्या करो, इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना, आलस्य अलबेलापन को वर्ष के साथ विदाई दे देना। दे सकते हो, पूछते बाबा, दे सकते हो? जो दे सकता है वर्ष के साथ इसको विदाई, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। बाबा क्या कहते, जब सभी ने हाथ उठाया तो बाबा कहते वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का, रिटर्न करना याद रहता है, और को याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूरिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा।
तो बाबा क्या कहेंगे? बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं, क्या करते हैं, बाबा भी ऐसे अलबेले बच्चों का देख के सुन के मुस्कुरा देते हैं और क्या करें, अच्छा है। फिर भी देखो बाबा कितना पॉजिटिव, अच्छा है, सोचते हैं करना है करना है करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, बाबा ने क्या सुना, बाबा को समाचार दिया था कि हर एक अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं, बाबा की मुरली सुनते भी है देखते भी है, वहां भी अच्छा दिखाई देता है सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी पुरुषार्थ करो, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। प्यार में जैसे अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे बाबा कहते याद की सब्जेक्ट में भी अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वो करना ही है, जिसके साथ प्यार है प्यार वाली आत्मा जो कहे वो करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे, बाबा के साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए, ये बाबा की चाहना है, साथ रहे परम धाम में भी और राजधानी में जब आए तो ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए, तखत पर नहीं बैठे, भले तखत पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करें कि रॉयल फैमिली में आने वाले हैं या नहीं है, इसकी परख कैसे करें? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, स्थूल शरीर की नहीं, जितनी आयु ज्ञान की है, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। जितना समय बाबा के दिल तख्त नशीन, उतना रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते हैं, प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वो द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध में रहेंगे, द्वापर कलयुग में भी नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले
सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का